0: कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
1: तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
0: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती हैं। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
2: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
0: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
3: यहां पर हूं, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
4: क्या बोले
3: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
4: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
5: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
3: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
5: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर
3: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
5: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
0: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
3: चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
6: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं भी हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
3: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
6: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, अब बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
3: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
7: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
3: इनका नाम राहुल है
7: जी।
3: कितने साल के हैं ये?
8: 40 साल।
3: राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
6: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतने ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
3: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत, एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
0: इसी अनशन के मंच पर 2 छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
3: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
9: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो JSSC की भी, JPSC के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
3: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
9: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर DV भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
0: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर JPSC तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई, घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
10: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार। ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
3: आपने कितनी परीक्षाएं दी
10: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
3: 7 साल हो गए,
10: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। ये
0: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
11: खबर यूपी की पॉलिटिक्स की, जहां जेनजी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं, धर्म और जाति की राजनीति के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है।
12: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेनजी पर सरकार का फोकस है।
13: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेनजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
12: जेनजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है।
8: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। ये युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
14: तो उत्तर प्रदेश का जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार है। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
12: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेनजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिट।
11: संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेनजी के साथ संवाद कर रहे थे। नई युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ उन्होंने की, जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है।
12: जेनजी आंदोलन के बाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जेनजी के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने जेनजी की जमकर तारीफ की, प्रदर्शन को संवाद से निपटाने की नसीहत दी, तो वहीं जेनजी की देशभक्ति पर सवाल करने वालों को कटघरे में खड़ा किया।
15: मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
16: अरे वाह, बढ़िया है।
15: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
12: मोहन भागवत के बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहे।
17: सर्टिफिकेट फ्रॉम मोहन भागवत जी,
18: समर्थन तो किया है, लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने तो जेनजी को देशद्रोही कहा है
16: जी।
18: उन्हीं के अनुयायियों ने तो खालिस्तानी से लेके पाकिस्तानी तक तमाम हमारे बच्चों के, जो इनोसेंट बच्चे हैं शायद, जिन्होंने घर स्कूल के अलावा कभी कुछ देखा भी नहीं था, ऐसे बच्चों को बदनाम किसने किया? सदे नेताजी कहते थे ये बीजेपी आरएसएस के कई मुंह होते हैं, जब देखते हैं कि समाज में विरोध हो रहा है तो उन्हीं में से एक सकारात्मक बयान देने लगता है।
12: जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले जेनजी पर सवाल खड़े करने वाली कंगना रनौत भी प्रदर्शनकारियों और जेनजी में फर्क बता रही हैं।
19: जेनजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है, जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेनजी का ही मैंडेट है। और जेनजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेनजी हैं, ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेनजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेनजी जो है हमारी सबसे
11: खबर संसद की, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं।
0: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
20: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
21: ठीक है सर, यू सेड इफ एचएम विल कम टू द पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम।
22: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
0: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर यह चर्चा खास है, क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
23: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि actually सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए।
24: उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है, हमारे ग्रुप के जो है, हम आपके साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
1: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
2: जी,
1: वेरी गुड।
2: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
1: हर हर डेवलपमेंट के बारे में।
2: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
1: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
2: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
1: नो।
2: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
1: हम लोग मदद करेंगे।
0: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
11: पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती अंदरूनी कलह की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात ने पंजाब में पुराने गठबंधन को फिर से साथ आने की हटकलों को हवा दी है।
12: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
4: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
12: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
5: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
7: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
25: तो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माय अंकल एंड दैट ही इज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया। वो अलग बात है, अलग पार्टी, लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फ्राक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
12: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
26: तो प्रधानमंत्री साहब कोई भी मिल सकता, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साढ़े वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असं कले लड़ा।
12: इस बीच मान सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के साथ कई संगठनों ने मोर्चा संभाला और मान सरकार को घेरने की कोशिश की।
27: ये देखिए ये वाटर कैनन चला, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब दोबारा वाटर कैनन चला है और आपको बता दें यहाँ पे तिथर बितर करने की पूरी कोशिश, ये आप देखिएगा, ये लगातार हम आपको अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे उतरे हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हो रहा है, अपने मांगों को लेके अडंग है, अड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा के यहीं पे रोकने की कोशिश और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। लेकिन क्या ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को इलेक्शन में, ये बड़ी बात है और इसी वजह से जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी पंजाब गवर्नमेंट का पूरा साथ दे रही है।
12: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़। आज तक
11: दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी। सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। दिल्ली के साथ नोएडा गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली NCR में बारिश आफत लेकर आई, सलाह दी गई है बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकले।
0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
3: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
6: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
6: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है, और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है, ये बहुत संकेत है।
3: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
6: हाँ जी।
3: कहाँ से आ रही है?
6: बाल निकेतन संगम विहार।
3: तो अब कितना पानी बस नहीं मिला?
6: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
3: तो फिर
6: भी कार के अंदर इतना पानी।
3: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
6: आपकी भी बंद हो गई?
3: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
6: आप
3: देख सकते हैं यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम विहार, खानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है, जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
8: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, ITO वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
11: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रांची में चार मंत्री और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों का जारी किया व्हिप। एथेनॉल पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट में कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा पानी, लंबे जाम से लोगों का सामना, 9 घर भी गिर गए। आज फिर मौसम विभाग का अलर्ट।

0: गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ दिवान दीक्षित। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की राज्य सरकार के साथ पहले दौर की जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने चार मंत्रियों का एक पैनल बनाया था जिसने 10 छात्रों के डेलीगेशन से बात की। स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता के लिए पहुंचा डेलीगेशन आंदोलन कर रहे मुख्य छात्र समूह का है जो देवेंद्र महतो के गुट से अलग है। अब इस डेलीगेशन ने बैठक में शामिल होकर छात्रों का पक्ष रखा। वार्ता खत्म होने के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि यह हमारी पहली मीटिंग थी जो पॉजिटिव रही। भरोसा है कि सरकार, सीएम और सभी मिनिस्टर हमारी मांगों पर गौर करेंगे।
1: आप लोगों की और क्या निर्णय लिया गया?
2: अभी बस धरना पर लिया गया है और आगे का वार्ता भी चलेगा, आंदोलन
1: क्या कहा गया? चलेगा। मंत्री ने क्या कहा आप लोगों की बात पर?
2: हम लोगों की बात को सकारात्मक लिया गया है और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा।
3: सकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
4: हाँ, जारी रहेगा।
0: हालांकि इस आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठा है वो ये है कि कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के या फिर उनका कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन जंतर मंतर पर अनशन करने वाले आईसा की अध्यक्ष नेहा बोरा नजर आती है और समर्थन देने की बात करती है और उन पर स्याही फेंकने की घटना भी सामने आती है। आइए देखते हैं इस आंदोलन में आगे क्या होने वाला है।
5: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत देव के या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की 2 दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
6: आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष में पूरा देश देख रहा है और इस मंच से ये मांगे जो यहाँ पे भूखहड़ताल पर बैठे छात्रों की है, संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
5: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती हैं। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
7: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें।
4: देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
5: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
7: पर हूँ, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल, जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहाँ से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहाँ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
8: क्या बोले
7: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
8: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा।
9: अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
7: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
9: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट टूट कर।
7: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
9: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
5: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
7: चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
10: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं भी हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
7: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
10: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि 2 घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
7: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता 4 दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
11: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
7: इनका नाम राहुल है
11: जी।
7: कितने साल के हैं ये?
12: 40 साल हो गए।
7: 40 राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
10: जेपीएससी का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो पीटी निकल जाता था, इस बार तो एमआरए लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक आचार्य का भी परीक्षा क्वालिफाई हूँ, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतने ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
7: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है। और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया, तबीयत बिगड़ रही है ना।

0: बावजूद भी ये एक हिम्मत एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
1: इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
0: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
2: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
0: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गई?
2: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी, तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
1: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की। होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी है। 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
3: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे। 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
0: आपने कितनी परीक्षाएं दी
3: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
0: 7 साल हो गए,
3: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया।
1: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
4: चलिए बात अब यूपी पॉलिटिक्स की कर लेते हैं, जहां जेन जी को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। धर्म और जाति की सियासत के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक अहम रोल निभा सकता है।
5: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेन जी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेन जी पर सरकार का फोकस है।
6: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा, यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेन जी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेन जी एक बहुत बड़ा वोटर है, और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
5: जेन जी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है,
7: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। यह युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
8: तो उत्तर प्रदेश का जो जेन जी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो आत्ममुग्धता के शिकार हैं। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
5: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेन जी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
9: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, और बबुआ भी यही करते थे,

0: 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था।
1: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेन ज़ी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब बात संसद की करते हैं, जहां सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। क्या कुछ शुक्रवार को संसद में हुआ है वो हम आपको डिटेल में समझाते हैं।
3: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
4: लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
5: ठीक है सर, यू सेड इफ एचएम विल कम टू द पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम।
6: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
3: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर यह चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
7: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि actually सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
8: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
2: जी,
8: वेरी गुड।
2: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
8: हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
2: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
8: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
2: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
8: नो।
2: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? सर
8: हम लोग मदद करेंगे।
3: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
2: चलिए बात अब कर लेते हैं दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में हुई आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता की, जिसमें देश भर के 22 से ज्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया, जहां छात्रों ने अपनी स्पीच और तर्क से सबका दिल जीत लिया।
1: दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आयोजित आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के 16वें संस्करण का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। देश भर के 22 से अधिक प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रतिभागियों ने अपनी तर्क शक्ति, वाक्पटुता और वैचारिक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
9: आपको चार अलग फॉर्मेट होते हैं, चार अलग प्रारूप होते हैं, सबकी तैयारी करनी, रिसर्च करना, क्योंकि कोई भी राउंड प्रिपेयर नहीं होता, तो आपको सबकी तैयारी यहीं पे आकर करनी है। तो इसलिए चैलेंजिंग था, अच्छा भी था, मज़ा भी आया, क्योंकि जो चीज़ चैलेंजिंग है इट्स वेरी फन।
10: इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से, और आत्मविश्वास जुटाना होता है वहाँ पे जाकर बोलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आत्मविश्वास जुटाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात रही।
11: हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिला जिससे हम अपने आप में बदलाव ला सकें और फिर हम अपने को बहुत बेहतर कर सके।
1: प्रतियोगिता में व्यक्तिगत श्रेणी में द दून स्कूल के अभिनव और सरदार पटेल विद्यालय की झीलम संयुक्त विजेता रहे। वही उप विजेता का सम्मान द दून स्कूल के प्रतिभागी ने हासिल किया।
12: टीम श्रेणी में सरदार पटेल विद्यालय ने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।
13: जब हमने आज तक वाद विवाद शुरू किया था 16 साल पहले, हमने सोचा था हिंदी डिबेट है, कौन आएगा, और वसंत वैली स्कूल जो इंडिया टुडे डिबेट करती है, अंग्रेजी की डिबेट करती है, हिंदी डिबेट में कौन आएगा। बट वी वर रियली सरप्राइज।
12: दो दिवसीय प्रतियोगिता ने छात्रों को न केवल अपनी अभिव्यक्ति का मंच दिया बल्कि तर्कपूर्ण संवाद और सीखने का भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
2: और अब बात कर लेते हैं गड्ढों की, या फिर कह सकते हैं सिस्टम के गड्ढों की। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी आम लोगों की। सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम ऐसा है कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। मौसम विभाग ने तो रेड अलर्ट जारी किया और 10 अगस्त तक बारिश का अनुमान जता दिया। अब दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी तेज बारिश के चलते लोग परेशान हैं, बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश आई, कैसी मुसीबत लाई, हम आपको बताते हैं।

0: सुबह से दिल्ली एनसीआर में सावन ऐसे झूम कर आया कि दिन ढल गया, रात हो गई, लेकिन मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही। लोग सड़कों पर परेशान दिखे, ट्रैफिक से जूझते दिखे, गाड़ियां खराब होती दिखी, सड़कों पर जल भराव दिखा। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक ऐसे ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होते रहने की संभावना है। पहले बारिश में हिचकोले खाती दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें एमबी रोड की हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
2: कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
2: सर ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है, और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबा लब भरा हुआ है, ठीक है, ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर है आप?
3: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही है?
3: बाल निकेतन संगम विहार।
1: तो अब कितना पानी बस उस नहीं मिला?
3: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम आए
1: तो फिर
3: भी कार के अंदर इतना पानी।
1: आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
2: आपकी भी बंद हो गई?
4: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
1: आप देख सकते हैं यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
0: आपको बता दें कि एमबी रोड पर ओखला मोड़, संगम विहार, कानपुर और देवली में जल भराव हुआ है, जिसके कारण एमबी रोड का यातायात खानपुर से ओखला मोड़ के बीच प्रभावित हुआ और लोग परेशान होते रहे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 7 अगस्त को 59.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस साल अगस्त महीने का अब तक का सबसे बरसाती दिन रहा है, जबकि दिल्ली के छतरपुर में 104.5 मिलीमीटर बारिश, पुष्प विहार में 111.5 मिलीमीटर बारिश, पालम में 73.5 मिलीमीटर बारिश और आया नगर में 87.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बारिश में दरिया बनती दिल्ली की तस्वीरें वसंत कुंज से भी आई हैं। देखिए वसंत कुंज का हाल।
5: दूर देखिए बच्चे, वहाँ जो स्कूली बच्चे हैं वो आ रहे हैं और देखिए उन वो पानी में कैसे खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये स्कूल का टाइम है, स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे देखिए यहाँ पर सड़क पे या फुटपाथ हो हर तरफ पानी ही पानी है। बेहद अहम मार्ग है, मैं फिर से बता दूं, वसंत कुंज का ये रोड है जो एयरपोर्ट को जोड़ता है, इसके आसपास कई सारे स्कूल हैं और यहाँ पर जलजमाव की स्थिति बनी है। दिल्ली वालों की ये आफत बन के निकला है ये मानसून की ये बरसात।
0: बारिश की वजह से मेहरोली बदरपुर रोड, आईटीओ वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली जयपुर हाईवे, पीरा गढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया। हालांकि इस बारिश से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ दिन भर चलता रहा। बारिश होने से कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं झमाझम बारिश के बीच नोएडा सेक्टर 95 स्थित अंडरपास में जल भराव हो गया, जिसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बंद पड़ी एम्बुलेंस को ड्राइवर ने धक्का मारकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गनीमत ये रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। और बारिश से गुरुग्राम की दुर्गति भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा है और पानी में गड्ढे हैं। ये देखिए कैसे एक ऑटो पानी में हिचकोले खाते हुए चल रहा है। बारिश इतनी तेज हुई कि पहले सड़कें लबालब हुई और फिर पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के अंदर भी घुसपैठ कर गया। और गुरुग्राम की पुलिस लाइन की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे बारिश के पानी में बच्चे तैराकी कर रहे हैं। और जैसा कि हर बारिश में गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही नजारा आज भी दिखा। गुरुग्राम में पिछले कुछ घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी जलभराव और यातायात जाम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
8: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR आईनॉक्स में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं महीने।

0: क्या है सावन के शनिवार की महिमा? सावन के दूसरे शनिवार पर क्या होगा पूजा का विधान? और शनिदेव के मंत्रों से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: क्या है सावन के शनिवार की महिमा? सावन के दूसरे शनिवार पर क्या होगा पूजा का विधान? और शनिदेव के मंत्रों से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

रांची में चार मंत्री और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों का जारी किया व्हिप। एथेनॉल पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट में कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाती थी चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा पानी, लंबे जाम से लोगों का सामना, 9 घर भी गिर गए। आज फिर मौसम विभाग का अलर्ट।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दृश्य। सबसे पहले बारिश की बात करते हैं। बारिश के बाद ताज नगरी आगरा में हालात बिगड़ गए। पानी भरने से सड़क और नाले का फर्क मिट गया और एक बड़ा हादसा हो गया। इलाके में नगला बिहारी इलाके में सवारियों से भरा एक टेम्पो अचानक गहरे गड्ढे में जा गिरा। टेम्पो में ड्राइवर समेत 5 लोग फंस गए। स्थानीय लोग और पुलिस ने बहुत मेहनत के बाद सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला। बारिश के बीच इस हादसे की पूरी तस्वीर भी अब सामने आई है। देखिए, ये वो ऑटो जो आप सफेद रंग का देख रहे हैं, ये फंस गए। अब इसमें यात्री भी थे। अब कैसे मुश्किल से इनको निकाला गया। और आफत बारिश बन गई है, क्योंकि जगह जगह ऐसे बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों में पानी, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे गड्ढा है, आपको लगता है कि रोड है, आप जाते हैं आगे और फिर धम्म से आप उस गड्ढे में समा जाते हैं। तो आगरा में बारिश के पानी के बीच दबंगई की तस्वीर भी सामने आई। सड़क पर भरे पानी के बीच कुछ लोगों ने एक मां और उसके बेटे को घेर कर लाठी डंडों से पीट दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आरोपित को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। सोचिए, एक मुसीबत कम है, बारिश की लोग इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो गई है, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन दबंगई का अब ये वीडियो कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि एक औरत को मारा जा रहा है, एक लड़के को मारा जा रहा है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और लाठियां निकाल ली गई हैं। जब ऐसे वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वहां एक दूसरे का खून निकालने पर ये लोग आमादा हैं। आगरा से आपको लिए चलते गुजरात के जूनागढ़। एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। केशोद नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण बताया जा रहा है कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। पूरी घटना पेट्रोल पंप के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें कैद हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच भी अब शुरू कर दी है। और यही वो गाड़ी है जिसको आप देख रहे हैं, जिससे टक्कर लगी। गाजियाबाद के लोनी में नाले के गंदे पानी में केले धोने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने फल बेचने के लिए साफ सफाई से जुड़े गंभीर सवाल उठाए। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। एक अलग तस्वीर भी सामने आई है और पुलिस ने पूरी स्थिति साफ भी की। अब ये देखिए, ये वो बताया जा रहा है वीडियो कि केले हैं, उनको कौन से पानी से धोया जा रहा है, साफ किया जा, साफ कैसे कर सकते हैं आप सोचिए। ये गाजियाबाद के लोनी की है। पुलिस जांच में अब जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में एक बार फिर फ्लैट की हालत को लेकर सवाल उठे हैं। करोड़ों रुपए के फ्लैट में अचानक छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। हादसे के वक्त परिवार घर में मौजूद था और कुछ देर पहले ही बच्चा उसी जगह खड़ा था जहां प्लास्टर गिरा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। अब आप सोचिए, ये हालात है यहाँ पर, आप सो रहे हैं, सोते वक्त अचानक से ऊपर से ऐसा हो जाए तो क्या होगा। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किस तरह की गुणवत्ता रहती है फ्लैट्स की, ये आप देख सकते हैं, जहां पर आप उंगली से भी दीवार में छेद कर सकते हैं। कई जगह तो ऐसे हालात हो जाते हैं, आप पर्दे टांगने के लिए रॉड लगाते हैं तो वो रॉड निकल के नीचे आ जाती है। और इसी तरह का मटेरियल का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। राजस्थान के अजमेर में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित थार सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि दीवार का एक हिस्सा टूट गया। पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। और गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये आप देखिए, ये फुटेज, ये गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि गाड़ी को आप ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और इधर उधर टक्कर खाती हुई डिसबैलेंस हुई। और उसके बाद आपके सामने तस्वीर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन को शुरू हुए 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर इस प्रदर्शन से जुड़े बड़े चेहरे कहां हैं। सवाल उठ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके या पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में जंतर मंतर पर दिखे थे, लेकिन अब जो झारखंड में हो रहा है उसमें क्यों नजर नहीं आया। हालांकि आंदोलन के 14वें दिन आइजा की अध्यक्ष नेहा बोरा वहां पहुंची और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया और इसी दौरान उन पर स्याही फेंके जाने की घटना भी सामने आई। बहुत कुछ देखना होगा आने वाले दिनों में कि इस आंदोलन का कितना राजनीतिक समर्थन मिलता है और इसकी आगे की राह क्या होती है।
1: जब रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी मांगे बनवाने के लिए अड़े हुए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है तो उसमें अभिजीत देव के या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अब तक इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुआ। इस बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कॉकरोच जनता पार्टी की दो दिन बैठक भी होती है। सीजेपी अपनी आगे की पूरी रणनीति तय करती है, पूरी टीम के पद तय किए जाते हैं और सितंबर से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने का ऐलान भी होता है। सवाल यही है कि सीजेपी के सारे बड़े चेहरे छत्रपति संभाजी नगर में दीपके के घर तो दिखते हैं, रांची के आंदोलन में क्यों नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से लगातार सवाल हो रहे हैं कि सीजेपी के नेता रांची के छात्र आंदोलन में अब तक क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि इस पर सीजेपी ने कहा कि उन्होंने बारिश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए रेनकोट भेजे हैं, छाते भेजे हैं, खाने का सामान भी भेजा है और पार्टी का नेतृत्व भी रांची जाएगा। सवाल यही है कब तक। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा रांची में छात्र आंदोलन के मंच पर जरूर पहुंची। नेहा बोरा ने मंच से इस आंदोलन के समर्थन का ऐलान भी किया। नेहा बोरा ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए और इसकी तारीख जल्द घोषित होनी चाहिए।
2: आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है उस संघर्ष में पूरा देश देख रहा है और इस मन से ये मांगे जो यहाँ पे छात्रों की संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सॉलिडारिटी और समर्थन यहाँ से देना चाहूंगी।
1: लेकिन रांची के छात्र आंदोलन के दौरान आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया और इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। नेहा बोरा की उम्र अभी 29 साल है और वो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती हैं। मूल रूप से नेहा बोरा उत्तराखंड के खटीमा से आती है। आपको बता दें कि रांची आंदोलन को लेकर सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे थे। बीजेपी कह रही थी कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन पर बोलने वाले राहुल गांधी रांची के छात्र आंदोलन पर क्यों चुप हैं? तो राहुल गांधी ने 6 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की। एक छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने छात्रों के समर्थन की बात कही।
3: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
1: लेकिन जैसे जैसे रांची आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं छात्रों का सब्र टूट रहा है और अब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। ये 40 साल के राहुल हैं जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। बाकायदा डॉक्टरों की टीम आई और इस अनशनकारी को यहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
4: यहां पर हूं, 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए थे बीते 4 दिनों से। इनमें 40 साल के राहुल जिनको आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये देख लिया है कि इनके वाइटल्स जो है काफी ज्यादा बिगड़ गए और इसलिए अब इनको जो है यहां से अस्पताल ले जा रहा है। डॉक्टर ने कहा इनको यहां बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भैया, क्या कुछ बताया उन्होंने,
5: क्या बोले
4: डॉक्टर, क्या कह रहे हैं?
5: डॉक्टर ये बताया कि उसका तबीयत खराब है, उसको अभी सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। अभी एक ही लोग का देखा गया है, अभी इनका ठीक लग रहा है, बाकी लोग का देख रहे हैं।
4: उनको आप ले जा रहे हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है?
5: उनका पल्स रेट काफी ज्यादा हाई मिल रहा है, जिसके वजह से उनका बीपी भी थोड़ा शूट उठ कर
4: यहाँ रखा जा सकता है बिल्कुल भी
5: अब? नहीं नहीं, अब इनको एडमिट ही करना पड़ेगा, अब इनको सदर में ही रेफर करना पड़ेगा।
1: डॉक्टरों की सलाह के बाद अनशनकारी राहुल को अस्पताल ले जाया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा से बात की।
4: चौथा दिन हो गया, स्वास्थ्य से बढ़कर तो आंदोलन नहीं है ना?
6: लेकिन झारखंड के नौजवानों का सौदा नहीं हो, ये मेरा संकल्प है, तो उसको तो हम अंतिम सांस तक।
4: मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आपको बुखार काफी ज्यादा है, बहुत तेज हो चुका है, शरीर तप रहा है।
6: तप रहा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर भी तो आते हैं, चेकअप करते हैं, दवा भी लिखते हैं, आप बोलते हैं कि दो घंटा में दवा पहुंचा रहे हैं।
4: देखिए, जब एक अनशन खत्म हुआ तब आप लोगों ने समर्थन किया, आपको नहीं लगता चार दिन हो चुका और हर युवा को अनशन की आदत नहीं होती, आपकी जगह कोई और जगह ले सकता है, आप लोग नहीं दबाव डालते, तबीयत इनकी बहुत ज्यादा खराब हो?
7: नहीं, हम लोग बिल्कुल आज सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सीरियसली इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनकी हालत ज्यादा नाजुक ना हो। हम लोग चाहेंगे कि इसका विकल्प के तौर पे हम लोग कुछ आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि ये
4: इनका नाम राहुल है
7: जी।
4: कितने साल के हैं ये?
8: 40 साल।
4: 40। राहुल, आपने भी प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी अपने समय में?
6: JPSC का लगातार परीक्षा लिखते हैं, पहले तो PT निकल जाता था, इस बार तो MRA लीक हो गया तो बिक गया, तो निकलना तो दूर की बात है। सहायक HR का भी परीक्षा क्वालिफाई हो, सीट खाली है, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है, टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति देती है, जितना सीटों का सेटिंग होता है उतने ही को नियुक्ति देती है। जब विज्ञापन एक बार आया तो नियुक्ति उनको एक बार देना चाहिए था।
4: दरअसल झारखंड की पीड़ा ये है कि छात्र पेपर सेट करते हैं, लगाते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन पीछे से सेटिंग हो जाती है, नौकरियां कोई और ले जाता है और उसी के साथ साथ उम्र सीमा भी खत्म हो जाती है, और जब सब्र का बांध टूटा है तो उन छात्रों को यहां आंदोलन पर ले आया। तबीयत बिगड़ रही है, नासाज हो रही है, डॉक्टर भी कह रहे हैं शरीर तप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हिम्मत एक हौसला है, क्योंकि उन्हें लगता है ये लड़ाई सिर्फ अब उनके भविष्य की नहीं है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
1: इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इन छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देती हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
4: कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
9: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो JSSC की भी, JPSC के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे सर।
4: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गई?
9: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी, तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर DV भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हुआ ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा।
1: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर JPSC तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल पाई, घर के हालात भी ठीक नहीं हैं।
10: तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
4: आपने कितनी परीक्षाएं दी
10: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
4: 7 साल हो गए?
10: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया।
1: पिछले 14 दिनों से रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका ये प्रदर्शन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बन पाएगी? आज तक ब्यूरो।
0: प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जहां अब जेंजी को लेकर पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है। धर्म और जाति की सियासत के बीच अब हर पार्टी की नजर युवा वोट बैंक पर है, जो 2027 के चुनाव में एक बहुत अहम रोल निभा सकता है।
11: दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेंजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने नई युवा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 2027 से पहले जेंजी पर सरकार का फोकस है।
12: युवाओं को लेकर एक आयोग गठित होने वाला है जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवा यानी कि आसान भाषा में कहें तो कुछ हद तक जेंजी से सलाह मशवरा लिया जाएगा युवाओं को लेकर बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर। यानी कि योगी सरकार को ये मालूम पड़ गया है कि जेंजी एक बहुत बड़ा वोटर है और ऐसे में उन्हें साथ लेकर ही चलना होगा।
11: जेंजी वोट बैंक पर योगी सरकार के मिशन पर सियासत तेज हो गई है
13: और अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक युवा नीति लेकर के आ रही है। ये युवा नीति युवाओं के सपनों को साकार करने वाली होगी।
14: तो उत्तर प्रदेश का जो जेंजी है, जो जेन अल्फा है, जो मिलेनियम है, वो समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ भी किसी चीज के अगर शिकार है योगी आदित्यनाथ जी तो आत्ममुग्धता के शिकार है। अगर आत्ममुग्धता के शिकार न होते तो अपने चेहरे चमकाने पर 3 करोड़ रुपए न खर्च करते, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप पेपर लीक की जगह अच्छी व्यवस्था, पारदर्शी और निष्पक्ष आपने कोई व्यवस्था दी होती।
11: उधर राहुल गांधी भी कल पेपर लीक के मुद्दे पर गूंज कार्यक्रम के तहत प्रयागराज में जेंजी छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। प्रयागराज आ रहा हूँ, देश के उस शहर में जहाँ सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं। एक बात साफ है, यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं, कमी उस सिस्टम की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती। ये सरकार झुकती है, बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए। अखिलेश यादव की नजर भी जेंजी से लेकर जेन अल्फा तक है, जिनके मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी और रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2-3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं।
15: कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी, तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था।
11: बहरहाल यूपी में भी सियासी रणनीति बदलती जा रही है, जहां सबकी नजरें जेंजी वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में हुई आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता की बात करते हैं, जिसमें देश भर के 22 से ज्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया, जहां छात्रों ने अपनी स्पीच और तर्क से सभी का दिल जीत लिया।
11: दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आयोजित आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के 16वें संस्करण का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। देश भर के 22 से अधिक प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रतिभागियों ने अपनी तर्क शक्ति, वाक्पटुता और वैचारिक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
16: आपको 4 अलग फॉर्मेट होते हैं, 4 अलग प्रारूप होते हैं, सबकी तैयारी करनी, रिसर्च करना, क्योंकि कोई भी राउंड प्रिपेयर नहीं होता, तो आपको सबकी तैयारी यहीं पे आकर करनी है। तो इसलिए चैलेंजिंग था, अच्छा भी था, मज़ा भी आया, क्योंकि जो चीज़ चैलेंजिंग है इट्स वेरी फन,
17: इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से। और आत्मविश्वास जुटाना होता है, वहाँ पे जाकर बोलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आत्मविश्वास जुटाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात रही।
18: हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिला, जिससे हम अपने आप में बदलाव ला सके और फिर हम अपने को बहुत बेहतर कर सके।
11: प्रतियोगिता में व्यक्तिगत श्रेणी में द दून स्कूल के अभिनव और सरदार पटेल विद्यालय की झीलम संयुक्त विजेता रहे। वही उप विजेता का सम्मान द दून स्कूल के प्रतिभागी ने हासिल किया। टीम श्रेणी में सरदार पटेल विद्यालय ने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।
19: जब हमने आज तक वाद विवाद शुरू किया था 16 साल पहले, हमने सोचा था हिंदी डिबेट है, कौन आएगा, और वसंत वैली स्कूल जो इंडिया टुडे डिबेट करती है, अंग्रेजी की डिबेट करती है, हिंदी डिबेट में कौन आएगा। बट वी वर रियली सरप्राइज्ड।
11: 2 दिवसीय प्रतियोगिता ने छात्रों को न केवल अपनी अभिव्यक्ति का मंच दिया, बल्कि तर्कपूर्ण संवाद और सीखने का भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
0: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक।
20: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: क्या है सावन के शनिवार की महिमा? सावन के दूसरे शनिवार पर क्या होगा पूजा का विधान और शनिदेव के मंत्रों से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: क्या है सावन के शनिवार की महिमा? सावन के दूसरे शनिवार पर क्या होगा पूजा का विधान, और शनिदेव के मंत्रों से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: So sorry.

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रांची में चार मंत्री और छात्र प्रतिनिधि मंडल में पहले दौर की वार्ता खत्म। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक स्थगित दोनों सदन। रिजिजू ने विपक्ष पर जड़ा आरोप, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों का जारी किया व्हिप। एथेनॉल पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, वीडियो पोस्ट में कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं विवाद। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा एसपी सरकार में लूटने निकल जाते थे चाचा भतीजे की जोड़ी, इन्होंने नहीं चलने दी विधानसभा। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा पानी, लंबे जाम से लोगों का सामना, 9 घर भी गिर गए। आज फिर मौसम विभाग का अलर्ट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के सोमवार के जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं सावन के शनिवार, और आज सावन का दूसरा शनिवार है, तो हम आपको बताएंगे कि आज आपको क्या पूजा उपासना करनी है और किस तरह के लाभ सावन के दूसरे शनिवार पर आपको प्राप्त होंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:59 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 4:51 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज सावन के दूसरे शनिवार की बात कर रहे हैं। सावन के दूसरे शनिवार का महत्व क्या है और क्या खास बात होती है सावन के शनिवार की, पहले ये जानते हैं। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। आप नॉर्मली देखिए, सावन में लोगों को आलस्य रहता है, इसीलिए सावन में आम आदमी को स्वास्थ्य की समस्या और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन का हर शनिवार अगर आप इस दिन उपासना करें तो आपको अपार धन और संपत्ति दे सकता है। इसीलिए संपत्ति देने की वजह से सावन के शनिवार को संपत शनिवार भी कहा जाता है। इस बार सावन के दूसरे शनिवार पर दशमी तिथि का संयोग बन रहा है और दशमी के साथ सावन होने की वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन में भाग्य बढ़ाने के लिए बताएंगे एक सावन सूत्र। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बताते हैं कि सावन के हर शनिवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। सावन के हर शनिवार को आप शनिदेव की पूजा जरूर करिए, लेकिन शनिदेव के साथ साथ शिव जी की पूजा करना भी जरूरी है। प्रयास करिए कि सावन के हर शनिवार को एक समय आप उपवास रखें और एक समय आप भोजन करें। अगर आप सावन के शनिवार को आहार ग्रहण करते हैं तो आपका आहार हर हाल में सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग सावन के शनिवार को ना करें। सावन के शनिवार पर पूजा के दौरान या वैसे भी काले रंग का प्रयोग ना करें। आप चाहें तो नीला रंग प्रयोग कर सकते हैं। अगर सावन के हर शनिवार को शाम के समय पीपल के नीचे केवल दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें तो इतना करने से भी आपको शनि देव की कृपा मिलेगी। मैं आपको ये कहूंगा कि सावन के शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, 108 बार शनि मंत्र का जप करें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। शनि देव की कृपा आपको बड़ी आसानी से प्राप्त होगी। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं

आज का पहला प्रश्न मीनाली ने हमें लिखा है और मीनाली हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1996। जन्म का समय सुबह के 7:10। जन्म का स्थान है गुड़गांव। मीनाली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मीनाली, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह में विलंब है। अप्रैल 2027 के बाद आपके विवाह की संभावना बनती है। साल 2027 के अंत में एक बेहतर समय है जब आपका विवाह हो सकता है, और आने वाले साल में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन के दूसरे शनिवार को क्या उपाय करें जिससे बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। आज शाम को, यानी सावन के शनिवार की शाम को स्नान करिएगा, नीले या सफेद वस्त्र धारण करें। सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाइए, साथ में सरसों के तेल का दीपक, थोड़े से काले तिल और एक लोटा जल लेकर जाइएगा। सबसे पहले जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में डालिएगा। इसके बाद सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा और वृक्ष की परिक्रमा करिएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना के हिसाब से घर पर आकर या वहीं वृक्ष के पास शनि मंत्र का 11 माला जप करिएगा। जब मंत्र का जप कर लें, पूजा पूर्ण हो जाए, तो किसी निर्धन व्यक्ति को धन और अन्न का दान करिएगा। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। भोजन में अगर काली उड़द की दाल की वस्तुएं हों तो ज्यादा उत्तम होगा। यानी आज शाम को आप अपनी मनोकामना के अनुसार शनिदेव के मंत्र का जप करें, कम से कम 11 माला। पीपल के नीचे दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और किसी निर्धन व्यक्ति को धन का, अनाज का, वस्त्र आदि का दान करें। अगर सावन के शनिवार पर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में शनि से संबंधित और रोजगार से संबंधित जितनी बाधाएं हैं, ये बाधाएं दूर हो जाएंगी। शनिदेव के अलग अलग मंत्रों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आप अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए सावन के दूसरे शनिवार पर यानी आज के दिन शनि देव के अलग अलग मंत्रों का जप शाम के समय कर सकते हैं। कम से कम 3 माला या 11 माला शनि देव का मंत्र जपना चाहिए। अगर आप धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको निरंतर धन और संपत्ति मिले तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? स्क्रीन पर देखिए, ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये शय्यो रभि स्रवन्तु नः। ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये शय्यो रभि स्रवन्तु नः। शनि देव का वैदिक मंत्र है और इसको अगर आज आप जप करते हैं संध्या काल में तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और उस वजह से आप परेशान हैं तो आज शाम को मंत्र पढ़िएगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला आज शाम को जप करिएगा। अगर आपको नई नौकरी चाहिए या आप नौकरी प्राप्त करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो क्या मंत्र पढ़ेंगे? मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं शनैश्चराय नमः। कम से कम 11 माला इस मंत्र को पढ़िएगा और नौकरी प्राप्त करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सामान्य रूप से शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनि देव का सबसे सरल मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम
शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला या 3 माला शाम के समय जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। देखिए, जैसे इस समय कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और साथ में धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो ये 5 राशि के जो लोग हैं आज शाम के समय शनि मंत्र का अपने सामर्थ्य के अनुसार जप करें, चाहे ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का या ओम शं शनैश्चराय नमः का जप आज शाम को आपको करना चाहिए, कम से कम 3 माला या 11 माला। और मंत्र जप करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का और थोड़े धन का दान करना चाहिए। अगर आज संध्या काल में आप ऐसा कर लें तो शनि की 7.5 का और शनि की ढैया का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, चिंताएं समाप्त होंगी, लेकिन खान पान में सावधानी बनाए रखें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

राशि व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की जिस मूर्ति में आंखें हों उस मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में शनि की ऐसी मूर्तियां बननी ही नहीं चाहिए जिसमें उनकी आंखें हों, क्योंकि ज्योतिष ये मानता है कि शनि की दृष्टि जिस चीज के ऊपर पड़ती है उसका नाश हो जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो ग्रह हो। अगर आप शनि की ऐसी मूर्ति के सामने जाएंगे जिसमें उनकी आंखें हों तो उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, आपको नुकसान होगा। शनि जहां शिला के रूप में विद्यमान हो वहां पर शनि देव की मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। आंखों वाली शनि देव की मूर्ति का दर्शन करना उचित नहीं होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 2, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। नंबर 3, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मान सम्मान मिलेगा। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, लाभकारी यात्रा हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा। आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा।

वृषभ राशि के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, बेवजह के तनाव और बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है, शनिवार की दशमी बहुत अशुभ होती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा। सावन का पावन महीना चल रहा है और आपको अब बताते हैं सफलता पाने का उपाय सावन सूत्र में। अगर आर्थिक समस्या बनी रहती है आपके साथ हमेशा, तो सावन में जितने भी दिन बचे हैं अधिक से अधिक सुबह और शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएस सीनेट ने रूस से पेट्रोलियम खरीदने वाले देशों पर फाइन लगाने वाले बिल को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस से तेल खरीद पर 100% टैरिफ लगाएगा यूएस। अब भारत और चीन भी इसमें शामिल है। भारत चीन सहित 5 देशों पर 100% टैरिफ यूएस की तरफ से लगाया जाएगा। अब देखिए, भारत चीन के अलावा स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी शामिल है। तर्क दिया गया है कि इस तरह का व्यापार यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है। यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों के सामान पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी तेल और गैस के शीर्ष 5 आयातक हैं। अमेरिकी सीनेट ने रूस और उसके प्रमुख ऊर्जा खरीदारों पर कार्रवाई वाले बिल को 86-11 वोटों से मंजूरी दे दी है। अब प्रस्ताव में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है और इसमें भारत भी शामिल है। भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान, ये वो 5 देश हैं जिन पर 100% टैरिफ अब यूएस की तरफ से लगाया जाएगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की मंजूरी के बाद बिल राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा। और आइए आपको दिखाते हैं नॉन स्टॉप 100।

दिल्ली एनसीआर में मानसून का कहर, आईएमडी का येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम, सड़कें बंद होने की स्थिति। बारिश ने रोका दिल्ली का ट्रैफिक। सरायकालिका में आउटर रिंग रोड पर लगी रही वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में भारी जलभराव। लगातार बारिश के बाद सैनिक फार्म क्षेत्र की सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को आवाजाही में परेशानी। दिल्ली में बारिश के बाद आईटीओ में समेत राजधानी में कई हिस्से प्रभावित हुए, सड़कों पर जलभराव की स्थिति। दिल्ली में जलभराव के कारण एमबी रोड पर भीषण जाम लग गया। ओखला मोड़ से खानपुर के बीच जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जल जमाव में फंसे वाहन, धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। जोरदार बारिश के बीच दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव में लगा लंबा जाम। कापस हेड़ा से जाने वाली सड़क से आई तस्वीरें। दिल्ली में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन छतरपुर समेत कई इलाके जलमग्न, गलियों में पानी भर गया। गुरुग्राम में भी आफत की बारिश, तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच अस्पताल परिसर में जलभराव, बेसमेंट की दीवारों से निकला पानी, चिकित्सा सेवाएं प्रभावित। बारिश के चलते राजधानी दिल्ली हुई पानी पानी, सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। बारिश के बीच दिल्ली के बसंत कुंज से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बनी तालाब, जलभराव से लोग परेशान। दिल्ली के संगम विहार में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, कॉलोनी में 3 से 4 फीट तक पानी भरा, कमर तक भरे पानी में वाहनों को धक्का लगाते दिखे लोग। फरीदाबाद में बारिश के बाद जलमग्न अंडरपास में फंसी फॉर्च्यूनर, चालक की हालत गंभीर। आगरा में एक टेम्पो अचानक नाले में जा समाया, 5 लोगों की जान बचाई गई। सड़क पर पड़े गड्ढों पर भर गया था बारिश का पानी। भारी बारिश के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर लगा भीषण ट्रैफिक जाम, लंबी कतारों के बीच रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक यूं ही जारी रहेगी रिमझिम बारिश। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 10-11 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के बागेश्वर कांडा हाईवे पर भूस्खलन, सड़क किनारे खड़े वाहन पर गिरा मलबा, प्रशासन ने रास्ता साफ करवाकर यातायात बहाल कराया। चमोली में भूस्खलन के बीच पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार कर रहे ग्रामीण, जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए लोग। जम्मू कश्मीर के शोपिया में तेज आंधी से सेब की फसल तबाह, करोड़ों का नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। इटाव में 1 घंटे की बारिश से भारी जलभराव, अंडरपास में 4 फीट पानी बढ़ने से आवागमन ठप हुआ, जिला अस्पताल भी जलमग्न, नगर पालिका की व्यवस्था पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के दतिया में बारिश से खुली नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल, किला चौक समेत कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। आगरा में तेज बारिश से दस्ती सड़क, ताजगंज इलाके में गड्ढे में फंसा ट्रक, समय रहते वाहन रोकने पर पड़ा हाथ अटक गया। झारखंड के धनबाद में कतरास में धसी जमीन, कहा घर मलबे में दबा, 12 लोग घायल हो गए। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। समारोह में 3036 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जिनमें 587 पीएचडी स्कॉलर्स शामिल। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में पीएम एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा सुविधा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे आईआईटी दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे पीएम। प्रयागराज में राहुल गांधी का युवा कनेक्ट, छात्रों की गूंज का तीसरा चरण। कांग्रेस को उम्मीद है कि छात्र मुद्दों पर सक्रियता से यूपी के युवाओं जनजी के बीच पार्टी की पकड़ बढ़ेगी। प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्र सभा, 1.5 लाख छात्रों के जुटने की उम्मीद। केपी कॉलेज मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने की संभावना है। राहुल गांधी यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। राहुल गांधी पार्टी सांसदों, विधायकों, प्रदेश प्रभारी और अन्य नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। राहुल गांधी बोले एकजुट होकर आवाज उठे तो सरकार छुटती है। प्रयागराज में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी छात्र मुद्दों पर एकजुटता का संदेश देंगे। G20 ईंधन के खिलाफ आपका देशव्यापी टाउन हॉल अभियान, आज से आप पश्चिम बंगाल में अभियान की शुरुआत करेगी। वाहन मालिकों से सीधा संवाद करेगी आम आदमी पार्टी। टाउन हॉल में वाहन मालिकों से G20 ईंधन को लेकर समस्याओं और अनुभवों पर फीडबैक लिया जाएगा। गुजरात और हरियाणा में 9 अगस्त को आपके कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात और हरियाणा में भी G20 ईंधन के खिलाफ टाउन हॉल आयोजित किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, तमिलनाडु और कल पुडुचेरी का दौरा करेंगे।
भारतीय विदेश मंत्रालय की अमेरिका को नसीहत, एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा एफसीआरए बिल हमारा आंतरिक मामला, उस पर संसद निर्णय लेगी। टी20 पेट्रोल पर राहुल गांधी का एक्सपोस्ट, सरकार को घेरते हुए कहा दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का ई20 पर बयान, कहा मिलावट तो किसी भी चीज में हो सकती है, कुछ लोग तथ्यों से हटकर बेवजह खड़ा कर रहे हैं विवाद। तमिलनाडु में डीलिमिटेशन पर सीएम विजय की आज होने वाली मीटिंग का डीएमके और एआईएडीएमके ने वर्कआउट किया, डीएमके ने परिसीमन बैठक में शामिल होने के लिए मेकेदातु बांध पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की शर्त रखी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक दोनों सदन स्थगित, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को दी मंजूरी, नए नियमों के तहत निजी विश्वविद्यालयों को अपनी जमीन स्वयं खरीदनी होगी, 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी। अमृतसर सीपी के तबादले पर पंजाब में सियासी घमासान, आईएसआई कनेक्शन के दावे के बाद सीपी गुरप्रीत भुल्लर के ट्रांसफर पर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। सीपी के तबादले पर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंसा का सच सामने लाने वाले ईमानदार अफसर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमृतसर हिंसा के बाद पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर बना मुद्दा, सीपी गुरप्रीत भुल्लर के तबादले को लेकर बीजेपी ने आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता, मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत सकारात्मक। बातचीत के बाद भी रांची में 15वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी, कहा जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा समाप्त। विधानसभा मार्च के दौरान आईसा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया बोरा ने आरएसएस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा उनके सदस्य ने फैकी स्याही, छात्र आंदोलन कमजोर करने की कोशिश। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर नेहा बोरा का बयान, री एग्जाम और निजी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। झारखंड में 10 अगस्त को मार्च की तैयारी जारी, रांची में जुटेंगे छात्र, प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को मार्च निकालने का ऐलान बरकरार रखा है, राज्यभर में छात्रों से रांची पहुंचने की अपील। कांवड़ यात्रा के चलते बिजनौर में आज सभी स्कूल बंद, डीएम के निर्देश पर पीएसए ने आदेश जारी किया, जिले के सभी स्कूलों में होगा अवकाश। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में भारी हंगामा हुआ, महापौर और सभापति में तीखी नोकझोंक हुई, पार्षदों के बीच मारपीट की भी नौबत आ गई, कुछ देर के लिए बैठक स्थगित। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी पार कर स्कूल जाने वाले छात्रों का मामला, एनएचआरसी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

0: दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर के 22 से ज्यादा स्कूलों ने लिया हिस्सा। दून स्कूल के अभिनव और सरदार पटेल के विद्यालय की झिलम संयुक्त विनर रहे।
1: हमने सोचा था हिंदी डिबेट है, कौन आएगा। और वसंत वैली स्कूल जो इंडिया टुडे डिबेट करती है, अंग्रेजी की डिबेट करती है, हिंदी डिबेट में कौन आएगा। बट वी वर रियली सरप्राइज जब हमने आज
0: रामराज कौटर ने पंचा टीएम नाम से एक नई हैंडलूम पेशकश लॉन्च की। ओडिशा के मयूरभंज की संथाली बुनाई परंपरा को पुनर्जीवित किया। मेरठ में कावड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा, सीएम योगी करेंगे स्वागत। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हरिद्वार में कावड़ियों के लिए देवदूत बन रही है एसडीआरएफ, कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा जा रहा है ध्यान। ड्रोन से कावड़ मेला क्षेत्र की निगरानी, आपदा में भी मददगार साबित होगा ड्रोन, श्रद्धालुओं को पानी और फल बांट रही है एसडीआरएफ। गाजियाबाद में कावड़ सुरक्षा का नया कंट्रोल रूम तैयार, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने किया शुभारंभ, 2000 सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। मुजफ्फरनगर में दिख रहे पवित्र कावड़ यात्रा के अनोखे रंग, आंखों पर पट्टी बांधकर हरिद्वार से बागपत जा रहा एक शिव भक्त। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल। जूनागढ़ में हाईवे पर कार बाइक की भीषण टक्कर में दंपति की मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। ओडिशा के कटक में तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मारी, दूर तक सड़क पर घसीटा, महिला की हालत गंभीर। मुंगेर में पानी लेने गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से जान गई, डब्बा साइकिल पर रखते ही सड़क पर गिरा शख्स, सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। झांसी की सड़कों पर आवारा पशु का आतंक, तेज रफ्तार बाइक गाय से टकराई, दो युवक कई फीट दूर जाकर गिरे, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू के करोड़ों के फ्लैट की छत से गिरा फिर से प्लास्टर, बाल बाल बचा परिवार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जल जमाव और गड्ढों का कहर, ई रिक्शा पलटने से पुंजारी ने गवाया हाथ, प्रशासन की लापरवाही पर सवाल। वाराणसी में लवजियात और धर्मांतरण का मामला आया सामने, पहचान छपाकर शादी और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोप में युवक गिरफ्तार हुआ। जयपुर में भूना संघ की मांग पर 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा संविदा नर्सिंग कर्मी, भर्ती को लेकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गोरखपुर में खाद्य विभाग सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर लगभग 5 क्विंटल काली मिर्च सीज की, बिना लाइसेंस के हो रहा था कारोबार। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में नदी किनारे भिड़े दो विशाल हाथी, दहाड़ और टक्कर से दहला इलाका, लोगों ने कैमरे में कैद किया रोमांचक नजारा। गोरखपुर में रोडवेज बस का कहर, अनियंत्रित बस ने पैदल जा रहे युवक को रौंदा, मौके पर शख्स की जान। पटना में सड़क हादसे के बाद भारी बवाल, आगजनी पथराव में कई पुलिस वाहन फूके, युवक की मौत पर लोगों ने हाईवे जाम किया। राजस्थान के कोटपूतली में पिता ने बच्चे के हाथ में पकड़ाया सांप, घटना का वीडियो वायरल हुआ। जूनागढ़ में कार ने रिक्शा और बाइक को मारी टक्कर, 5 लोग घायल हुए, ट्रिपल दुर्घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई के बोरीवली में जन्मदिन पार्टी में एयरगन से फायरिंग, दहशत फैलाने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के नवसारी में हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर दो बार पलटी फॉर्च्यूनर, बाल बाल बचे दो लोग। गुजरात के दाहोद में ज्वेलरी दुकान में चोरी करी 5 लाख रुपए के चांदी के गहने लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद। गुजरात के बनासकांठा में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ, कपड़ों की आड़ में ले जाई जा रही थी करोड़ों रुपए की विदेशी शराब, पुलिस ने ट्रक जब्त किया। जूनागढ़ में कुएं में गिरा शेरनी का सफल रेस्क्यू हुआ, स्वस्थ होने के बाद वन विभाग ने वापस जंगल में छोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल कोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने ट्रंप के $400 मिलियन के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। रूस पर अमेरिकी सीनेट का बड़ा एक्शन, कड़े प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी, बिल का मकसद रूस की तेल गैस कमाई पर चोट करना, रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों का पर टैरिफ का प्रावधान। भारत चीन समेत रूस के बड़े खरीदार आ सकते हैं प्रतिबंधों के दायरे में, पुतिन रूसी अधिकारियों, बैंकों और ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेट के कदम का किया स्वागत, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर दबाव बढ़ाने वाले बिल का समर्थन किया। रूसी विदेश मंत्री का यूरोपीय देशों पर कड़ा प्रहार, कहा अगर यूरोपीय देश सच में शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं तो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बंद करें। चीन से तनाव के बीच ताइवान का शक्ति प्रदर्शन, फ्रांस निर्मित मिराज फाइटर जेट से किया युद्ध अभ्यास। ट्रंप का नया टैरिफ झटका, पॉलीसिलिकॉन और सोलर मटेरियल पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, 4 दिसंबर से लागू होंगे नियम। अंधाधुंध फायरिंग से ढला थाईलैंड का एक स्कूल, राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में शिक्षक छात्र समेत 8 लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर छात्र ने खुदकुशी की। श्रीलंका में 2 अलग अलग जेलों में खूनी झड़प, 3 कैदियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, 40 कैदियों ने अपनी बैरक के ताले तोड़कर हंगामा किया। चीन के शानक्सी प्रांत के बारिश के बाद बाढ़ से तबाही, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें लबालब।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बहुत टायर्ड हो गई।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से.
2: एक जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं. मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती. लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है. और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब पीवीआर आईनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए. इसे जरूर देखिए. पीवीआर आईनॉक्स 7th August onwards.

0: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
1: आपको तीन एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहां जाएं, क्या करें।
0: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे। अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सुबह बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
2: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
1: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा। और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं। झारखंड के हिस्से में वही आता है, कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते हैं ना, बकरी पालो, सुअर पालो और रिच मिनरल रिच है, ये तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वो वैसे सुखदार ले जा रहे हैं।
0: झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है। और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
3: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे शायद मेरा ही कहीं पे फॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड हैं सर, और जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर। कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोग का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65 प्लस दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
0: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों की इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सो सॉरी।

0: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
1: आपको तीन एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहां जाएं, क्या करें।
0: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे। अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सुबह बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
2: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
1: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा। और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं। झारखंड के हिस्से में वही आता है, कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते हैं ना, बकरी पालो, सुअर पालो, और रिच मिनरल रिच है ये तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वो वैसे रसूखदार ले जा रहे
0: हैं। झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है। और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
3: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे शायद मेरा ही कहीं पे फॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड है सर, जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर। कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोगों का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65+ दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा, किसी को 20 दे रहा, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
0: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों की इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। झारखंड का छात्र बदलाव की उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहा है। इनके मंच पर गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा की तस्वीर है और इनकी प्रेरणा के साथ बदलाव की उम्मीद। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

झारखंड के आंदोलनकारियों छात्रों ने चार मंत्रियों के साथ पहले दौर की वार्ता को बताया सकारात्मक। अगले राउंड की तारीख तय नहीं, छात्रों का प्रदर्शन जारी, 10 अगस्त का मार्च कायम। दिल्ली आईआईटी में जेन जी से प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संवाद। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को सौंपेंगे डिग्री। सोनीपत कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉन्च करेंगे एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। प्रयागराज से छात्रों की गूंज से मिशन 2027 के लिए हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम। जेन जी को टारगेट कर यूपी में पैर जमाने की तैयारी। एसपी से जल्द गठबंधन पर जोर। भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। रूस से तेल खरीद पर एक्शन वाला बिल अमेरिकी सीनेट से पास। 86-11 वोटों से मिली मंजूरी। और कल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने राजधानी को डरा दिया। कई इलाकों में अब भी भरा है पानी। गुरुग्राम के कई इलाके पानी पानी। आज के लिए भी जारी किया गया है बरसात का येलो अलर्ट।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 8 बज गए हैं और सुबह 8 बजे के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वो खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। बात करेंगे मानसून की, क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हुई। दिल्ली से लेकर नोएडा तक, गुरुग्राम, गाजियाबाद और आसपास के हर इलाके में जबरदस्त बारिश हुई। तस्वीरों को देखकर आप समझ रहे होंगे, राजधानी को पानी पानी कर दिया है बारिश ने। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। वीकेंड की रात दिल्ली वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि कई इलाकों में लंबा जाम रहा। कुछ जगहों पर तो लोग रात के 12 बजे तक जाम में फंसे रहे। कई लोग तो अंत में थक हार कर पैदल ही निकल पड़े। एमबी रोड देखिए, दिल्ली की ओखला, वाल्मीकि कॉलोनी, शीतला माता मंदिर, गुरुग्राम, पानी पानी, हर बार की यही कहानी। गुरुग्राम की और तस्वीरें भी आप देखिए, अस्पताल में पानी घुस गया कई जगह। तो बारिश से हालात खराब है, गाड़ियों में जाम, गाड़ियां रेंकर चल रही हैं, तैर के चल रही हैं। बात एक ही है, अंडरपास में एक जगह कार फंस गई। आईटीओ में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, हर जगह सेम टू सेम। तो अभी कई तस्वीरों में आप जो तस्वीरें देख रहे थे, तो सबसे पहले दिल्ली के एमबी रोड की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि सड़क पर पानी की लहरें उठने लगी है। देखिए, बस निकलने के बाद यहां पर ये देखिए, अब घुटनों तक पानी में ये लोग निकल रहे हैं। बच्चे हालांकि मजे ले रहे हैं, लेकिन यहां पर आप समझिए कि अगर इन लोगों के लिए नाव की व्यवस्था करा दी जाए तो इन लोगों को ज्यादा आराम मिलेगा। लोग पैदल रास्ता पार करने को मजबूर हो गए। गाड़ी है लेकिन धकेलने के लिए, क्योंकि सड़कें तो तालाब बन गई हैं।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अब स्कूल का टाइम बीत रहा है, बच्चों को बाहर घर पहुंचाना है और स्कूल को लौटना है, तो जैसे तैसे निकालने का प्रयास। देख सकते हैं कितना सड़क डूबा हुआ है, कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
2: ये मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है। पर मैं एक सवाल कर, जैसे कि आपको मैं बस इतना जरूर कहूंगा, सरकार कोई भी आ जाए अगर वो जमीन पे काम नहीं करेगी तो यही हाल रहेंगे। इसके साथ साथ मुझे एक चीज और कहनी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैंने 12वीं कक्षा में पढ़ा था, चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 1, ईटे मन के तथा अस्थियां। उस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने पढ़ा था, जब तो आज से 5-6 हजार साल पहले की जैसी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के हिसाब से अगर अभी के जल निकास प्रणाली को देखा जाए तो मुझे लगता है आज से 5-6 हजार साल पहले का जो भारत था, जो विकसित भारत था, जो एक्चुअल में
1: कितना फीट भरा है
2: अभी? तो
1: चार फीट
2: तो भरा हुआ है।
1: आप अपना नाम बताइए।
3: जी, मेरा नाम समीर कलाल है, मैं संगम बिहार का निवासी हूँ।
1: और पानी भरा हुआ है
3: सर? ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है। और जिस तरीके से आप आगे की तरफ जाएंगे ना, आगे की तरफ और देखेंगे तो और भी पानी जिस तरीके से लबालब भरा हुआ है, ठीक है। ये बहुत संकेत है।
1: महिला आ रही है, स्कूल के टीचर हैं आप?
2: हाँ जी।
1: कहाँ से आ रही हैं?
2: बाल निकेतन, संगम बिहार।
1: तो अब कितना पानी? बस वस नहीं मिला?
2: बस नहीं, वो तो हमारी स्कूल की कार थी तो उससे हम
1: आए। तो फिर
2: कार के अंदर इतना पानी,
1: पैदल जा रहे हैं
2: अब? पैदल
1: कितना फीट पानी?
2: ऑटो वाले ने कितना फीट? 4 फीट 5 फीट के।
1: कितने बजे छुट्टी हुई है स्कूल की?
2: स्कूल की छुट्टी तो हुई है 1:50।
1: और आप 3 बजने को आ गए और अभी तक यही स्थिति?
2: अभी भी घर नहीं पहुंची।
1: घर नहीं पहुंची। आप देख सकते हैं ये भी आ रहे हैं और ये भी, इनकी भी स्कूटर डूब चुकी है। कहाँ से आ रहे हैं आप?
4: मैं आ रहा हूँ नेहरू प्लेस से।
1: नेहरू प्लेस से कितनी परेशानी हुई है?
4: अरे बहुत ज्यादा परेशानी, देखो ना पूरे पानी
1: बंद हो गए। आप देख सकते हैं ये आर्मी मैन है और इनकी भी गाड़ी बुलेट से जा रहे हैं, इनकी फंस गई है।
5: आपकी भी बंद हो गई?
6: हाँ कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर लेंगे।
1: आप देख सकते हैं यही स्थिति हो रही है और दरिया जैसा स्थिति यहाँ पर एमबी रोड पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे तैसे लोग गाड़ियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो गाड़ियां निकाल रहे हैं तो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं उस तरीके की लहरें जो है सड़क पर देखने को मिल रहा है। आशुतोष कुमार, दिल्ली आज तक।
0: और जब ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे, तो कोई भी गाड़ी बगल से निकलती है तो वो भी हिचकोले खाने लगते हैं, इतना पानी भर गया है। दिल्ली से गुरुग्राम लिए चलते हैं आपको। साल कोई भी हो, गुरुग्राम की तस्वीर नहीं बदलती। बारिश जब भी होगी, गुरुग्राम अपने इस जलग्राम स्वरूप में आ जाता है। शीतला माता मंदिर लोग पूजा करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए कल शाम कई फीट तक पानी भर गया। पहले भी यहाँ पर हर बार पानी भरा है, कमर तक पानी भर गया। मजबूरी में लोग इसी पानी में चलते दिखे। खतरनाक हो सकता है, क्या पता कहीं कोई सीवर खुला हो। लेकिन देखिए आप, और पता रहता है, हर बार पता रहता है कि बारिश होगी यहाँ पर पानी भर जाएगा, लेकिन समाधान कौन निकाले, किससे कहें।
5: सुबह से ये मूसलाधार बारिश जारी है, शाम होते होते ये मूसलाधार बारिश और तेज हुई और भारी बारिश साइबर सिटी दिल्ली NCR में दर्ज की जा रही है। और आप उसका उसकी बानगी का नजारा साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर हालात हैं, बाढ़ के सभी के हालात हैं। क्या कुछ
7: बुरे हालात हैं जी, पानी में दोपहर 1 बजे से चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे आज तो स्कूलों का थोड़ा बंद कर रखा है, अदरवाइज इतनी बुरी हालत है। ये लेडीज को देखो जी, कैसे भीग के किस तरह से आ रहे हैं।
8: हरे रंगे जैसी चले त्रिपुरी सरकार सबसे बढ़िया।
5: यानी अब आपको अगर स्नान करना है तो गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है,
8: कोई चीज नहीं है। त्रिपुरी सरकार दबा के बरसात हो रही है, कौन कहता है, ये सब विरोधी लोग कहते रहते हैं।
5: और ऐसा नहीं है कि मंदिर के सामने इस तरह की ये नदी बह रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सावन का महीना चल रहा है, भोले कांवड़ वहां से लेके आ रहे हैं, लेकिन अब कांवड़ के लिए आपको गंगा जल नहीं यहीं पे स्नान करने की जरूरत है। तमाम तरह के कटाक्ष जरूर कर रहे थे, उस व्यवस्था को लेकर कर रहे थे जिसमें ये दावे किए जा रहे थे कि जनाब मेयर भी हमारा बना दीजिए, पार्षद भी हमारे बना दीजिए, विधायक भी हमारे बना दीजिए, सांसद भी हमारे बना दीजिए, प्रधानमंत्री भी हमारा बना दीजिए, उसके बाद हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे। लेकिन तमाम तरह की व्यवस्थाएं साइबर सिटी वासियों ने नहीं बल्कि देश के हर नागरिक ने भारतीय जनता पार्टी को दी। गुरुग्राम के अंदर भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और 7 योजनाओं से सांसद हैं, मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के 3 योजनाओं से हैं जनाब, पार्षद भी 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भी 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन उसके बाद के हालात आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर हालात हैं। इस बस के पहिए जरा आप देखिए कि किस कदर यहाँ पे पानी है और इस गंभीर स्थिति से निकलने को मजबूर हैं तमाम तरह की महिलाएं, बुजुर्ग, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि हर मानसूनी बारिश में इस तरह के हालातों का सामना करने के लिए मजबूर हैं और गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं कि हमारी भी सुनिए सरकार, कब तक इस तरह के हालात हमें हर मानसूनी बारिश में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम आज तक।
0: कितनी अच्छी बात की हमारे सहयोगी ने, पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, महापौर भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदल पा रहे। चलिए दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। गुड़गांव तो आपने देख लिया जो जलग्राम बना हुआ है, गुरुग्राम जलग्राम बना है, अब दिल्ली देखिए। और ये जो है वो बुराड़ी की तस्वीर है, 7 अगस्त रात 10 बजे, पूरी सड़क पानी से लबालब है और इसी सड़क से लोग आते जाते दिख रहे हैं, आते जाते दिख रहे हैं या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पानी में डूबते हुए, कहीं लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए कि कैसे भी अपनी मंजिल तक

0: लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन के सामने आ रही है। आप देखिए इस वक्त हम बुराड़ी इलाके की लाइफलाइन कहे जाने वाली 100 फुटा रोड पर खड़े हैं। घुटनों तक पानी है यहाँ पर और आवाजाही जो है वो यहाँ पर बेहद कम हो गई है। पूरी तरीके से ये जो मेन सड़क है, मुख्य रोड है, ये कहीं ना कहीं झील में तब्दील हुई दिखाई दे रही है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो किस जगह पर हैं। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं हादसों का भी खतरा बना हुआ है और बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो जलभराव है उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो ये अमृत विहार मोड़ है, बुराड़ी की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये अमृत विहार मोड़, जहां पर अभी आप देखिए पानी जो है वो काफी ज्यादा भरा हुआ है और यहां से अगर हमूमन बात की जाए तो भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही यहां पर हमेशा होती है, लेकिन इस समय की अगर हम बात करेंगे तो वाहन भी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगभग पूरी बुराड़ी के जो लोग हैं उनको ये मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं और पानी जो है वो कई फीट तक भरा हुआ है। इसी वजह से लोग जो है वो अब इस सड़क का भी इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश हो रही है वो लोगों की मुसीबतों को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके के दावे लगातार दिल्ली सरकार द्वारा किए गए थे कि जब भी बारिश होगी तो जलभराव नहीं होगा, मानसून से निपटने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वो दावे कहीं ना कहीं खोखले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्षित मिश्रा, आज तक।
1: और आइए अब दिल्ली से थोड़ा बाहर निकलते हैं, 180 से 200 किलोमीटर दूर जाते हैं आगरा, जहां लोग कहते हैं वाह ताज। लेकिन तस्वीर अगर आप देखेंगे ना आगरा की, तो आप कहेंगे कि क्या गड्ढे हैं, खतरनाक हो गया है यहां पर सड़कों पर चलना। पिछले 24 घंटे में आगरा के अलग अलग इलाकों में एक जैसी तस्वीरें आई, सड़क धस गई, यात्रियों से भरा ऑटो सड़क में समा गया, कहीं टेम्पो सड़क में धस गया तो कहीं समय रहते गड्ढा दिख गया और जान बच गई, कोई गिरा नहीं। लेकिन देखिए क्रेन की मदद से सड़क के अंदर जो ऑटो गिरा हुआ है उसको बाहर निकाला जा रहा है, यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया। विदेशी पर्यटक यहां पर आते हैं ताज का दीदार कर दें, लेकिन सोचिए अगर वो किसी ऑटो में बैठे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और वहीं पर गड्ढे में ऑटो समा जाए तो। और जगह जगह अगर ऐसे गड्ढे होंगे तो ये सवाल तो उठेगा ना, कमला नगर में सड़क धस गई, गोबर चौकी के पास एक टेम्पो धस गया, इसी तरह की हस्ती। अब ये देखिए पहली तस्वीरें, ये वो जगह है जो आप देख रहे हैं ना, पानी भरा हुआ है, यहां पर एक ऑटो जा रहा था और ऐसा नहीं है कि ऑटो खाली था, ऑटो चालक था और उसके पीछे सवारियां भी थी, लेकिन गड्ढा था। अब गड्ढा दिखेगा कैसे, क्योंकि पानी है सामने, तो ऑटो टपक सीधे गड्ढे में, यात्रियों को बचाना मुश्किल हो गया। अच्छी बात यह रही कि जान बचा ली गई, क्रेन की मदद से यहां पर ऑटो निकाला गया। और देखिए वहां पर डुबकी मार के देखा जा रहा है कि ऑटो कहां है, इतना गहरा गड्ढा सड़क पर। अब बताइए जान से खिलवाड़ है कि नहीं है, ऐसा गड्ढा बीच सड़क पर कैसे खाली छोड़ा जा सकता है और ऐसा गड्ढा ऐसे सड़कों पर हुआ क्यों, जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। ये ताज नगरी है और यहां पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन हालात आपके सामने। आगरा के गोबर चौकी इलाके की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर आप देखेंगे टेम्पो सड़क पर खड़े खड़े धस गया, गड्ढा कितना बड़ा था इसको ऐसे समझिए कि इतने बड़ी गाड़ी गड्ढे में समा गई। गनीमत रही कि आसपास लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा यहां पर भी हो सकता था। वो आप सोचिए, वो बोलते हैं ना पैरों तले जमीन खिसकना, अब आप इसको ऐसे देख लीजिए कि पहिए तले जमीन खिसक गई, गड्ढा हो गया, गाड़ी भी बैठ गई। जो टेम्पो चालक था वो तो सोच रहा होगा कि ना जाने कौन सी प्रलय आ गई, आज तो आज धरती में ही समा जाएंगे, ऐसा ही कुछ हो गया, खुले सीवर में एकदम ऑटो गिर गया। अब इसमें भी ऑटो चालक बाल बाल बच गया। अब एक और तस्वीर देखिए, ये तो बहुत गजब की है, ये ताज नगरी आगरा से कल एक तस्वीर आई थी। ये सड़क है जिस पर गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि सीधे पाताल लोक का कनेक्शन हो गया है। यहां एक बड़ी सी नसैनी लगाकर नीचे जाकर यह बताया जा रहा है कि देखिए कितना बड़ा गड्ढा हुआ है। ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं नेताजी, बताने की कोशिश, और समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए इतना बड़ा गड्ढा हो गया है बीच सड़क पर, कमला नगर में सड़क धस गई, 5 फीट से तो ज्यादा ये का गड्ढा ये दिखाई दे रहा है।
2: इस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी तो ज्यादा यहाँ बारिश भी नहीं
1: हो। मैदानी इलाकों का हाल आपने देख लिया, बारिश ने ताला बना दिया सड़कों को, पहाड़ों पर यही हालात है, वहां पर मुसीबत बनकर ये बारिश टूट रही है। उत्तराखंड से हिमाचल तक भूस्खलन, मलबा, उफनती नदियां लोगों के लिए खतरा बन गई, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, तो कहीं पर जो सड़कें हैं, हाईवे हैं, वो हो गए।

0: है बंद। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों पर बारिश कैसे कहर बरपा रही है।
1: पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से हिमाचल तक भूस्खलन, मलबा और बढ़ते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हैं, तो कहीं लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। चमोली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देवालवाण मार्ग पर बारिश शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। पहाड़ से लगातार मलबा और कीचड़ आने की वजह से सड़क बंद हो रही है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार करनी पड़ रही है। देवालवाण मार्ग बंद होने से आसपास के गांवों की करीब 8,000 की आबादी प्रभावित है। लोगों को इलाज, राशन और जरूरी कामों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाद अब बागेश्वर में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो गए हैं और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांडा बागेश्वर हाईवे पर थपोली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहन मलबे में दब गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर लगातार दिखाई दे रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच मंडी जिले में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंडोह बांध से बीबीएमबी ने ब्यास नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। पानी छोड़ने से पहले लोगों को सायरन के जरिए अलर्ट किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंद सड़कें, भूस्खलन और बढ़ते नदी नाले लोगों के लिए चुनौती बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। वो बड़ी खबर यह है कि आज सुबह 10 बजे झारखंड में छात्रों से बात सरकार की तरफ की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। रांची में आंदोलन कर रही छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज सुबह 10 बजे देवेंद्र महतो गुट के छात्र दल के साथ सरकार के डेलीगेशन की वार्ता होनी है। छात्रों का 8 सदस्यीय दल वार्ता के लिए आज स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेगा। और इससे पहले कल आपको याद होगा सरकार की ओर से बनाई गई मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। मतलब छात्रों का एक अलग अलग ग्रुप है जो प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन को लूट कर रहा है। रुकेंगे यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: In association with
8: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को PVR INOX में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विटनेस टू अ नेशन।

आज जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण में फंसी कंपनी को नए हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने का टेंडर मिलना चाहिए? क्या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करने वाली कंपनी को मिला नया टेंडर निरस्त होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरी कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए? एनएचएआई के अधिकारियों को घूस देकर प्रोजेक्ट पाने का खेल पुराना है। आरोपों पर यकीन करें तो इस खेल में पीएनसी पुरानी खिलाड़ी है। 2024 में सीबीआई ने हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत मामले में केस दर्ज किया था। मामले में एक एनएचएआई अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। पीएनसी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई थी। यही नहीं, अवैध खनन से जुड़े मामले में कंपनी पर करीब 104 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। पीएनसी कंपनी के दामन पर दाग ही दाग हैं, लेकिन एनएचएआई को ये दाग अच्छे लगते हैं। क्या इसकी वजह कंपनी से जुड़ा बीजेपी सांसद का नाम है? पीएनसी इंफ्राटेक के घटिया निर्माण के बावजूद मिल रहे ठेकों पर उठ रहे सवालों की कई वजह हैं, क्योंकि कंपनी का सीधा कनेक्शन बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद नवीन जैन 2017 तक पीएनसी इंफ्राटेक के फुल टाइम डायरेक्टर रहे। साल 2017 में नवीन जैन बीजेपी के टिकट पर आगरा के महापौर बने। फरवरी 2024 में नवीन जैन को बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बनाया। राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में पीएनसी के 291 करोड़ के शेयर होने की घोषणा की। साथ ही ये भी बताया कि नवीन जैन कंपनी में सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन बड़े शेयर होल्डर होने की वजह से उनके हित जुड़े हुए हैं। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन नवीन जैन के बड़े भाई प्रदीप कुमार जैन हैं। नवीन जैन के भाई योगेश कुमार जैन और चक्रेश कुमार जैन कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। नवीन जैन खुद कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं। वक्त के साथ राजनीति में सक्रिय होते गए और कंपनी के ऑपरेशंस और कंट्रोल उनके भाइयों के हाथ में रहा, लेकिन कंपनी के शेयरों में बड़ी हिस्सेदारी आज भी बीजेपी सांसद नवीन जैन की है। यही वजह है कि कंपनी और कंपनी से जुड़े सांसद की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास हाईवे देने का दावा करते हैं, अमेरिका जैसे हाईवे की उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन अमेरिका तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे की मरम्मत आज पेडेस्टल पंखों के भरोसे है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त हर वाहन मालिक की यही कोशिश होती है कि माइलेज अच्छा मिले और इंजन लंबे समय तक बेहतर चलता रहे। ऐसे में पेट्रोल में इथेनॉल की बढ़ती मिलावट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से आगे बढ़ने को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। आसान भाषा में समझें तो E20 पेट्रोल पर सरकार का भरोसा बना हुआ है। अलग अलग टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल्स में इंजन पर किसी बड़े नकारात्मक असर का कोई सबूत नहीं मिला है और सरकार ने E20 कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से अहम बताया है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को भी खारिज किया है। मंत्रालय के अनुसार फील्ड ट्रायल्स में इंजन में जंग, असामान्य घिसाव या वाहन की उम्र घटने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जबकि इथेनॉल ब्लेंडिंग से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। सरकार ने इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा, जल उपयोग और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू करने की बात कही है। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी सरकार ने जानकारी दी है। देश में ईंधन मिश्रण के लिए अलग अलग कृषि स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत गन्ने के रस, मक्का, खराब हो चुके अनाज और टूटे चावल से इथेनॉल बनाया जा रहा है। वहीं इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली फसलों की सिंचाई से जुड़ी जरूरतों पर एक्सपर्ट्स की सिफारिशों का अध्ययन चल रहा है और सरकार E20 कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर ही फोकस बनाए हुए है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ाने की है। वहीं E20 से ज्यादा इथेनॉल मिश्रण या उससे जुड़े किसी नए नीति ढांचे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। साफ है कि सरकार E20 पेट्रोल को देश की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल पंप्स पर E20 की मौजूदगी बढ़ सकती है, जबकि इससे आगे के कदमों पर फैसला भविष्य की स्टडी और जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की डबल बैठक, 10 बजे देवेंद्र महतो गुट के 8 छात्रों से वार्ता, कल पीयूष धड़े से ही सकारात्मक बातचीत। दिल्ली आईआईटी में जेन जी से पीएम मोदी का सीधा संवाद, दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को सौंपेंगे डिग्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनीपत कैंपस में लॉन्च करेंगे एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। प्रयागराज से छात्रों के खून से मिशन 2027 के लिए हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम। जेन जी को टारगेट कर यूपी में पैर जमाने की तैयारी, एसपी से जल्द गठबंधन पर जोर। भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। रूस से तेल खरीद पर एक्शन वाला बिल अमेरिकी सीनेट से पास, 86-11 वोटों से मिली मंजूरी। और कल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने राजधानी को डराया, कई इलाकों में अब भी भरा है पानी, गुरुग्राम के कई इलाके पानी पानी, आज के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं झारखंड के रांची से, आंदोलनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत लगातार जारी और आज सुबह 10 बजे एक बार फिर बातचीत होने जा रही है, लेकिन इस बार देवेंद्र महतो गुट के छात्र दल के साथ सरकार का प्रतिनिधिमंडल बात करेंगे। छात्रों का 8 सदस्यीय दल वार्ता के लिए आज स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेगा और इससे पहले कल भी सरकार की ओर से बनाई गई मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी और आज देवेंद्र महतो उनके जो छात्र हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ सरकार की आज बैठक होगी और समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, आज देवेंद्र महतो गुट से मिलेंगे मंत्री सरकार के और इनके बीच में बातचीत होगी, लेकिन जरा ये बताइए छात्रों के अलग अलग गुट अलग अलग बातचीत क्यों, छात्र एक साथ क्यों नहीं जा रहे?
1: हाँ, ये सवाल, ये दुविधा जरूर मन में आई होगी कि जब मुद्दा एक है, स्टेडियम एक ही है, तो दरअसल छात्र अलग क्यों है। पहले एक ही मंच हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ छात्रों को लगा कि दरअसल दूसरा जो मंच है वहां पर कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं, एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी वो भी शामिल हैं, तो उनको लगा कि हमारा मुद्दा जो है वो बहुत कोर है, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब इन्होंने अलग मंच बनाया तो यहां पर लिखा हुआ था कि किसी तरह का धार्मिक, जातिगत या राजनीतिक वक्तव्य ना दें, और इसके चलते उन्होंने एक अलग मंच बना दिया। दूसरा मंच का मैं आपको दिखा देता हूं, ज्यादा दूर है नहीं, हाँ, मुश्किलन 25-30 मीटर की दूरी पर है, और ये वही मंच है जहां पर वो भी आंदोलन इसी के लिए बैठे हैं, जेएसपीसी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाएं उसके लिए बैठे हैं। तो देवेंद्रनाथ महतो वो जो अनशन पर थे, सोनम वांगचुक जिनका अनशन खुलवाया था, और इसीलिए चूंकि सरकार को भी लग रहा कि बच्चे दोनों जगह बैठे हैं वो तो हमारे ही हैं, झारखंड के ही हैं, तो इसीलिए वो सरकार ने कल जब इनसे बात की थी, इस मंच के जो बच्चे थे उनसे बात की थी, तो आज उनकी बारी, उनको भी 10 बजे बुलाया कि आइए, क्योंकि मुद्दा तो एक ही है कि भाई परीक्षा में जो अनियमितताएं हैं, नतीजे निकले उनको आप रद्द कर दीजिए और एक सीबीआई जांच हो, तो उस पर आश्वासन देने के लिए पहल कैसे होगी, शुरुआत इस बात से होगी कि क्या पहले चर्चा हो। जब तक चर्चा नहीं होगी, और इस बीच देखिए कल जो चर्चा हो ये नहीं कह सकते कि बेनतीजा रही, सार्थक जरूर रही है, सकारात्मक इसलिए हुआ कि ये कहा कि हम आगे भी बातचीत करेंगे, आपका संदेश मुखिया तक पहुंचाएंगे और उसके बाद फिर लौट करके आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र कह रहे हैं कि आंदोलन कंटिन्यू रहेगा, कल जो आप लोग की बातचीत हुई, मुझे बताएं क्या इसे कह सकते हैं सकारात्मक बातचीत रही या बेनतीजा रही?
2: देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात शुरू हुई ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि आज 15 दिन हो चुका है और हम लोग ये चाह रहे थे सरकार से कि ये बातें इतने दिनों तक नहीं होनी चाहिए थी, इतना सब्र और इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था सरकार को, और ज्यादा जल्दी पहल करना था। खैर, बातें जब शुरू हुई हैं तो कल का जो बात हुआ उसके
0: तो आशुतोष हम उम्मीद यही करते हैं कि आज भी सकारात्मक बातचीत हो और एक समाधान, स्थायी समाधान जरूर निकल जाए, सहमति बन जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुक करते हैं नॉन स्टॉप 100 का।

0: दिल्ली एनसीआर में मानसून का कहर, आईएमडी का येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और सड़कें बंद होने की स्थिति। बारिश ने रोका दिल्ली का ट्रैफिक, सरायकाले खां में काउंटर आउटर रिंग रोड पर लगी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में भारी जलभराव, लगातार बारिश के बाद सैनिक फार्म क्षेत्र की सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को आवाजाही में परेशानी। दिल्ली में बारिश के बाद आईटीओ में राजधानी के और भी कई हिस्सों में प्रभावित हुए हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं जलभराव की वजह से एमबी रोड पर भीषण जाम इस वक्त लगा हुआ है, ओखला मोड़ से खानपुर के बीच जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जलभराव और कई गाड़ियां यहां पर जाम में फंसी, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी। जोरदार बारिश के बीच दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव में लगा लंबा जाम, कापस हेड़ा जाने वाली सड़क से तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन छतरपुर समेत कई इलाके जलमग्न हुए। गुरुग्राम में भी आफत की बारिश, तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, वाहन चालक परेशान। गुरुग्राम में तेज बारिश के बीच अस्पताल परिसर में जलभराव हो गया, बेसमेंट की दीवारों से पानी निकल रहा है, चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई। बारिश के चलते राजधानी दिल्ली हुई पानी पानी, सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। दिल्ली के बसंत कुंज से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क तालाब बन गई, जलभराव से लोग परेशान हो गए, यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के संगम विहार में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, कॉलोनी में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, कमर तक भरे पानी में वाहनों को धक्का लगाते नजर आए लोग। फरीदाबाद में बारिश के बाद जलमग्न अंडरपास में फंसी फॉर्च्यूनर, चालक की हालत गंभीर। आगरा में टेम्पो अचानक नाले में जा समाया, 5 लोगों की बचाई गई जान, सड़क पर पड़े गड्ढे पर पानी भर गया था, गड्ढा दिखा रहे। भारी बारिश के चलते ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर भीषण ट्रैफिक जाम लगा, लंबी कतारों के बीच रैंकी नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक यूं ही जारी रहेगी रिमझिम बारिश, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 10 से 11 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के बागेश्वर कांडा हाईवे पर भूस्खलन, सड़क किनारे खड़े वाहन पर गिरा मलबा, प्रशासन ने रास्ता साफ करवाकर यातायात बहाल कराया। चमोली में भूस्खलन के बीच पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार कर रहे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए लोग। जम्मू कश्मीर के शोपिया में तेज आंधी में सेब की फसल तबाह हो गई, करोड़ों का नुकसान हुआ, किसानों ने मुआवजे की मांग की। इटावा में 1 घंटे की बारिश से भारी जलभराव, अंडरपास में 4 फीट पानी भरने से आवागमन ठप हुआ, जिला अस्पताल भी जलमग्न हुआ। मध्य प्रदेश के दतिया में बारिश से खुली नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल, किला चौक समेत कई इलाकों में जलभराव। आगरा में तेज बारिश से धस गई सड़क, ताजगंज इलाके में गड्ढे में फंसा ट्रक, समय रहते वाहन हटाने पर बड़ा हादसा टला। झारखंड के धनबाद में कतरास में धसी जमीन, घर कई घर मलबे में दबे, 12 लोग घायल। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि, समारोह में 3,036 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, 587 पीएचडी स्कॉलर शामिल। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में पीएम एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का करेंगे शुभारंभ, पीएम मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा सुविधा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे आईआईटी दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान, दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे पीएम। प्रयागराज में राहुल गांधी का युवा कनेक्ट, छात्रों की गूंज का तीसरा चरण, कांग्रेस को उम्मीद है कि छात्र मुद्दों पर सक्रियता से यूपी के युवाओं और जेंसी के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्र सभा, 1.5 लाख छात्रों के जुटने की उम्मीद, केपी कॉलेज मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने की संभावना। राहुल यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक, राहुल गांधी पार्टी सांसद और विधायकों, प्रदेश प्रभारी अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी बोले, एकजुट होकर आवाज उठे तो सरकार झुकती है। प्रयागराज में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी छात्र मुद्दों पर एकजुटता का संदेश देंगे। E20 ईंधन के खिलाफ आपका देशव्यापी टाउन हॉल अभियान, आज से आप पश्चिम बंगाल में अभियान की शुरुआत करेगी, वाहन मालिकों से सीधा संवाद करेगी आप, टाउन हॉल में वाहन मालिकों से E20 ईंधन से लेकर समस्याओं और अनुभव साझा किए जाएंगे। गुजरात और हरियाणा में 9 अगस्त को आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल और गुजरात में हरियाणा में भी E20 ईंधन के खिलाफ टाउन हॉल आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का दो दिवसीय दौरा, तमिलनाडु और कल पुडुचेरी में करेंगे दौरा। भारतीय विदेश मंत्रालय की अमेरिका को नसीहत, एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा एफसीआरए बिल हमारा आंतरिक मामला, उस पर संसद निर्णय लेगी। E20 पेट्रोल पर राहुल गांधी का एक्सपोज, सरकार को घेरते हुए कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल काली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का E20 पर बयान, कहा मिलावट तो किसी भी चीज में हो सकती है, कुछ लोग तथ्यों में हटकर बेवजह खड़ा कर रहे हैं विवाद। तमिलनाडु में डिलिमिटेशन पर सीएम विजय की आज होने वाली मीटिंग का जीएमके ईआईएजीएमके ने किया बॉयकॉट, जीएमके ने परिसीमन बैठक में शामिल होने के लिए मेकेदातु बांध पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की शर्त रखी। संसद में गतिरोध के बीच सोमवार तक दोनों सदन स्थगित, कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। दिल्ली कैबिनेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को दी मंजूरी, नए नियमों के तहत निजी विश्वविद्यालयों को अपनी जमीन स्वयं खरीदनी होगी, 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी। अमृतसर सीपी के तबादलों पर पंजाब में सियासी घमासान, आईएसआई कनेक्शन की दावी के बाद सीपी गुरप्रीत भुल्लर के ट्रांसफर पर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। सीपी के तबादले पर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंसा का सच सामने लाने वाले ईमानदार अफसर को खामियाजा उसका भुगतना पड़ा। अमृतसर हिंसा के बाद पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर बना मुद्दा, सीपी गुरप्रीत भुल्लर के तबादले को लेकर बीजेपी ने आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। रांची में चार मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई, मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा बातचीत पॉजिटिव। बातचीत के बाद भी रांची में 15वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी, कहा जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा समाप्त। विधानसभा मार्च के दौरान आईसर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरएसएस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा उनके सदस्य ने स्याही फेंकी है। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर नेहा बोरा का बयान, री एग्जाम और निजी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। झारखंड में 10 अगस्त को मार्च की तैयारी जारी, रांची में जुटेंगे छात्र, प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को मार्च निकालने का ऐलान बरकरार रखा, राज्यसभा के छात्रों से रांची पहुंचने की अपील। कांवड़ यात्रा के चलते बिजनौर में आज सभी स्कूल बंद, डीएम के निर्देश पर बीएसए ने आदेश जारी किया है, जिले के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में भारी हंगामा, महापौर और सभापति में तीखी नोकझोंक, पार्षदों के बीच मारपीट की नौबत, कुछ देर के लिए बैठक स्थगित। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी पार कर स्कूल जाने वाले छात्रों का मामला, एनएचआरसी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यूएलएफएआई को बड़ा झटका, अरुणाचल प्रदेश में 4 हार्डकोर कैडर ने किया सरेंडर, लॉन्गजिंग जिले में असम राइफल्स के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान समर्पण। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भी सुरक्षा बल सतर्क, आने जाने वालों पर नजर। मेरठ में कावड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा, सीएम योगी करेंगे स्वागत, आज सीएम योगी मेरठ में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हरिद्वार में कावड़ियों के लिए देवदूत बन रही है एसडीआरएफ, कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा जा रहा है ध्यान। ड्रोन से कावड़ मेला क्षेत्र की निगरानी, आपदा में भी मददगार साबित होगा ड्रोन, श्रद्धालुओं को पानी और फल राह बांट रहा है एसडीआरएफ। गाजियाबाद में कावड़ सुरक्षा का नया कंट्रोल रूम तैयार, जीएम और पुलिस कमिश्नर ने शुभारंभ किया 2000 सीसीटीवी। मुजफ्फरनगर में दिख रहे पवित्र कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग, आंखों पर पट्टी बांधकर हरिद्वार से बाग पर जा रहा है एक शिव भक्त। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल हुआ। जूनागढ़ में हाईवे पर कार बाइक की भीषण टक्कर में दंपति की मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। ओडिशा के कटक में तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी सवार महिला को मारी जोरदार टक्कर, दूर तक सड़क पर घसीटा, महिला की हालत गंभीर। मुंगेर में पानी देने गए व्यक्ति के हार्ट अटैक से जान चली गई, डब्बा साइकिल पर रखते ही गिर पड़ा शख्स। झांसी की सड़कों पर आवारा पशु का आतंक, तेज रफ्तार बाइक गाय से टकराई, दो युवक कई फीट दूर जाकर गिरे, हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू में करोड़ों के फ्लैट की छत फिर से प्लास्टर गिर गया, बाल बाल बचा परिवार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जल जमाव और गड्ढों का कहर, ई रिक्शा पलटने से पुजारी ने गवाया हाथ, लापरवाही पर सवाल उठे प्रशासन के। वाराणसी में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया, पहचान छिपाकर शादी और धर्म परिवर्तन के दबाव में आए युवक गिरफ्तार। जयपुर में बोनस अंक की मांग पर 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंग कर्मी, भर्ती को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर 5 क्विंटल काली मिर्च सीज की, बिना लाइसेंस के हो रहा था कारोबार। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में नदी किनारे भिड़े दो विशाल हाथी, दहाड़ और टक्कर से दहला इलाका। गोरखपुर में रोडवेज बस का कहर, अनियंत्रित बस ने पैदल जा रहे युवक को रौंदा, मौके पर शख्स की जान गई। पटना में सड़क हादसे के बाद भारी बवाल, आगजनी पथराव में कई वाहन फूंक दिए गए, मौत पर लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। राजस्थान के कोटपुतली में पिता ने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया सांप, वीडियो वायरल हो रहा है। श्रीनगर में कार ने रिक्शा और बाइक को मारी टक्कर, 5 लोग घायल, ट्रिपल दुर्घटना, सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई के बोरीवली में जन्मदिन पार्टी में एयरगन से फायरिंग, दहशत फैलाने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। गुजरात की नवसारी में हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर 2 बार पलटी फॉर्चूनर, बाल बाल बचे 2 लोग। गुजरात के दाहोद में ज्वेलरी दुकान में चोरी, करीब 5 लाख रुपए के चांदी के गहने लेकर फरार हुए चोर। गुजरात के बनासकांठा में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ, कपड़ों की आड़ में ले जाई जा रही थी करोड़ों रुपए की विदेशी शराब। जूनागढ़ में कुएं में गिरी शेरनी का सफल रेस्क्यू, स्वस्थ होने के बाद वन विभाग ने वापस जंगल में छोड़ा। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ हजारों का प्रदर्शन, जमात इस्लामी के नेतृत्व में देश भर में रैलियां। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ, इस्लामाबाद लाहौर में सड़क पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। रूस पर अमेरिकी सीनेट का बड़ा एक्शन, कड़े प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी, बिल का मकसद रूस की तेल गैस कमाई पर चोट करना। भारत चीन समेत रूस के बड़े खरीदार आ सकते हैं प्रतिबंधों के दायरे में, 100% टैरिफ लगाने की बात। जेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेट के कदम का स्वागत किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर दबाव बढ़ाने वाले बिल का समर्थन किया, ट्रंप की टैरिफ शक्तियों पर सांसदों में चिंता। चीन से तनाव के बीच ताइवान का शक्ति प्रदर्शन, फ्रांस निर्मित मिराज फाइटर जेट से किया युद्धाभ्यास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ झटका, पॉलिसी इलेक्ट्रॉन सोलर मटेरियल पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अंधाधुंध फायरिंग से दहला थाईलैंड का एक स्कूल, राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में शिक्षक छात्र समेत 8 लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर ने खुदकुशी भी की। श्रीलंका में 2 अलग अलग जेलों में खूनी झड़प, 3 कैदियों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, 40 कैदियों ने अपनी बैरक तोड़कर ताले तोड़कर हंगामा किया। चीन के शांसी प्रांत में बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही, घरों में घुसा बाढ़ का पानी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के सोमवार के जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं सावन के शनिवार, और आज सावन का दूसरा शनिवार है, तो हम आपको बताएंगे कि आज आपको क्या पूजा उपासना करनी है और किस तरह के लाभ सावन के दूसरे शनिवार पर आपको प्राप्त होंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:59 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 4:51 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज सावन के दूसरे शनिवार की बात कर रहे हैं। सावन के दूसरे शनिवार का महत्व क्या है और क्या खास बात होती है सावन के शनिवार की, पहले ये जानते हैं। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। आप नॉर्मली देखिए, सावन में लोगों को आलस्य रहता है, इसीलिए सावन में आम आदमी को स्वास्थ्य की समस्या और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन का हर शनिवार अगर आप इस दिन उपासना करें तो आपको अपार धन और संपत्ति दे सकता है। इसीलिए संपत्ति देने की वजह से सावन के शनिवार को संपत शनिवार भी कहा जाता है। इस बार सावन के दूसरे शनिवार पर दशमी तिथि का संयोग बन रहा है और दशमी के साथ सावन होने की वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन में भाग्य बढ़ाने के लिए बताएंगे एक सावन सूत्र। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बताते हैं कि सावन के हर शनिवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। सावन के हर शनिवार को आप शनिदेव की पूजा जरूर करिए, लेकिन शनिदेव के साथ साथ शिव जी की पूजा करना भी जरूरी है। प्रयास करिए कि सावन के हर शनिवार को एक समय आप उपवास रखें और एक समय आप भोजन करें। अगर आप सावन के शनिवार को आहार ग्रहण करते हैं तो आपका आहार हर हाल में सात्विक होना चाहिए। प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग सावन के शनिवार को ना करें। सावन के शनिवार पर पूजा के दौरान या वैसे भी काले रंग का प्रयोग ना करें। आप चाहें तो नीला रंग प्रयोग कर सकते हैं। अगर सावन के हर शनिवार को शाम के समय पीपल के नीचे केवल दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें तो इतना करने से भी आपको शनिदेव की कृपा मिलेगी। मैं आपको ये कहूंगा कि सावन के शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, 108 बार शनि मंत्र का जप करें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। शनिदेव की कृपा आपको बड़ी आसानी से प्राप्त होगी। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मीनाली ने हमें लिखा है और मीनाली हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1996। जन्म का समय सुबह के 7:10। जन्म का स्थान है गुड़गांव। मीनाली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मीनाली, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह में विलंब है। अप्रैल 2027 के बाद आपके विवाह की संभावना बनती है। साल 2027 के अंत में एक बेहतर समय है जब आपका विवाह हो सकता है और आने वाले साल में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन के दूसरे शनिवार को क्या उपाय करें जिससे बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। आज शाम को यानी सावन के शनिवार की शाम को स्नान करिएगा, नीले या सफेद वस्त्र धारण करें, सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाइए, साथ में सरसों के तेल का दीपक, थोड़े से काले तिल और एक लोटा जल लेकर जाइएगा। सबसे पहले जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में डालिएगा। इसके बाद सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा और वृक्ष की परिक्रमा करिएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना के हिसाब से घर पर आकर या वहीं वृक्ष के पास शनि मंत्र का 11 माला जप करिएगा। जब मंत्र का जप कर लें, पूजा पूर्ण हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को धन और अन्न का दान करिएगा। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। भोजन में अगर काली उड़द की दाल की वस्तुएं हों तो ज्यादा उत्तम होगा। यानी आज शाम को आप अपनी मनोकामना के अनुसार शनि देव के मंत्र का जप करें, कम से कम 11 माला, पीपल के नीचे दीपक जलाएं सरसों के तेल का और किसी निर्धन व्यक्ति को धन का, अनाज का, वस्त्र आदि का दान करें। अगर सावन के शनिवार पर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में शनि से संबंधित और रोजगार से संबंधित जितनी बाधाएं हैं ये बाधाएं दूर हो जाएंगी।
शनिदेव के अलग अलग मंत्रों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आप अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए सावन के दूसरे शनिवार पर, यानी आज के दिन, शनि देव के अलग अलग मंत्रों का जप शाम के समय कर सकते हैं। कम से कम 3 माला या 11 माला शनि देव का मंत्र जपना चाहिए। अगर आप धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको निरंतर धन और संपत्ति मिले, तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? स्क्रीन पर देखिए, ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये शयो रभि स्रवन्तु नः। ओम शन्नो देविर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये शयो रभि स्रवन्तु नः। शनि देव का वैदिक मंत्र है और इसको अगर आज आप जप करते हैं संध्या काल में, तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और उस वजह से आप परेशान हैं, तो आज शाम को मंत्र पढ़िएगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला आज शाम को जप करिएगा। अगर आपको नई नौकरी चाहिए या आप नौकरी प्राप्त करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो क्या मंत्र पढ़ेंगे? मंत्र देखिए स्क्रीन पर, ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं शनैश्चराय नमः। कम से कम 11 माला इस मंत्र को पढ़िएगा और नौकरी प्राप्त करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आप सामान्य रूप से शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो शनि देव का सबसे सरल मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम
शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला या 3 माला शाम के समय जप करिएगा और शनि देव से प्रार्थना करिएगा कि वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। देखिए, जैसे इस समय कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और साथ में धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो ये 5 राशि के जो लोग हैं आज शाम के समय शनि मंत्र का अपने सामर्थ्य के अनुसार जप करें। चाहे ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का या ओम शं शनैश्चराय नमः का जप आज शाम को आपको करना चाहिए, कम से कम 3 माला या 11 माला। और मंत्र जप करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का और थोड़े धन का दान करना चाहिए। अगर आज संध्या काल में आप ऐसा कर लें तो शनि की 7.5 का और शनि की ढैया का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

पानी बनाए रखें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

राशि व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की जिस मूर्ति में आंखें हों उस मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में शनि की ऐसी मूर्तियां बननी ही नहीं चाहिए जिसमें उनकी आंखें हों, क्योंकि ज्योतिष ये मानता है कि शनि की दृष्टि जिस चीज के ऊपर पड़ती है उसका नाश हो जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो ग्रह हो। अगर आप शनि की ऐसी मूर्ति के सामने जाएंगे जिसमें उनकी आंखें हों तो उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, आपको नुकसान होगा। शनि जहां शिला के रूप में विद्यमान हो वहां पर शनि देव की मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। आंखों वाली शनि देव की मूर्ति का दर्शन करना उचित नहीं होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 2, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। नंबर 3, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, मान सम्मान मिलेगा। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, लाभकारी यात्रा हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा।

आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा।

वृषभ राशि के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, बेवजह के तनाव और बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है, शनिवार की दशमी बहुत अशुभ होती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य मत करिएगा। सावन का पावन महीना चल रहा है और आपको अब बताते हैं सफलता पाने का उपाय सावन सूत्र में। अगर आर्थिक समस्या बनी रहती है आपके साथ हमेशा, तो सावन में जितने भी दिन बचे हैं अधिक से अधिक सुबह और शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: राहुल गांधी के महिलाओं पर वीडियो के बाद किरण रिजिजू की तरफ से बयान आया है, कांग्रेस के बदले सुर का स्वागत है। उम्मीद है महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। वीडियो में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना देश अधूरा है, और इसी वीडियो पर किरण रिजिजू की तरफ से बयान सामने आया। महिलाओं पर राहुल की सोच में बदलाव आया है, ऐसा किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है, और उम्मीद यही है कि कांग्रेस अब इस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हिमांशु, राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो और उस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान कि कांग्रेस के सुर जो बदले हुए हैं उनका स्वागत है।
4: जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है वो ट्वीट किया और उसके बाद जो है किरण रिजिजू जिन्होंने कहा कि ये एक सकारात्मक संदेश है और राहुल गांधी जो है महिलाओं को के रुख को लेकर स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का जो है बिना किसी शर्त जो है वो समर्थन करेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा जो है बंधी हुई है। मुझे लगता है कि मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा और इस देश की राजनीति में एक बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए कि लोगों को ये समझाया जाए कि महिलाओं की अभिव्यक्ति बिना किसी देश अधूरा और अपनी क्षमताओं से वंचित है। युवा महिलाओं के लिए कल दिए गए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा जोड़ी गई इससे है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से लगातार सरकार की कोशिश है कि विपक्ष के साथ बातचीत की जाए और हाउस में जो गतिरोध बना हुआ है उसको तोड़ा जाए और सरकार पीछे से डिलिमिटेशन बिल को के लिए बातचीत कर रही है बैक चैनल,
3: मतलब एक गतिरोध वाली जो स्थिति है उसको दूर किया है। हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन राहुल गांधी के किस बयान पर, ऐसा कौन सा वीडियो राहुल गांधी की तरफ से जारी किया गया जब महिलाओं को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो सुन लेते हैं।
5: टुडे आई गॉट अ क्वेश्चन अबाउट वुमेन व्हिच आई आंसर्ड, बट देन सिंस देन आई बीन थिंकिंग अबाउट इट मोर डीपली एंड I was thinking to myself that the energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a, you know, top-down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. And that's not just, you know, them doing well in business or them doing well in the political system. No, that's literally them being able to express themselves in their houses. That's them being able to walk the streets comfortably. That's them putting a point of view that maybe others don't agree with. That's them questioning their parents, their husbands, their brothers, sisters, whatever, right? So a certain amount of freedom from this patriarchy, from the control that, sorry, I'm a man and I'm saying this, but from the control, rigid control that India's men impose on their women is required if India has to really develop. And this is something I really believe strongly. And it's embedded in the political philosophy that I subscribe to. And it's been assaulted. It's been put in the back seat. It's been sort of pushed back, challenged. And one of the things that we absolutely have to do is we have to, you know, reinvigorate it, bring women back into the conversation where they should be and allow them to express themselves and do what they want.
3: तो राहुल गांधी की तरफ से वीडियो जारी किया गया था और इसी वीडियो के आधार पर जो संसद के संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से बयान दिया जाता है और वो ये कहते हैं कांग्रेस के बदले सुर का स्वागत है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो महिला आरक्षण बिल है उसका समर्थन किया जाएगा बिना किसी शर्त के, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया राहुल के महिलाओं पर, जो वीडियो जो अभी हम आपको सुना रहे थे जिस पर महिलाओं के उत्थान की बात राहुल गांधी कह रहे थे, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात राहुल गांधी कह रहे थे। तो सरकार भी चाहती है परिसीमन के साथ साथ जो महिला आरक्षण बिल है सोमवार को उसको लेकर तो चर्चा हो और सहमति बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची में आंदोलनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत लगातार जारी है और आज सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ देर बाद देवेंद्र महतो गुट के छात्र दल के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बात होनी है। छात्रों का 8 सदस्यों का दल आज बातचीत के लिए स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचेगा और इसके पहले कल सरकार की ओर से बनाई गई मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। सकारात्मक बातचीत कल की बताई गई थी, अब आज इंतजार किया जा रहा है कि आज बातचीत में क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है। हर कोई चाहता है कि सहमति बने, छात्रों की मांगें मान ली जाएं। सरकार की तरफ से भी पैनल गठन किया गया है, केंद्रीय मंत्री और उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में हुई आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता की, जिसमें देश भर के 22 से ज्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया, जहां छात्रों ने अपनी स्पीच और तर्क से सबका दिल जीत लिया।
1: छात्र आंदोलन के जो स्वयं के आप देश की ओर राष्ट्रीय उत्थान की ओर आपकी जवाब दें।
6: दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आयोजित आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के 16वें संस्करण का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। देश भर के 22 से अधिक प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रतिभागियों ने अपनी तर्क शक्ति, वाक्पटुता और वैचारिक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
7: आपको चार अलग फॉर्मेट होते हैं, चार अलग प्रारूप होते हैं, सबकी तैयारी करनी, रिसर्च करना, क्योंकि कोई भी राउंड प्रिपेयर नहीं होता, तो आपको सबकी तैयारी यहीं पे आकर करनी है। तो इसलिए चैलेंजिंग था, अच्छा भी था, मजा भी आया, क्योंकि जो चीज चैलेंजिंग है इट्स वेरी फन,
8: इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से। और आत्मविश्वास जो जुटाना होता है वहां पे जाकर बोलना काफी मुश्किल होता है, तो आत्मविश्वास जुटाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात रही।
9: हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिला जिससे हम अपने आप में बदलाव ला सके और फिर हम अपने परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर सके।
6: प्रतियोगिता में व्यक्तिगत श्रेणी में द दून स्कूल के अभिनव और सरदार पटेल विद्यालय की झीलम संयुक्त विजेता रहे। वही उप विजेता का सम्मान द दून स्कूल के प्रतिभागी ने हासिल किया। टीम श्रेणी में सरदार पटेल विद्यालय ने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।
10: जब हमने आज तक वाद विवाद शुरू किया था 16 साल पहले, हमने सोचा था हिंदी डिबेट है कौन आएगा, और वसंत वैली स्कूल जो इंडिया टुडे डिबेट करती है, अंग्रेजी की डिबेट करती है, हिंदी डिबेट में कौन आएगा। बट वी वर रियली सरप्राइज्ड।
6: दो दिवसीय प्रतियोगिता ने छात्रों को न केवल अपनी अभिव्यक्ति का मंच दिया बल्कि तर्कपूर्ण संवाद और सीखने का भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।
3: तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
0: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की डबल बैठक, 10 बजे देवेंद्र महतो गुट के आज छात्रों से वार्ता, कल पीयूष धड़े से भी सकारात्मक बातचीत। दिल्ली IIT में जेन जी से पीएम मोदी का सीधा संवाद, दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को सौंपेंगे डिग्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनीपत कैंपस में लॉन्च करेंगे AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। प्रयागराज से छात्रों की गूंज से मिशन 2027 के लिए हुंकार भरेंगे राहुल गांधी, आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम। जेन जी को टारगेट कर यूपी में पैर जमाने की तैयारी, SP से जल्द गठबंधन पर जोर। राहुल गांधी के महिलाओं पर वीडियो के बाद बोले रिजिजू, कांग्रेस के बदले सुर का स्वागत, उम्मीद है महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करेगी। वीडियो में बोले राहुल, महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना देश अधूरा। और कल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने राजधानी को डराया, कई इलाकों में अभी भरा है पानी, गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी ही पानी, आज के लिए भी भारी बरसात का येलो अलर्ट। और अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। दिल्ली NCR में मॉनसून का कहर, IMD का येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और सड़कें बंद होने की स्थिति। बारिश ने रोका दिल्ली का ट्रैफिक, सरायकाला खां में आउटर रिंग रोड पर लगी रही वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में भारी जलभराव, लगातार बारिश के बाद सैनिक फार्म क्षेत्र की सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में बारिश के बाद ITO में राजधानी के कई हिस्से भी प्रभावित हुए हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थिति। दिल्ली में जलभराव के कारण MB रोड पर भीषण जाम लग गया, ओखला मोड़ से खानपुर के बीच जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर जलभराव में फंसे वाहन, धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। गुरुग्राम में भी आफत की बारिश, तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। गुरुग्राम में मार्च भारी बारिश के बीच अस्पताल परिसर में जलभराव हो गया, बेसमेंट की दीवारों से पानी निकल रहा है। झज्जर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव, सड़कें तालाब में तब्दील, आवाजाही में हो रही परेशानी। सुरेंद्रनगर में नदी में नहाने गए एक युवक को बचाने की कोशिश में डूबे 4 युवक, इलाके में पसरा मातम। आगरा में बारिश के बीच भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत, मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। आगरा में एक टेम्पो अचानक नाले में जा समाया, 5 लोगों की जान बचाई गई, सड़क पर पड़े गड्ढे पर भर गया था बारिश का पानी। फरीदाबाद में बारिश के बाद जलमग्न अंडरपास में फंसी फॉर्च्यूनर चालक की हालत गंभीर है। संबल में कटान से खेतों में घुसा पानी, भारी बारिश से 100 बीघा से ज्यादा धान और गन्ने की फसल बर्बाद हुई, मिट्टी डालकर पानी रोकने की कोशिश। डोडा में 6 मीटर सड़क का हिस्सा अचानक ढह गया, सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई, लोग परेशान हुए। भारी बारिश के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण ट्रैफिक जाम, लंबी कतार देखी गई। हिमाचल में 10 से 11 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के बागेश्वर कांडा हाईवे पर भूस्खलन, सड़क किनारे खड़े वाहन पर गिरा मलबा। चमोली में भूस्खलन के बीच पोकलैंड मशीन के बकेट में बैठकर सड़क पार कर रहे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में तेज आंधी से सेब की फसल तबाह, करोड़ों का नुकसान। इटावा में 1 घंटे की भारी बारिश से भारी जलभराव हो गया, अंडरपास में 4 फीट पानी भरने से आवागमन ठप। मध्य प्रदेश की तीव्र बारिश से खुली नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल। आगरा में तेज बारिश से धसी सड़क, ताजगांव इलाके में गड्ढे में फंसा ट्रक, समय रहते वाहन रोकने पर बड़ा हादसा टला। झारखंड के धनबाद के कतरास में धसी जमीन, कई घर मलबे में दबे, करीब 12 लोग घायल हुए। IIT दिल्ली में 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि, समारोह में 3036 छात्रों को डिग्री दी जाएगी। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में पीएम एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा सुविधा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे आईआईटी दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे पीएम। प्रयागराज में राहुल गांधी का युवा कनेक्ट, छात्रों की गूंज का तीसरा चरण। कांग्रेस को उम्मीद है कि छात्र मुद्दों पर सक्रियता से यूपी के युवाओं और जेंजी के बीच की पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्र सभा, 1.5 लाख छात्रों के जुटने की उम्मीद। राहुल गांधी बोले, भारत की महिलाओं की ऊर्जा को खुलकर सामने आने की जरूरत है। कहा, जिस देश की महिलाएं अपनी क्षमता और विचार व्यक्त नहीं कर पाती वो देश सफल नहीं हो सकता। महिला आरक्षण पर राहुल के बदले रुख को रिजिजू ने पॉजिटिव मैसेज बताया। उम्मीद जताई कि कांग्रेस अब महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करेगी। अमृतसर सीपी के तबादले पर पंजाब में सियासी घमासान। आईएसआई कनेक्शन के दावे के बाद सीपी गुरप्रीत बुल्लर के ट्रांसफर पर बीजेपी ने आपको घेरा। सीपी के तबादले पर बीजेपी का आप पर हमला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंसा का सच सामने लाने वाले ईमानदार अफसर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमृतसर हिंसा के बाद पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर बना मुद्दा। सीपी गुरप्रीत बुल्लर के तबादले को लेकर बीजेपी ने आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। राहुल गांधी यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। पार्टी विधायकों, सांसदों, प्रदेश प्रभारी, अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल बोले, एकजुट होकर आवाज उठे तो सरकार झुकती है। प्रयागराज में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी छात्रों को एकजुटता का संदेश देंगे। E20 ईंधन के खिलाफ आपका देशव्यापी टाउन हॉल अभियान। आज से आप पश्चिम बंगाल में अभियान की शुरुआत करेगी। वाहन मालिकों से सीधा संवाद करेगी आप। टाउन हॉल में वाहन मालिकों से E20 ईंधन को लेकर समस्याओं और अनुभवों का फीडबैक लिया जाएगा। गुजरात और हरियाणा में 9 अगस्त को आपके कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात और हरियाणा में E20 के खिलाफ टाउन हॉल आयोजित किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, आज तमिलनाडु और कल पुडुचेरी का दौरा करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की अमेरिका को नसीहत। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, FCRA बिल हमारा आंतरिक मामला, उस पर संसद निर्णय लेगी। E20 पेट्रोल पर राहुल गांधी का एक्सपोज। सरकार को गिरते हुए कहा, दाल में काला नहीं पूरी दाल काली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का E20 पर बयान। कहा, मिलावट तो किसी भी चीज में हो सकती है, कुछ लोग तथ्यों से हटकर बेवजह खड़ा कर रहे हैं विवाद। तमिलनाडु में डिलिमिटेशन पर सीएम विजय की आज होने वाली मीटिंग का डीएमके और एआईएडीएमके ने बॉयकॉट किया। डीएमके ने परिसीमन बैठक में शामिल होने के लिए मेकेदातु बांध पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की शर्त रखी। राज्य में 4 मंत्री और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता। मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा, बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। बातचीत के बाद भी रांची में 15 दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कहा, जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और अंतिम निर्णय नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। विधानसभा मार्च के दौरान आईसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा दिया। कहा, उनके सदस्य ने स्याही फेंकी है। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर नेहा बोरा का बयान। री एग्जाम और निजी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई। झारखंड में 10 अगस्त को मार्च की तैयारी जारी है। रांची में जुटेंगे छात्र। प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को मार्च निकालने का ऐलान बरकरार रखा है। कांवड़ यात्रा के चलते बिजनौर में आज सभी स्कूल बंद हैं। डीएम के निर्देश पर बीएसए ने आदेश जारी किया, जिले के सभी स्कूलों में रहेगा अवकाश। उल्फा को बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश के 4 हार्डकोर कैडर ने किया सरेंडर असम राइफल्स के सामने। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भी सुरक्षा बल सतर्क है। जम्मू कश्मीर के रंदांग में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत CIK ने हिलर शाहबाद इलाके में छापेमारी की। सेंट्रल इंटेलिजेंस इलाके में तैनात। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने सुरेंद्रनगर में एनलॉग चीज और एनलॉग बटर बेचने और बनाने वाली यूनिट्स पर छापा मारा। मेरठ में कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। सीएम योगी करेंगे स्वागत। मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बन रही HERF। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा जा रहा है ध्यान। ड्रोन से कांवड़ मेला क्षेत्र की निगरानी। आपदा में भी मददगार साबित होगा ड्रोन। श्रद्धालुओं को पानी और फल बांट रही है HERF। गाजियाबाद में कांवड़ सुरक्षा का नया कंट्रोल रूम तैयार है। GM और पुलिस कमिश्नर ने किया शुभारंभ। 2000 CCTV और ड्रोन से होगी निगरानी। मुजफ्फरनगर में दिख रहे पवित्र कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग। आंखों पर पट्टी बांधकर हरिद्वार से बागपत जा रहा एक शिवभक्त। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के 1 महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन। ढोल लगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई लाल बाग चौराजा की प्रतिमा। गुरु हर कृष्ण साहिब जी के जन्मोत्सव पर दियो की भव्य रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेम्पल। श्रद्धा और भक्ति का संगम दिखा। गुजरात के जामनगर में समवर्ष विद्या सेतु अभियान का शुभारंभ। 500 से अधिक बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रस्ताव। प्रयास है, एक महीने तक चलेगा समरस विद्या सेतु अभियान। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर आराम फरमाते देखे चार शेर, बस में बैठे यात्रियों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल। जूनागढ़ में हाईवे पर कार बाइक की भीषण टक्कर, दंपति की मौत। जालंधर में भीषण सड़क हादसा, कैंटर और कार की जोरदार टक्कर में तीन लोगों की मौत, कार के परकट चौड़े। मुंगेर में पानी लेने गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से जान गई, डब्बा साइकिल पर रखते ही सड़क पर शख्स गिरा। झांसी की सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक, तेज रफ्तार बाइक गाय से टकराई, दो युवक कई फीट दूर तक गिरे। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू के करोड़ों के फ्लैट की छत से फिर से प्लास्टर गिर गया, परिवार बाल बाल बचा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जलजमाव और गड्ढों का कहर, ई रिक्शा पलटने से पुजारी ने हाथ गवा दिया। वाराणसी में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया, पहचान छुपाकर शादी और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोप में युवक गिरफ्तार। जयपुर में बोनस अंक की मांग पर 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा संविदा नर्सिंग कर्मी। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर लगभग 5 क्विंटल काली मिर्च सीज की, बिना लाइसेंस के कारोबार हो रहा था। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में नदी किनारे भिड़े दो विशाल हाथी, दहाड़ और टक्कर से दहला इलाका, लोगों ने कैमरे में कैद किया रोमांचक नजारा। गोरखपुर में रोडवेज बस का कहर, अनियंत्रित बस ने पैदल जा रहे युवक को रौंदा, मौके पर शख्स की जान गई। पटना में सड़क हादसे के बाद भारी बवाल, आगजनी, पथराव में कई पुलिस वाहन फूंक दिए गए। जूनागढ़ में कार ने रिक्शा और बाइक को टक्कर मारी, 5 लोग घायल हुए। मुंबई के बोरीवली में जन्मदिन पार्टी में एयरगन से दहशत फैलाई, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। गुजरात के नवसारी में हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर दो बार पलटी फॉर्चूनर, बाल बाल बचे दो लोग। गुजरात के दाहोद में ज्वेलरी दुकान में चोरी, करीब 5 लाख रुपए के चांदी के गहने लेकर फरार हुए चोर। गुजरात के बनासकांठा में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, कपड़ों की आड़ में ले जाई जा रही थी करोड़ों रुपए की विदेशी शराब, ट्रक जब्त। जूनागढ़ में कुएं में गिरी शेरनी का सफल रेस्क्यू, स्वस्थ होने के बाद वन विभाग ने वापस जंगल में छोड़ा। वनडे क्रिकेट ने छुआ ऐतिहासिक मुकाम, स्कॉटलैंड बनाम कनाडा का मैच बना 5000वां वनडे इंटरनेशनल। कनाडा को 9 रन से हराकर स्कॉटलैंड ने जीता ऐतिहासिक 5000वां वनडे, फैनली मैकार्थी ने शतक लगाया। भारत श्रीलंका टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का फैसला, मैच में दर्शकों को फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गोल में खेला जाएगा मुकाबला। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे को जल्द मिलेगा बड़ा सम्मान, यूपी पुलिस प्रमोट कर डीएसपी बनाने की कर रही है तैयारी। कश्मीर के पुलवामा के ओवैसी याकूब ने किया देश का नाम रोशन, बुल्गारिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ब्रेव ऑफ 107 प्रतियोगिता में शानदार जीत दर्ज की। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, जमात इस्लामी के नेतृत्व में देश भर में रैलियां। पेट्रोल डीजल अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ पाकिस्तान में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में भी सड़कों पर आए लोग। रूस पर अमेरिकी सीनेट का बड़ा एक्शन, कड़े प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी, बिल का मकसद रूस की तेल गैस कमाई पर चोट करना। भारत चीन समेत रूस के बड़े खरीदार आ सकते हैं प्रतिबंधों के दायरे में, पुतिन रूसी अधिकारियों और बैंकों और ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान। जेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेट के कदम का स्वागत किया है। अब खबर चंबा से, जहां बैरागढ़ चंबा रोड पर एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है, 22 लोग इस बस में सवार थे। हादसा देवी कोठी के पास चालुच मोड़ पर हुआ, कई यात्री गंभीर रूप से बताए जा रहे। चंबा में दर्दनाक हादसा हुआ है, 7 लोगों की जान चली गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 लोगों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में, चंबा में बैरागढ़ चंबा रोड पर यह हादसा हुआ, बस दुर्घटनाग्रस्त हुई और यह बताया जा रहा है अभी तक जो जानकारी आई है कि बस में 22 लोग सवार थे जिनमें 7 की मौत हुई है, बाकी घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर है, इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर है, जो स्थानीय लोग जो मौके पर थे उनकी मदद से घायलों को बचाया गया, सबसे पहले मदद की गई, लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है, प्रशासन भी रेस्क्यू का काम कर रहा है, डॉक्टर्स की टीम भी घायलों के इलाज में जुटी हुई है, जल्द से जल्द उनको राहत देने की उम्मीद की जा रही है। चंबा से तस्वीरें, और आमतौर पर पहाड़ों पर देखिए वैसे भी कहा जाता है कि पहाड़ों में बारिश के वक्त पर बेहद खतरनाक सफर हो जाता है। वक्त तो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, nut bites.
6: Lion date, nut bites.
8: In association with
9: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
8: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
11: Agar mujhe itihas ka koi ek pal cover karne ka mauka milta, to main 1999 ka Kargil yuddh chunti. Wo sirf ek yuddh nahi tha, wo desh ke jazbe ki kahani thi. ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं महीने।

अलकनंदा नदी का ये रौद्र रूप देखिए। सैलाब का रौद्र रूप ऐसा है जिसे देखकर जिंदगी सहमी हुई है। ये तस्वीरें पौड़ी की है जहां लगातार बारिश हो रही है। इसका साफ असर अलकनंदा के जलस्तर पर दिख रहा है। नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास या उसके ऊपर बह रही है, इसे लेकर हाई अलर्ट है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि खतरे से दूर रहे। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार भूस्खलन और मलबा आने से बार बार बंद हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच गंगोत्री धाम से गंगा जल लेने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सड़क धंसने से यात्रियों और कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश का संकट टिहरी में भी दिख रहा है। गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। नदी किनारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाउडस्पीकर से श्रद्धालुओं, कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। उधर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का विकराल रूप दिख रहा है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर नदी के किनारों तक खतरा बढ़ गया है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्तों पर मलबा ही मलबा दिखा। वहीं विकास नगर के जौनसार बावर में भी कुदरत के कहर का खतरा दिखा। वहां हीरपुर क्वानो मिनस मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जहां सेब से लदा एक ट्रक अचानक उफनते नाले के मलबे में फंस गया। फिर तो वहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात ऐसे हो गए कि ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
3: आपको तीन एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम्पल एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहां जाएं, क्या करें।
2: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे। अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सूबा बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
4: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
3: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा। और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं। झारखंड के हिस्से में वही आता है, कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते हैं ना, बकरी पालो, सुअर पालो और रिच मिनरल रिच है, ये तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वो वैसे सुखदार ले जा रहे हैं।
2: झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है। और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
5: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे कि शायद मेरा ही कहीं पे फॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड है सर, और जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर। कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोग का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65+ दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा, किसी को 20 दे रहा, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
2: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों की इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। झारखंड का छात्र बदलाव की उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहा है। इनके मंच पर गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा की तस्वीर है और इनकी प्रेरणा के साथ बदलाव की उम्मीद। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मोदी का सीधा संवाद। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को सौंपेंगे डिग्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनीपत कैंपस में लॉन्च करेंगे AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। प्रयागराज से छात्रों की गूंज से मिशन 2027 के लिए हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम। जेंजी को टारगेट कर यूपी में पैर जमाने की तैयारी। समाजवादी पार्टी से जल्द गठबंधन पर जोर। राहुल गांधी के महिलाओं पर वीडियो के बाद बोले रिजिजू, कांग्रेस के बदले सुर का स्वागत है। उम्मीद है महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त करेंगे समर्थन। वीडियो में बोले राहुल, महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना देश अधूरा।

और सांसद पप्पू यादव के हमलावर के स्वागत पर गरमा यूपी की सियासत। बुलंदशहर में आरोपित हैप्पी शर्मा सुमित गिरी के रोड शो पर अखिलेश यादव का पोस्ट, बीजेपी में अपराधियों की बलिहारी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ अमांशु दीक्षित। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब 10 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे छात्रों से जुड़ी तीन बड़ी खबरों के बारे में। झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। अब इस बीच आंदोलनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत भी शुरू हो चुकी है। कल से बातचीत शुरू हुई, आज भी होने वाली है। कल सरकार के चार मंत्रियों ने पीयूष जो गुट है उससे बातचीत की, पॉजिटिव बताई गई थी बातचीत। अब आज देवेंद्र महतो गुट के छात्र दल के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता होनी है, बातचीत होनी है। उधर अब से थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। करीबन 3000 छात्र होंगे। तो उधर प्रयागराज में आज का दिन बहुत खास है क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज शाम छात्रों से रूबरू होंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो है झारखंड की रांची की। 15 दिन से छात्रों का जमावड़ा है, अपने हक की बात कर रहे हैं और आंदोलन जारी है। रांची में आंदोलन जारी, छात्रों से सरकार की बातचीत लगातार जारी है। कल भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत होगी और 10 बज गए यानी अब से कुछ ही देर में देवेंद्र महतो गुट के छात्रों के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होनी है। इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाई गई मंत्रियों की टीम ने पीयूष जो धड़ा है उसके 10 सदस्यों के साथ, जो एक दल था, उनके साथ बैठक की थी और दोनों ने ही बताया कि बहुत सकारात्मक पॉजिटिव बातचीत हुई थी। बट प्रदर्शन जारी है, जब तक मांगे नहीं मान ली जाती।
1: हाँ, टीम के द्वारा तो सूचना मिला है कि आज 10 बजे सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएंगे।
2: तो ये अलग अलग आप लोग अलग जा रहे हैं, दूसरे छात्र अलग जा रहे हैं?
1: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए, जो जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 जा रहा है, 5 जा रहा है, 10 जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा का, जो रांची में है, हर दिन हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, 10 बज गए हैं तो बैठक शुरू होगी?
3: नहीं, अभी बस इंतजार हो रहा है। दरअसल लॉजिस्टिकल दिक्कतें भी आती हैं। कल भी जो बैठक थी 7 बजे शुरू होनी थी लेकिन होते होते 7:45 बज गए और ठीक मेरे पीछे ये जो स्टेट गेस्ट हाउस है यहीं पर कल रात भी लगभग 100 मिनट की वो बैठक हुई और आज भी इंतजार। तो हालांकि जो समय था वो 10 बजे का था लेकिन अब ऐसा लगता है कि आधा घंटा या 7:45 का विलंब हो सकता है और इसीलिए बाहर जो है देख रहे हैं आप, जो IRB और पुलिस है उसने पूरी अपनी व्यवस्था कर रखी है। इसी जगह पर यह बैठक होगी। चूंकि छात्रों का दूसरा धड़ा है और सरकार चाहती है कि जितने लोग भी अनशन पर बैठे हैं, चूंकि उनका मुद्दा एक ही है, तो हर धड़े को मनाया जाए, हर धड़े को बात की जाए कि अल्टीमेटली सरकार उस पर सोल्यूशन पर काम करे। वो सोल्यूशन क्या होगा, जस की तस मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी क्योंकि उसमें भी कई सारे नियम जो है बाधाएं बन जाती हैं। आप ऐसे ही किसी परीक्षा के नतीजे को सीधे रद्द नहीं कर सकते। तो हाँ, सरकार के जो चार मंत्री हैं, प्रतिनिधिमंडल है, वो यहाँ पर आएंगे और इसीलिए उसकी सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। कुछ अधिकारियों को हालांकि हमने जाते हुए देखा है क्योंकि अधिकारियों की मौजूदगी भी इसमें होती है, तो आना जाने का सिलसिला यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही प्रतिनिधिमंडल आ जाता है, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आ जाएगा, इसी जगह पर वो मिलना मुकर्रर हुआ है, यहीं पर वो बैठक होनी है। और बैठक के बाद, हालांकि ये पहले दौर की इस तरह की औपचारिक बैठक, आपको बता दूं, चूंकि ये पहले दौर की बैठक है तो बहुत मुमकिन है कि इसमें कोई ठोस नतीजा ना निकल जाए। लेकिन क्या इसे बिल्कुल कह दे कि बेनतीजा बैठक, ऐसा नहीं लगता क्योंकि छात्रों के गुटों ने ये जरूर कहा कि कम से कम हमारी बात हुई, हमें ये आश्वासन दिया गया कि अब हमारी मांग एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर मेमो में बन करके, यानी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बन के सीएम तक जाएगी, तो आगे की जो बैठक होगी उसमें कुछ उम्मीद होगी। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि अब से 48 घंटे बचे हैं, अगर सोमवार की सुबह 10 बजे तक ये लोग नहीं मानते हैं तो विधानसभा का घेराव होगा।
0: मतलब 10 तारीख की बात वो की जा रही है। और आशुतोष, आप बने रहिए क्योंकि मेरे मन में कुछ और भी सवाल है, तो उन सवालों के जवाब आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। लेकिन कुछ देर पहले जब आपने छात्रों से बातचीत की तो उस बातचीत में छात्रों की तरफ से क्या कहा गया, आप ही की एक रिपोर्ट दर्शकों को पहुंचाते हैं।
3: 15वां दिन हो चुका है झारखंड में चल रहे जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों का मंच अभी भी जस का तस बरकरार है। लेकिन 14 दिन बीतते बीतते दरअसल सरकार ने बातचीत शुरू की। सरकार के चार मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल और छात्रों के 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल जो प्रतिनिधिमंडल उनके बीच बातचीत हुई और उस बातचीत के बीच में चूंकि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, छात्र चाहते हैं कि हमें कम से कम इतना आश्वासन मिले कि जो उनकी दो प्रमुख मांगे हैं उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। बातचीत कल जब तक हुई उसके बाद आप लोगों ने अनाउंस कर दिया कि प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा, अगले दौर की बातचीत कब होगी?
4: जी अभी तक तो सरकार के द्वारा कोई ऐसा ऑफिशियल हम लोगों को टाइम कमिट नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बातों को रखने के बाद आपसे
3: कम्युनिटी जो बैठक रही उसे सकारात्मक कहा जा सकता है या कोई नतीजा नहीं?
4: नहीं, देखिए हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, जो सरकार का प्रतिनिधिमंडल है उसने कहा कि आपकी सभी मांगे जायज है, कम्युनिकेशन गैप था और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे, हम आशान्वित हैं कि सरकार के मुखिया हमारे हेमंत सोरेन जो है, जिस उन्होंने कहा है कि हम में संवेदनशीलता की कोई कमी नहीं है, तो वो संवेदनशीलता दिखाएंगे और जल्द ही इस मुद्दे को समाधान कर लिया जाएगा।
3: लेकिन तब तक प्रदर्शन जारी
4: रहेगा? नहीं, प्रदर्शन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमको लिखित आश्वासन नहीं देती है।
3: धरना भी जो है सोमवार को भी होगा?
4: हाँ वो होगा। अभी तक तो हमारे कोर कमेटी का डिसीजन है कि हम अपने मांगों पर और अपने प्रदर्शन के रूपरेखा पर कायम है। आप पहल कीजिए, हम लोगों ने वार्ता के लिए जो शर्त आप दिए हमने वार्ता का शर्त स्वीकार किया, हमने वार्ता का रास्ता कभी बंद नहीं किया है, वार्ता का रास्ता आपसे हमेशा खुला है।
3: बातचीत से ही समाधान निकलता है। सरकार छात्रों के बीच पहले दौर की बातचीत हुई है और ऐसे में दूसरा जो गुट है यहाँ पर प्रदर्शन का उससे भी सरकार बातचीत कर रही है। उम्मीद ये की जा सकती है कि ये कम से कम ये जो छात्र हैं जल्दी इनकी मांगे पूरी हों या वापस अपने घर लौटें, अपनी दिनचर्या में लौटें।
0: और आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। आशुतोष जरा सरल शब्दों में समझाइए, बहुत से लोग ये समझना चाहते हैं, मैं भी ये समझना चाहता हूं कि जब कल छात्रों का एक गुट मिला, दोनों ने कहा कि बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है, अब आज भी एक छात्रों का गुट मिलेगा और बातचीत होगी, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है? और अगर बातचीत बहुत सकारात्मक है तो फिर इसको लंबा क्यों खींचा जा रहा है?
3: तो सबसे पहले शुरुआत देखिए, सरकार की ओर से एक बयान आया, हेमंत सोरेन ने खुद कहा था हम छात्रों के मुद्दे के साथ हैं। दूसरा, छात्रों का मुद्दा क्या है कि 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा सीजीएल की हुई है इनमें अनियमितताएं थी, बैकडोर एंट्री हुई, ओमार गलती हो गई है, मतलब कुल मिला के धांधली हुई है। अगर ये धांधली नहीं होती तो 19 गिरफ्तारियां क्यों होती? सरकार की जांच एजेंसी भी मान रही है कि हाँ गड़बड़ी तो हुई है, 19 गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ करने के लिए जो बड़े अधिकारी हैं जेपीसीसी के जो सिविल बॉडी के हैं उनको भी समन करके बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। तो इसी बिना पर सरकार ये कह रही है कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन उनकी मांग है कि इसे रद्द कर दिया जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा हो। क्या ये हो सकता है? इसमें कानूनी अड़चन है। मान लीजिए सरकार कैबिनेट फैसला ला करके पलट देती है, जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो अदालत का दरवाजा खटखटा लेंगे कि क्या चार लोग धरने पर बैठ गए इसलिए आप पूरी परीक्षा रद्द कर देंगे, इसका आधार क्या है? इस आधार को बनाने के लिए सरकार को एक जांच रिपोर्ट की जरूरत हमेशा पड़ेगी। कानून कहते ना बड़ा पेचीदा हो जाता है, अदालत की लंबी लड़ाई होगी तो पता चला है पूरा आंदोलन पानी में चला जाएगा। इसीलिए कम से कम इस बात की जरूरत होगी कि ठोस प्रामाणिक जांच में फॉरेंसिक टेस्ट हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट हो कि ओमआर की शीट में गड़बड़ियां हैं, जांच में पता चले कुछ स्टेटमेंट कम से कम ऐसे बिना हो, 164 के कुछ बयान हो कि यहां गड़बड़ियां हो, जिसके आधार पर सरकार ये फैसला ले सके, एक आदेश जारी करे कि अब इस परीक्षा को रद्द की जाती है, दोबारा इसके बारे में विचार होगा और फिर से होगा। उसी के लिए सरकार बातचीत कर रही है और बातचीत का रास्ता इसीलिए तो खुला है कि हाँ सहमति तो हमारी है, सैद्धांतिक सहमति है, आपकी मांग पर जांच है। दूसरी सबसे बड़ी बात, छात्र कह रहे हैं जिस सीआईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं वो तो खुद से झारखंड सर्विस पब्लिक कमीशन से चुन करके आए हैं, जो एसपी डीएसपी एएसपी बने हुए हैं, क्या वो जांच करेंगे? पुरानी धांधलियों की जांच वो कर पाएंगे?
0: देखिए इसलिए आशुतोष हर कोई चाहता है, सभी छात्र चाहते हैं, सिर्फ झारखंड रांची की बात नहीं है, देश के जो छात्र इस वक्त छात्रों के साथ वो चाहते जल्द से जल्द सहमति बने और एक समाधान निकले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बिना महिलाओं की बात सुने निर्णयन में बिना उन्हें सही हिस्सेदारी दिए विकास हो ही नहीं सकता। अब राहुल गांधी ने कहा कि भारत की हमारी महिलाएं हमारी ताकत हैं और सच कहूं तो हमारे समाज में महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं को हर जगह बराबरी की भागीदारी मिलनी ही चाहिए।
5: Our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. And that's not just, you know, them doing well in business or them doing well in the political system. No, that's literally them being able to express themselves in their houses. That's them being able to walk the streets comfortably. That's them putting a point of view that maybe others don't agree with. That's them questioning their parents, their husbands, their brothers, sisters, whatever, right? So a certain amount of freedom from this patriarchy, from the control that, sorry, I'm a man and I'm saying this, but from the control, rigid control that India's men impose on their women is required if India has to really develop. And this is something I really believe strongly. And it's embedded in the political philosophy that I subscribe to. And it's been assaulted, it's been put in the back seat, it's been sort of pushed back, challenged. And one of the things that we absolutely have to do is we have to, reinvigorate it, bring women back into the conversation where they should be, and allow them to express themselves and do what they want.
0: अब देखिए राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी किया. अब इस वीडियो संदेश को महिला आरक्षण बिल से जोड़ के देखा जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू. अब वो इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का रुख बदल गया है. रिजिजू लिखते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश है, पॉजिटिव मैसेज है. महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी के विचारों में स्पष्ट रूप से बदलाव दिखाई दे रहा है और अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी. अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अमित, राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो संदेश दिया जाता है, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं. अब संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि अब मुझे उम्मीद हो रही है ये वीडियो देख के कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिल बिना

0: वो सेशंस कर रहे हैं, आस्क मी एनीथिंग एक फॉर्मेट होता है, उस सेशन के तहत ये सारे वीडियोस आ रहे हैं। और उसी में किरण रिजिजू, क्योंकि सरकार के लिए बड़ी फजीहत रही है मॉनसून सेशन में, कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें बिना गतिरोध के सेशन प्रोसीडिंग चल पाया हो, और ज्यादातर दिनों में लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, राज्यसभा में भी हंगामा होता रहा है। तो क्योंकि सरकार को इस हफ्ते अब FCRA के बिल पे फोकस करना है, ऐसी बात कही जा रही है, तो चाहेंगे कि इसी वीडियो के सहारे वो कम अज कम नेता विपक्ष के ऊपर एक तरह से प्रेशर, टैक्टिकल प्रेशर बनाए, और ये भी प्रेशर या मैसेज भेजा जाए कि महिला आरक्षण बिल जो आना है, जिसके बारे में फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये लग रहा था कि मॉनसून सत्र में ये बिल आ जाएगा, सरकार बड़ी आसानी से पास करा लेगी, जिसको डिलिमिटेशन बिल भी कहा जा रहा है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जो सेटअप है पार्लियामेंट का, वो बहुत हद तक बदल चुका है, वो तस्वीर बदल गई थी, तो इस वजह से कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी वो बिल इस बार पास करा लेगी, लेकिन हंगामे के बीच पूरा मानसून सत्र खत्म हो गया। तो एक और इंडिकेशन भी है कि डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल पाइपलाइन में है, सरकार ने अभी उससे अपना हाथ नहीं उठाया।
1: हाँ, शुक्रिया अमित, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, अब राहुल गांधी, अभी तो आपने देखा कि महिलाओं को लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनकी भागीदारी की बात की। अब राहुल गांधी एथेनॉल वाले पेट्रोल के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए दिख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी कार के साथ एक वीडियो डाला और कहा कि एथेनॉल के मामले में तो पूरी दाल ही काली है। कहते हैं ना, वो दाल में कुछ काला है, नहीं, यहां दाल ही पूरी काली है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि एथेनॉल पेट्रोल गाड़ियों को खराब करता है, मतलब उनके लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि वो आधी अधूरी बात कर रहे हैं और तथ्यहीन दावे कर रहे हैं।
2: ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग। इन एनी कैंपेन वी हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अफेयर्स। आवर प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट देयर इज सो मच करप्शन दैट देयर इज अ ह्यूज लाइन इन व्हाट वी हैव टू सीक्वेंस। डोंट वरी, दिस इशू वी आर गोना टेक इट अप इन अ मैसिव वे, बिकॉज दिस is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them.
3: If there is contamination, the contamination can take place in anything. Contamination can take place in the food you eat, in the air you breathe. It can take place in kerosene. It can take place in diesel. It can take place in anything. You know, somebody said there was some one organization wrote a letter. That letter was, I think, 28th July. 2 weeks before that, we had started rigorous testing. They found 4 cases out of 107,000 petrol pumps, with 6 crores to 7 crores going every day. So obviously, someone out there is trying to place some things out of context.
1: Rahul Gandhi akele nahi hai. आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव में जब तक सबक नहीं सिखाओगे, ये गाड़ियों का इंजन खराब करते ही रहेंगे।
4: और अंत में मैं इसका एक समाधान देना चाहता हूं। एक दिन के अंदर मोदी जी E20 विड्रॉ कर लेंगे। गोवा के चुनाव क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? इनको घमंड हो गया है, मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीती जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीती जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को हरा दो, इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो, उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना, अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे।
1: उधर प्रयागराज में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों से रूबरू होंगे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम का नाम दिया गया है और इसी के जरिए राहुल गांधी युवाओं से संवाद करेंगे। साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस कार्यक्रम को कांग्रेस के छात्र संपर्क अभियान के तौर पर देखा जा रहा है, यानी छात्रों को एकजुट करना। प्रयागराज के KP कॉलेज ग्राउंड में बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने की उम्मीद कांग्रेस को है।

0: इसके साथ ही राहुल गांधी पार्टी के सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, संगठन के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजबूती देनी है।
1: नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत में पूरे शहर भर में कई पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन कुछ पोस्टर्स ऐसे भी लगाए गए हैं जहां पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर अपने दाएं तरफ, यहां पे आप देखेंगे तो राहुल गांधी के स्वागत में जगह जगह इस तरीके के पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे राहुल गांधी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। वहीं इसके ठीक बगल में बाईं तरफ ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। कटाक्ष करने की जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी झारखंड नहीं जा रहे हैं जहां पर छात्रों का मुद्दा चल रहा है। वह तमाम बाकी मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे तो दूसरी तरफ एक और पोस्टर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर ये लिखा हुआ है कि नीट पर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, प्रयागराज जवाब, और झारखंड एक तरीके से मीम है, उसको यहां पर पोस्टर के तौर पर बीच चौराहे में लगा दिया गया है। फिलहाल दो तस्वीरें आपको देखने को मिली, एक तरीके से पोस्टर वॉर है जो वो छिड़ गया है पूरे शहर भर में, कहीं ना कहीं कटाक्ष किया जा रहा है। फिलहाल ये नहीं क्लियर है कि ये पोस्टर्स लगाए किसने हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरे शहर भर में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज आज तक।
0: तो देखिए पोस्टर वॉर भी शुरू हो गए, और ये भी एक बहुत अहम रहते हैं आजकल के वक्त में। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी के आने से युवाओं, किसानों और महिलाओं पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं।
2: पहले कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के अजय राय समेत तमाम कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब डर गए राहुल गांधी से, इसलिए कार्यक्रम।
3: अच्छा, तो पहले डर गए थे, अब डर खत्म हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। अब कहां कौन सा कार्यक्रम को उन्होंने अनुमति ली कि नहीं ली, और कैसे मीडियाबाजी शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? श्री राहुल गांधी बहुत बार प्रयागराज आ चुके हैं, उनके आने का कोई असर नहीं हुआ, पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे इस इलाके में कहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है।
0: सब छात्रों से बात करने में इस वक्त जुटे हुए हैं, जेन जी को साधने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, और इस कार्यक्रम में पीएम डिग्री हासिल करने वाले 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से ज्यादा स्नातक छात्रों को संबोधित करेंगे। ये भी जेंजी छात्र हैं। साथ ही अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को बढ़ावा देते हुए IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित AI से संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। अब इस अत्याधुनिक सुविधा से संस्थान की AI, डेटा साइंस और हाईटेक कंप्यूटिंग रिसर्च में काफी सुधार होने की उम्मीद है। पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर हमला करने वाले का स्वागत हो रहा है, और यह हमलावर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। जब यह अपने शहर पहुंचा तो खुली जीप में इसकी रैली निकाली गई। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर सवाल उठा दिए। अखिलेश लिख रहे हैं कि बीजेपी में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। देखिए, जैसे बहुत बड़ा काम करके ये शख्स वापस अपने घर में लौटा हो, देश के लिए मेडल जीते हो, और इसीलिए इतना स्वागत हो रहा हो। यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पापा,
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: इन एसोसिएशन विद
14: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती। लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है। और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब पीवीआर आईनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए, इसे जरूर देखिए। पीवीआर आईनॉक्स 7 अगस्त ऑनवर्ड्स।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: छत्तीसगढ़ छात्रों के साथ सरकार की डबल बैठक। थोड़ी देर में देवेंद्र महतो गुट के 8 छात्रों से होगी बातचीत। कल पीयूष धड़े के साथ बैठक को दोनों पक्षों ने बताया सकारात्मक। दिल्ली IIT में जेन जी से पीएम मोदी का सीधा संवाद। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को सौंपेंगे डिग्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनीपत कैंपस में लॉन्च करेंगे AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। प्रयागराज में छात्रों की गूंज से मिशन 2027 के लिए हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम। जेन जी को टारगेट कर यूपी में पैर जमाने की तैयारी। SP से जल्द गठबंधन पर जोर। राहुल गांधी के महिलाओं पर वीडियो के बाद बोले रिजिजू, कांग्रेस के बदले सुर का स्वागत है। उम्मीद है महिला आरक्षण बिल बिना शर्त समर्थन करेगी कांग्रेस। वीडियो में बोले राहुल, महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना देश है अधूरा। और सांसद पप्पू यादव के हमलावर के स्वागत पर गरमा यूपी की सियासत। बुलंदशहर में आरोपित हैप्पी शर्मा सुमित गिरी के रोड शो पर अखिलेश यादव का पोस्ट, बीजेपी में अपराधियों की बलिहारी। बात भाषा की आती है, बोली की आती है, तो लोग जंतर मंतर पर चले आंदोलन में। चंद लोगों की भाषा को लेकर पूरे आंदोलन पर सवाल उठाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्हें एक जवाब आज राजस्थान के एक प्रदर्शन से मिलेगा, वो प्रदर्शन जहां छात्रों ने इशारों से इनकलाब लाया हुआ है।
1: सबसे तेज नारे, सबसे तेज आवाज, ऐसा प्रदर्शन जहां अपना अधिकार पाने को आवाज उठाने के लिए यह नहीं देखा गया कि आवाज है या नहीं, यह देखा गया आवाज उठाने की ताकत है या नहीं। राजस्थान में ऐसा आंदोलन देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हौसलों से आती है। राजस्थान ने पहली बार मौन दिव्यांग छात्रों की ताकत देखी है, जहां मूक बधिर विद्यार्थियों ने बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दिया, सरकार को भी झुकना पड़ा। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ये वो बच्चे हैं जो थक गए थे चुप रहकर, चुप्पी उस कुव्यवस्था के खिलाफ जो रोज इन्हें चीख कर अपनी आवाज उठाने को कहती थी। वही आवाज जब फूटती है तो प्रदर्शन को देख सब अचरज में रह जाते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? जहां जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने आवाज उठाकर अब तक आंख कान बंद करके रखने वाले सरकारी प्रशासन को जगाया। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर की इस मौन क्रांति की वजह आप तक पहुंचाने के लिए जयपुर के इस सरकारी स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही पता चल गया कि क्यों छात्रों की पीर पर्वत से पिघलकर इस स्कूल से निकली, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है।
2: दिव्यांग बच्चे जो पढ़ने आते हैं क्लास में वो डरते हैं, इस तरह से देख सकते हैं पानी टपक रहा है, किस तरह से छतों से यहाँ पर पानी टपकता है। बाहर भी देख सकते हैं आप किस तरह की स्थिति, अभी भी आपको पानी टपकता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। और इस तरह से कभी भी इन्हें डर सताते रहता है कि ये छत नीचे आ सकती है, जिसकी वजह से ये हमेशा डरे रहते हैं।

0: जहां क्लासरूम में जंग लगी कुर्सी और मेज है,
1: ये क्लासरूम है दिव्यांग बच्चों का, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से ये टेबल और कुर्सियां हैं जिस पर ये बैठते हैं जंग लगे हुए। इस तरह से दीवारें झड़ रही है, छतों से पपड़ियां नीचे गिरते रहती हैं, सिर पर जो पढ़ने बैठते हैं और ये सारे परेशान रहते हैं।
0: और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, तस्वीर बदलने को ये दिव्यांग केवल क्लासरूम की हालत भर से सड़क तक नहीं आए, साफ पानी तक जयपुर में स्कूल में ये बच्चे नहीं पा रहे थे।
1: यहाँ पर बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया गया है जो खराब पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से, किस स्थिति में यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इन सब कहना है कि यहाँ पर पानी पीने के लिए आता नहीं है। पानी का कहना है कि पानी आता नहीं, जो पानी पहले आता भी था वो खराब आता था, और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नल की व्यवस्था की गई है मगर नलों में पानी आता नहीं है, किसी भी नल में पानी आता नहीं है। इस अव्यवस्था को लेकर ये सड़क पर उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं।
0: हालत ये कि टॉयलेट के भीतर तक स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता, इतनी दुर्दशा है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल बस की हालत देख लीजिए, लोहे का टुकड़ा भर बची है। और समस्या केवल इतनी नहीं, गबन का भ्रष्टाचारी टीचर तक स्कूल में काम करता मिल गया।
1: निलंबित हैं आप?
2: जी निलंबित हूँ।
1: यहाँ क्या करते हैं
2: अभी? जो भी प्रधानाचार्य जी या मैनेजमेंट जो मेरे को काम देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल है, मॉनिटरिंग है, या कोई क्लास में अगर खाली है तो मैं उसमें चला जाता हूँ।
0: जिस स्कूल में बच्चों को पानी, टॉयलेट, सुरक्षित क्लासरूम नहीं मिल पाया, वहाँ एक सच ऐसा है जो सुनेंगे तो आपको लगेगा मजाक है, लेकिन ये आपको अब तक किसी ने नहीं बताया कि राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल में जहाँ 17 क्लासरूम है और 592 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इन्हें पढ़ाने वाले टीचर की संख्या है 76। ऐसा दिव्य स्कूल तो कभी देखा सुना नहीं गया, जहाँ प्रति 7 से 8 बच्चे पर एक टीचर रख दिया गया। मतलब ये आप कहेंगे कि राम राज्य हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो टीचर हैं जो वीआईपी होने की वजह से यहाँ तबादला कराकर आराम करते हैं। आज तक के सवाल पर कि आखिर इतने टीचर यहाँ करते क्या हैं, सब भागने लगे।
1: 76 लोग आप लोग हो तो 76 लोग क्या करते हो?
2: सर से बात करो, बड़े सर से।
1: 76 टीचर हो, क्या करते हो आप?
3: मैं क्यों बात करनी है
1: सर? 76 टीचर हो, आप लोग क्या करते हो यहाँ?
3: आप हमारे
1: पीछे, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ।
0: एक एक करके जब इतनी समस्या इकट्ठा हो गई, तो जयपुर के सरकारी कॉलेज के दिव्यांग बच्चे सड़क पर उतर गए, किसी नारे, भाषण या शोर शराबे से नहीं, इशारों की भाषा में हुए मौन धरने से प्रशासन को जगाया।
4: मैंने मेरा नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर, इनको सुनो, इनको साइन से काम नहीं हो और बताओ, कोई परेशान करे सीधा मेरे को फोन करना।
0: अब यहाँ प्रिंसिपल भरत जोशी को हटा दिया गया है और दूसरी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये मूक बधिर बच्चे बोल भी नहीं सकते थे, तब उनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं था? शायद इसी दर्द ने इनके मौन को आंदोलन बना दिया। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों दिव्यांग बच्चों की आवाज है जिन्हें अक्सर व्यवस्था के शोर में अनदेखा कर दिया जाता है। जयपुर के इस मौन आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब अधिकारों की लड़ाई इशारों में लड़ी जाती है, तब खामोशी भी सत्ता के दरवाजे खटखटाकर अपना अधिकार ले लेती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: देखिए, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि प्रेम जताने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती, प्रेम बिना बोले बताया और जताया जा सकता है। और भ्रष्टाचारियों की आंखें खोलनी हो तो बिना बोले भी उनकी आंखें खोली जा सकती हैं। वैसे युवाओं में बेरोजगारी की बड़ी वजह पेपर लीक भर्तियों में भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन इसके साथ ही नौजवानों में बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण स्कूल एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार होना है। और यह हाल एक राज्य का नहीं है, यकीन मानिए, बल्कि हर राज्य में ऐसे ही हालात हैं।
6: एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
0: काश वो एआई आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
7: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
6: एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
0: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना एआई यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
7: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
6: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था। लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़ रहे, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला साथियों।
0: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कह रहे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके एआई वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे एक गलियारे में तीन तीन चार चार क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर है।
8: तीन के बरामदे के नीचे एक साथ एक दो तीन चार चार क्लास की कक्षाएं चल रही है।
6: बच्चा घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी एक मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा।
0: लेकिन एक स्कूल की इमारत तो दिला देती सरकार पहले, वरना बिहार में एक मंदिर में स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाना ना पड़ता।
9: सर यहाँ क्लास यही चलता है, स्कूल नहीं बन
10: नहीं इसका, हाँ। भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है, और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है।
9: 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला,
10: बिल्डिंग नहीं मिला है।
9: आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे?
10: कोशिश किए हैं, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
9: क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे।
10: हाँ, बहुत बहुत परेशानी होती है।
0: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज तक की खबरदार करते इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें, वक्त निकाल कर देखें, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।
5: और देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार की सरकार को पता नहीं है, पता सब कुछ है। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान सरकारी स्कूलों में भवनों की कमी का मामला विधानसभा में सदन में उठा, सरकार ने माना, खुद माना सदन में, कि राज्य में 35 जिलों में 2,276 प्राथमिक मध्य और माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है, ये माना है सरकार ने।
0: सरकार को जगाना और बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ऑनलाइन बिहार स्कूल लाइव क्लासेस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं तो देखकर ये लगता है कि सरकार शायद कुछ बेहतर करने जा रही है। जहां मुख्यमंत्री के पास बैठने के लिए कुर्सी है, सामने बोतल बंद साफ सुथरा बढ़िया पानी है, सामने 50 से 55 इंच के टीवी पर एआई क्लास से बिहार के स्कूल में कैसे सब कुछ बदल जाएगा उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है, लेकिन ये तो भविष्य की बात है। भगवान करे भविष्य में ऐसा हो, सब एआई से पढ़े और बढ़े, वरना हकीकत बिहार के स्कूलों की ये भी है कि ये घर है या फिर ये झोपड़ी है, ये क्या है।
7: बच्चों को अगर कहीं पढ़ाई करने के लिए जाना हो तो उन्हें स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल का एक अपना भवन होता है। ये सबसे न्यूनतम जो है कहें तो एक ज़रूरत होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन बिहार सरकार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त है इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा ज़िले के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत मैनापट्टी गाँव में। और मेरे सामने आप ये देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, आप सामने देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल चल रहा है, पहली से पांचवी क्लास तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि आपको पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन हकीकत है क्योंकि ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं ये झोपड़ी बिहार सरकार का एक प्राइमरी स्कूल है।
0: बधाई दीजिए सहरसा के सोनबरसा प्रखंड के मैनापट्टी गाँव के 55 बच्चों को, एक झोपड़ी में एक साथ 5 क्लास वाला स्कूल दिया गया है।
7: ये मेरे सामने ये 2 बेंच लगा, ये क्लास 1 है, फिलहाल 3 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये हो गया क्लास 1। मेरे बाएं तरफ यहाँ 2 बेंच, ये हो गया क्लास 2, यहाँ पर फिलहाल 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरफ आ जाइए, फिर उसके बगल में ठीक 2 बेंच इधर भी, ये क्लास 3 हो गया, यहाँ भी आपको 5-6 बच्चे पढ़ाई करते हुए दिख रहे होंगे। अब उसके बगल में ये है चौथी कक्षा, चौथी कक्षा भी 2 बेंच और यहाँ 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और अंत में पांचवी कक्षा, यहाँ पर एक ही बेंच है और 3 छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं।
0: टॉयलेट साफ, पानी छोड़ दीजिए, वो सब तो दूर की बातें, कहने को सरकार बस ये कहकर पीठ थपथपा सकती है कि अरे ऑर्गेनिक माहौल में एक झोपड़ी में 5 क्लास चलाकर सबका साथ सबका विकास का इससे बड़ा उदाहरण और कहाँ दिखेगा।
11: शौचालय भी जाने के लिए बहुत कष्ट है, पढ़ने में भी दिक्कत है, बारिश का समय आते हैं तो सबका देह पर पानी गिरता, हम लोग भींग जाते हैं।
7: बिल्कुल, छत तो देख रहे हैं, छत भी कई जगहों से टूटा हुआ है तो पानी तो टपकता ही होगा
11: जी। इस तरह का बहुत समस्या है सर।
7: शौचालय है स्कूल में?
11: जी नहीं है शौचालय।
7: पीने के पानी की व्यवस्था है?
11: जी नहीं है।
12: बिहार के शिक्षा मंत्री जो है, नए शिक्षा मंत्री बने, उनका क्या नाम है?
0: और कुछ दे नहीं पाई सरकार यहाँ, जो उर्दू पढ़ने वाला कोई बच्चा था नहीं तो उर्दू का टीचर जरूर दे दिया।
13: हम उर्दू के टीचर हैं लेकिन यहाँ उर्दू के बच्चे एक भी नहीं है, तो हम 1-5, 1-8 जो सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं तो हम कभी मैथ्स पढ़ा देते हैं, तो कभी जीके पढ़ा देते हैं, कभी पर्यावरण पढ़ा लेते हैं।
7: मेनली आप उर्दू के टीचर हैं, उर्दू के कोई बच्चे हैं?
13: उर्दू के बच्चे नहीं, इस पोषक क्षेत्र में उर्दू बच्चे नहीं है।
7: तो आप सारे बच्चों को क्या क्या पढ़ा लेते हैं?
13: मैथ साइंस नहीं है, पर्यावरण पढ़ा लेते हैं, इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ा लेते हैं, जीके जीएस पढ़ा लेते हैं।
0: इन बच्चों की नींव ही सरकार खोखली कर देगी तो भविष्य में ये क्या कर लेंगे, इनके साथ अपराध किया जा रहा है और दुख की बात है कि अपराधी बिहार की ही सरकारी व्यवस्था है।
7: अगर इस हालात में बिहार में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे, पहली से पांचवी प्राइमरी के बच्चे, जिनकी बुनियाद अगर इस तरीके से अगर सींची जा रही है इस तबेले नुमा स्कूल में, झोपड़ी है यहाँ पे सिर्फ केवल, तो फिर बहुत हैरानी होती है और देख के ये तस्वीरें बहुत दुख भी होता है।
0: लेकिन संवाददाता रोहित सिंह को तो अभी और चौंकना बाकी, सहरसा के सोनबरसा का झिटकिया गांव। 2007 में यहां प्राथमिक स्कूल शुरू हुआ, 20 साल बाद भी सरकार कह सकती है कि बच्चों को जमीन से जोड़कर रखा है, काहे कि ना उनके लिए कुर्सी है, ना मेज, ना स्कूल की इमारत, जमीन है, बोरा है, पेड़ है, पेड़ भी बांस वाला और बांस के सहारे बोर्ड है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में बच्चों को लेकर खोट है।
7: पिछले तकरीबन 20 सालों से यही स्थिति है, बच्चे इसी तरीके से पेड़ की छाँव में रोज़ाना आते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये प्राइमरी स्कूल जो है इसमें पहली से लेकर पांचवी कक्षा तक के बच्चे आते हैं, और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली और दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे बाप दादा, हम लोग सुना करते थे कि बोरे पर रख कर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन बिहार की स्थिति आज भी ऐसी है कि सब लोग को देखिए अपना अपना बोरा लेकर खुद आना पड़ता है या बोरा यहाँ दिया जाता है, लेकिन बोरे पर ही बैठकर आज बिहार के ये नौनिहाल जो हैं वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकार के लाख दावों के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। देख लीजिए क्या स्थिति है यहाँ पर। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनको ज़रा समझना चाहिए, ज़रा उनको देखना चाहिए कि अगर इस तरीके से बिहार का विकास हो रहा है, बिहार के नौनिहालों को पढ़ाया जा रहा है राज्य में, जहाँ पर आज एडवांस पढ़ाई होती है, कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, स्मार्ट टीवी से पढ़ाई होती है, स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, हाईटेक पढ़ाई हो गई है, और इसका दावा भी किया जाता है कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो हकीकत देखने के लिए स्कूल पे आ जाइए। टीचर है आप यहाँ पे?
14: जी जी।
7: 2007 से ही पढ़ा
14: रही हैं? जी, 7 से, फरवरी से।
7: बहुत पुरानी टीचर है, 20 साल से यही व्यवस्था है जी।
14: जी।
7: बोले बोले कि नहीं, बीओ को, डीओ को, डीएम को
14: बोले हैं? बीओ सबको बोला हुआ,
7: कोई देखने नहीं आता है?
14: बीओ सब आते थे, सब आते थे, सब अपना
7: 20 साल में सिर्फ आते थे, देख के चले गए हैं, कुछ किया नहीं है किसी ने?
14: नहीं, कुछ नहीं।
0: बिहार के इस स्कूल में सरकारी दावों की हालत इस हैंडपंप की तरह है, जहां का पानी केवल हाथ पैर धोने के काम आता है, पीने के काम नहीं आता, क्योंकि इस पानी में दावा है आयरन बहुत है। जैसे सरकारी दावों में आयरन शक्ति बहुत होती है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। बाकी भीतर एक गोदाम नुमा कमरे में बापू और देश के असली लौह पुरुष सरदार पटेल की तस्वीर है,
7: जहां प्रिंसिपल
0: जो इस इंतजार में होंगे कि एक दिन कम से कम स्कूली शिक्षा के बुनियादी अधिकार की आजादी बिहार के इन स्कूल तक भी पहुंचेगी। रोहित सिंह, सहरसा आज तक।
5: सपना संजोने में और हकीकत होने में कितना अंतर है वो यहां पर आपको दिखा होगा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के बीच साजिद रशीदी का अपमानजनक और भड़काऊ बयान आया है। ऐसा बयान जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
1: क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ।
0: साजिद रशीदी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना के ऐसे विवादित बयान को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आतंकी वाले बयान को लेकर पलटवार भी किया।
2: अब बहुत हो गया है ये मौलाना, अगर कांवड़िए खड़े हो गए तो मौलाना की पीढ़ियां नहीं बचेंगी। और ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये देश धर्म के आधार बटा था कि जो यहाँ राम का नाम लेंगे, सनातन संस्कृति के अनुसार रहेंगे, उनका सम्मान होगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर सनातन का अपमान करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान बना था।
0: नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान है। उन्होंने मौलाना पर FIR दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है और कहा है कि मौलाना को ऐसे बयान के लिए फांसी होनी चाहिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल, डेमोग्राफी हैज बीन चेंज। हमारी सीमा असुरक्षित, भारत सरकार पहले राजनाथ सिंह जी उसका बाद अमित शाह जी बार बार लेटर दे रहा है, भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो, ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है। नो नो नो नो, वोट बैंक तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मेरा घर का आदमी बिपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं, भाई देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था, इसको छोड़ना चाहिए।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में बढ़ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई के आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।

झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की डबल बैठक, थोड़ी देर में देवेंद्र महतो गुट के 8 छात्रों से वार्ता। कल पीयूष धड़े के साथ बैठक को दोनों पक्षों ने बताया सकारात्मक। राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम से पहले पोस्टरबाजी, झारखंड ना जाने पर सवाल। शशि थरूर के गूंज का जेंजी पर बेअसर वाले बयान को बीजेपी ने लपका। दिल्ली आईआईटी में जेंजी से पीएम मोदी का सीधा संवाद। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को सौंपेंगे डिग्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनीपत कैंपस में लॉन्च करेंगे AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। सांसद पप्पू यादव के हमलावर के स्वागत पर गरमाई यूपी की सियासत। बुलंदशहर में आरोपित एपी शर्मा सुमित गिरी के रोड शो पर अखिलेश यादव का पोस्ट, बीजेपी में अपराधियों की बलिहारी। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा, 7 यात्रियों की मौत, 11 गंभीर। चुराही घाटी में संतुलन बिगड़ने से 100 फीट नीचे सड़क पर गिरी प्राइवेट बस। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महिला बिल से पहले राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री में पोस्ट वार शुरू हो गया है। पहले राहुल गांधी ने महिलाओं के समर्थन पर वीडियो जारी किया तो किरण रिजिजू ने लिखा कि लगता है कांग्रेस का मन बदल गया है, महिला बिल पर समर्थन के लिए तैयार है। अब राहुल गांधी ने नए पोस्ट में लिखा कि रिजिजू जी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है कांग्रेस के पूर्व समर्थन, पूर्ण समर्थन के साथ में। अब ये राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया। और अब आपको दिखाते हैं शतक आज तक।

0: आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। समारोह में 3036 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जिनमें 587 पीएचडी स्कॉलर। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में पीएम एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा सुविधा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे आईआईटी दिल्ली का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। प्रयागराज में राहुल गांधी का युवा कनेक्ट, छात्रों की गूंज का तीसरा चरण। कांग्रेस की उम्मीद है कि छात्र मुद्दों पर सक्रियता से यूपी के युवाओं और जेंजी के बीच पार्टी की पकड़ बढ़ेगी। प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्र सभा, 1.5 लाख छात्रों के जुटने की उम्मीद। रांची में 4 मंत्री और 4 छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने कहा सकारात्मक बातचीत। बातचीत के बाद भी रांची में 15वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी, कहा जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक जारी रहेगा। विधानसभा मार्च के दौरान आईसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरएसएस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा उनके सदस्य ने स्याही फेंकी, छात्र आंदोलन कमजोर करने की कोशिश। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर नेहा बोरा का बयान, री एग्जाम और निजी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। झारखंड में 10 अगस्त को मार्च की तैयारी जारी, रांची में जुटेंगे छात्र प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को मार्च निकालने का ऐलान बरकरार रखा है, राज्यभर के छात्रों से पहुंचने की अपील। राहुल गांधी बोले भारत की महिलाओं की ऊर्जा को खुलकर सामने आने की जरूरत, कहा जिस देश की महिलाएं अपनी क्षमता और विचार व्यक्त नहीं कर पाती वो देश सफल नहीं हो सकता। महिला आरक्षण पर राहुल के बदले रुख को रिजिजू ने बताया पॉजिटिव मैसेज, उम्मीद जताई कि कांग्रेस अब महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करेगी। अमृतसर सीपी के तबादले पर पंजाब में सियासी घमासान, आईएसआई कनेक्शन के दावे के बाद सीपी भुल्लर के ट्रांसफर पर बीजेपी ने आपको घेरा। सीपी के तबादले पर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंसा का सच सामने लाने वाले ईमानदार अफसर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमृतसर हिंसा के बाद पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर बना मुद्दा। राहुल गांधी यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक, राहुल गांधी पार्टी सांसदों विधायकों प्रदेश प्रभारी अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल बोले एकजुट होकर आवाज उठे तो सरकार झुकती है। प्रयागराज में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी छात्र मुद्दों पर एकजुटता का संदेश देंगे। G20 ईंधन के खिलाफ आपका देशव्यापी टाउन हॉल अभियान, आज से आप पश्चिम बंगाल में अभियान की शुरुआत करेगी। वाहन मालिकों से सीधा संवाद करेगी आप, टाउन हॉल में वाहन मालिकों से G20 ईंधन को लेकर समस्याओं और अनुभवों पर फीडबैक लिया जाएगा। गुजरात और हरियाणा में 9 अगस्त को आपके कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात और हरियाणा में E20 ईंधन के खिलाफ टाउन हॉल आयोजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, आज तमिलनाडु और कल पुडुचेरी का करेंगे दौरा। भारतीय विदेश मंत्रालय की अमेरिका को नसीहत, एमईए प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा FCRA बिल हमारा आंतरिक मामला, उस पर संसद निर्णय लेगी। E20 पेपर पेट्रोल पर राहुल गांधी का एक्सपोस्ट सोशल मीडिया पर डाला, सरकार को घेरते हुए कहा दाल में काला नहीं पूरी दाल काली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का E20 पर बयान, कहा मिलावट तो किसी भी चीज में हो सकती है, कुछ लोग तथ्यों को हटकर बेवजह खड़ा कर रहे हैं विवाद। तमिलनाडु में डीलिमिटेशन पर सीएम विजय की आज होने वाली मीटिंग का डीएमके और एआईएडीएमके ने बॉयकॉट कर दिया। कावड़ यात्रा के चलते ब्रिज दौर में आज सभी स्कूल बंद हैं, जीएम के निर्देश पर बीएसए ने आदेश जारी किया, जिले के सभी स्कूलों को आज अवकाश रहेगा। उल्फा को बड़ा झटका, अरुणाचल प्रदेश में 4 हार्डकोर कैडर ने सरेंडर किया असम राइफल्स के सामने। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बल सतर्क है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत CIK ने हिलर शाबाद इलाके में छापेमारी की। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने सुरेंद्रनगर में एनालॉग चीज और एनालॉग बटर बेचने वालों पर यूनिट्स पर छापा मारा। ऋषभ पंत ने सीएम धामी से मांगी जमीन खरीदने में मदद, बोले उत्तराखंड लौटना नाइटमेयर बन गया, दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करने की इच्छा जताते हुए पंत ने कहा 3 साल से जमीन नहीं मिल पाई। ऋषभ पंत की अपील पर सीएम धामी के जवाब, धामी ने पंत को उत्तराखंड का गौरव बताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी जल्द उनसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड में पुल की अप्रोच रोड धंसने पर 3 इंजीनियर सस्पेंड, नंदा की चौकी में भारी बारिश से 28 जुलाई को नई बनी अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त। मायावती का SP के PDF फॉर्मूले पर हमला, बोली राजनीतिक छलावा, BSP प्रमुख ने समाजवादी पार्टी पर संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए रंग बदलने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव खतरे में, बोले भाजपा में अपराधियों की बलिहारी। पप्पू यादव पर जूता फेंकने वालों के स्वागत पर सपा प्रमुख ने कहा दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, देश भर के 22 से ज्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया। दून स्कूल के अभिनव और सरदार पटेल विद्यालय की झिलम संयुक्त विनर।
1: जब हमने आज तक वाद विवाद शुरू किया था 16 साल पहले, हमने सोचा था हिंदी डिबेट है कौन आएगा, और वसंत वैली स्कूल जो इंडिया टुडे डिबेट करती है, अंग्रेजी की डिबेट करती है, हिंदी डिबेट में कौन आएगा। बट वी वर रियली सरप्राइज।
0: रामनाथ कोटे ने पंचा टीएम नाम से एक नई हैंडलूम पेशकश लॉन्च की है। ओडिशा के मयूरभंज की संथाली बुनाई परंपरा को पुनर्जीवित किया। हरिद्वार में कांवड़ मेले पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यूपी के सहारनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, पुलिस ने कांवड़ियों का स्वागत किया, महादेव के जयकारों से गूंजा। दिल्ली एनसीआर में मानसून का कहर, आईएमडी का येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम, सड़कें बंद होने की स्थिति। बारिश ने रोका दिल्ली का ट्रैफिक, सरायकाला खां में आउटर रिंग रोड पर लगी रही वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में भारी जलभराव, लगातार बारिश के बाद सैनिक फार्म क्षेत्र की सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में बारिश के बाद आईटीओ में समेत राजधानी में कई हिस्से प्रभावित, सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। जलभराव के कारण एमबी रोड पर भीषण जाम, ओखला मोड़ से खानपुर के बीच जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जलजमाव में फंसे वाहन, धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। गुरुग्राम में भी आफत की बारिश, तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच अस्पताल परिसर में जलभराव, बेसमेंट की दीवार से निकला पानी, चिकित्सा सेवाएं प्रभावित। झज्जर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव, सड़कें तालाब में तब्दील, आवाजाही में हो रही परेशानी। सुरेंद्रनगर में नदी बनाने गई एक युवक को बचाने की कोशिश में डूबे चार युवक। आगरा में बारिश के बीच भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। आगरा में एक टेम्पो अचानक नाले में जा समाया, 5 लोगों की जान बचाई गई, सड़क पर गड्ढा था, पानी में दिखा नहीं। फरीदाबाद में बारिश के बाद जलमग्न अंडरपास में फंसी फॉर्च्यूनर, चालक की हालत गंभीर। संभल में कटान से खेतों में घुसा पानी, भारी बारिश से 100 बीघा ज्यादा धान और गन्ने की फसल बर्बाद, मिट्टी डालकर पानी रोकने की कोशिश। डोडा में 6 मीटर सड़क का हिस्सा अचानक ढहा, सड़क पर आवाजाही प्रभावित, लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेज आंधी से सेब की फसल तबाह हो गई, करोड़ों का नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। इटावा में 1 घंटे की बारिश से भारी जलभराव, अंडरपास में 4 फीट पानी भरने से आवागमन ठप हो गया। मध्य प्रदेश के दतिया में बारिश से खुली नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल, किला चौक समेत कई इलाकों में जलजमाव। आगरा में तेज बारिश से सड़क धस गई, ताजगंज इलाके में गड्ढे में फंसा ट्रक। झारखंड के धनबाद में कतरास में जमीन धस गई, कई घर मलबे में दब गए, 12 लोग घायल। मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा सीएम योगी करेंगे आज। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बन रही एसटीआरएफ, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। ड्रोन से कांवड़ मेला क्षेत्र की निगरानी, आपदा में भी मददगार साबित होगा ड्रोन। गाजियाबाद में कांवड़ सुरक्षा का नया कंट्रोल रूम, जीएम और पुलिस कमिश्नर ने शुभारंभ किया, 2000 सीसीटीवी से नजर। मुजफ्फरनगर में दिख रहे पवित्र कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग, आंखों पर पट्टी बांधकर हरिद्वार से बागपत जा रहा शिव भक्त। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेश उत्सव के 1 महीने पहले ही बप्पा का आगमन, ढोल लगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई लाल बाग चौराजा की प्रतिमा। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के जन्मोत्सव पर दीयों की भव्य रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेम्पल। गुजरात के जामनगर में समरसा विद्या सेतु अभियान का शुभारंभ, 500 से अधिक बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश। स्कूल ड्रॉप आउट, दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से बच्चों को जोड़ने का प्रयास, 1 महीने तक चलेगा समरस विद्या सेतु अभियान। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर आराम फरमाते देखे चार शेर, बस में बैठे यात्रियों ने कैमरे में कैद किया। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल। जूनागढ़ में हाईवे पर कार बाइक की भीषण टक्कर, दंपति की मौत सीसीटीवी में कैद। जालंधर में भीषण सड़क हादसा हुआ, कैंटर और कार की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत।

0: ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू के करोड़ों के फ्लैट की छत से फिर गिरा प्लास्टर, बाल बाल बचा परिवार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जल जमाव और गड्ढों का कहर, ई रिक्शा पलटने से पुजारी ने गवाया हाथ। वाराणसी में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला आया सामने, पहचान छिपाकर शादी और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोप में युवक गिरफ्तार हुआ। जयपुर में बोनस अंक की मांग कर 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंग कर्मी, भर्ती को लेकर किया गया हाई वोल्टेज ड्रामा। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मार के लगभग 5 क्विंटल काली मिर्च सीज की, बिना लाइसेंस के हो रहा था कारोबार। चंबा में बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 7 लोगों की मौत, करीब 22 लोग सवार थे। रामबन में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर खाक हो गए, कोई जनहानि की खबर नहीं। गोरखपुर में रोडवेज बस का कहर, अनियंत्रित बस ने पैदल जा रहे युवक को रौंद दिया, शख्स की जान गई। पटना में सड़क हादसे के बाद भारी बवाल, आगजनी में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। जूनागढ़ में कार ने रिक्शा और बाइक को मारी टक्कर, 5 लोग घायल, ट्रिपल दुर्घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई के बोरीवली में जन्मदिन पार्टी में एयरगन से फायरिंग, दहशत फैलाने के आरोप में 10 लोग हिरासत में। गुजरात के नवसारी में हाईवे पर भीषण हादसा, डिवाइडर से टकराकर 2 बार पलटी फॉर्चूनर। गुजरात के दाहोद में ज्वेलरी दुकान में चोरी, करीब 5 लाख रुपए के चांदी के गहने लेकर फरार हुए चोर। गुजरात के बनासकांठा में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, कपड़ों की आड़ में ले जाई जा रही थी करोड़ों रुपए की विदेशी शराब। जूनागढ़ में कुएं में गिरी शेरनी का सफल रेस्क्यू, स्वस्थ होने के बाद वन विभाग के पास वापस जंगल में छोड़ा। वनडे क्रिकेट ने छुआ ऐतिहासिक मुकाम, स्कॉटलैंड बनाम कनाडा का मैच बना 5000वां वनडे इंटरनेशनल। कनाडा को 9 रन से हराकर स्कॉटलैंड ने ऐतिहासिक 5000वां वनडे जीता, फैनली मैकार्थी ने शतक लगा दिया। भारत श्रीलंका टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का फैसला, मैच में दर्शकों की फ्री एंट्री। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे को जल्द मिलेगा बड़ा सम्मान, यूपी पुलिस प्रमोट कर डीएसपी बनाने की तैयारी कर रही है। कश्मीर के पुलवामा के ओवैसी याकूब ने किया देश का नाम रोशन, बुल्गारिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ब्रेव ऑफ 107 प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जमात इस्लामी के नेतृत्व में रैलियां निकाली जा रही। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी जुटे। रूस पर अमेरिका सीनेट का बड़ा एक्शन, कड़े प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी। भारत चीन समेत रूस के बड़े खरीदार आ सकते हैं प्रतिबंधों के दायरे में, पुतिन रूसी अधिकारी, बैंक और ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाने जाने का प्रावधान। जेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेट के कदम का स्वागत किया है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन।
0: दिल्ली आईआईटी का रुख करते हैं, जहां इस वक्त 57वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी हासिल करने वाले डिग्री हासिल करने वाले 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को संबोधन करेंगे। अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देते हुए आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई से संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। इस अत्याधुनिक सुविधा से संस्थान की एआई, डेटा साइंस और हाईटेक कंप्यूटिंग रिसर्च में काफी सुधार होने की उम्मीद है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं, क्या कार्यक्रम आज यहां पर होने वाला है और क्यों अहम है ये?
2: देखिए एक तो आईआईटी जरिए अगर देखा जाए तो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में, उसका जो दीक्षांत समारोह है उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और जिन बच्चों जो बच्चे आज पास आउट करेंगे उनको जो है डिग्री देने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। और आप देखिए कि लगातार जब भी इस तरीके के कोई इवेंट्स होते हैं, युवाओं के कोई इवेंट्स हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी निमंत्रण दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिजी शेड्यूल में भी उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं उस निमंत्रण को स्वीकार करके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आईआईटी दिल्ली का जब ये दीक्षांत समारोह और उसमें जो पास आउट होने वाले छात्र हैं उनको जो उनकी जो डिग्री है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर दी जाएगी तो ये इससे बड़ा कोई उनके लिए कह सकते हैं कि सम्मान।

0: नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में युवाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जेंजी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज यहाँ से इस दीक्षांत समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी IIT के छात्रों को जब संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा देने वाले जो वाक्य हैं जो उनको प्रेरणा दे सके, उनको आगे उज्जवल भविष्य में किस तरीके से आगे देश की सेवा करनी है, वो सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सुनने को और देखने को मिलेगी।
1: जी शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए भी। और जब पीएम मोदी नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे तो जरूर यहां पर हम अपनी बात रखेंगे। वहीं इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। दिल्ली के नरेला इलाके की घटना है जहां बेकाबू कार ने महिला को कुचल दिया, फिर सामने खड़ी एक कार में टक्कर मार दी और अब पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताया। और ये देखिए मर्सिडीज की हालत आप देखिए तो समझिए कि कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, बुजुर्ग महिला की। कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और ये उस गाड़ी का नंबर है GL1CAB0368। नरेला में ये कार हादसा होता है जहां पर एक बुजुर्ग महिला को ये गाड़ी कुचल देती है और देखिए एक और गाड़ी वहां पर क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही होगी क्योंकि वहां भी उस गाड़ी को भी टक्कर मारी गई है। तो दिल्ली के नरेला में ये घटना हुई, बेकाबू कार ने महिला को कुचला, फिर सामने खड़ी एक कार में भी टक्कर मार दी और अब पुलिस आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले चुकी है। हालांकि जो कार चालक था वो नशे में था या नहीं था यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गाड़ी के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई जो अभी आप देख रहे थे उससे अनुमान जताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो चालक है वो नशे की हालत में हो। हालांकि उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें स्थिति स्पष्ट होंगी, लेकिन जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में आप देखेंगे गाड़ी के अंदर बोतल भी दिखाई दे रही है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: पापा
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
5: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
5: है। ला, ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: अभी तो चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: In association with
6: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
8: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को PVR INOX में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विटनेस टू अ नेशन।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं
1: भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी, तो डर काहे का, एक्सप्रेस वे हो या फिर हाईवे, टेंडर भला कौन रोक सकता है? फिर चाहे गड्ढे में एक्सप्रेस वे हो या फिर एक्सप्रेस वे में गड्ढा, सियासी रसूख और पहुंच ऐसी कि एनएचएआई का पूरा निजाम आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा रहा। सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के घटिया निर्माण पर नजर रखने वाले अपनी आंखें मूंद कर बैठे रहे।
2: ऐसा नहीं कि एनएचएआई का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड भी देखिए तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहां रखते हैं वहां तक टूटी जाती है।
1: सोचिए 13 जुलाई को पूरे तामझाम के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए नए एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। आज जिम्मेदारों को घटिया निर्माण करने वाली बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी की जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ घटिया निर्माण का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के फेल होने का है। एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा से जुड़ा है।
3: ये वास्तव में केवल एक्सप्रेस वे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं।
4: मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ।
1: आज जिम्मेदारों को गड्ढे वाला एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को मिल रहे ठेकों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के घटिया निर्माण पर उठे सवालों की फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बीजेपी के मौजूदा सांसद के भाई की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इन दो तस्वीरों से समझिए। साल 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन का 50 फीट हिस्सा धंस गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई थी। कार में सवार चार लोग बाल बाल बच गए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अवधीश कुमार अवस्थी ने माना था, जहां एक्सप्रेस वे धंसा वहां घटिया निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी ने किया था। यानी 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता को लेकर पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी पर सवाल उठे, लेकिन उसके बावजूद इसी कंपनी पर पाबंदी लगाने के बजाय इनाम मिला, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का ठेका मिला। परिणाम सामने है, उद्घाटन के चंद दिनों के बाद ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे जगह जगह धंस रहा है। मतलब यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेस वे आज निर्माण में हुई अंधेर गर्दी की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। सोचिए 2018 में कागजों पर पीएनसी इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाने का ठेका कंपनी को मिलता रहा। अंधेर गर्दी ऐसी है कि गड्ढे वाला एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी को एनएचएआई से करीब 3483 करोड़ के दो नए हाईवे प्रोजेक्ट मिल गए हैं।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की डबल बैठक। देवेंद्र महतो गुट के 8 छात्रों के साथ हो रही है वार्ता। कल पीयूष धड़े के साथ बैठक को दोनों पक्षों ने बताया सकारात्मक। दिल्ली आईआईटी में जेएन जी से पीएम मोदी का सीधा संवाद। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को सौंपेंगे डिग्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सोनीपत कैंपस में लॉन्च करेंगे एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले पोस्टरबाजी। झारखंड ना जाने पर सवाल। शशि थरूर के गूंज का जेएन जी पर बेअसर वाले बयान को बीजेपी ने लपका। पिछड़ा पोस्ट वार। राहुल गांधी के महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू ने लिखा, लगता है कांग्रेस बिना शर्त समर्थन के लिए तैयार है। फिर राहुल ने लिखा, बिल तो 2023 में ही समर्थन से पास हुआ। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में भीषण सड़क हादसा, 7 यात्रियों की मौत, 11 गंभीर। चुराह घाटी में संतुलन बिगड़ने से 100 फीट नीचे गिरी प्राइवेट बस।

0: बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 11:30 बजे के बुलेटिन में। सबसे पहले रांची में जारी छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। रांची में आंदोलनकारी छात्रों से सरकार फिर से बातचीत अब शुरू हो चुकी है। देवेंद्र महतो गुट के छात्र दल के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत अभी हो रही है और इसके पहले कल सरकार की ओर से बनाई गई मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्य वाले दल से बैठक की थी और उसे बहुत पॉजिटिव बताया था कि सकारात्मक हुई है वो बातचीत। तो देवेंद्र महतो गुट के साथ छात्र देवेंद्र महतो गुट के जो छात्र हैं उनके साथ सरकार की अभी बातचीत हो रही है। कल भी बातचीत हुई थी लेकिन कल पीयूष गुट है छात्रों के, देखिए वहां पर दो अलग अलग धड़े हैं और वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 15वां दिन है, मांगे सबकी एक है लेकिन प्रदर्शन अलग अलग है।
1: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
2: देखिए बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलूट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: तो देखिए यह भी आपको बड़ी खबर बता दें कि अगर आज सहमति नहीं बनती है तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव का पूरी तैयारी छात्रों की तरफ से कर ली गई है। रांची में सरकार के साथ बातचीत के बीच छात्रों का आंदोलन जारी है, 15वां दिन है लेकिन समाधान नहीं निकलता, तो 10 अगस्त की तारीख पहले से ही तय कर ली गई है। विधानसभा घेराव का आह्वान छात्रों की तरफ से किया गया है, छात्रों से 8-9 अगस्त को ही रांची पहुंचने को कहा गया है और 10 तारीख को फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। छात्र और देखिए किस हालात में है, वहां पर जुटे हुए हैं, 15 दिन हो गए, छात्र कह रहे हैं अपने अधिकार की लड़ाई हमको खुद ही लड़नी होगी। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष का जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, 10 तारीख तो ठीक है आह्वान किया गया है विधानसभा घेराव का, छात्र उसके लिए आएंगे भी, लेकिन क्या आज उम्मीद है सहमति बन जाएगी, कोई निष्कर्ष निकल पाएगा या फिर स्थायी समाधान जिसे कहते हैं वो हो पाएगा?
3: बहुत संभावना कम है इसकी, क्योंकि कल जब बात हुई थी पहले गुट से छात्रों से, तभी मंत्रियों ने कहा कि आपकी जो मांगे हैं वो आप हमें बताइए। उन्होंने कहा कि मांगे तो सबको पब्लिक डोमेन में, सब कुछ तो आपको पता ही है, हम ये चीजें चाहते हैं। नेगोशिएशन में वो ये समझना चाहते थे कि कई सारी मांगों में ऐसी कौन सी मांगे हैं जहां पर छात्र एक कदम पीछे हट सकते हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे उस सर्किट हाउस पर जहां पर यह हाई लेवल बैठक चल रही है। हाई लेवल इसलिए कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, देश के लोकतंत्र में कितनी अच्छी बात होती है कि छात्र युवा जो है वो सरकार से संवाद करने के लिए एक बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन मैदान में उतर आते हैं। 13-14 दिन लग जाते हैं सरकार, लेकिन उनकी सुध तो लेती है कम से कम। तो लोकतांत्रिक सत्याग्रह की बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार के 4 मंत्री कैबिनेट मिलते हैं और आते हैं, बातचीत करते कहते ठीक है अब आप अपनी बातें बताइए। यह बैठक इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि कागजों पर सब कुछ होगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग होगी, वो मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। तो ये जरूर कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे में दूसरे दौर की बातचीत होगी। जो छात्रों का पहला गुट था, अभी इस समय जो दूसरा गुट है उनसे भी बातचीत हो रही है और वही प्रक्रिया है, आपकी जो मांगे हैं आप औपचारिक रूप से बताइए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये दर्ज होंगी, हम इसे मुख्यमंत्री के पास पहुंचाएंगे। क्योंकि इसमें अब सरकार को अपने लेवल पर मंत्रियों के साथ, कैबिनेट के साथ विस्तार से चर्चा करनी होगी, पॉलिटिकल डिसीजन भी है यहां पर, विल पावर भी इसके लिए चाहिए। तो क्या सरकार ये पॉलिटिकल एक बड़ा डिसीजन सरकारी तौर पर ले सकती है? आती है कि छात्रों की जो पहली मांग है कि कम से कम 14वीं को रद्द किया जाए, आगे मांग करने बढ़े, तो उसमें जो तकनीकी चीजें हैं उस पर विस्तार से चर्चा करना जरूर। और साथ ही सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम तो आपके साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपके मांगों का भी समर्थन कर रहे हैं, यहां तक कह दिया है उन्होंने। लेकिन आपने जो बात की दूसरी कि इस बीच छात्रों ने कॉल दिया, वो कह रहे हैं आप 10 तारीख को पहुंचेंगे, स्टेट के बॉर्डर बंद हो जाएंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो बेहतर ये है 8 तारीख और 9 तारीख को ही बस।
0: देखिए, समाधान निकलना बहुत जरूरी भी है क्योंकि छात्र 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बात प्रयागराज में होने वाले आज राहुल गांधी के छात्रों के गुंज कार्यक्रम की करते हैं। एक और कांग्रेस जोर शोर से इस आयोजन की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सियासत जबरदस्त हो रही है। प्रयागराज में पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है राहुल के कार्यक्रम को लेकर। प्रयागराज में बीजेपी की ओर से पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं, बैनर होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। सवाल पूछा है कि राहुल गांधी जी झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन में क्यों नहीं गए अभी तक। और इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने छात्रों की गूंज कैंपेन और सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के बीच बड़ा फर्क बताया। शशि थरूर ने कहा कि पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे कांग्रेस और राहुल गांधी पहले ही उठा चुके थे, लेकिन उनकी मुहिम सीजेपी के प्रदर्शन जितना असर नहीं छोड़ सकी।
4: नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनके स्वागत में पूरे शहर भर में कई पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन कुछ पोस्टर्स ऐसे भी लगाए गए हैं जहां पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर अपने दाएं तरफ, यहां पे आप देखेंगे तो राहुल गांधी के स्वागत में जगह जगह इस तरीके के पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। वहीं इसके ठीक बगल में बाईं तरफ ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। कटाक्ष करने की जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी झारखंड नहीं जा रहे हैं जहां पर छात्रों का मुद्दा चल रहा है। वह तमाम बाकी मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे तो दूसरी तरफ एक और पोस्टर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर ये लिखा हुआ है कि नीट पर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, प्रयागराज जवाओ। और झारखंड एक तरीके से मीम है, उसको यहां पर पोस्टर के तौर पर बीच चौराहे में लगा दिया गया है। फिलहाल दो तस्वीरें आपको देखने को मिली, एक तरीके से पोस्टर वॉर है जो वो छिड़ गया है पूरे शहर भर में, कहीं ना कहीं कटाक्ष किया जा रहा है। फिलहाल ये नहीं क्लियर है कि ये पोस्टर्स लगाए किसने हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरे शहर भर में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है।
0: तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया कि प्रयागराज में छात्रों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाएं, लेकिन छात्र परेशान हैं, वो राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं।
5: राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं। बिल्कुल छात्रों को प्रेशराइज किया जा रहा है, जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, जो बच्चों को कोचिंग सेंटर हैं, जो कोचिंग देते हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बच्चों को न भेजिए। हम लोग जिस होटल में थे, इसके पहले जिस एक होटल में थे त्रिवेणी ग्रैंड में, वो जबरदस्ती सरकार के दबाव में खाली कराया गया हम लोगों से। फिर मैं इस होटल में आया, ये दूसरा होटल है मेरा, हो सकता है आज भी खाली कराने का प्रयास हो, पर अब तो कोई दिक्कत नहीं, हम सड़क पे भी रह लेंगे। इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन देश के भविष्य के लिए हमें अगर सड़क पे भी सोना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं है। निश्चित तौर से बच्चे परेशान हैं, इनका भविष्य खराब कर रही है, कोई एग्जाम नहीं। मैं कल एक छात्रावास में गया था, यहाँ एक बाटी दाल चोखा का यहाँ बड़ा रिवाज है, उनके बीच में बैठ के मैं बाटी दाल चोखा खाया रात को। उन बच्चों ने कहा कि हम लोग का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार।
0: राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला है। अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से युवा हो, किसान हो, महिलाओं हो, किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
6: पहले कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के अजय राय समेत तमाम कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब डर गए राहुल गांधी से, इसलिए कार्यक्रम।
7: अच्छा, तो पहले डर गए थे, अब डर खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहां कौन सा कार्यक्रम को उन्होंने अनुमति ली कि नहीं ली, और कैसे मीडियाबाजी शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। श्री राहुल गांधी बहुत बार प्रयागराज आ चुके हैं, उनके आने का कोई असर नहीं हुआ, पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे इस इलाके में कहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है।
0: कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जेन जी और कांग्रेस को लेकर उन्होंने बयान दिया, जिसका भी कुछ देर पहले हमने आपको जिक्र किया था। और शशि थरूर ने कहा कि सीजेपी ने कोई अलग मुद्दा नहीं उठाया, हमने भी इसी तरह की बात की, लेकिन हमारी आवाज जन जन तक पहुंच सकी, हमें सोचना होगा, जन जन तक नहीं पहुंच सकी, ये शशि थरूर कहना चाह रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि हमें सोचना होगा कि आखिर चूक हुई कहां है। शशि थरूर ने राहुल गांधी के छात्र गुंज कार्यक्रम का भी जिक्र किया।
8: The established parties will cease to be relevant unless they can listen to the new voices that they haven't heard so far. And I think, frankly, we should have started hearing them already with this. Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chhatron Ki Goonj thing where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things
9: and that didn't resonate. Sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
8: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having your finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? And that's something we really need to
0: know. Sansad Pramod Tiwari ne tharoor par palatwar kiya. Unhone kaha ki chhatra Rahul Gandhi ke saath hain. Yuva Rahul Gandhi par bharosa karta hai.
10: तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई राष्ट्रीय राजनेता युवाओं की आवाज को उठा रहा है और युवा उससे अपने आप को जुड़ा महसूस कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी है। मेरे ये विचार हैं। मैं नहीं जानता कौन और क्या कह रहा है।
0: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि बिना महिलाओं की बात सुने निर्णय में बिना उन्हें सही हिस्सेदारी दिए विकास हो ही नहीं सकता है। भारत की महिलाएं हमारी ताकत हैं और सच कहूं तो हमारे समाज में महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को हर जगह बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए।
11: इंडियाज द एनर्जी ऑफ इंडियाज वुमेन इज ट्रैप्ड इज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves. Right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand and not from a top down perspective but making people understand that our country is stunted is incomplete without the expression of our women.
0: अब इस वीडियो संदेश को महिला आरक्षण बिल से जोड़ के देखा जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी का रुख बदल गया लगता है। रिजिजू लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश प्रतीत होता है, महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी के विचारों में स्पष्ट रूप से बदलाव दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल गांधी ने लिखा कि रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को पद से हटाने के बाद अब सियासत बहुत गर्मा गई। इस फैसले के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टी पंजाब सरकार पर हमलावर हो गई, आम आदमी पार्टी पर। दरअसल पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को हटाने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब उनके एक बयान पर भारी विवाद हुआ। उन्होंने अपने बयान में जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ा था।
12: भुल्लर साहब एक आईपीएस ऑफिसर ने, बड़े शानदार अफसर ने, हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता ए आ मंसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये ता होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। इहदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
10: अपनी टाइमिंग देखे, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली और महिलाओं के साथ हुआ, तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो प्रशासनिक परिवर्तन है मैं उसमें बहुत दूर तक नहीं देखना चाहता।
13: ठीक, आखिरी
0: शुक्रवार को मूसलाधार बारिश हुई। अब मूसलाधार बारिश हुई तो दिल्ली बेहाल हो गई। भारी बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया और लोग परेशान हो रहे हैं, संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी बारिश होती है कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखाई दी, कहीं रेंगती हुई दिखाई दी, बस गाड़ी चल ही नहीं रही थी। ओखला में आप देखेंगे तो ओखला में भी आपको जगह जगह पानी भरा हुआ मिलेगा। बुराड़ी में तो हालात और भी खराब थे, सैनिक फार्म से लेकर एमबी रोड, वाल्मीकि कॉलोनी, आईटीओ, हर जगह सिर्फ परेशानी की तस्वीरें।
14: क्या दिल्ली को एक बार फिर मौसम की मार के बीच जूझना पड़ेगा? क्या एक बार फिर मूसलाधार बारिश के बीच लोगों को संकट का सामना करना पड़ेगा? क्या फिर राजधानी की सड़कें दरिया बनेंगी? बारिश फिर से आफत बनकर बरसेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीती शाम राजधानी पर पड़ी मानसून की मार के बाद एक बार फिर से मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट ने प्रशासन के साथ साथ राजधानी के लोगों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि बीते दिन हुई भारी बारिश ने पूरी दिल्ली पर ब्रेक लगा दिया है। जगह जगह सड़कों पर जल भरा हुआ, रास्तों पर दरिया बहता दिखा, कई कई फुट पानी भरने से लोग आफत में घिर गए। दिल्ली से आई एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर ये मुसीबत कितनी बड़ी थी, कैसे घंटों तक राजधानी भंवर के बीच घिरी रही। सबसे पहले आपको दिल्ली के एमपी रोड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हुए, सड़क पर पानी की लहरें ही लहरें दिखाई देने लगी। इन लहरों के बीच कई गाड़ियां फंस गई।
15: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब स्कूल का टाइम बीत रहा है, बच्चों को बाहर घर पहुंचाना है और स्कूल को लौटना है, तो जैसे तैसे निकालने का प्रयास। देख सकते हैं कितना सड़क डूबा हुआ है, कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
16: ये मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है। पर मैं एक सवाल कर,
0: हालांकि ये कल की तस्वीरें हैं लेकिन हालात बहुत खराब थे। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अलकनंदा नदी का ये रौद्र रूप देखिए। सैलाब का रौद्र रूप ऐसा है जिसे देखकर जिंदगी सहमी हुई है। ये तस्वीरें पौड़ी की है जहां लगातार बारिश हो रही है। इसका साफ असर अलकनंदा के जलस्तर पर दिख रहा है। नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास या उसके ऊपर बह रही है, इसे लेकर हाई अलर्ट है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि खतरे से दूर रहे। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार भूस्खलन और मलबा आने से बार बार बंद हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच गंगोत्री धाम से गंगाजल लेने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सड़क धंसने से यात्रियों और कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश का संकट टिहरी में भी दिख रहा है। गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। नदी किनारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं, कांवड़ यात्रियों,
1: जीवन के एक यादगार मोमेंट को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस मोमेंट का हिस्सा बनना। आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ यह अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। पिछली बार जब मैं कन्वोकेशन में शामिल हुआ था तब पूरा देश कोविड के दौर से गुजर रहा था। तब मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ा था, लेकिन मैं आज आप सब युवाओं के बीच उपस्थित हूं और इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, आज जैसे आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। आज आईआईटी दिल्ली में एआई से जुड़े कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शुरू हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। वो दिन याद करिए जब आपका आईआईटी दिल्ली में पहला दिन था और एक ये आज का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की भी तो बात है जब ओरिएंटेशन हुआ था और अभी ये कॉन्वोकेशन का समय भी आ गया, तो ओरिएंटेशन से कॉन्वोकेशन की इस यात्रा का आपको भरपूर सेटिस्फेक्शन भी होगा और साथ ही आप सभी में जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत का उत्साह भी होगा। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा, आज के इस पल को पूरी तरह जी लीजिए। आने वाले समय में जब आप पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होगी, तब यहां की पुरानी यादें आपको पुराने दिनों में जरूर ले जाएंगे। ये आपको एनर्जाइज भी करेंगी। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। और दोस्तों, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये भी हो सकता

अभी समय तो हो गया है, सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो? आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। कोई अपने डिपार्टमेंट में एक बार फिर जाना चाहेगा, कोई अपने पसंदीदा अड्डे पर कुछ देर और बैठना चाहेगा। और साथियों, इन भावुक पलों में मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, जब जब जीवन आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर देगा तो ये कैंपस लाइफ, आपके दोस्त, टीचर्स, मेंटर्स और सपोर्ट स्टाफ जो आपका परिवार बन गए, आपके प्रोफेसर्स जिन्होंने आप जैसी प्रतिभाओं को गढ़ने की जिम्मेदारी उठाई, और आपका ये इंस्टीट्यूट जो धीरे धीरे आपका अपना घर बन गया, आप अपनी हर सक्सेस में इन सब को याद करेंगे। इन सब के लिए थैंकफुल होंगे, और इसलिए इन्हें एक एसेट के तौर पर यहां से लेकर के निकलना भूल मत जाना, छोड़ मत जाना, साथ ले जाना। मेरा सुझाव होगा कि जाते जाते यहां के हर सदस्य मिलकर के जाइए, और आप कहीं भी रहे कोशिश करिएगा ये हमेशा हमेशा ताजा बना रहे। साथियों, आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है, ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आखिर आपकी ये डिग्री क्या कहती है? क्या सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने एग्जाम पास किया, अच्छा सीजीपीए हासिल किया,
या एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल किया। निश्चित रूप से इन सब का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है आपकी डिग्री दुनिया को यह बताती है कि आप कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। आप अपने आईआईटी दिल्ली के सफर को याद कीजिए, यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, यहां की पढ़ाई भी आसान नहीं थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। ये डिग्री आपको एक दिन में नहीं मिली, एक एक विषय, एक एक प्रोजेक्ट, मिड सेम एंड सेम, इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने आपको यहां तक पहुंचाया है। जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे, क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने
वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था, उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे। और इसलिए लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जलाए रखिए, जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए। लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इसे देश को क्या फायदा होगा, इसे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ हमने कई ऐसे सेक्टर्स ओपन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही एक तरह से बंद हुआ करती थी। सरकार की आधुनिक नीतियों की वजह से आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं। साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर्स के कॉन्वोकेशन से वर्चुअली जुड़ने का मुझे अवसर मिला था, तब मैंने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म्स की चर्चा की थी। तब तक इस सेक्टर में लगभग पूरा काम
सरकार ही करती थी, लेकिन आज वही स्पेस सेक्टर हजारों युवाओं के लिए नए अवसरों का आकाश बन चुका है। आज हमारे युवा अपने लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं,

देश ही हासिल कर पाए हैं। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। साथियों, आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए, आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है। इसी इंस्टीट्यूट से कितने ही फाउंडर्स निकले हैं। अगर एक इंस्टीट्यूट से इतना कुछ हो सकता है तो सोचिए पूरे देश में कितनी बड़ी ताकत तैयार हो रही है। यूनिकॉर्न्स, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक रिवॉल्यूशन, इन सभी ने देश के लाखों युवाओं को पहली बार कुछ नया करने का अवसर दिया है। साथियों, अभी ऐसे भी अनेक सेक्टर्स हैं जहां भारत अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ देश आप जैसे युवाओं की ओर देख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरीज, पावर शॉर्टेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे अनेक क्षेत्र आपके टैलेंट, आपके इनोवेशन और आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। साथियों, अब एक और बड़ी संभावना आप सबके सामने है और वो नया अवसर है रिसर्च। आज देश को नई नई रिसर्च की बहुत जरूरत है और रिसर्च पर हमारा उतना ही फोकस भी है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है, आइडियाज को आगे बढ़ाने का मौका मिले। इसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की गई है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है ताकि देश में साइंस और रिसर्च को नई ताकत मिल सके। रिसर्च सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है।

0: अंग्रेजी में बोलूं, 1 लाख करोड़, ये आपके लिए बता रहा हूं। इसी तरह साथियों, एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है। साथियों, मुझे पता है अभी इस दिशा में हमें लंबी दूरी तय करनी है और ये काम रिसर्च को लेकर आप सबके कमिटमेंट से ही हो सकता है। इसके लिए देश को आपसे अपेक्षा भी है और सबसे बड़ी बात, आप पर भरोसा भी है। साथियों, अब मैं आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा। जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं, निकलते हैं, तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, किसी को क्या पैकेज मिला, कौन किस कंपनी में गया, किस शहर में गया, किस देश में गया, किसने स्टार्टअप शुरू किया। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा, साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। साथियों, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके माता पिता को, परिवारजनों को विशेष बधाई देता हूं। आपके शिक्षकों को और उन सभी लोगों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो इस पूरी यात्रा में हर कदम पर आपके साथ खड़े रहे हैं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए, इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मिशन जेंजी के तौर पर इसे देख सकते हैं, मन की बात आईआईटी के छात्रों के साथ, और असली मुकाबला खुद अपने आप से होगा आपका। ये छात्रों को उन्होंने गुरु मंत्र दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही ये भी कहा कि हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिएगा। छात्रों को आने वाले वक्त के लिए कैसे तैयार रहना है, भारत को कैसे सशक्त कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, उस बारे में भी बताया, और छात्र कैसे एक विकसित देश का आधार होते हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: In association with
6: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं मई।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आज जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण में फंसी कंपनी को नए हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने का टेंडर मिलना चाहिए? क्या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करने वाली कंपनी को मिला नया टेंडर निरस्त होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरी कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए? एनएचएआई के अधिकारियों को घूस देकर प्रोजेक्ट पाने का खेल पुराना है। आरोपों पर यकीन करें तो इस खेल में पीएनसी पुरानी खिलाड़ी है। 2024 में सीबीआई ने हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत मामले में केस दर्ज किया था। मामले में एक एनएचएआई अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। पीएनसी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई थी। यही नहीं, अवैध खनन से जुड़े मामले में कंपनी पर करीब 104 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। पीएनसी कंपनी के दामन पर दाग ही दाग हैं, लेकिन एनएचएआई को ये दाग अच्छे लगते हैं। क्या इसकी वजह कंपनी से जुड़ा बीजेपी सांसद का नाम है? पीएनसी इंफ्राटेक के घटिया निर्माण के बावजूद मिल रहे ठेकों पर उठ रहे सवालों की कई वजह हैं, क्योंकि कंपनी का सीधा कनेक्शन बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद नवीन जैन 2017 तक पीएनसी इंफ्राटेक के फुल टाइम डायरेक्टर रहे। साल 2017 में नवीन जैन बीजेपी के टिकट पर आगरा के महापौर बने। फरवरी 2024 में नवीन जैन को बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बनाया। राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में पीएनसी के 291 करोड़ के शेयर होने की घोषणा की। साथ ही ये भी बताया कि नवीन जैन कंपनी में सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन बड़े शेयर होल्डर होने की वजह से उनके हित जुड़े हुए हैं। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन नवीन जैन के बड़े भाई प्रदीप कुमार जैन हैं। नवीन जैन के भाई योगेश कुमार जैन और चक्रेश कुमार जैन कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। नवीन जैन खुद कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं। वक्त के साथ राजनीति में सक्रिय होते गए और कंपनी के ऑपरेशंस और कंट्रोल उनके भाइयों के हाथ में रहा, लेकिन कंपनी के शेयरों में बड़ी हिस्सेदारी आज भी बीजेपी सांसद नवीन जैन की है। यही वजह है कि कंपनी और कंपनी से जुड़े सांसद की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास हाईवे देने का दावा करते हैं, अमेरिका जैसे हाईवे की उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन अमेरिका तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे की मरम्मत आज पेडेस्टल पंखों के भरोसे है।

0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे लिए चलते मेरठ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जानकारी मिल रही थी और उसके बाद अब ये तस्वीर आप देखिए, ये कांवड़िए गंगा जल लेकर जा रहे हैं अपनी कांवड़ में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथों में पुष्प लिए इन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और भारी पुलिस फोर्स भी आप देख सकते हैं यहां पर तैनात है। डीजे की धुन पर कांवड़िए कांवड़ में गंगा जल लेकर शिव जी को अर्पित करने ले जा रहे हैं और इसी वक्त आप देखेंगे गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। और इससे पहले एक और तस्वीर आप जो साथ में देख रहे हैं, उससे पहले जो तैयारियां की गई हैं विशेष तौर पर कांवड़ियों के लिए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने के लिए कि कहीं ट्रैफिक की दिक्कत ना हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो, तो पुष्प वर्षा से पहले हवाई सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, समझा कि कैसी क्या तैयारियां की गई हैं। जैसे ये देखिए, ये रोड पर आप देख सकते हैं कि कांवड़ियों के लिए विशेष स्थान बनाया गया, रास्ता बनाया गया है, कॉरिडोर टाइप का बनाया गया है, जिससे कांवड़िए कांवड़ लेकर गंगा जल लेकर शिव जी को अर्पित करने के लिए जा सकते हैं और ज्यादातर लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जब कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्था की गई है, कांवड़िए जब कांवड़ लेकर गंगा जल लेकर अपने शिव जी को अर्पित करने के लिए निकलते हैं, तो इस दौरान जाम की व्यवस्था देखी जाती है, जाम की स्थिति देखी जाती है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, व्यवस्थाएं खास की गई हैं और ये तस्वीरें कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से भी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा की। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, तस्वीरें आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल मंशु, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज वेस्टर्न यूपी की तरफ यानी गाजियाबाद मेरठ बागपत का उनका प्रोग्राम था, जहां उन्होंने पहले तो कांवड़ यात्रा मार्ग का जो है हवाई सर्वेक्षण किया है और अभी फिलहाल वो पुष्प वर्षा उन्होंने की है कांवड़ियों पर। इसको लेकर प्लान यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कल ही आ गया था कि मुख्यमंत्री, हालांकि हर साल जब भी कांवड़ यात्रा सावन के महीने में निकलती है तो मुख्यमंत्री एक ना एक दिन चुनते हैं जहां वो खुद कांवड़ियों से मिलते हैं, उनकी बात उनसे बात करते हैं और उन पर बकायदा पुष्प वर्षा भी करते हैं। और कांवड़ियों को लेकर जिस तरह से सरकार जो है वो काफी सीरियस हमेशा से रही है, जब से योगी सरकार पावर में आई है, तरह तरह के रूल्स हैं, जगह जगह हेल्थ कैंप बनाए जाते हैं, पुलिस सिक्योरिटी डबल ट्रिपल कर दी जाती है, कई जो कांवड़ रूट्स हैं वहाँ कई जो है प्रतिबंधित जो आइटम्स हैं उनकी दुकानें बंद भी करवा दी गई हैं, तो जिससे कि कांवड़ियों को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम उनको ना आए। और उसी के चलते एक पुष्प वर्षा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल मिलाकर ये दिखाते हैं कि वो कांवड़ियों को लेकर कितने सीरियस हैं और कुल मिलाकर वो सरकार जो है वो कांवड़ियों के हित में काम कर रही है। ये एक मैसेज देने का भी प्रयास होता है। और जब जब एक तरीके से सूबे का मुख्यमंत्री कांवड़ियों के बीच पहुंचता है तो एक लंबी यात्रा कर रहे शिव भक्तों के लिए भी तरीके से एक प्रोत्साहन भरा मौका होता है कि जब सूबे का मुख्यमंत्री खुद उनके बीच पहुंच रहा है, खुद उनकी यात्रा का हवाई संदेशन कर रहा है और खुद पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज भी जाता है मुख्यमंत्री के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी। और इसी को लेकर कांवड़ को लेकर हमेशा एक बड़ी बैठक यूपी सरकार की होती आई है, जिससे तमाम तरीके के जो नियम कानून होते हैं उनको इस तरीके से लाया जाता है। अब सिविल जो सिविल ड्रेस होती है उसमें भी पुलिस कर्मी यहाँ तैनात रहते हैं, एलआईयू की इंटेलिजेंस की यूनिट भी तैनात रहती है, जिससे कि कांवड़ियों को यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और अगर कहीं हो तो वहाँ पर पुलिसिया अमला वहाँ मौजूद रहे, किसी को हेल्थ की लंबी यात्रा है, किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो वहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए कैंप बनाए गए हैं। लेकिन पुष्प वर्षा कर ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक मैसेज देते हैं कि कुल मिलाकर सरकार जो है वो कांवड़ियों के पक्ष में खड़ी हुई है और खासकर यूपी का चुनाव अब नजदीक है तो उस लिहाज से भी इन सारी चीजों को देखा जाता है। जब विपक्ष सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति के तहत काम कर रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां पर होना और कांवड़ियों को उस तरीके से सामने रूबरू होकर उनसे पुष्प वर्षा करना, उनका बकायदा हाथ हिलाकर स्वागत करना, हाथ जोड़कर स्वागत करना, एक बड़ा मैसेज सरकार और बीजेपी की तरफ से भी दिया जाता है।
0: देखिए, सरकार और बीजेपी की तरफ से तो साफ स्पष्ट मैसेज दिया जा रहा है, तस्वीरों में साफ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन समर्थ हमने ये भी देखा है कि पिछले कई सालों से जब भी इस तरह से स्वागत सत्कार कांवड़ियों का किया जाता है तो विपक्ष उस पर भी निशाना साधता है, उसको भी मुद्दा बनाता है। अब चूंकि 27 तो बेहद नजदीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये तस्वीर, ये स्वागत सत्कार, ये विशेष व्यवस्थाएं, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है आने वाले दिनों में?
1: हमेशा ही बनता है और हमेशा ही बनेगा, लेकिन अगर आप इस बार विपक्ष की रणनीति तो देखेंगे तो सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाई पड़ता है,
0: कुछ बदले बदले से दिखते हैं
1: जी। तो ऐसे में चांसेस कम ही है कि इसको लेकर कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, क्योंकि खुद विपक्ष इस वक्त उसी नाव पर सवार है जिस नाव पर बीजेपी सालों से सवार है, क्योंकि उनको लगता है कि जो बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व है उसका जवाब देने का तरीका सॉफ्ट हिंदुत्व है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य छोटे छोटे दल हो जो कि विपक्ष के साथ हैं, वो सभी इस कोशिश में हैं। तो ये एक तरीके से इसलिए बीजेपी के लिए और इम्पोर्टेंट है, चुनाव के लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री की जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं जहां वो कहीं ना कहीं एक गोरक्षधाम में एक्टिव रहते हैं, बाकी आप अगर देखें तो कांवड़ियों से मिलते हैं और उन तक कुछ वर्षा करते हैं, तो एक बड़ा मैसेज जाता है सरकार और बीजेपी की तरफ से कि हम तो देवंश आपके साथ हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नकाब पहनकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर लगते हैं, जब विपक्ष जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तो ये एक तरीके से होम ग्राउंड वाली पिच है जहां उनको मालूम है कैसे कब क्या करना है, और चुनाव के लिहाज से भी ये सब तस्वीरें जो है वो बहुत अहम होती है। हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री ने करना और रूट पर देखना समझना, अधिकारियों को भी लखनऊ में उनकी बैठक हुई तो अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं रह जाए, और कहीं अगर कमी हुई तो मुख्यमंत्री ने ये भी आगाह किया था कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं उनको भी ग्राउंड पर रहना उनके लिए जरूरत स्पष्ट है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, कई ऐसे पुलिसकर्मी होंगे जिनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई होंगी। बहुत ही सावन महीना सावन का कहा जाता है, और बारिश में पानी कहीं कहीं भरा भी होगा, वहां उन सब चीजों को बाधाओं को उपताड़ते हुए ये कांवड़िए अपने अपने रूट से निकलकर फिर जो है अपने अपने गंतव्यों के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि आवागमन में कोई दुविधा ना हो इसको लेकर मुख्यमंत्री का ही पूरा हवाई सर्वेक्षण है। कई जगह जाम जैसी दिक्कतें भी आते हैं, उनको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस को अलग से गाइडलाइंस उनके लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो मेडिकल कैंप्स यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट उनको दिया गया है, वो कई बार आपकी सांस फूलेगी, आप बहुत लंबा चलेंगे, भीग जाएंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, सीजन चेंज की बीमारी हो सकती है, एलर्जिकल दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए मेडिकल कैंप भी बनाए जाएंगे जिससे कि अगर कोई ऐसी दिक्कत कांवड़ियों को रास्ते में होती भी है तो एक दरमियान आपको मेडिकल कैंप मिल जाए जहां पर बैठे मौजूद डॉक्टर्स को आप दिखा पाए, कम से कम बातचीत कर पाए। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है पूरी की गई, इवन जो नॉनवेज की दुकानें हैं जो जो कांवड़ का रूप प्रदेश भर में है वहां पर जो नॉनवेज की शॉप्स हैं उनको बंद करा दिया गया, यानी कि जो भी मार्ग के बीच में यानी कि कांवड़ के आसपास आती हैं उनको बंद करा दिया गया। अगर लखनऊ की बात करें तो फैजाबाद रोड यानी कि जो अयोध्या मार्ग है वहां की तरफ की जितनी भी नॉनवेज शॉप्स हैं, क्योंकि वो कांवड़ का एक रूप वाया लखनऊ होता है देवा रोड से होते हुए, तो वहां पर भी शॉप को बंद कराया गया जिससे कहीं ना कहीं जो यात्रा है कांवड़ियों की पवित्र रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। जैसा कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक ओर तो हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं लाखों की कांवड़ियों की भीड़ के बीच से गुजर कर पुष्प वर्षा भी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार की जा रही है। कुछ नहीं, कम से कम ये एक तरीके से उन कांवड़ियों के लिए भी मोटिवेशन है, और अगर सरकार और पार्टी के उस पर देखें तो चुनाव के लिए एक अच्छी खबर।
0: और पिछले कुछ वक्त से हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से व्यवस्थाएं की जाती थी, जिस तरह से विशेष इंतजाम किए जाते थे, पुलिस भी चाक चौबंद देखी जाती थी, और इस बार वॉलेंटियरली कई लोगों ने सहयोग भी दिया है। जैसे पहले कई बार मुद्दा होता था कि जैसे आपने बताया मीट और बाकी दुकानों को ढकने का, बंद करने का, अपनी पहचान बताने का, नाम बताने का, बोर्ड लगाने का, ताकि किसी कांवड़िए की भावनाएं आहत ना हो, और इस बार खुद से लोगों ने इस पर अपना सहयोग दिया है कि ये जो कांवड़ यात्रा है ये बिल्कुल सफल रहे, और ये भी एक उदाहरण के तौर पर है, एग्जाम्पल के तौर पर है।
1: देखिए केवल यहाँ बात पुलिस की नहीं है, जितने विभाग यहाँ पर देखें सिविल डिफेंस का बहुत अहम रोल इन सब चीजों में होता है। सिविल डिफेंस के लोग जो होते हैं वो यूजुअली कैजुअल ड्रेसेस में होते हैं, लेकिन उनका काम ही होता है कि जैसे कि कुछ वॉर हो गया या कोई इस तरह की घटना हो गई या फिर कांवड़ यात्रा जैसी कोई चीजें हो गई, वहाँ लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, उनकी बकायदा ट्रेनिंग होती है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त सिविल डिफेंस के लोगों को पूरा ट्रेन किया गया था, बताया गया था कैसे क्या कुछ होता है, तो उनका भी बहुत अहम रोल है, उनको भी जिम्मेदारी ग्राउंड पर दी गई है। इसके अलावा अगर आप नगर निगम की बात कर लें, उनका जो सफाई का है कि जिस मार्ग से कांवड़ निकलेंगे वहां साफ सफाई होनी चाहिए, सड़क गंदी नहीं होनी चाहिए, पूरी पवित्रता केवल किसी दुकान के बंद होने से नहीं साबित होती है, बल्कि जो मार्ग है वो मार्ग भी साफ होना चाहिए। कांवड़िए नंगे पैर काफी काफी किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं, भारी जिस तरीके से सामान, तो वो सारी चीजें जो है वो सरकार की नजर में है, और इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि कांवड़ियों किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तुरंत जो है सारे मेडिकल चेकअप यानी कि जो डॉक्टर्स के इंतजाम है वो पहुंचे या कहीं कोई।
2: परिवार में धरती की पीढ़ी से कणकाजल लेकर के शिवभक्त कावड़ यात्री अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते थे। सभी पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्तगण इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। सावन की शिवरात्रि तक मेरा मानना है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहां मेरठ में मुझे शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर मेरे साथ यहां पर उपस्थित हैं। मेरठ में प्रसिद्ध बाबा अवगढ़नाथ मंदिर, गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पूरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार है। देवाधिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर, प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की सीमाओं से उठकर के रही है। हमारी सभी जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, ट्रेन मजिस्ट्रेट, पुलिस के कार्मिकगण, जॉन रेंज, जंपर,
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल. डेमोग्राफी हैज बीन चेंज. हमारी सीमा असुरक्षित. भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी, बार बार लेटर दे रहा है, भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो. ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है. नो नो नो नो. वोट बैंक, तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो. मेरा घर का आदमी विपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में है था. हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं, भाई देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था. इसको छोड़ना चाहिए.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: So sorry.

0: दिल्ली एनएसआर में आसमान से बरसी आफत ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद तक कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं अस्पताल की सेवाएं ठप हो गईं, तो कहीं मंदिर परिसर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के साथ साथ घंटों लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली में लगातार हुई भारी बारिश के बाद एमबी रोड पर जलभराव ने वाहनों की रफ्तार रोक दी। ओखला मोड़ से खानपुर तक लंबा जाम लगा रहा और कई जगह सड़क और नाले का फर्क मिट गया। उधर वाल्मीकि कॉलोनी में करीब 5 फीट तक पानी भर गया। बच्चों को घर पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जुगाड़ वाली नाव का सहारा लिया। ये तस्वीरें बारिश के असर की गंभीरता बयां करती हैं। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंदिर परिसर में पानी भर गया। वहीं सिविल अस्पताल के बेसमेंट में पानी घुसने से मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो गई। फरीदाबाद में हालात और भी खतरनाक हो गए। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में जलभराव के बीच एक फॉर्च्यूनर कार पानी में फंस गई। चालक कार के अंदर ही कैद हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक स्कूल बस भी पानी में फंस गई। नोएडा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हैं। सेक्टर 37 से सेक्टर 18 मार्ग समेत कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रशासन पानी निकालने में जुटा है। बारिश ने एक बार फिर दिल्ली एनएसआर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़कों पर जलभराव, अस्पतालों में पानी और जानलेवा हालात, इन सब ने साफ कर दिया कि हर बारिश के साथ सिस्टम की तैयारियों की भी परीक्षा होती है। आज तक ब्यूरो
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की डबल बैठक। देवेंद्र महतो गुट के 8 छात्रों के साथ हो रही है वार्ता। कल पीयूष धड़े के साथ बैठक को दोनों पक्षों ने बताया सकारात्मक। दिल्ली IIT में जेन जी से पीएम मोदी का सीधा संवाद। का सिर्फ सवाल ना पूछे, समाधान भी बताएं। पास होने वाले छात्रों से कहा, जिंदगी में सब आउट ऑफ सिलेबस। राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले पोस्टरबाजी। झारखंड ना जाने पर सवाल। शशि थरूर के गूंज का जेन जी पर बेअसर वाले बयान को बीजेपी ने लपका। महिला बिल पर चढ़ा पोस्टर वार। राहुल गांधी के महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू ने लिखा, लगता है कांग्रेस बिना शर्त समर्थन के लिए तैयार है। फिर राहुल ने लिखा, बिल तो 2023 में ही समर्थन से पास हुआ, एक दूसरे पर पोस्ट के जरिए होगा। और मेरठ में सीएम योगी की दिखी शिव भक्ति। कांवड़ियों पर की फूलों की बारिश। हेलीकॉप्टर से भव्य यात्रा का लिया जायजा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि आप स्वागत करेंगे या हम स्वागत करें उज्जैन के माटी के लाल डॉक्टर मोहन यादव का, आज तक के मंच पर उज्जैन में महाकाल की नगरी में स्वागत है।
1: बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं मध्यप्रदेश की सरकार की ओर से बाबा महाकाल की नगरी और मध्यप्रदेश में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाचार चैनल की दुनिया में लंबे समय से, जब से ये समाचार चैनलों का संसार चला है हमारे देश के लिए, मैं दुनिया की तो नहीं बात करता हूं, लेकिन आज तक कभी कल तक नहीं हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वाकई अद्भुत है, अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत अभिनंदन।
0: धन्यवाद। समय मोहन यादव जी के पास यहाँ पर कम है, हम आगे उनका इंटरव्यू फिर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सब लोग इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं कुछ देर तो सबके सामने बात करूंगा। डॉक्टर यादव, ये चीज मुझे बताइए कि जब यहां तो आपका बचपन बीता, जब आप यहां पर और खासकर सावन के महीने में आते हैं तो आपकी वो प्रशासनिक भूमिका हावी रहती है या एक शिव भक्त का जुनून?
1: यहाँ बाबा महाकाल के नगर में कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, जो है सब भक्ति के भाव से समर्पित है। सब एक नारा लगाते हैं, महाकाल महाराज की।
0: पर पहले, आपसे पहले कोई भी प्रशासनिक पद वाला व्यक्ति यहाँ पर आकर रात रहता नहीं था, आपने कहा मेरा तो घर है।
1: देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यहाँ प्रशासन के साथ शासन वाले भी लोग, जितने राजा और समर्थ राजा उज्जैन में पैदा हुए उतने तो दुनिया में कहीं हुए नहीं है। सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, उदयादित्य, हमारे सम्राट अशोक यहाँ युवराज करके 10 साल तक रहे उज्जैनी में। तब पाटलिपुत्र में सम्राट रहते थे, यहाँ युवराज रहते थे। परवर्ती काल में महाराज सिंधिया जी, महाजी सिंधिया, जिनके पूरे वर्तमान का सिंधिया साम्राज्य जो दिखता है ये राणोजी और महाजी के समय का है, उनकी राजधानी उज्जैन रही, सब उज्जैन रहे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ बातें चल जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता। वैसे भी 47 के बाद कोई राजा महाराजा का स्वरूप में रहा भी नहीं, तो ये जो भी हुआ, लेकिन मुझे इस बात का परमात्मा की कृपा भी है। हमने इस बात को रेखांकित किया था कि यहाँ ये झूठ है, हम सब इस ब्रह्मांड में बाबा महाकाल के पुत्र समान हैं। तो जब उनके बेटे हैं तो पिता से कैसे खतरा, पिता का तो स्नेह सदैव मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माता पिता के रूप में हमारे भगवान हैं, तो उनकी छत्र छाया में रहकर के तो और ऊर्जा बढ़ती है, आनंद आता है, उनसे काय का डर।
0: अब देखिए, हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं जो हम आपसे सिंहस्थ कुंभ के आयोजन को लेकर, उज्जैन में जो एक औद्योगिक विकास की आपकी कोशिश है और बहुत कुछ बदलता जो दिख रहा है उसके बारे में, ये सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन चूंकि यहां पर हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछना चाहती हूं, और उसमें शामिल है दतिया में क्या हुआ डॉक्टर यादव?
1: देखो, दतिया में क्या हुआ, दतिया कांग्रेस की सीट थी, जब 165 सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन दतिया हम नहीं जीते थे, दतिया कांग्रेस की सीट थी। हमने उस समय भी कोशिश की, उस समय जितने 7,700 वोट पाए जिसके कारण से हमने अपनी हारी, अभी 1700 वोट बढ़ा करके अब 6,000 पे लाए, आने दो 2028 पूरी छीन लेंगे जनता, उसमें क्या दिक्कत की बात है? क्योंकि ये आखिर लोकतंत्र में, मैं विनम्रता के साथ ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारी बात रखने का, चुनाव में जाने का, लोगों के आगे अपने बात समझाने का एक अवसर आता है, लेकिन इस अवसर में आप सदैव जीतोगे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये बात भी सही कि हमारी सरकार बनने के बाद 2023 के बाद 29 की 29 लोकसभा सीट हमने जीती। 2029 की लोकसभा सीट के मतलब 29 लोकसभा के बाद जो विधानसभा के चुनाव आए, तब 3 चुनाव हुए, उसमें से एक कांग्रेस की अमरपाटन सीट हमने उनसे छीन करके अपने पास लाए, हमारी बुदनी बीजेपी की बीजेपी के पास रही, ये हमारा अनुकूलता वाला समय आधार है। ऐसे लगातार जब भी मौका पड़ रहा है तो हम उनकी सीट ले रहे हैं। तीनों राज्यसभा के चुनाव हुए, तीनों राज्यसभा पहली बार तीनों की तीनों बीजेपी जीती, तो लगातार जीत भी रहे हैं और लगता है कि हमारे वोट बढ़ रहे हैं, वोट में कमी नहीं आ रही, आगे फिर आएगी मान के चलें। अभी विनम्रता के साथ, ये तो लोकतंत्र है, कभी जीतेंगे कभी कोई बात नहीं, आने वाले समय जीत।
0: क्या आप इसको इस बात से नहीं जोड़ेंगे जो विपक्ष कह रहा है कि ये
1: अपन धर्म संसद में बैठे,
0: हम तो कह रहे हैं कि हम तो महाकाल के दरबार के में जाकर
1: धर्म संसद में तो धर्म संसद में रहो, ये अपन किसी और प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे।
0: नहीं, वो दतिया को छोड़ दीजिए आप, लेकिन उससे जुड़ा मैं ये पूछ रही हूँ कि मध्य प्रदेश का जो युवा है, आप रोजगार के मुद्दे को लेकर कहते हैं कि आप नौकरियों को लेकर या फिर लटकी हुई भर्तियों को लेकर सीरियस हैं और आप उस पर काम करना चाहते हैं, पर क्या ये युवाओं का फीडबैक था, कुछ ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि उसी समय जेन ज़ी आंदोलन खत्म हुआ और ये रिजल्ट आया, आपके विचार?
1: मैं दोनों बात एक साथ नहीं जोड़ता हूँ। ये बात सही है कि बहुत सारी बातें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया एक वातावरण तो बनाते हैं, उसका है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां असर नहीं था, उस सबका असर सब दूर होता है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार बनी है हम तब से रोजगार परक कामों के लिए लगातार आगे बढ़े हैं, तो पूरे देश में सबसे तेज गति से रोजगार के आधार पर इंडस्ट्री लगने का अगर कोई रिकॉर्ड बना तो मध्य प्रदेश में बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लगातार हमारे राज्य के अंदर 10 लाख करोड़ से ज्यादा के कामों के नीचे भूमि पूजन लोकार्पण होकर के अब इंडस्ट्रियां चालू हो गई। हमारे राज्य के अंदर पूरे देश में सबसे कम बेरोजगार की दर अगर है तो मध्य प्रदेश में, भारत में नहीं दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश में मिल रही है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
0: जो इंटरव्यू का मुख्य हिस्सा, चूंकि आपने कहा कि आप वेट नहीं कराना चाहते हैं अपने काम के बावजूद, हम आगे वो बात करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप लोगों को संबोधित करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी ओर से पुनः उज्जैन का, यहाँ का विधायक होने के नाते, राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते से एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म आज तक पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और 2028 के लिए हमारा राज्य दुनिया के सबसे बड़े मेले, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू समागम सिंहस्थ में आप सबको आमंत्रित करता है। आइए हम अपनी सनातन संस्कृति के उस गौरवशाली आयोजन में भागीदार भी हों और हम अपने गर्व गौरव के साथ उस पूरे आयोजन का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो अब ये महाकाल कॉरिडोर में हम प्रवेश कर रहे हैं इस समय, बेहद भव्य, जब से निर्माण हुआ है और अब हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। मोहन यादव जी, आपका एक फेवरेट टॉपिक भी रहा है जो धार्मिक अर्थव्यवस्था है
2: जी,
0: कितना बढ़ी है।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने स्मार्ट सिटी के पैसे से महाकाल के महालोक का निर्माण कराया, ये 360 बदल गया एकदम से उज्जैन और इकोनॉमी पूरी हमारे क्षेत्र की। पहले 60-70 लाख लोग साल में आते थे, आज की स्थिति में 8 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं और इस प्रकार से सभी वर्गों को इसका लाभ मिला है, सभी धर्मों को लोगों को भी लाभ मिला, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और कई लोग लाज भी चलाते हैं, लेकिन धार्मिक श्रद्धालुओं के कारण से उज्जैन की चारों तरफ से एक तरह से इकॉनमी बदली है, लगभग 2000 करोड़ का व्यापार व्यवसाय एक तरह से उज्जैन हो रहा है, ये एक तरह से चमत्कार होने जैसी बात है। ये आप कॉरिडोर भी देखोगे, इस कॉरिडोर के साथ एक एक सनातन धर्म की वो सारी गाथाएं इससे जुड़ी हुई है, इसके स्थापत्य के अद्भुत नमूने हमारे सामने हैं। जिस प्रकार से हमारा गौरवशाली अतीत है, माँ के जीवन काल का प्रसंग, उनके विवाह के प्रसंग, उनके पुत्रों की कहानी, बाबा महादेव की कहानी, उज्जैन में भगवान कृष्ण की भी शिक्षा स्थली है, उनका ससुराल भी
0: संदीपनी
2: आश्रम में शिक्षा स्थली है, जहाँ उन्हें कृष्ण सुदामा बलराम ने शिक्षा ग्रहण की और गरीब अमीर की दोस्ती का वो अद्भुत उदाहरण है उस काल का। कुछ भी हो जाए मित्र को मत भूलो।
0: हालांकि एक सुदामा श्री कृष्ण की दोस्ती का अभी अभी अखिलेश यादव ने भी एक जिक्र किया था,
2: वो क्या था?
0: वो ये था कि पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों से उनकी दोस्ती है यहाँ पर,
2: इसमें तो कोई शक नहीं है, दोस्ती तो सदैव रही है
0: जी,
2: लेकिन उस काल में ये बड़ा उदाहरण है, एक तो बड़े भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए लेकिन मित्र को मदद करने के लिए जो उन्होंने मौका दिया वो अद्भुत है। ये भगवान शंकर की देखो सवारी निकल रही धूमधाम से भगवान के लिए, उनके गण नाचते गाते जा रहे हैं आनंद के साथ,
0: हर एक प्रसंग का चित्रण है यहाँ पे।
2: हाँ हाँ, सारे प्रसंग है। ये गरल पीते हुए हैं
0: जी
2: भगवान
0: समुद्र मंथन। राजनीति में भी तो विष का पान भी है।
2: ये तो राजनीति का क्या, जीवन के सब क्षेत्रों में आप गृहस्थी भी चला रहे हो
0: सीख
2: तो
0: ले
2: आपको बैलेंस करना चाहिए। ये बैलेंस में ही अपना काम चलता है।
0: सिंहस्थ कुंभ का जब यहाँ पर आयोजन होना है
2: जी,
0: उसके जरिए आप उज्जैन नगरी से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि नगरी का विकास उस रूप में हो
2: जी,
0: कि उस समय लोग आए तो हाँ, वापस लौट कर आना चाहिए।
2: ये विश्व का मेला है हमारा सनातन संस्कृति का, और ये कुंभ का मेला, सिंहस्थ का मेला जो कहलाता है, वाकई परमात्मा ने एक मौका देते हैं। जब ये लाखों करोड़ों लोग 12 साल में वो दिन का इंतजार करते हैं, जब हमारे बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, और वो एक नक्षत्रों की घटनाओं के बलबूते पर लोग उस काल में छिपरा जी में स्नान करना चाहते हैं। ये परंपरा हजारों साल की है, और उज्जैन में प्रत्येक 12 साल के बजाय अब तो हर साल पूरे साल इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। इसलिए हमने सब स्थायी प्रकृति के काम किए ताकि ये हमारे यात्रियों के लिए जो सुविधा जुटाएं वो पूरे साल भी बाकी लोगों में उनका लाभ मिलता रहे।
0: थोड़ा मतलब होटल्स मैंने देखा बहुत सारे बने हैं,
2: होटल
0: के अलावा कंपैरिजन
2: आश्रम यात्री गृह, एक पूरा शहर में हम एक आंदोलन जैसा माहौल बना रहे हैं।
0: अभी भी मुझे लगता है यातायात पर शायद आप लोग को बहुत काम
2: बहुत दबाव है। हमारे हमने सबने कहा कि भी मेरा स्वयं का भी जहाँ मैं पैदा हुआ मकान भी हम हाथ से तोड़ने वाले हैं। हमारे भी जहाँ जहाँ भी मार्ग चौड़े करना वो सब जमीन, हमारे मकान, सारे लोग, और केवल हम क्या हिंदू क्या मुसलमान, बल्कि हमारी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जैन मंदिर सब लोग अपने हाथ से जगह बना रहे हैं, क्योंकि वो अद्भुत अवसर रहेगा और लोगों की सुविधा के लिए काम करना चाहिए। तो एक सकारात्मक बहुत बड़ा संदेश उज्जैन से जा रहा है।
0: सैनिटेशन भी
2: बिल्कुल सभी प्रकार की व्यवस्था चाहिए कि क्योंकि इतनी बड़ी संख्या लाखों करोड़ों करोड़ों लोग, 40 करोड़ का अंदाजा है, अभी 8 लाख की आबादी हमारे शहर की है, तो एकदम कहाँ 8 लाख और कहाँ 40 करोड़ 2 महीने में आके जाएंगे, तो बहुत अद्भुत होगा। इसलिए स्नान की व्यवस्था भी ऐसी कर रहे हैं कि हमारे लगभग 29 किलोमीटर के नए घाट 8 किलोमीटर के पहले हमारे तो 36 किलोमीटर में एक बार में 4 करोड़ से ज्यादा लोग 24 घंटे में स्नान कर लेंगे प्रबंधन अब कर।
0: अच्छा,
2: आवागमन की सर सारी भी व्यवस्था कर ली है। 2-3 नए रेलवे स्टेशन है, हमारी रेलवे ट्रैक है, 3 नए नए रोड निकाल रहे हैं, जो हर रोड जो उज्जैन से जा रहा है उसको 4 लेन 6 लेन इससे कम कोई रोड नहीं, क्योंकि यातायात की सारी व्यवस्था के लिए आसपास के राज्यों से भी तालमेल कर रहे हैं ताकि वहां से भी यात्रियों के प्रबंधन में हमको राज्य में मदद मिले।
0: क्या प्रयागराज मॉडल आप लोगों ने देखा है? इसलिए कि कैसे उतना दबाव पड़ा उस जगह, वो तो काफी खुला भी एरिया था, ये एक पूरा शहर हो जाएगा जिसके ऊपर
2: हमने आउटर के सारे रिंग रोड बनाए हैं आने जाने की व्यवस्था के लिए। हाँ। ताकि शहर की व्यवस्था ध्वस्त,
0: अभी से तैयारी आपकी
2: पूरी तैयारी कर ली, बहुत जबरदस्त, लगभग 500 किलोमीटर की सड़कें बन रही है।
0: हाँ।
2: अपने शहर के लिए अंदर अंदर में। हाँ। बाकी बाहर के रोड तो बनी रहे हैं, और हमारे सारे NH से एयरपोर्ट से उज्जैन में स्वयं एक एयरपोर्ट बन रहा है, हमारा अपना रेलवे स्टेशन अलग अलग रेलवे स्टेशन के भी बाईपास बनाए हैं ताकि रेलों को आवागमन में उनको दोहराव से बचाया जा सके।
0: पर ये एक बहुत अच्छा अवसर होगा आपको, ये
2: विकास की दृष्टि से अच्छा मॉडल बना सकते हैं।
0: हाँ।
2: और राज्य के अंदर इसमें केवल उज्जैन नहीं, उज्जैन संभाग के सभी 8 जिले, इंदौर संभाग के सभी जिले, और भोपाल से लगा करके मंदसौर तक ये पूरे बेल्ट में हम लगभग इसको 14,000 से ज्यादा किलोमीटर के एरिया में पूरा प्लान करके चल रहे हैं।
0: पूरा जगमग है अभी ये, न केवल महाकाल लोक जिससे होकर हम आए, बल्कि अब जो हम महाकाल की का जो मंदिर है, जो स्थान है,
2: प्रांगण में आ गए,
0: वहां पर हम पहुंच चुके हैं, और अब हम आगे की बातचीत जो है वो हम नीचे अब पैदल चलकर करते हैं।
2: ये बाबा महाकालेश्वर का पुराना प्रांगण है
0: जी,
2: और ये देवस्थान है, और ये महाजी सिंधिया राणोजी सिंधिया के उस कार्यकाल में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। और वैसे मूल मंदिर 1235 में जब इल्तुतमिश आया था, गुलाम वंश का सेकंड शासक, उसने मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। फिर दोबारा जब हमारे शासकों का अच्छा समय आया तो एक आप देखिएगा, ये जूना महाकाल का शिखर दिख रहा है। ये जूना महाकाल राजा भोज के काल के बाद के शासनकाल में जब तोड़ा गया फिर दोबारा बनाया गया।
0: हाँ।
2: तो ऐसा वो दौर चलता रहा लगभग 700 साल में, हम जब मजबूत हुए फिर मंदिर बन गया, फिर हम कमजोर हुए तो उन्हें तोड़ दिया, फिर बना फिर बिगड़ा, लेकिन ये स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से

0: जो स्कंद पुराण के एक अवंती खंड में एक एक देवस्थान का जो वर्णन है वो बनाएगा। इसके जो सबसे ऊपर वाला तल है वो नागपंचमी दिन साल के एक बार खुलता है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद में वो साल के बाद दोबारा नहीं खुलेगा। और मध्य में यहाँ ओंकारेश्वर है, नीचे महाकालेश्वर है, और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बीच में महाकाल है और नीचे ओंकार है। तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी एक महिमा है। और वैसे ऐसा माना जाता है कि महाकाल शरीर की दृष्टि से ये हमारी प्रत्येक श्वास की गिनती बाबा महाकाल भगवान कृष्ण की दी हुई है। इसलिए रोम रोम में जो हमारी ओंकार की ध्वनि जो निकलती है वो ओंकार महाराज की है, और ये जो दी गई आयु ये महाकाल की।
1: अच्छा,
0: ये परमात्मा की लीला है।
1: अच्छा, एक और प्राचीन जगह पर आप गए अभी पूजा की, जहाँ पर अभी अभी निर्णय न्यायालय का आया, भोजशाला।
0: भोजशाला,
1: क्या भोजशाला मध्य प्रदेश के लिए वही है जो उत्तर प्रदेश के लिए अयोध्या?
0: देखिये, भोजशाला का तो इतिहास हमारे यहाँ रंगशाला से है
1: जी,
0: और वो माँ सरस्वती का मंदिर है जो ज्ञान की देवी है। राजा भोज उज्जैन और परमारवंश का शासन तीर्थकाल 300 साल तक रहा है, बहुत बड़ा नाम था राजा भोज का। ऐसे में उनने अपने विद्वानों के लिए ये भोजशाला का निर्माण कराया था, और वो ऐसा कहते हैं कि कवियों का मान सम्मान करने के लिए कवियों की प्रतियोगिता भी कराते थे, और जब कविता पसंद आ जाए तो एक एक कवियों की एक एक कविता के एक एक अक्षर पे एक एक सोने की ईंट दिया करते थे।
1: अच्छा,
0: इतना गौरवशाली अतीत था। तो भोजशाला के प्रति पूरे समाज की आस्था है। अब ये अलग बात है कि काल के प्रवाह में कुछ कारण से, जैसे मैंने कहा कि जब हमारे विदेशी शासक आए तो उन्होंने कई सारे हमारे मंदिर ध्वस्त किए, कहीं अपने कब्जे किए, कहीं क्या हुआ, लेकिन आज के दौर में वो सारी चीजों में बदलाव आया, और अब उस दौर से हम निकल रहे हैं कि भोजशाला आज माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद वापस मिली है। तो हमारी सरकार वहाँ भोजशाला को दृष्टिगत लगाते हुए भोज काल की उस समय की सारी विरासत को सजोते हुए उसका पूरा प्लान बना रही है।
1: ये बताइए, बहुत सारे जो आपके विरोधी हैं, आलोचक हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि आप लोग ऐसे मुद्दों को क्यों उठाते हैं जो बीत चुका है, जो इतिहास है, आज के मुद्दों को उठाइए, ये केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। आप तो खुद आलोचना सुनते होंगे ना। ये
0: देखिए, ये जिनकी थोड़ी मानसिकता यथास्थितिवादी और छोटी है वो ही ऐसी बात करेंगे। आप बताइए, मद्रास का नाम चेन्नई किन्ने करा, मुंबई का नाम पहले मुंबई था, मुंबई क्यों हुआ? तो मुंबा देवी के नाम पे मुंबई है, चेन्नई पुराना नाम है। तो हमारे विरोधियों ने भी करा है, क्योंकि ये बात सही कि हम जैसे हमारे वंश के अंदर हमारी गौरवशाली जो परंपरा रही है उन्हीं के नाम पे तो हमारे नाम होना चाहिए। इसमें कोई गलत लगत अर्थ लेता है तो उनको इंडियन वंश से सीखना चाहिए। इंडोनेशिया में बड़ी आबादी मुस्लिम की, लेकिन वो अपने नाम रंगमंच पर रामलीला का करना ये बहुत सहजता के साथ करते हैं। ये तथाकथित कांग्रेस की जो सांप्रदायवादी नीतियां हैं उसके कारण से वो मुस्लिम।
1: आप कांग्रेस को सांप्रदायिक कह रहे हैं?
0: हाँ, कांग्रेस है सांप्रदायिक। कांग्रेस के आप अतीत को पढ़ लो, आपको मिल जाएगा। खिलाफत आंदोलन ने आजादी के पहले, अगर कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन टर्की में हुआ था उसका सपोर्ट करने के लिए मध्यप्रदेश भारत के अंदर जरूरत क्या थी? मुसलमानों को हिंदू मुसलमान की दृष्टि आप देखो ना, हमारे यहाँ रहीम हुए, रसखान हुए, इनने भगवान कृष्ण की भक्ति की, राम की भक्ति, एक लंबी परंपरा थी। उसी काल में हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी कई मुस्लिम हुए, तो वो सब इस बात का विरोध कर रहे थे। आजादी के समय बंटवारे के टाइम सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान जी ने खुद विरोध किया भारत बंटवारे का, लेकिन कांग्रेस ने देश का बंटवारा भी किया।
1: एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक राज्य के अभिभावक होने के नाते आप तब कैसा, हालांकि मामला न्यायालय में भी पहुंचा हुआ है, लेकिन कैसे आप संतुलन बनाते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए जगह को लेकर जो अभी भोजशाला के बाहर?
0: देखिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने यूसीसी लागू किया, भोजशाला के मसले में बात की। हमारे राज्य में इस बात को सब जानते हैं कि हमारे मन में कोई हिंदू मुसलमान का भाव नहीं है। हम इस तरह से देखते हैं कि आखिरकार ये देश की दो भुजाएं हैं, लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था का मसला है और समान रूप से हम जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर चलते हैं। तो आप बताओ, पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में दंगे बंद हो गए, तो मध्यप्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है।
1: पर यूसीसी आप कह रहे हैं कि उसकी दिशा में कदम है, क्योंकि
0: हाँ, क्यों दिक्कत है? आप बताओ ना, यूसीसी लागू किया, यूसीसी के आधार पर हमने जब कमेटी बनाई

0: पूरे प्रदेश के अंदर 10 लाख से ज्यादा सुझाव आए, 76% मुस्लिम बहनों ने कहा यूसीसी लागू होना चाहिए, 40% मुस्लिम भाइयों ने कहा यूसीसी लागू होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हिंदू की बहन अगर सुरक्षित है एक विवाह से, तो मुस्लिम की बहन क्यों सुरक्षित नहीं होना चाहिए, उसने क्या बिगाड़ा? ये हमको जवाब मिले, मैं लिखित में उसके प्रस्ताव दिखा सकता हूँ, ये मैंने विधानसभा में कोर्ट किया। इसलिए तथाकथित जो कट्टरवादी मुस्लिम थे, हाँ। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई आज बदलते दौर में, हाँ। अगर कोई कानून, अब ये कानून यूसीसी के आधार पर आप देखो, ये कानून अरब में क्यों नहीं लग रहा है, अरब में नहीं है, लेकिन हमारे देश में क्यों होना चाहिए? तो मध्यप्रदेश के सारे लोगों ने इस बात को एकमत से स्वीकारा, और मैं तो मान के चलूंगा कि इसी के कारण से हमारी विधानसभा के अंदर बहुत आराम से पारित हुआ, और हमारे उन सारे रिपोर्ट दस्तावेज उसमें हम कुछ नहीं छुपा रहे।
1: पर आप लोगों की संख्या भी इतनी ज्यादा है विधानसभा,
0: हाँ कोई परेशानी नहीं, लेकिन बहुत सहजता से ले रहे हैं। मुस्लिम बहने राखी बांधती बहुत आराम से मेरे को,
1: अच्छा
0: हाँ ढेर आराम से बुरका हटा के फोटो खिंचवाती, आपने चैनल पर दिखाया, क्योंकि वो ये मान के चलती कि हमारी नीति नियत व्यवस्था पवित्र है।
1: अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं मुसलमान जो है वो स्वीकार कर रहे हैं यूसीसी को मध्य प्रदेश में, पर क्या आपकी चिंता है कि आदिवासी जहां पर इतनी बड़ी संख्या में है वहां पर यूसीसी से समस्या हो सकती
0: है? हमने तो इस बात को बिल्कुल रखा है कि एक धर्म की बात करें तो धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई बात मान समझते हैं, लेकिन बाकी हिंदू समाज के अंदर की जो हमारी आदिवासी भाई बहनों की परंपरा है, उन परंपरा में हमने छूट दी है।
1: अच्छा,
0: वो समय के साथ उसमें बदलाव आएगा, इसलिए उसको यूसीसी के दायरे से बाहर किया।
1: अच्छा आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड, उसमें आपने 2 हिंदू सदस्य रख दिए,
0: आप मेरे को बताइए, फिर वही बात आ गई जो यूसीसी में बात आ रही, जब हमारे देश का राष्ट्रपति मुस्लिम समाज से हो सकता है, हमारे राज्य का राज्यपाल मुस्लिम समाज से हो सकता है, हमारी पार्टी के अंदर अपने समाज में मुस्लिम समाज हो सकता है, तो वफ में अगर 2 हिंदू हो जाए तो गलत क्या है? बाकी तो मेजोरिटी मुस्लिम समाज की है, अपने हिंदुओं से हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर नफरत क्यों होना चाहिए? और अब कानून ये कहता है कि हिंदू रख सकते, तो हमने रख दी, हमारे मुस्लिम भाइयों ने नाम दिए और रखे आराम से, ये कानून सम्मत है, तो आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं।
1: हालांकि अब कांग्रेस के विधायक ने इस पर आपत्ति भी की है,
0: कांग्रेस के विधायक दिखावटी, हाँ। विरोध कर रहे हैं, उनको मालूम है, हाँ। समाज एक्सेप्ट कर रहा है,
1: हाँ।
0: अब उनकी भूमिका बदल रही है। अब आप बताइए कांग्रेस स्पष्ट रूप से भोसाला का विरोध क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस कानून का इस तरह से क्यों नहीं बोल रही?
1: आपको लग रहा है वो खुलकर नहीं बोल रहे?
0: यूसीसी नहीं बोल रहे,
1: क्यों?
0: क्योंकि उनका समझ में आ गया कि अगर ये बड़ा समाज का तबका हिंदू, हाँ। अगर इस बात से सेंटिमेंटल रूप से परेशान है,
1: हाँ।
0: तो वो बच रहे हैं, तो ये दोमुखी नीति नहीं होना चाहिए, भाजपा स्पष्ट बोलती है।
1: और कृष्ण मंदिर को लेकर यूपी का हालांकि मामला है,
0: वही वाली बात है, आप बताइए, उनने कहा कि हमने भी राम को माना, हमने भी देखा करा, बात खुलते कांग्रेसी,
1: हाँ।
0: आ जाओ मथुरा में, बोलो ना कि हाँ भगवान,
1: आपकी क्या राय है मथुरा
0: मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे मथुरा में गोपाल कृष्ण का मंदिर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? होना चाहिए, इसमें क्या गलत?
1: पर विपक्ष जो है वो चढ़ावा मामले को लेकर आप लोग को बैकफुट पर ला रहा है, आप जो कार्रवाई की गई
0: विपक्ष में से, आप बताओ जिनने आपत्ति ली कभी वो दर्शन करने गए वहाँ पे? आप बताओ राहुल गांधी
1: वो बोल रहे थे शिखर नहीं बना है उसके बाद जाएंगे,
0: ये फालतू की बात है। जब भगवान के पैदा होने पर प्रश्न करते थे उनको तो माफी मांगना चाहिए पूरे देश के सामने कि हमसे गलती हुई, वो भगवान राम को नहीं माने, वो अयोध्या में भगवान के राम जन्म स्थान को नकारे, वो भगवान के जन्म स्थान के आधार पर दंगे करा दे, तालाबंदी से लेकर आज तक कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े वकील लगाकर सुप्रीम कोर्ट में सदैव विरोध कराया, आज भगवान के मंदिर बनने के बाद दर्शन करने को तैयार नहीं, शिखर बन जाएगा दर्शन करेंगे, ये क्या बात होगी? केवल बेवकूफ बना रहे, इससे बात बनती नहीं।
1: अब मोहन यादव जी मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसे कृषि कर्मण अवार्ड तक मिला है, अन्नदाता नाराज क्यों हो गए आपसे?
0: कहाँ नाराज हुए?
1: अब मार्च करते हुए आ रहे थे,
0: हमने कहा मना कर, उनका अपने अधिकार की बात करेंगे,
1: हाँ।
0: हमने मान ली, चले गए,
1: मान ली है आपने,
0: भाई हमको क्या आपत्ति है,
1: हाँ।
0: हमने कहा कि संवाद से हल होगा, इसलिए हमने किसी को लाठी नहीं चलाई, किसी को रोका नहीं, अगर वो बात करना है तो हमको बात करना चाहिए, हम तो संवाद करते ही हैं।
1: केवल ये एमएसपी का मुद्दा है, सिंचाई आप कह रहे हैं कि आपने नहर
0: नहीं, हमने सभी क्षेत्रों, हाँ। में काम किया, बिजली पानी सड़क एमएसपी पे खरीदी, आज बताइए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं अगर कहीं खरीदा उपार्जन हुआ,
1: हाँ।
0: 14.25 लाख किसानों से 104 लाख मेट्रिक टन वो मध्यप्रदेश ने खरीदा है, ये मध्यप्रदेश के अंदर की आज की स्थिति है कि हम अपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, उसमें सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता है किसानों के साथ है, क्योंकि हमारा कृषि आधारित राज्य बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था है। अब दूध उत्पादन पे भी हम बढ़ रहे हैं।
1: हाँ।
0: आज की स्थिति में दूध उत्पादन देश में हमारा 12% होता है।
1: हाँ।
0: हम प्रयास कर रहे हैं 5 साल में इसको 20% तक ले जाए।
1: अच्छा,
0: तो दूध की राजधानी बना देंगे मध्य प्रदेश को। आज की स्थिति
1: में आपका लक्ष्य है,
0: हमारा टारगेट है, क्योंकि इससे कई सारे लोगों को, किसानों को, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए फसल के साथ दूध उत्पादन एक बड़ी भूमिका है।
1: हाँ, अब चूंकि हम महाकाल के सामने इस समय हैं, तो मोहन यादव जी, महाकाल से सबसे बड़ी चीजें क्या सीखते हैं अपने जीवन में, क्या आत्मसात किया है आप?
0: देखिए, महाकाल सबसे, महाकाल मतलब काल
1: जी,
0: और काल मतलब समय, और समय परमात्मा ने सबको नियत दिया है, ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ऐसे में परमात्मा उस समय का सब सदुपयोग करे, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करे, जो जिसका दायित्व मिला उस दायित्व का ठीक से निर्वहन करे, इतनी महाकाल से कामना, और परमात्मा वो सफल करे।
1: मुख्यमंत्री बने थे उस समय, किसी को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा कि आप सीएम बनने वाले हैं, लेकिन समय बीता है, अब आप ढल चुके हैं अपने रोल में, और अगले चुनाव से पहले तक आपका लक्ष्य क्या है?
0: हमारा 3-4 तरह से काम करने का लक्ष्य है। एक तो 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, 20% दूध हम परचेस करें, इस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। हमारा 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़े, उस पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे हर क्षेत्र के अंदर रीजनल इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करते हुए, रोजगार के अवसर देते हुए सब क्षेत्रों में काम किया है, उसका धरातल पे उतार करके वो इंडस्ट्रियल लोकार्पित कर देंगे। एआई से लगा करके ड्रोन, और ड्रोन से लगाकर डिजिटल, और डिजिटल से हेल्थ, एजुकेशन, सब सेक्टर में हमारा राज्य देश में नंबर 1 का राज्य बने, इस पर हम काम कर रहे हैं।
1: और ये आज चूंकि फ्राइडे है, आपने कहा फ्राइडे फील्ड में,
0: बिल्कुल,
1: इसका क्या?
0: हमने कहा कि ये जो हमारी कार्य पद्धति है, मोटे तौर पर जैसे सोमवार से लगा गुरुवार तक आप मीटिंग करिए, प्लान करिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन प्रत्येक शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे अधिकारी कर्मचारी, जिले के अधिकारी कर्मचारी सब फील्ड में रहे, उस दिन कोई मीटिंग नहीं रहे।
1: हाँ।
0: और जनता के बीच जो हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन होने वाला है, जो हम काम कर रहे हैं, उनकी कठिनाई, उनकी अच्छाई, उनके बीच में समाधान करना, और ऐसे में जो व्यवधान हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, सकारात्मक अच्छा काम कर प्रोत्साहन देना, इस दिशा में।
1: तो आपका फ्राइडे कैसे बीता है?
0: मेरा आज, मैं छिंदवाड़ा गया था, छिंदवाड़ा के अंदर बहुत अच्छे से हमने अपने सारे कामों को किया है, हम अच्छे प्रतिभाशाली बच्चों से भी मिले, अच्छे उद्योगपतियों से भी मिले, सभी प्रकार के नवाचार करने वाले स्टार्टअप वालों से भी मिले, शासन की योजना का नीचे क्रियान्वयन भी देखा, और जहां गलतियां दिखी तो हमने एक सीएमएचओ को सस्पेंड किया, एक तहसीलदार, एक पटवारी, तीनों को हमने मौके पर सस्पेंड करते हुए, और वहीं जिनने 1039 अधिकारी कर्मचारी जिनने अच्छा काम किया उनका प्रमोशन किया, तो उनने हमारा सम्मान भी किया, तो अच्छे काम में भी हम उनके साथ हैं, और कठोर कार्रवाई में भी जनता की आवश्यकता के आधार पर अगर निर्णय लेना तो हमारी सरकार में खड़ी है।
1: मोहन यादव जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के
0: लिए। बहुत धन्यवाद।
1: देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर
4: उधर,
5: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
3: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
7: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
11: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
13: Wait, lifestyle ke liye 10 alag pages kyun follow karna? Health, fitness, yoga, mental wellness, sab kuch ek hi jagah. Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on Fit Tak YouTube.
14: एक जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती। लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है। और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब PVR आइनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए। इसे जरूर देखिए। PVR आइनॉक्स 7th August onwards।

0: आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेनजी के नाम पर देश की संसद लगभग रोज ठप हो रही है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या सरकार ने एनडीए की नई शक्ति में विपक्ष को परास्त करने की एक रणनीति बनाई है? बात आज पॉलिटिक्स के उस हिस्से की होगी जिसपे अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। शक्ति प्रदर्शन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अपने अपने गुट को मजबूत दिखाकर ही आगे की रणनीति बनेगी। और खास तौर पर दिल्ली में जो जेन जी आंदोलन हुआ है उसके बाद से अपनी ताकत, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में शामिल होने वाले एनसीपीआई के 20, शिवसेना के 7 सांसदों समेत कुल 45 सांसदों से मुलाकात की है। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है और अगला सप्ताह संसद में कैसा हंगामेदार होने वाला है, एफसीआरए बिल यानी जो विदेशी फंड आता है या विदेशी पैसा आता है अलग अलग संगठनों को, उसको लेकर जो नया बिल सरकार ला रही है, इन सब पर बवाल होना तय है। संसद में आर पार, एनडीए तैयार। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी गुट के, और धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के हमारे साथ कुछ देर जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी टक्कर इन दोनों के बीच में ही देखेंगे इस मुद्दे पर। सबसे पहले तो गौरव जी, एकनाथ शिंदे से प्रधानमंत्री मिले हैं, मुझे पता आप कहेंगे कि सब कुछ हम ही बता दें आपको, लेकिन अगर आप तक कोई जानकारी हो कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है तो जरूर हमें बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ, क्या ये जो टीएमसी से अलग हटकर आपकी तरफ आए हैं एनसीपीआई बनकर ये सांसद 20, शक्ति प्रदर्शन मतलब पोस्ट जेनजी, क्या एक ताकत दिखाने की कोशिश इस तस्वीर को माना जाए जिसको मसल फ्लेक्सिंग कहते हैं पार्लियामेंट में?
1: नहीं अंजना जी, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत प्रहरी कोई है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और आप देखिए कि विचारधारा की ताकत ये होती है कि जो सांसद विभिन्न पार्टियों से चुन के आए हैं, उनकी पार्टियों ने क्योंकि संविधान विरोधी कार्य किया है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उन सबको भी लगने लगा, और मैं पार्टी में जो बड़े प्रमुख सांसद रहे हैं उनमें उनकी बात कर रहा हूं, उनको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो संवैधानिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और बड़े बदलाव ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई शिष्टाचार भेंट होती है और हमारी विचारधारा की ताकत बढ़ती है तो ये देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारी विचारधारा वो संविधान के हिसाब से आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए, ममता बनर्जी को जनता ने हराया, अरविंद केजरीवाल को जनता ने हराया, उद्धव ठाकरे को चुनाव में जनता ने हराया। और क्यों हराया? क्योंकि जनता को ये लगता है कि ये लोग केवल अपने परिवार के लिए ही हैं, उसके अलावा इनको जनता की कोई सुध लेने की आवश्यकता नहीं है।
0: अब तो क्रिएटिव पोस्टर्स भी अभय जी वहां पर पहुंच गए हैं, आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, वैकेंसी निकलेगी तभी तो शहनाई बजेगी, मेरा सीवी तैयार है, सिस्टम कब तैयार होगा? नौकरियों की खोज में नो जॉब, ये बहुत सारी चीजें लेकर लोग खड़े हो गए वहां पर, छात्र जो है लगातार कुछ बोलिए अभय जी। और साथ ही ये जो एनसीपीआई और ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और व्हिप जारी किया है जो कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या ये वाकई एफसीआरए बिल के लिए महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में अगर आप बता सकें जिसको आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं?
2: हाँ अंजना जी, पहली बात तो ये कि आजाद भारत के इतिहास में, ये कह रहे राहुल गांधी भगोड़ा, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा भगोड़ा कोई देखा? सदन आने को तैयार नहीं। अमित शाह जी से बड़ा भगोड़ा कोई देखा? माफी मांगने को तैयार नहीं आकर। आप कह रही वहां पर क्रिएटिविटी चल रही झारखंड में, लेकिन झारखंड में पैलेट गन नहीं चल रही है, झारखंड में कील लगी हुई लाठियां नहीं चल रही है, झारखंड में बच्चों को पानी के फोर्स से मारा नहीं जा रहा है, शरीर छल्ली नहीं किया जा रहा है, AK-47 नहीं चल रही है। आप पूछ रही है कि कब जाएंगे झारखंड, कब जाएंगे रांची, कब जाएंगे? अरे प्रधानमंत्री जी से पूछिए, चार कदम दूर यहां नहीं आए जंतर मंतर पे। अमित शाह जी से पूछिए, चार कदम दूर यहां पार्लियामेंट में नहीं आया। आपने कहा कि ये एनसीपीआई और मोदी जी सांसदों से मिल रहे और ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक काम किया ममता बनर्जी और इनके सांसदों ने। आपने संवैधानिक काम कर लिया, किनसे मिल रहे? शिंदे साहब से, क्या बताया शिंदे साहब को मोदी जी ने, यामिनी जादव, यशवंत जादव, प्रदीप सरनाइक सबके मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल रखे हैं। मत चिंता करो, तुम हमारा साथ देते रहो, सारे जो ईडी सीबीआई के छापे तुम पर किसी पर नहीं पड़ेंगे। क्या कहते हैं, बहुत सारे फुजिटिव को पकड़ के ले आए। अरे प्रधानमंत्री जी, अपने चहीतों को कहां लेकर आए? मेहुल भाई कहां गए? मेहुल भाई संदेशरा बंधु कहां गए? पूछिए उनसे। मेहुल चौकसी कहां गए? विजय माल्या कहां गए? एक के बाद एक सत्ता की सरपरस्ती उनको भगोड़ों को दी और यहां पर आकर मुखोटा लगा रहे। सारे संसद जब भी चल रही है सारे अवैधानिक काम के लिए चल रही है, चाहे वो किसान कानून काले 3 करोड़ कानून बनाने हो या ये FCRA का कानून हो। जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है सब मोटे धन्ना सेठों को मदद।
0: जेनजी का ये पूरा आंदोलन क्या आप लोगों को बैकफुट पर डाल चुका है? क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आपकी सरकार के लिए आने वाले वक्त में आया है?
1: अंजना जी देखिए, इस देश में दो सोच है। एक है नरेंद्र मोदी जी की सोच, आदरणीय मोहन भागवत जी की सोच, जिसमें सकारात्मकता है, जिसमें बातचीत की जगह है, जिसमें हम कार्रवाई करते हैं, दोषियों को जेल में डालते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं, कानून लाते हैं सख्त। दूसरी तरफ क्या है, झारखंड पे मैंने सवाल पूछे, झारखंड पे कोई उत्तर नहीं दिया। और अभी आज तक की एक रिपोर्ट चल रही थी, मैं बताना चाहूंगा, सविता 28 साल की हमारी बहन 4 दिन से अनशन पे है, कह रही है परीक्षा तो दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यहां ना राहुल गांधी बोलते हैं वहां, ना अभय दुबे यहां बोलते हैं। एक मनीष 25 साल का युवा झारखंड में कहता है झारखंड में कोई परीक्षा ठीक से नहीं होती, आज तक दिखा रहा था। इसी तरह से हबीबा, राहुल, ये लोग भी सब लोग अनशन पे बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो नानी के पास जाना है, इटालियन पिज्जा खाने। भाई उनको क्या जरूरत है, वो कर्नाटका क्यों जाए? कर्नाटका में क्या कहते हैं इनके मंत्री कि पहले 24 दिन अनशन करने दो। अमित शाह जी के बारे में बता दो, झूठा नैरेटिव कांग्रेस फैला रही है। अमित शाह जी रोज संसद में 10:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहते हैं। दूसरा, जब आप संसद चलने नहीं देंगे तो गृह मंत्री जी के पास और बहुत महत्वपूर्ण काम भी है, वो काम भी वो कर रहे हैं, निस्तारण कर रहे हैं पार्लियामेंट में रह के। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, जब अमित शाह जी बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी बोले हैं पहले, तो राहुल गांधी भाग गए हैं। आज तक पे चर्चा पे हम बैठे थे, मणिपुर पे चर्चा हुई, राहुल गांधी ने पहले खूब बकवास करी संसद के पटल पे, जब नरेंद्र मोदी जी बोले तो वो भाग गए। इसी तरह से जब तेल की कीमत जो हम लोग आयात करते हैं उस पे बहस हुई, नरेंद्र मोदी जी बोले तो राहुल गांधी भाग खड़े हुए। सबसे बड़ा भगोड़ा कौन है? यही इटालियन राहुल गांधी है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। अगर दम हो, अगर तुम में मादा हो तो संसद पे बहस करके दिखा दो, तुम में इतना मादा नहीं है, तैयारी नहीं करके आते हो। और जब अमित शाह जी शेर की तरह दहाड़ते हैं तो तुम चूहे की तरह भाग जाते हो।
0: एक जवाब आपका भेजी चुकी बनता है, इसलिए छोटा सा एक जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। ये जो प्रधानमंत्री से 20 सांसद NCPI के मिले हैं, और देखिए उनमें 3 नाम जो हम आपको पहले भी बता रहे थे, अभी तक ये तीनों जो मुस्लिम सांसद हैं वो नहीं आ रहे थे, लेकिन संसद सत्र के NDA की मंगल मिलन बैठक में नहीं आने वाले जो NCPI सांसद हैं वो भी आज बैठे हैं साथ। यूसुफ पठान बहरामपुर से सांसद, खलीलुर रहमान जंगीपुर के सांसद, और अबू ताहिर मुर्शिदाबाद के सांसद भी मौजूद रहे इस बैठक में। अब देखिए एक एक जुटता जो वो दिखा रहे हैं, एक ताकत तो दिखा ही रहे हैं, तभी तो आप भी व्हिप जारी कर रहे हैं मंडे के लिए। और FCRA को लेकर क्या रुख रहेगा आपकी पार्टी का अगर सरकार लाती है?
2: अंजना जी क्या आपको लगता है, ये आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ही आ रहे? किस बात से प्रभावित हुए? क्या छात्रों को बच्चों को पैलेट गन से छलनी कर दिया उससे प्रभावित हुए होंगे? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम कर दिया इन लोगों ने उससे प्रभावित हुए होंगे? क्या ये E20 जो इथेनॉल का गेम करा है इनके मंत्रियों के बच्चों के कारोबार खोलने के लिए, मुनाफा पहुंचाने के लिए, उससे प्रभावित होकर आएंगे? गाड़ियां 17 करोड़ गाड़ियों पर फर्क पड़ रहा है जो 2023 के पहले की है। राहुल गांधी जी का विस्तार से वीडियो देखिएगा, सारा खुलासा उसमें हो जाएगा।
0: आज तो दुबे जी आनंद के साथ यहाँ स्टूडियो में ही आए हैं, तो गिने जा रहे हैं उधर सांसद, हाँ NCPI वाले सैनी घोष, यूसुफ पठान, कल्पना की थी आपने? बहुत लोग तो कह रहे हैं दुबे जी भी जाने वाले हैं।
3: नहीं नहीं, अंजना जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एनडीए के का कुनबा बढ़ रहा है और मंगल मिलन हो रहा है। किस एंगल से मानो कि ये मंगल मिलन हो रहा है। आपने पहले हमारी 2022 में पार्टी तोड़ी, हमें नया नाम नया चुनाव चिन्ह मिला, हमने कहा हम इसमें भी राजी खुशी जी खा लेंगे प्रधानमंत्री जी। हमने फिर से अपनी तैयारी की, हम 2024 में फिर चुनाव में आए, हमारे 9 सांसद चुन के आए, इस उम्मीद में आए कि उद्धव ठाकरे जी का नया नाम है, नया चुनाव चिन्ह है, लेकिन भरोसे का चिन्ह है, मशाल है, जो करने वाली कमाल है, ताकि देश में हो जाए धमाल है। लेकिन आपने क्या किया आदरणीय प्रधान, वही कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आपने क्या किया कि 2026 में हमारी पार्टी के 6 सांसदों को तोड़कर आपने एनडीए में मिला लिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके दर्शक जानकार हैं, भावनिक ढंग से हमसे जुड़े रहते हैं, आप बताइए कि क्या किसी दूसरे के नाम पर चुन के आए सांसदों को आप अपने पास मिला के क्या मंगल यात्रा शुरू कर पाएंगे। अरे लोग कहते हैं कि अपनी लकीर को बढ़ाइए, किसी की लकीर को मिटाइए मत। देखिए हमारी सरकार से लाख मतभेद,
0: सवाल पूछ लो दुबे,
3: बिल्कुल पूछ लीजिए,
0: आप किसके साथ चुनाव उस वक्त जीत कर आए थे, किसके साथ गठबंधन में
3: 2024 में? हाँ? हम महाविकास आघाड़ी इंडिया गठ,
0: उससे पहले की बात कर रही हूँ, जब जब इस बात पर लड़ाई हो गई और आप लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, किसके साथ अलायंस में जीत कर आए थे?
3: जीत के तो आए थे बीजेपी से, तो क्या आज बीजेपी के साथ मंगल मिलन में हम है? हम तो नहीं, हमारा तो सब अमंगल हो गया।
0: आप कांग्रेस के साथ चले गए?
3: अरे तो हमारा सब अमंगल हो गया ना, तो हम उस मंगल मिलन में तो आए नहीं, लेकिन हम सिर्फ ये सरकार से पूछना चाहते हैं।
0: आप पर इतना शक होता है, हम बता नहीं सकते।
3: नहीं नहीं अंजना जी, देखिए मैं तो देशभक्त हूँ, एक पल के लिए कांग्रेस और बीजेपी को बगल रख दीजिए, हमें आप सिर्फ ये बताइए कि क्या सरकार से सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना, सरकार की कुनीतियों का विरोध करना, क्या गलत बात है?
0: और ये आज तो मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं,
3: आज आदरणीय मोहन भागवत जी ने यही कहा कि बच्चों की मांग जायज है, उनके साथ संवाद आपको करना चाहिए था, आपने बहुत देर कर दी, और उस देरी की वजह से अंजना जी हमारे पुलिस कर्मी घायल हुए, हमारे मीडिया के साथी घायल हुए, हमारे बहुत सारे बच्चे घायल हुए। अब वो कौन अराजक तत्व थे, कौन उपद्रवी थे, उनको तो आज नहीं कल हमारी पुलिस पकड़ेगी, लेकिन जो भी हुआ देश को अच्छा नहीं लगा। अरे देश क्या चाहता है, वो तो एक चौपाई कह दूंगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और दान पात्र में चोरी होगी और नीत का पेपर भी लीक हो जाएगा। ऐसी कल्पना हमने राम राज में नहीं किया आदरणीय गौरव भाटिया जी,
0: धीरेन जी आप लोग,
3: गौरव एनडीए पूरा किया था, ऐसा
0: पूरा फंसा हुआ नहीं दिख रहा है मामला,
4: कहीं कोई फंसा हुआ नहीं दिख रहा है,
0: चढ़ावा चोरी, पेपर चोरी, अब तो इथेनॉल पर भी राहुल गांधी मोर्चा खोल रहे हैं।
4: मैं बता देता हूं अंजना जी, इनसे बढ़िया कोई कंटेंट राइटर अभी तक है नहीं।
0: किनसे बढ़िया?
4: राहुल गांधी जी से बढ़िया। लगातार छात्रों की भीड़ पर अपनी राजनीति करने वाले, खुद की पार्टी की नीतियों पर कोई आंदोलन कभी खड़ा नहीं कर सकी कांग्रेस ना विपक्ष के लोग। अगर छात्र आंदोलन किया तो उसी आंदोलन में आ गए और उसका भी साथ नहीं दे रहे हैं, उसमें भी वो लोटपोट हो रहे हैं जाकर के प्रधानमंत्री जी के निवास के पास, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास वो लोटपोट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे दलित छात्र आदिवासी छात्र का आंदोलन है, वह तरीका गांधीवादी है, उनको उपद्रवियों का साथ नहीं मिला है तो वो साथ नहीं दे रहे। विपक्षी लोग उनको राम मंदिर चोरी की बात, चढ़ावा की बात करते हैं, क्या वहां पर कोई साधु ने चोरी किया है, किसी महंत ने चोरी किया है, किसी पंडित ने चोरी करी है? एक एक एक वहां पे ठेकेदार जो रुपये गिनने का काम करता है वो भी जेल के अंदर है, आप उसकी बात कर रहे हैं? दूसरी बात है, आप
0: तो
4: राम मंदिर
0: के लिए बनाया गया था, झाल बजाने के लिए
4: राम मंदिर
0: क्या कर रहे हैं आप, कहां क्लीन चिट दे रहे हैं?
4: नहीं नहीं क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, क्लीन चिट वो लोग चले गए हैं वहां पे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब जांच रिपोर्ट आई है और जो लोग दोषी हैं वो लोग तो अभी उनके साथ में जेल में ही वो सजा काट रहे हैं, फिर साधु संत के भेष बना करके, और जो आप वहां पे नुक्कड़ नाटक संसद में करवा रहे हैं, आपको अभी बिल में बहस में भाग लेना चाहिए था, एफसीआरए वाले में मुद्दे पे आना चाहिए था, जजों की संख्या बढ़ाने वाली बिल है।
0: दुबे जी आप जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिए, पूरा कीजिए एक लाइन में, क्या बोल रहे थे?
4: मैं वही कहना चाह रहा था कि आप राम मंदिर में जाते नहीं है ना, आपका जन का सहयोग ना आपका धन का,
0: भ्रष्टाचार
4: पर जो लोग अंजना जी वहां पे पकड़े गए हैं वो कोई साधु संत पकड़े गए हैं क्या, जो आप उनका संतों का अपमान कर रहे हैं भगवा पहन करके, आप उसका नकल करिए ना, जो लोग पकड़े गए हैं तो क्या आउटसोर्स कंपनी का आप विरोध कर रहे हैं और संतों को बीच में ला रहे हैं। दूसरी बात है कि 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, 5 दिन पहले हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के अरुण भारती जी के साथ मैं राम मंदिर गया था। राम मंदिर ये लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसके आधारशिला एक दलित व्यक्ति कामेश्वर चौपाल ने रखी है और आज उसका भी छुआछूत इन लोगों ने बनाया। दलितों से इन लोगों को नफरत है इसलिए राम मंदिर का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि दाल काली वाली जो बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि वो जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पूरी दाल खाली है, अरे भैया दाल काली नहीं है, उसमें जो काली है ना वो जीरा हमने डाली है। आप उसको पता करिए,
5: ट्रेन की तरह चल रहा है इनको।
4: अरे नहीं नहीं नहीं, आप देखिए जनता के मुद्दों को उठाइए, सदन में जो एक बना है कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे, जजों की संख्या बढ़ाइए ताकि रिपोर्ट सही सही आ सके।
6: चुप हो जाइए।
3: देश में गुस्सा है, हमारा अगर सिस्टम खोखला है, कमजोर है, सड़ गया है, उसका नेतृत्व अगर सरकार कर रही है तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे। आपको
6: आप
3: इतना
6: पूछ रहे हैं, छात्र निकले तब जाकर तो सरकार को अकाउंटेबल ठहराया, आप लोगों को तो कोई बोई नहीं हो रहा है।
3: अंजना जी, ये दतिया और बांकीपुर क्या प्रेम मोहब्बत में हारे हैं? ये गुस्से से हारे हैं फिर भी नहीं समझ रहे? हम तो धन्यवाद देंगे आदरणीय मोहन भागवत जी का, सरकार को आईना दिखा रहे हैं आदरणीय भागवत जी।
4: यही काम आप सदन में भी कर रहे हैं जो आप स्टूडियो में कर रहे हैं। मैं कहता हूं वहां पर सकारात्मक बहस करिए, अगर कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए।
3: सुझाव
4: परीक्षा ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए?
3: माथा पक गए।
6: अरे दुबे जी, इतना आसानी से स्टूडियो डिबेट में बोल दीजिएगा हमको HM बनाइए, PM बनाइए। PM जनता बनाती है और HM भी वहीं से जनता से बनता है, वही रास्ते से आना पड़ेगा जहां पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ NDA में आए नए नए सांसदों की बड़ी बैठक जिस पर आज आप देख रहे हैं।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से,

दिल्ली एनएसआर में आसमान से बरसी आफत ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद तक कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं अस्पताल की सेवाएं ठप हो गईं, तो कहीं मंदिर परिसर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के साथ साथ घंटों लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली में लगातार हुई भारी बारिश के बाद एमबी रोड पर जलभराव ने वाहनों की रफ्तार रोक दी। ओखला मोड़ से खानपुर तक लंबा जाम लगा रहा और कई जगह सड़क और नाले का फर्क मिट गया। उधर वाल्मीकि कॉलोनी में करीब 5 फीट तक पानी भर गया। बच्चों को घर पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जुगाड़ वाली नाव का सहारा लिया। ये तस्वीरें बारिश के असर की गंभीरता बयां करती हैं। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंदिर परिसर में पानी भर गया। वहीं सिविल अस्पताल के बेसमेंट में पानी घुसने से मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो गईं। फरीदाबाद में हालात और भी खतरनाक हो गए। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में जलभराव के बीच एक फॉर्च्यूनर कार पानी में फंस गई। चालक कार के अंदर ही कैद हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक स्कूल बस भी पानी में फंस गई। नोएडा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हैं। सेक्टर 37 से सेक्टर 18 मार्ग समेत कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रशासन पानी निकालने में जुटा है। बारिश ने एक बार फिर दिल्ली एनएसआर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़कों पर जलभराव, अस्पतालों में पानी और जानलेवा हालात, इन सब ने साफ कर दिया कि हर बारिश के साथ सिस्टम की तैयारियों की भी परीक्षा होती है। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग। इन एनी कैंपेन वी हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अफेयर्स। आवर प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट देयर इज सो मच करप्शन दैट देयर इज अ ह्यूज लाइन इन व्हाट वी हैव टू सीक्वेंस। डोंट वरी, दिस इशू वी आर गोना टेक इट अप इन अ मैसिव वे, बिकॉज दिस is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them.
3: If there is contamination, the contamination can take place in anything. Contamination can take place in the food you eat, in the air you breathe. It can take place in kerosene. It can take place in diesel. It can take place in anything. You know, somebody said there was some one organization wrote a letter. That letter was, I think, 28th July. 2 weeks before that, we had started rigorous testing. They found 4 cases out of 107,000 petrol pumps, with 6 crores to 7 crores going every day. So obviously someone out there is trying to place some things out of context.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: अलकनंदा नदी का ये रौद्र रूप देखिए, सैलाब का रौद्र रूप ऐसा है जिसे देखकर जिंदगी सहमी हुई है। ये तस्वीरें पौड़ी की है, जहाँ लगातार बारिश हो रही है। इसका साफ असर अलकनंदा के जलस्तर पर दिख रहा है। नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास या उसके ऊपर बह रही है, इसे लेकर हाई अलर्ट है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि खतरे से दूर रहे। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार भूस्खलन और मलबा आने से बार बार बंद हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच गंगोत्री धाम से गंगा जल लेने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सड़क धंसने से यात्रियों और कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश का संकट टिहरी में भी दिख रहा है। गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। नदी किनारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं, कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। उधर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का विकराल रूप दिख रहा है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर नदी के किनारों तक खतरा बढ़ गया है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्तों पर मलबा ही मलबा दिखा। वहीं विकास नगर के जौनसार बावर में भी कुदरत के कहर का खतरा दिखा। वहां हीरपुर क्वानू मीनस मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जहां सेब से लदा एक ट्रक अचानक उफनते नाले के मलबे में फंस गया। फिर तो वहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात ऐसे हो गए कि ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की डबल बैठक। देवेंद्र महतो गुट के 8 छात्रों के साथ 1 घंटे चली वार्ता। 14वीं जेपीएससी रद्द करने पर अड़े भर्ती परीक्षा के लिए सालाना कैलेंडर की मांग। दिल्ली आईआईटी में जेएनजी के बीच बोले पीएम मोदी, जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वालों को दिया जिंदगी का मंत्र, बताया कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, शाम 6 बजे का जेएनजी के साथ कार्यक्रम। बीजेपी ने झारखंड न जाने पर किया सवाल, शहर में विरोध वाले पोस्टर। महिला आरक्षण बिल पर पोस्ट बार, राहुल के महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू का तंज, लगता है कांग्रेस अब बिना शर्त समर्थन को तैयार। राहुल बोले 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है बिल। और कांवड़ियों के स्वागत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की फूलों की बारिश। मेरठ में पहले हेलीकॉप्टर से भव्य यात्रा का लिया जायजा, फिर मंच से खुद कांवड़ियों पर की फूलों की बारिश।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मान शुदक्षित। दोपहर के 2 बज चुके हैं और 2 बजे के बुलेटिन में बात खबर जिसे लेकर सरकार से बातचीत जारी है। छात्रों के गुट ने कल बातचीत की थी, अब एक गुट ने आज बातचीत की, सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। दूसरी खबर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी युवाओं से संवाद करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कांग्रेस की तरफ से, छात्रों का इंतजार है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। साथ ही हम आपको बताएंगे आखिर महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल और किरण रिजिजू क्यों आमने सामने आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है और आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत भी जारी। कल भी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हुई। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया। साथ ही यह भी कहा कि सरकार ने सुझाव और मांगे भेजने के लिए एक ईमेल आईडी भी दी है। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाई गई मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी और बताया था कि बहुत पॉजिटिव रही थी वो बातचीत। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुबह से, इस बैठक से जुड़ी हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, बैठक तो हो चुकी है लेकिन इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया और अब अगले दौर की बातचीत से जुड़ी क्या जानकारी?
1: अगले दौर के लिए दरअसल अब इंतजार करना होगा हिमांशु की सरकार आगे कब बुलाती है वार्ता के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि चूंकि दोनों पक्षों से बातचीत हो गई, और इतना ही नहीं, जो राजनीतिक छात्र संगठन है चाहे जेएमएम कांग्रेस, उनके साथ भी सरकार बात कर रही है। बात करके एक ईमेल आईडी दिया है कि आप इस पर अपने जवाब दे दें, अपनी बातें कह दें। अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहां पर छात्रों की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है, जमावड़ा बढ़ने लगा है, लोगों का सपोर्ट बढ़ने लगा है। छात्रों को इंतजार है सरकार को ठोस आश्वासन दे। हम भी कोशिश ये करें कि सरकार से ये जानकारी मिले कि अगले दौर की बातचीत कब होगी। अब क्या रविवार को कोई किसी तरह की बातचीत होगी, इस पर अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है। छात्रों ने कहा है ठीक है, हम पहले बात के लिए तैयार थे, अब आप आगे जब जवाब देंगे कि आगे क्या होगा। अब आगे दो चीजें हैं, या तो सरकार बुला ले कि हम ये आश्वासन आप अनाउंस कर रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं, विधानसभा के बाहर कोई चिट्ठी कोई आदेश जारी कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री मिला लें। मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत अब सरकार के पाले में, पहले छात्र गए मिलने, अब बारी सरकार की है।
0: अच्छा, बारी सरकार की। अच्छा आशुतोष एक बात और बताइए, जैसे आपने कहा था कि दो छात्रों का गुट है, एक बैठक कल हो गई थी और एक बैठक आज हुई है, क्या दोनों गुटों में जो मांगे रखी गई हैं वो बिल्कुल सेम है या कुछ मांगों में कुछ अंतर है? और सरकार की तरफ से जो मेल आईडी यहां पर जारी की गई है तो सुझाव देने के लिए, तो वो क्या दोनों छात्र गुट संगठनों के लिए है?
1: हूबहु मांग है बिल्कुल।
0: अच्छा,
1: एक जैसी मांगे, बिल्कुल एक जैसी मांगे हैं। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं, ये इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो जांच है नियुक्ति पत्र मिली उस पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीबीआई से जांच, जो नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं जेएसएससी में उस पर रोक, और इसी के साथ बाकी नीचे जो बातें लिखी है वो अलग है। दो ही चीज है कि जो अभी रिजल्ट है वो बंद हो जाए, दोबारा से परीक्षा हो, जो छात्र एलिजिबल है पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हो, दूसरा सीबीआई जांच। यहां तक की जो जांच की बात है, सीबीआई जांच, सीआईडी जांच कर रहे, 19 गिरफ्तारियां हुई हैं, छात्र वहां पर भी कुछ टोन डाउन करने को तैयार है। जिस चीज से समझौता नहीं है वो ये कि जो इस जेएसएससी जेएसपीसी जो 14वीं परीक्षा हुई है इसमें जो लोगों का चयन है वो रद्द हो, परीक्षा दोबारा से हो, जांच अपनी चलती रहे और पारदर्शी तरीके से सभी छात्रों को समान मौका मिले, वहां उसके साथ कोई समझौता नहीं होने वाला है।
0: अच्छा, शुक्रिया आपका आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखिए, अब झारखंड में जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनका भी बयान आपको सुनवाते हैं।
2: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है। और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई है उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: तो देखिए बात तय है कि छात्रों ने अपना आंदोलन आगे बढ़ा दिया है। अब एक ये तस्वीर आप देखिए, देखिए दो जगह टेंट लगाकर छात्र प्रदर्शन कर रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये भी रांची की ही तस्वीरें हैं, लेकिन ये छात्र एबीवीपी के हैं और एबीवीपी के छात्र आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से घेराव के लिए।
3: पकड़ो, बंद करो, लाठीचार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रही है। बस हमारी एक छोटी सी मांग है कि जो घोटाला हो रहा है उसको बंद किया जाए, लेकिन वो बंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको नोट छापनी है। सीधा बात यही है।
4: क्या नाम आपका?
3: मेरा नाम अंकित राज हुआ।
5: देखिए हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने मार्च निकाला था, लेकिन प्रशासन जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र।
0: ये वो तस्वीरें आप देख लीजिए जो एबीवीपी के छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने के लिए जो मार्च निकाला जा रहा था, उस दौरान छात्र आगे बढ़ रहे थे लेकिन उनको रोक दिया गया बीच में। और अब बात आज प्रयागराज में होने वाले राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम की कर लेते हैं। एक और कांग्रेस जोर शोर से इस आयोजन की तैयारियों में लगी है। प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज मैदान पर यह रैली होनी है, जिसको लेकर कांग्रेस काफी दिनों से तैयारी कर रही थी और अब राहुल गांधी की रैली होने वाली है। अब इसी बीच कांग्रेस के अंदर शशि थरूर ने एक नई बहस छेड़ दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने छात्रों की गूंज कैंपेन और सीजेपी के छात्र आंदोलन के बीच एक बड़ा फर्क बताया। शशि थरूर ने कहा कि पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे कांग्रेस और राहुल गांधी पहले ही उठा चुके थे, लेकिन उनकी मुहिम सीजेपी के प्रदर्शन जितना असर नहीं छोड़ सकी। और इसी बीच बड़ी खबर प्रयागराज से, राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच चुके हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे। शाम 5 बजे केपी इंटर कॉलेज के मैदान पर राहुल गांधी छात्र गूंज रैली है और उसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। सिमर चावला प्रयागराज से जुड़ गए हमारे सहयोगी। सिमर, क्या हो रहा है वहां?
6: मांचू, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद भवन के बाहर, जहाँ पर राहुल गांधी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। यहाँ पर फिलहाल उनके समर्थक थे, उनका जोरदार यहाँ पर स्वागत हुआ। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम, वो भी मौजूद थे। अजय राय जो कि यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद थे। हमने बातचीत भी करी, कई सवाल भी पूछे उनसे। उनका कहना है कि अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा जब राहुल गांधी 2 साल बाद प्रयागराज आए हैं और छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। तैयारियां इस तरीके की है कि पीछे आप देखेंगे यहाँ इस तरीके के पोस्टर्स आपको पूरे शहर भर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर राहुल गांधी जो है वो नजर आ रहे हैं। लिखा हुआ है पेपर लीक और अन्याय के खिलाफ छात्रों की एकजुट आवाज, आंदोलन से जुड़े मुहिम चलाई गई है। 2.25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं छात्रों के और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि लिखा हुआ है कैसे छात्रों की गूंज, जवाब दो, इस्तीफा दो, इस तरीके के जो तमाम पोस्टर्स है वो यहाँ पर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कांग्रेस के समर्थक जो है, कार्यकर्ता है, वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और राहुल गांधी जब तक यहाँ से निकलकर स्थल पर नहीं जाते जहाँ पर वो लोगों के साथ संवाद करेंगे, तब तक ये जो कार्यकर्ता यही रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे तिरंगा जो है वो लहरा रहे हैं और तमाम समर्थकों के अंदर भी जोश है। 2 साल बाद अपने पैतृक जगह पर, पैतृक शहर पे राहुल गांधी आए हैं। फोकस इसी बात पे है कि किस तरीके से जो पेपर लीक का मुद्दा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है या फिर रिप्लेसमेंट का जो प्लेसमेंट का मुद्दा है उसको किसी तरीके से कैपिटलाइज किया जाए और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के साथ, खासकर जेंडी जनरेशन उन स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया जाए। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब देखना यह है कि इसका कितना सीधा असर पड़ेगा। माजू,
0: शुक्रिया जानकारी के लिए और बीच बीच में अपडेट आपसे लेते रहेंगे सिमर। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सियासत भी हो रही है। राहुल के कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज में पोस्टर लगाए गए हैं। कुछ वक्त पहले समर ने भी वो रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें ये सवाल किया गया कि आखिर राहुल झारखंड में जारी छात्र के आंदोलन में क्यों नहीं गए।
7: नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं।
6: ऐसे में उनके स्वागत में पूरे शहर भर में कई पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन कुछ पोस्टर्स ऐसे भी लगाए गए हैं जहां पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर अपने दाएं तरफ, यहां पे आप देखेंगे तो राहुल गांधी के स्वागत में जगह जगह इस तरीके के पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे राहुल गांधी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। वहीं इसके ठीक बगल में बाईं तरफ ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। कटाक्ष करने की जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी झारखंड नहीं जा रहे हैं जहां पर छात्रों का मुद्दा चल रहा है, वह तमाम बाकी मुद्दे तो उठा रहे हैं लेकिन वहां पर जिस तरीके से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे तो दूसरी तरफ एक और पोस्टर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर ये लिखा हुआ है कि नीट पर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, प्रयागराज जवाओ, और झारखंड एक तरीके से मीम है उसको यहां पर पोस्टर के तौर पर बीच चौराहे में लगा दिया गया है। फिलहाल दो तस्वीरें आपको देखने को मिली, एक तरीके से पोस्टर वॉर है जो वो छिड़ गया है पूरे शहर भर में, कहीं ना कहीं कटाक्ष किया जा रहा है। फिलहाल ये नहीं क्लियर है कि ये पोस्टर्स लगाए किसने हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरे शहर भर में चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है।
0: तो कांग्रेस ने यहां पर आरोप लगाया कि राहुल के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई, लेकिन छात्र परेशान है, मतलब छात्रों को रोका जा रहा है, पोस्टर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी को अब कोई रोक नहीं पाएगा, यह भी कह रहे हैं। केशव मौर्य ने हालांकि इस पर पलटवार किया।
7: राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं। बिल्कुल छात्रों को प्रेशराइज किया जा रहा है, जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, जो बच्चों को कोचिंग सेंटर हैं, जो कोचिंग देते हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बच्चों को न भेजिए। हम लोग जिस होटल में थे, इसके पहले जिस एक होटल में थे त्रिवेणी ग्रैंड में, वो जबरदस्ती सरकार के दबाव में खाली कराया गया हम लोगों से। फिर मैं इस होटल में आया, ये दूसरा होटल है मेरा, हो सकता है आज भी खाली कराने का प्रयास हो, पर अब तो कोई दिक्कत नहीं, हम सड़क पे भी रह लेंगे। इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन देश के भविष्य के लिए हमें अगर सड़क पे भी सोना पड़ेगा तो हम उसके लिए पीछे नहीं है। निश्चित तौर से बच्चे परेशान हैं, इनका भविष्य खराब कर रही है, कोई एग्जाम नहीं। मैं कल एक छात्रावास में गया था, यहाँ एक बाटी दाल चोखा का यहाँ बड़ा रिवाज है, उनके बीच में बैठ के मैं बाटी दाल चोखा खाया रात को। उन बच्चों ने कहा कि हम लोग का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार।
8: पहले कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के अजय राय समेत तमाम कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब डर गए राहुल गांधी से इसी कार्यक्रम।
9: अच्छा, तो पहले डर गए थे, अब डर खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहाँ कौन सा कार्यक्रम को उन्होंने अनुमति ली कि नहीं ली, और कैसे मीडियाबाजी शुरू हुई, क्यों शुरू हुई? श्री राहुल गांधी बहुत बार प्रयागराज आ चुके हैं, उनके आने का कोई असर नहीं हुआ, पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे इस इलाके में कहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है।
0: पीएम नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब

0: तैयार करना होगा। पीएम ने कहा कि पढ़ाई के दौरान सब कुछ सिलेबस के हिसाब से होता है, जबकि जीवन में सब आउट ऑफ सिलेबस होता है।
1: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
0: अब देखिए, महिला बिल पेश होना है आगे, लेकिन महिला बिल से पहले राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री में पोस्ट वार शुरू हो गया है सोशल मीडिया पर। पहले राहुल गांधी ने महिलाओं के समर्थन पर एक वीडियो जारी किया, तो फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा कि लगता है कांग्रेस का मन बदल गया है, महिला बिल पर अब समर्थन के लिए बिना किसी शर्त के कांग्रेस तैयार है। अब राहुल ने एक नया पोस्ट किया, अब राहुल ने लिखा है कि रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वार चल रहा है। तो चलिए अब शुरू से हम आपको समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने महिलाओं की बात की, उनके अधिकारों की बात की, और उसके बाद किरण रिजिजू ने उसी पोस्ट को रिपोस्ट किया और कहा कि लगता है कि राहुल गांधी के विचार बदल रहे हैं। और संसदीय कार्य मंत्री ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है कांग्रेस पार्टी का रुख बदल गया है। रिजिजू ने यह भी लिखा कि यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश प्रतीत होता है, महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी की विचारों में स्पष्ट रूप से बदलाव दिखाई दे रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। ये किरण रिजिजू सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं।
2: इंडियाज द एनर्जी ऑफ इंडियाज वुमेन इज ट्रैप्ड, इज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand. And not from a, you know, top-down perspective, but making people understand that our country

0: is stunted, is incomplete without the expression of our women.
1: अब राहुल गांधी का जवाब आ गया है. अभी जो आप वीडियो देख रहे थे उस वीडियो के बाद किरण रिजिजू ने पोस्ट किया था. अब राहुल गांधी का जवाब आया और राहुल गांधी ने लिखा है कि रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में सर्वसम्मति से पारित हो चुका, वो भी कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ. सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं. 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के. क्रिकेटर ऋषभ पंत उत्तराखंड के सिस्टम से बहुत परेशान है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो कई साल से उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं. वो दिल्ली से वापस उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहते हैं लेकिन जमीन नहीं मिल रही उन्हें. नियम कानून का चक्कर और उस चक्कर में ऋषभ पंत उलझे हुए. पिछले 3 सालों से वो लगातार परेशान है और अब मुख्यमंत्री धामी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है क्योंकि ऋषभ पंत ने सीएम धामी को टैग किया था. तो सीएम धामी ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर अफसरों से बात करेंगे.
2: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है. और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है. तो उनका स्वागत है, वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे. कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से.
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो. इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
5: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ.
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा. 7 अगस्त को PVR INOX में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. आई विटनेस टू अ नेशन.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: भगवान भरोसे बिहार के सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं, जहाँ भगवान ना हो, मंदिर ना हो, तो शायद स्कूल ना चल पाए। भगवान भरोसे सरकार, भगवान भरोसे बच्चे, भगवान भरोसे भविष्य। खबर जहानाबाद की, जहाँ 64 साल से स्कूल है लेकिन स्कूल की इमारत नहीं, स्कूल मंदिर के भरोसे चल रहा है।
6: यहाँ पर स्कूल चल रहा है पर आपको जूता खोल कर जाना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मंदिर के परिसर में सरकारी स्कूल चल रहा है। यहाँ पर सर यहाँ क्लास यही चलता है, स्कूल नहीं बन
7: नहीं है इसका। हाँ। भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है, और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है।
6: 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला,
7: बिल्डिंग नहीं मिला है।
6: आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे?
7: कोशिश की है, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है।
6: हाँ।
7: लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है,
6: क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे।
7: हाँ, बहुत बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब हम लोग को जिस भी परिस्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा ही करें।
6: हाँ।
7: बेहतर ही करें। जब शादी ब्याह का टाइम आता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, जिसकी वजह से फिर भी बच्चे को हम लोग संभाल के ही रखते हैं, लेकिन परेशानी हमें बहुत ज्यादा होती है।
6: देखिए बच्चों की लिखावट भी बड़ी अच्छी है, कोशिश भी यहाँ पर टीचरों की तरफ से हो रही है कि पढ़ाई पूरी शिक्षा अच्छे से दी जाए, लेकिन हाथ बंद जाते हैं आपके उस जगह पर आकर जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। मैम आप लोग कोशिश कर रही हैं?
8: तो कोशिश तो कर ही रहे, तो क्या करेंगे, बिल्डिंगे न है तब तो जैसे यहाँ करना हो वैसे ही करेंगे ना।
6: तो मंदिर ने आप लोगों को ये जगह कम से कम दे रखी है 62 से,
8: तो सार्वजनिक है तो यहीं पर 62 से चल रहा है, तो यहीं पर पढ़ा रहे हैं हम लोग।
6: सब बच्चे नियमित आते हैं?
9: यही है, ये है, आज से नहीं, बहुत दिन से स्कूल यहीं पर चल रहा है, तो हम लोग बच्चा के देखिए, आप लोग तो खुद देख रहे हैं,
6: आंखों से देख रहे हैं, सब
9: आंखों से देख रहे हैं कि हम लोग बच्चा के किस तरह से रखते
6: हैं। स्कूल में मजा आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है सबको, क्या बनोगी बड़ी होके?
10: पुलिस बनना।
6: पुलिस? और तुम?
10: पुलिस।
6: पुलिस, कितने बच्चे पुलिस बनेंगे बड़े होके?
5: बिहार की सरकारी व्यवस्था के अपराध के हाथों ठगे जाते ये बच्चे बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। जहां पहले सरकारें बदलती रही, बाद में मुख्यमंत्री बदलते रहे, बस नहीं बदला बच्चों का भविष्य।
6: बिहार में मेधावी छात्रों की कमी नहीं होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती है, पर इस सुविधा के बारे में तो हर एक पार्टी, 62 से अगर बात हो रही है, हर एक पार्टी की जिम्मेदारी है इन बच्चों के भविष्य की।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बीच बोले पीएम मोदी, जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वालों को दिया जिंदगी का मंत्र, बताया कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ फ्लेवर्स। छात्रों की गूंज, कार्यक्रम के लिए प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, शाम 6 बजे का जेन जी के साथ कार्यक्रम। बीजेपी ने झारखंड न जाने पर किया सवाल, शहर में विरोध वाले पोस्टर। महिला आरक्षण बिल पर पोस्ट वार, राहुल के महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू का तंज, लगता है कांग्रेस अब बिना शर्त समर्थन को तैयार। राहुल बोले 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है बिल। और सीएम योगी ने मेरठ में कावड़ियों पर की फूलों की बारिश। मेरठ में पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा रूट और सुविधाओं का हवाई सर्वेक्षण किया, फिर मंच पर आकर किया शिव भक्तों का स्वागत।

और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता देते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। राज्य में छात्र आंदोलन पर सरकार की एक और दौर की बातचीत। देवेंद्र महतो गुट के छात्र दल के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। इससे पहले पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल से बात हो रखी है। दो दो बैठकों के बाद भी नहीं सुलझा छात्रों का आंदोलन। छात्रों की मांग, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने का अल्टीमेटम। भर्ती परीक्षाओं के लिए सालाना कैलेंडर की मांग। बातचीत के बाद भी रांची में 15वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी। का जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा समाप्त। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। झारखंड में 10 अगस्त को मार्च की तैयारी जारी। रांची में जुटेंगे छात्र। प्रदर्शनकारियों ने 10 अगस्त को मार्च निकालने का ऐलान बरकरार रखा है। आईआईटी दिल्ली दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी। पीएम ने छात्रों को बधाई दी और कहा आपकी उपलब्धियों पर परिवार के साथ मुझे भी गर्व। आईआईटी दिल्ली दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बोले मेडलिस्ट में कुछ और बेटियां होती तो और बेहतर होता। बेटियों की तरक्की से देश की तरक्की। दीक्षांत समारोह में पीएम का छात्रों को संदेश। बोले हर फैसले में सोचें कि इससे देश को क्या लाभ होगा और राष्ट्रीय जरूरत कैसे पूरी होगी। राघव चड्ढा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बोले यादगार रहा संवाद, उनके मार्गदर्शन से सीखने का अवसर मिला। यूपी बीजेपी ने क्षेत्रीय और मोर्चों के प्रभारियों का किया ऐलान। राजेश चौधरी को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया जबकि गीता शाख को ब्रिज क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली। मेरठ में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। सीएम योगी ने किया स्वागत। हेलीकॉप्टर से सीएम ने फूल बरसाए। गाजियाबाद में कावड़ सुरक्षा का नया कंट्रोल रूम तैयार। डीएम और पुलिस कमिश्नर ने शुभारंभ किया। 2000 सीसीटीवी और ड्रोन से नजर होगी। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर हंगामा। भारी भरकम डीजे को लेकर बवाल। सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति लागू। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार का IGIMS में औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए। मणिपुर में सीएम काफिले के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाए गए। कांगपोकपी के मखान में 6 मारे गए नागाओं के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के देवली इलाके में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिरी। करीब 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली में नाले में 22 साल का युवक। लगातार तलाश जारी है। झज्जर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सुरेंद्रनगर में नदी में नहाने गई एक युवक को बचाने की कोशिश में डूबे 4 युवक। इलाके में मातम पसरा। विकासनगर में बारिश से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गिरा विशाल पेड़। राहगीरों में अफरा तफरी। चंबा में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 7 लोगों की मौत। 22 लोग घायल हुए। पीएम मोदी ने दुख जताया। संभल में डाकखाने में 1,40,00,000 का गबन। खाता धारकों के पैसे से 4 करोड़ का ड्रीम 11 सट्टा असिस्टेंट पोस्ट मास्टर गिरफ्तार। हापुड़ में बच्चों का झगड़ा हुआ। हिंसा का पत्थरबाजी में कई लोग घायल। जयपुर में स्कूल बस और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर। 10 से ज्यादा बच्चे घायल। रामबन में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर खाक हुए। कोई जनहानि की खबर नहीं।

0: और अब बात हम करते हैं बारिश की और बारिश की आफत की। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मूसलाधार बरसात ने राजधानी की व्यवस्थाओं की तस्वीर सबके सामने ला दी, और वो भी असली वाली तस्वीर। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर का भी हाल बेहाल है। गुरुग्राम तो हर बार की तरह पानी पानी हो गई, दिल्ली से भी बुरे हालात हो गए। जल निकासी की व्यवस्था थी नहीं, जो दावे किए गए थे वो सारे दावे फेल साबित हो गए।
1: क्या दिल्ली को एक बार फिर मौसम की मार के बीच जूझना पड़ेगा? क्या एक बार फिर मूसलाधार बारिश के बीच लोगों को संकट का सामना करना पड़ेगा? क्या फिर राजधानी की सड़कें दरिया बनेंगी? बारिश फिर से आफत बनकर बरसेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीती शाम राजधानी पर बड़ी मानसून की मार के बाद एक बार फिर से मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, और इस अलर्ट ने प्रशासन के साथ साथ राजधानी के लोगों को सतर्क कर दिया है। क्योंकि बीते दिन हुई भारी बारिश ने पूरी दिल्ली पर ब्रेक लगा दिया है। जगह जगह सड़कों पर जल भरा हुआ, रास्तों पर दरिया बहता दिखा। कई कई फुट पानी भरने से लोग आफत में घिर गए। दिल्ली से आई एक एक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर ये मुसीबत कितनी बड़ी थी, कैसे घंटों तक राजधानी भंवर के बीच घिरी रही। सबसे पहले आपको दिल्ली के एमपी रोड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हुए। सड़क पर पानी की लहरें ही लहरें दिखाई देने लगी। इन लहरों के बीच कई गाड़ियां फंस गई।
2: राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच काफी जलभराव हो रहा है। अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अब स्कूल का टाइम बीत रहा है, बच्चों को बाहर घर पहुंचाना है और स्कूल को लौटना है, तो जैसे तैसे निकालने का प्रयास। देख सकते हैं कितना सड़क डूबा हुआ है, कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है। पर मैं एक सवाल कर, जैसे कि आपको मैं बस इतना जरूर कहूंगा, सरकार कोई भी आ जाए अगर वो जमीन पे काम नहीं करेगी तो यही हाल रहेंगे। इसके साथ साथ मुझे एक चीज और कहनी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो कि मैंने 12वीं कक्षा में पढ़ा था, चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर है चैप्टर 1, ईटे मन के तथा अस्थियां। उस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने पढ़ा था, जब तो आज से 5-6 हजार साल पहले की जैसी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के हिसाब से अगर अभी के जल निकास प्रणाली को देखा जाए तो मुझे लगता है आज से 5-6 हजार साल पहले का जो भारत था, जो विकसित भारत था, जो एक्चुअल
2: कितना फीट बड़ा है
3: अभी, तो
2: चार फीट
3: तो भरा हुआ है।
1: अब राजधानी में बारिश के संकट की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये दिल्ली का पुराणी इलाका है। तस्वीरें शुक्रवार रात 10 बजे के आसपास की हैं। पूरी सड़क पानी से लबालब भरी है, जो मानसून की तैयारियों के लिए किए दिल्ली सरकार के हर दावों की पोल खोल रही है।
4: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन के सामने आ रही है। आप देखिए इस वक्त हम बुराड़ी इलाके की लाइफलाइन कहे जाने वाली 100 फुटा रोड पर खड़े हैं। घुटनों तक पानी है यहाँ पर और आवाजाही जो है वो यहाँ पर बेहद कम हो गई है। पूरी तरीके से ये जो मेन सड़क है, मुख्य रोड है, ये कहीं ना कहीं झील में तब्दील हुई दिखाई दे रही है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो किस जगह पर हैं। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं हादसों का भी खतरा बना हुआ है और बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो जलभराव है उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो ये अमृत विहार मोड़ है, बुराड़ी की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये अमृत विहार मोड़, जहां पर अभी आप देखिए पानी जो है वो काफी ज्यादा भरा हुआ है। और यहां से अगर हमूमन बात की जाए तो भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही यहां पर हमेशा होती है, लेकिन इस समय की अगर हम बात करेंगे तो वाहन भी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगभग पूरी बुराड़ी के जो लोग हैं उनको ये मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं और पानी जो है वो कई फीट तक भरा हुआ है। इसी वजह से लोग जो है वो अब इस सड़क का भी इस्तेमाल कम कर रहे हैं।
1: ओखला, बुराड़ी, सैनिक फार्म, एमबी रोड, वाल्मीकि कॉलोनी, भारी बारिश की मार के बीच कुछ ऐसा ही हाल राजधानी के कई इलाकों में दिखा। लगातार हुई बारिश के बीच लोगों को घनघोर संकट का सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज फिर मौसम विभाग ने राजधानी में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को मानसून के पीछे एक बार फिर भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: तो दिल्ली तो देख लिया आपने, अब गुरुग्राम चलेंगे। चलिए आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं। साल कोई भी हो, बारिश जब भी होगी तो गुरुग्राम अपने जलग्राम स्वरूप में आ जाता है। शीतला माता मंदिर इलाके में हर बार यही होता है। कल शाम फिर वही हुआ, कई फीट तक पानी भर गया, कुछ जगहों पर कमर तक पानी भरा रहा। मजबूरी में लोग इसी पानी में चलते दिखे, जो कि खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा सीवर खुला हो, कब कौन सा गड्ढा खुला हो। लेकिन सवाल यह कि हर बार गुरुग्राम जलग्राम क्यों हो जाता है, इसका जवाब शायद ही किसी को।
5: सुबह से यह मूसलाधार बारिश जारी है, शाम होते होते ये मूसलाधार बारिश और तेज हुई और भारी बारिश साइबर सिटी दिल्ली एनसीआर में दर्ज की जा रही है। और आप उसकी वानगी का नजारा साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर हालात हैं, बाढ़ के सभी के हालात हैं।
6: क्या कुछ बुरे हालात हैं जी, पानी में दो पैर एक बजे से चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे आज तो स्कूलों का थोड़ा बंद कर रखा है। अदरवाइज इतनी बुरी हालत है, ये लेडीज को देखो जी कैसे भीग के किस तरह से आ रहे हैं।
7: हरे रंगे जैसी तले त्रिपंड सरकार सबसे बढ़िया,
5: यानी अब आपको अगर स्नान करना है तो गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है।
7: त्रिपंड सरकार दबा के बरसात हो रही है, कौन कहता है, ये सब विरोधी लोग कहते रहते हैं।
5: और ऐसा नहीं है कि मंदिर के सामने इस तरह की ये नदी बह रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सावन का महीना चल रहा है, भोले कावड़ वहां से लेके आ रहे हैं, लेकिन अब कावड़ के लिए आपको गंगा जल नहीं, यहीं पे स्नान करने की जरूरत है। तमाम तरह के कटाक्ष जरूर कर रहे थे, उस व्यवस्था को लेकर कर रहे थे जिसमें ये दावे किए जा रहे थे कि जनाब मेयर भी हमारा बना दीजिए, पार्षद भी हमारे बना दीजिए, विधायक भी हमारे बना दीजिए, सांसद भी हमारे बना दीजिए, प्रधानमंत्री भी हमारा बना दीजिए, उसके बाद हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे। लेकिन तमाम तरह की व्यवस्थाएं साइबर सिटी वासियों ने नहीं बल्कि देश के हर नागरिक ने भारतीय जनता पार्टी को दी। गुरुग्राम के अंदर भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और 7 योजनाओं से सांसद हैं, मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के 3 योजनाओं से हैं जनाब, पार्षद भी 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भी 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन उसके बाद के हालात आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर हालात हैं। इस बस के पहिए जरा आप देखिए कि किस कदर यहाँ पे पानी है और इस गंभीर स्थिति से निकलने को मजबूर हैं तमाम तरह की महिलाएं, बुजुर्ग, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि हर मानसूनी बारिश में इस तरह के हालातों का सामना करने के लिए मजबूर हैं और गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं कि हमारी भी सुनिए सरकार, कब तक इस तरह के हालात हमें हर मानसूनी बारिश में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक।
0: जनता यही कहती है कब तक ये हालात देखने को मिलेंगे, और नेता भी कह देते हैं कि हर बार देखने को मिलेंगे। चलिए दिल्ली से बाहर निकलते हैं, 200 किलोमीटर दूर आगरा लिए चलते हैं, जहां ताज नगरी को देख के लोग कहते हैं वाह ताज। आगरा में इन दिनों सड़क पर चलना खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। पिछले 24 घंटे में आगरा के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आई, सड़क धस गई, यात्रियों से भरा ऑटो धस गया, समा गया, कहीं टेम्पो सड़क में धस गए, ऐसा ही कुछ हो रहा है। हर जगह गड्ढा खिला हुआ है, गड्ढा खुला हुआ है और वहां पर कोई ना कोई गिर रहा है। खुले सीवर में ऑटो गिर गया और उस ऑटो में ऐसा नहीं है कि वो खाली था, 5 लोग थे उस ऑटो में, ऑटो में सवारियां भी थी, ऑटो चालक भी था। पानी इतना था दिख ही नहीं रहा, ऑटो वाला तो ऑटो ले जा रहा था अपनी, लेकिन अचानक से धम एक गाड़ी वो भी समा गई। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ना, नशा नहीं लगा के नेताजी उतर गए समाजवादी पार्टी, वो बता रहे हैं ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया, नापने के लिए चले गए हैं, ये कमलानगर में हुआ है। और ये ताज सिटी है जहां विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। तो आगरा में हालात बिगड़ गए हैं, तस्वीरों से आप समझ गए होंगे, पानी भरने से सड़क नालों का फर्क मिट गया। बड़ा हादसा हुआ नगला बिहारी इलाके में, सवारियों से भरा एक टेम्पो जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे गहरे गड्ढे में गिरी। अभी आप देखिए ना इसको, इसको देखिए आपको लगेगा कि यहां पर बहुत बड़ा गड्ढा है क्योंकि बगल से रोड जा रही है। टेम्पो में ड्राइवर समेत 5 लोग फंस गए थे जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस ने बहुत मेहनत के बाद निकाल लिया।
8: इनके हिसाब से
0: और अब आगरा के गोबर चौकी इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। टेम्पो सड़क पर खड़े खड़े धंस गया। अब गड्ढा कितना बड़ा था वो आप देखिए समझिए। टेम्पो वाले को तो समझ ही नहीं आया, उसको लगा कि दुनिया अचानक से क्या हो रहा है, हिल गई, कहीं उसका टेम्पो धरती में तो नहीं समा रहा है। बड़ा गड्ढा हो गया था पता ही नहीं चला। अब गनीमत रही कि आसपास लोग नहीं थे, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, उन लोगों की जान पर बन सकती थी। एक और स्मार्ट सिटी की बात करते, लुधियाना स्मार्ट सिटी है। लुधियाना के किचलू नगर और कई इलाके ऐसे जहां पर सड़क धस गई, ट्रैक्टर ट्रॉली उस सड़क में समा गए। सोचिए कितना बड़ा गड्ढा हुआ हो, जबकि आगरा के कमला नगर में 5 फीट से ज्यादा गड्ढा रोड पर हो गया और ये कर्मयोगी कॉलोनी के पास हुआ। दिखाते हैं आपको,
9: ये स्मार्ट सिटी लुधियाना है और सामने जो गड्ढा देख रहे हैं यही स्मार्ट सिटी की हकीकत है, जहां देखते ही देखते सड़क जमीन में समा गई। ये तस्वीरें लुधियाना के पौच इलाके किचलू नगर की हैं, जहां अचानक मुख्य सड़क धंस गई। सड़क का करीब 30 फीट हिस्सा बैठ गया जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी थी, अचानक उसका एक पहिया सड़क में धंस गया। चालक ने किसी तरह वाहन को बाहर निकाला, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरी सड़क तेजी से धंसने लगी और देखते ही देखते विशाल गड्ढे में बदल गई।
10: देश के पहले 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल होने वाले शहर लुधियाना कितना को स्मार्ट हो पाया है इसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि हर बार जब भी लुधियाना में बारिश आती है तो एक बड़ा हादसा लुधियाना की सड़कों पर देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले आपको दिखाया कि बरसात में एक सड़क पर चलती गाड़ी खड्डे में समा गई, तो आज सुबह भी लुधियाना में बरसात आई है और तस्वीरें आपको स्मार्ट सिटी लुधियाना की दिखा रहे हैं कि कैसे स्मार्ट के बाद एक सड़क पर सुबह इस सड़क पर गहरा खड्डा पड़ जाता है और उसमें एक ईंटों से भरी हुई ट्राली उसमें फंस जाती है, जिसको जब निकाला जाता है तो देखते ही देखते कई फिट गहरा खड्डा जो है इस सड़क पर दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में लुधियाना स्मार्ट हो पाया है, कितना स्मार्ट हो पाया है, तस्वीरें हर बारिश के बाद खुद बयान कर पाती हैं कि पंजाब की सबसे बड़ी नगर निगम और देश के पहले 20 स्मार्ट सिटियों में शामिल लुधियाना शहर की असली तस्वीर क्या है।
9: सड़क धंसने के साथ ही नीचे बिछी सीवरेज पाइपलाइन भी टूट गई। तेज बहाव के कारण गड्ढा और बड़ा होने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद नगर निगम और पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया। जिस मकान के बाहर सड़क धंसी वहां रहने वाले लोगों को भी एहतियातन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मकान को सहारा देने के लिए निगम की टीम RCC सपोर्ट लगाने में जुटी रही।
10: बात आती है हर बार कोई ना कोई बड़ा हादसा देखने को मिलता है, पहले होटल ओन के बाहर देखने को मिला, फिर पखोवा रोड पर सड़क में कार समागी और अब ये वाला हादसा देखने को मिला।
11: पहले तो आपकी मैं जानकारी में इजाफा कर दूं कि जो पखोवा रोड पे कार नहीं समाई वो गड्ढा पहले हुआ, उसके बाद ड्राइवर की अणगहली के साथ उसने लाके गड्ढे में कार फेंकी है। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे गड्ढा दिखाई नहीं दिया। दूसरा जो होटल ऑन वाला इशू है और ये इशू है, सेम रोड है, सेम प्रॉब्लम है, वहाँ भी ड्रिलिंग की गई है कंपनीज की तरफ से, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है।
9: नगर निगम का कहना है कि शुरुआती जांच में आशंका है कि भूमिगत केबल या दूसरी लाइनें बिछाने के दौरान हुई लापरवाही की वजह से जमीन कमजोर हुई जिसके चलते ये हादसा हुआ।
12: सुबह 7 बजे 6:30 बजे से इन्फॉर्म किया हुआ, 4 बजे जाके इनका थोड़ा सा काम शुरू हुआ है। कभी लेबर नहीं है, कभी गाड़ी नहीं है, मतलब ये इतना बड़ा डिजास्टर की वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई यहाँ हादसा आए उसके बाद हम जाके।
9: अब जरा स्मार्ट सिटी आगरा का भी हाल देख लीजिए। ये आगरा का कमल नगर है, पौश इलाका माना जाता है, लेकिन सड़क के बीचों बीच 5 फीट से अधिक गहरा गड्ढा हो गया। ये समाजवादी पार्टी नेता नितिन कोहली है। आगरा कर्मयोगी कॉलोनी में गड्ढा हुआ तो खुद गड्ढे में उतरकर नापने लगे कि इसकी गहराई क्या है।
13: जहाँ जहाँ देख लीजिए, जब परसों भी बात है कि हरिपर्वत MG रोड पर गड्ढा हो गया था, आज यहाँ हुआ, कुछ दिन पहले
8: आपका डी ब्लॉक में गड्ढा हो गया, तो जहां आप देखेंगे उससे पहले।
9: आगरा में इस तरह से सड़कें धंसने से इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जलकल विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंचे और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज तक ब्यूरो।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिएगा आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
17: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के बीच साजिद रशीदी का अपमानजनक और भड़काऊ बयान आया है। ऐसा बयान जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
1: क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ।
0: साजिद रशीदी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना के ऐसे विवादित बयान को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आतंकी वाले बयान को लेकर पलटवार भी किया।
2: अब बहुत हो गया है ये मौलाना, अगर कांवड़िए खड़े हो गए तो मौलाना की पीढ़ियां नहीं बचेंगी। और ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये देश धर्म के आधार बटा था कि जो यहाँ राम का नाम लेंगे, सनातन संस्कृति के अनुसार रहेंगे, उनका सम्मान होगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर सनातन का अपमान करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान बना था।
0: नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान है। उन्होंने मौलाना पर FIR दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है और कहा है कि मौलाना को ऐसे बयान के लिए फांसी होनी चाहिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: अब खबर चंबा से, जहां बैरागढ़ चंबा रोड पर एक बस हादसे का शिकार हो गई। 7 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग इस बस में सवार थे। हादसा देवीकोटी के पास चालू मोड़ पर हुआ। यात्रियों से भरी बस पलट गई और 100 फीट नीचे वाली रोड पर जा गिरी। 11 लोग घायल हुए हैं। हादसा इतना भीषण था कि कई लोगों के शव बस में ही फंसे हुए थे। निजी बस बैरागढ़ से चंबा के लिए रवाना हुई थी, लेकिन देवीकोटी के समीप चालू मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 जेसीबी की मदद लेनी पड़ी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल, डेमोग्राफी हैज बीन चेंज, हमारी सीमा असुरक्षित। भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी, बार बार लेटर दे रहा है भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो, ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है। नो नो नो नो, वोट बैंक, तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मेरा घर का आदमी बिपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं भाई, देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था, इसको छोड़ना चाहिए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भारतीय घरों में सोना केवल गहना नहीं होता, ये मुश्किल समय का सबसे भरोसेमंद सहारा भी होता है। शादी ब्याह से लेकर बीमारी और कारोबार तक जब जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले तिजोरी में रखा सोना ही काम आता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लेकिन इस तेजी के बीच रेटिंग एजेंसी इकरा ने एक ऐसे बदलाव की चेतावनी दी है जो लाखों गोल्ड लोन ग्राहकों के लिए कर्ज चुकाने का तरीका बदल सकता है। दरअसल गोल्ड लोन बाजार में खासकर कई NBFCs के पोर्टफोलियो में लंबे समय से बुलेट रीपेमेंट मॉडल का व्यापक इस्तेमाल होता रहा है। इसमें लोन अवधि के दौरान कोई EMI देनी नहीं होती और मियाद पूरी होने पर ही ब्याज के साथ मूलधन चुकाया जाता है। लेकिन RBI के संशोधित नियमों और बदलते कारोबारी ढांचे के बीच गोल्ड लोन कारोबार धीरे धीरे नियमित मासिक किस्तों वाले मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। इकरा के अनुसार बुलेट पेमेंट से रेगुलर रीपेमेंट सिस्टम में ये शिफ्ट शुरुआती दौर में ओवरड्यू और डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ा सकता है, क्योंकि उधारकर्ताओं को नई व्यवस्था में खुद को ढालना होगा। हालांकि गिरवी रखे गए सोने तक पहुंच और उसकी लिक्विडिटी की वजह से अब तक क्रेडिट कॉस्ट कम रही है, लेकिन सोने के प्राइस में उतार चढ़ाव के दौर में जोखिम को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत बनी रहेगी। बुलेट पेमेंट के पुराने सिस्टम में पूरे लोन काल के दौरान मूलधन कम नहीं होता था। अगर सोने के दाम अचानक गिर जाएं, तो कर्जदाता अतिरिक्त मार्जिन या आंशिक भुगतान की मांग कर सकते थे। EMI मॉडल में हर महीने भुगतान होने से बकाया रकम धीरे धीरे घटती रहती है, जिससे कर्जदाता का जोखिम कम हो जाता है। लेकिन इकरा के अनुसार बढ़ते मुकाबलों की वजह से कर्जदाताओं पर मुनाफे का दबाव भी बढ़ सकता है, खासकर जब वो रिवाइज्ड लोन टू वैल्यू यानी LTV नॉर्म्स के हिसाब से खुद को ढालेंगे। सोने की चमक पर भरोसा कर करोड़ों भारतीय अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन गोल्ड लोन बाजार में बदलते नियम संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में उधारकर्ताओं को नई व्यवस्था के हिसाब से ही अपनी मासिक नकदी जरूरतों की बेहतर योजना बनानी होगी। ऐसे में गोल्ड लोन लेने से पहले नई शर्तों और अपनी मासिक आय व्यय का हिसाब समझना पहले से ज्यादा जरूरी हो सकता है। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

करने का अल्टीमेटम फीडबैक के लिए ईमेल नंबर जारी। दिल्ली आईआईटी में जेंजी के बीच में बोले पीएम मोदी, जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वालों को जिंदगी का दिया मंत्र बताया, कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, शाम 6 बजे का जेंजी के साथ कार्यक्रम। बीजेपी ने झारखंड ना जाने पर किया सवाल, शहर में विरोध वाले पोस्टर्स। महिला आरक्षण बिल पर पोस्ट बार, राहुल के महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू का तंज, लगता है कांग्रेस अब बिना शर्त समर्थन को तैयार। राहुल बोले 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है बिल। और सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। मेरठ में पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा रूट और सुविधाओं का हवाई सर्वेक्षण किया, फिर मंच पर आकर शिव भक्तों का स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। राज्य में छात्र आंदोलन पर सरकार की एक और दौर की बातचीत। देवेंद्र महतो गुट के छात्र दल के साथ सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई, इससे पहले पीयूष गुट के 10 सदस्य दल से भी वार्ता हुई थी, छात्रों ने रखी मांग। दो बैठकों के बाद भी सुलझा नहीं छात्रों का आंदोलन। छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने का अल्टीमेटम और भर्ती परीक्षाओं के लिए सालाना कैलेंडर की मांग। बातचीत के बाद भी राज्य में 15वें दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी, कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ एबीवीपी का प्रोटेस्ट, रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जताया विरोध। झारखंड में 10 अगस्त को मार्च की तैयारी है, राज्य में जुटेंगे छात्र प्रदर्शनकारियों के, 10 अगस्त को मार्च निकालने का ऐलान बरकरार, राज्यभर में छात्रों से रांची पहुंचने की अपील। आईआईटी दिल्ली दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी पहुंचे, पीएम ने छात्रों को दी बधाई, कहा कि आपकी उपलब्धियों पर परिवार के साथ मुझे भी गर्व। आईआईटी दिल्ली दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बोले, मिडलिस्ट में कुछ और बेटियां होती तो और बेहतर होता, बेटियों की तरक्की से देश की तरक्की। दीक्षांत समारोह में पीएम का छात्रों को संदेश, बोले कि हर फैसले में सोचें कि इससे देश का क्या लाभ होगा और राष्ट्रीय जरूरत कैसे पूरी होगी। राघव चड्ढा ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बोले यादगार रहा संवाद, उनके मार्गदर्शन से सीखने का अवसर मिला। यूपी बीजेपी ने क्षेत्रीय और मोर्चों के प्रभारियों का ऐलान किया है, राजेश चौधरी को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है जबकि गीता शाक्य को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी। मेरठ में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश, मुख्यमंत्री योगी ने किया स्वागत, हेलीकॉप्टर से सीएम ने बरसाए फूल। गाजियाबाद में कांवड़ सुरक्षा का नया कंट्रोल रूम तैयार, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने किया शुभारंभ, 2000 सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे को लेकर हंगामा, भारी भरकम डीजे को लेकर बवाल, सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति लागू। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का IGIMS अचानक निरीक्षण, यहां स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, अधिकारियों की को व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए और CCS वार्ड का उद्घाटन किया। मणिपुर में मुख्यमंत्री काफिले के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाए गए, कांगपोकी के मखान में 6 मारे गए नागाओं के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रयागराज में राहुल गांधी का युवा कनेक्ट, छात्रों की गूंज, कांग्रेस को उम्मीद है कि छात्रों के मुद्दे पर सक्रियता से यूपी के युवाओं और जेंजी के बीच पार्टी की पकड़ बढ़ेगी। प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्र सभा, लगभग 1.5 लाख छात्रों के जुटने की उम्मीद, केपी कॉलेज मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने की संभावना। शशि थरूर ने छात्रों की गूंज और CJP आंदोलन में बताया बड़ा फर्क, थरूर ने कहा कि पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे कांग्रेस पहले से उठा चुके हैं लेकिन उनकी मुहिम CJP के प्रदर्शन जितना असर नहीं छोड़ सकी। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर सियासत तेज, कांग्रेस की तैयारियों के बीच बीजेपी ने लगाए पोस्टर, पूछा झारखंड के छात्र आंदोलन में राहुल क्यों नहीं गए। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर बीजेपी का हमला, केशव प्रसाद मौर्य बोले नहीं पड़ेगा कोई असर, किसानों महिलाओं पर कोई प्रभाव नहीं है।
राहुल गांधी यूपी कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। राहुल गांधी पार्टी सांसदों, विधायकों, प्रदेश प्रभारी और अन्य नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। राहुल गांधी बोले, एकजुट होकर आवाज उठे तो सरकार झुकती है। प्रयागराज में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने छात्र मुद्दों पर एकजुटता का संदेश दिया। E20 ईंधन के खिलाफ आपका देशव्यापी काउंट हॉल का भी अभियान, पश्चिम बंगाल से अभियान की शुरुआत। वाहन मालिकों से सीधा संवाद करेगी आम आदमी पार्टी। टाउन हॉल में वाहन मालिकों से E20 ईंधन की समस्याओं को लेकर, उनके अनुभवों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। गुजरात और हरियाणा में 9 अगस्त को आपके कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल के बाद से गुजरात और हरियाणा में भी E20 ईंधन के खिलाफ टाउन हॉल आयोजित किए जाएंगे। राहुल गांधी बोले, भारत की महिलाओं की ऊर्जा को खुलकर सामने आने की आवश्यकता। जिस देश को महिलाएं अपनी क्षमता और विचार व्यक्त नहीं कर पाते, जिस देश के वो सफल नहीं हो सकता। महिला आरक्षण पर राहुल गांधी के बदले रुख को रिजिजू ने बताया पॉजिटिव मैसेज। उम्मीद जताई कि अब कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करेगी। अमृतसर सीपी के तबादले पर पंजाब में सियासी घमासान। ISI कनेक्शन के दावे के बाद सीपी गुरप्रीत भुल्लर के ट्रांसफर पर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। सीपी के तबादले पर बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, बीजेपी ने लगाया आरोप। हिंसा का सच सामने लाने वाले ईमानदार अधिकारी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अमृतसर हिंसा के बाद पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा बना। गुरप्रीत भुल्लर के तबादले को बीजेपी ने घेरा, आम आदमी पार्टी सरकार पर उठाए सवाल। कांवड़ यात्रा के चलते बिजनौर में आज सभी स्कूल बंद। डीएम के निर्देश पर BSA ने आदेश किया जारी, जिलों में सभी स्कूलों में अवकाश। उल्फा वन को बड़ा झटका, अरुणाचल प्रदेश में 4 हार्डकोर कैडर ने किया सरेंडर। और लोंगडिंग जिले में असम राइफल के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 ही कैडर्स ने आत्मसमर्पण किया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा के इंतजाम जबरदस्त। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बल अब सतर्क, आने जाने वाले वाहनों पर नजर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत CIK ने हिलर शाहबाद इलाके में छापेमारी के, सेंट्रल इंटेलिजेंस इलाके में तैनात। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने सुरेंद्रनगर में एनालॉग चीज और एनालॉग बटर बेचने और बनाने वाली यूनिट पर छापेमारी की। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री धामी से मांगी जमीन खरीदने की मदद। बोले कि उत्तराखंड लौटना एक नाइटमेयर बन गया है, दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करने की इच्छा है। पंत ने कहा कि 3 सालों से जमीन नहीं मिल पाई। ऋषभ पंत की अपील पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जवाब। धामी ने पंत को उत्तराखंड का गौरव बताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी जल्द ही उनसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड में पुल की अप्रोच रोड धंसने पर 3 इंजीनियर सस्पेंड। नंदा की चौकी में भारी बारिश से 28 जुलाई को नई बनी अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई थी। मायावती का SP के PDF फॉर्मूले पर हमला। बोले कि राजनीतिक छलावा। BSP प्रमुख ने समाजवादी पार्टी पर संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ के लिए रंग बदलने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव का तंत्र। बोले कि भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है। पप्पू यादव पर जूता फेंकने वालों के स्वागत पर सपा प्रमुख ने कहा कि दोषियों के स्वागत की तो परंपरा जारी है। दिल्ली NCR में मानसून का कहर, IMD का येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ, ट्रैफिक जाम, सड़कें भी कुछ जगहों पर बंद की। बारिश ने दिल्ली के ट्रैफिक ब्यूरो का सरायकेला खान में आउटर रिंग रोड पर लंबी लंबी कतार देखने को मिले। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में जलभराव और लगातार बारिश के चलते सैनिक फार्म क्षेत्र में सड़कों पर पानी भरा, आवाजाही में परेशानी हुई। दिल्ली में बारिश के बाद ITO समेत कई इलाकों में इसका प्रभाव पड़ा, सड़कों पर जलभराव दिखा। दिल्ली में जलभराव के कारण MB रोड पर भीषण जाम लगा। ओखला मोड़ से खानपुर के बीच में जलभराव के चलते यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के देवली इलाके में प्राइवेट पार्किंग की दीवार गिरी, लगभग 10 गाड़ियां से क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली में नाले में बहा एक 22 साल का युवक, लगातार तलाश जारी है। झज्जर में भारी बारिश के बाद से कई इलाकों में भरा जलभराव, सड़कें तालाब में तब्दील, आवाजाही में परेशानी। सुरेंद्रनगर में नंदी में नहाने के लिए गए एक युवक को बचाने की कोशिश में 4 युवक डूब गए, अब इलाके में मातम। विकासनगर में बारिश के चलते दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक विशाल पेड़ गिर गया, राहगीरों में अफरा तफरी मची। आगरा में बारिश के बीच में भर भरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत, मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। आगरा में एक टेम्पो अचानक नाले में जा समाया, 5 लोगों की बचाए गए जान और सड़ चुके बड़े से गड्ढे पर भर गया था बारिश का पानी। फरीदाबाद में बारिश के बाद जलमग्न अंडरपास में फंसे फॉर्च्यूनर चालक की हालत गंभीर।
संभल में कटान से खेतों में घुसा पानी, भारी बारिश के चलते 100 बीघा से ज्यादा की धान गन्ने की फसल बर्बाद, मिट्टी डालकर पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण। डोडा में 6 मीटर सड़क का हिस्सा अचानक ढह गया, सड़क पर आवाजाही प्रभावित, लोग परेशान। लुधियाना में गोलियां मारकर युवक की हत्या कर दी गई, घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू के करोड़ों के फ्लैट्स की छत से गिरा प्लास्टर, बाल बल बचा एक परिवार। दिल्ली के नरेला इलाके में महिला की मर्सिडीज ने मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही मौत। माओवादी स्क्वाड को पकड़ने के लिए पुरुलिया में पुलिस का ऑपरेशन मिशन आकाश, 3 गिरफ्तार, नक्सली साजिश का खुलासा। रायपुर में आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने रैंप वॉक करके सबका ध्यान खींचा, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्वास प्रयासों की झलक दिखाई, हुनर को नया मंच मिला। चंबा में बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 7 लोगों की मौत, लगभग 22 लोग थे सवार, हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। संभल के डाकखाने में 1,40,00,000 का गबन हुआ, खाता धारक के पैसों से 4 करोड़ का ड्रीम 11 में सट्टा लगा, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर गिरफ्तार हुआ। हावड़ में बच्चों का झगड़ा हुआ भिनसक, पत्थरबाजी में कई लोग हो गए घायल। रामबन में भीषण आग लगने से 2 घर जलकर खाक, कोई जनहानि की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश इसमें घायल। जूनागढ़ में हाईवे पर कार बाइक की जबरदस्त टक्कर, दंपत्ति की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। जालंधर में भीषण सड़क हादसा, कैंटर और कार की जबरदस्त टक्कर में 3 लोगों की मौत, हादसे में कार के ऊपर खच्चे उड़े। मुंगेर में पानी लेने के लिए गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से गई जान, और डब्बा साइकिल पर रखते ही सड़क पर गिर गया शख्स, घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी में सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक दिखा, तेज रफ्तार बाइक गाय से टकरा गई, 2 युवक कई फीट जाकर गिर गए, गंभीर रूप से घायल है। वनडे क्रिकेट ने छुआ ऐतिहासिक मुकाम, स्कॉटलैंड बना कनाडा का मैच अब 5,000वां ओडीआई। कनाडा को 9 रन से हराकर स्कॉटलैंड ने जीता ऐतिहासिक 5,000वां वनडे, और फिनली मैकार्थी ने शतक लगाया। भारत श्रीलंका टेस्ट मैच के पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, मैच में दर्शकों को फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा पहला मुकाबला। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे को जल्द मिलेगा बड़ा सम्मान, यूपी पुलिस प्रमोट कर डीएसपी बनाने की तैयारियां कर रही है। कश्मीर के पुलवामा में याकूब ने किया देश का नाम रोशन, बुल्गारिया की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ब्रेव CF107 प्रतियोगिता में शानदार जीत दर्ज की। आवारा पंटू के गाने तेरा मेरा रिश्ता 2.0 ने मचाई धूम, 19 साल के बाद इस गाने को रिक्रिएट किया गया, और फिर से सईद कादरी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, मित्र ने रिक्रिएट किया म्यूजिक। बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता के बाद ओटीटी स्ट्रीमिंग की दुनिया भर में बड़ी हिट साबित हुई है धुरंधर, और इस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी। सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल मार्केट में 50,000 स्क्रीन पर रिलीज करेगा रामायण, फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर भी जारी। सुपरस्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज का हिंदी टीजर आया सामने, 14 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। अनिल कपूर फिर से मचाएंगे टीवी पर धमाल, और इंडिया के टॉप 1% नाम के एक टीवी गेम शो को होस्ट करेंगे। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं में कांवड़ यात्रियों की संख्या में इजाफा, अब तक लगभग 14,40,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं, और मॉनसून के सीजन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए विभक्त पहुंचे हैं। सोनप्रयाग में वाहनों से फुल हुई पार्किंग, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ती है। बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों की रौनक लगी, सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और उत्साह दिख रहा है, भक्तों से भरा नजर आ रहा धाम का मंदिर परिसर, बाजार और यात्रा मार्ग। मॉनसून के बावजूद यात्रा में मुख्य सीजन जैसी ही भीड़ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेश उत्सव के 1 महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई लालबागचा राजा की प्रतिमा। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के जन्मोत्सव पर दियों की भव्य रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेंपल, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा दिखा। गुजरात के जामनगर में समरस विद्या सेतु अभियान का शुभारंभ, 500 से ज्यादा बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा

0: डीजल पर अतिरिक्त शुल्क के लिए हजारों लोगों का प्रदर्शन, जमात इस्लामी के नेतृत्व में देशभर में रैलियां, पार्टी प्रमुख ने आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ ही प्रोटेस्ट, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। रूस पर अमेरिकी सीनेट का बड़ा एक्शन, कड़े प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी, बिल का मकसद है रूस की तेल गैस कमाई पर चोट करना, रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर टैरिफ का प्रावधान है। भारत चीन समेत रूस के बड़े खरीदार इसके प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं, पुतिन, रूसी अधिकारियों, बैंक और ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लगाए जाने का इसमें प्रावधान। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेट के कदम का स्वागत किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर दबाव बढ़ाने वाले बिल का किया समर्थन, ट्रंप के टैरिफ शक्तियों पर सांसदों में हालांकि चिंता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्रों का आंदोलन, जिसका आज 15वां दिन है और आंदोलन के बीच में प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार बातचीत भी की है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ यानी मंत्रियों के साथ बातचीत की है, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया, सकारात्मक बताया और साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने सुझाव और भी मांगे हैं और सुझाव भेजने के लिए ईमेल आईडी भी दी है। इस बैठक के बाद से सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के साथ संगठनों के छात्र संगठनों के साथ बैठक की है। इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम में पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ एक बैठक भी की थी। तो आंदोलन का 15वां दिन है और महतो गुट से भी मुलाकात हुई है, छात्र इसे बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं। तो छात्रों की मांग क्या है, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई परीक्षा दोबारा हो, सीआईडी या एसआईटी का गठन करके जांच की जाए, जो भी इस मामले में दोषी उस पर कार्रवाई हो, जेपीएससी और जेएसएससी की प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को पारदर्शी बनाया जाए, एक सालाना कैलेंडर भी भर्ती परीक्षाओं का जारी होना चाहिए, ये छात्रों की मांगों में है। और जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई उसको तो तत्काल तुरंत उसको रद्द किया जाना चाहिए।

0: रांची में जारी छात्र आंदोलन पर सियासत भी तेज है। आंदोलन के बहाने बीजेपी लगातार अब सरकार को घेर रही है।
1: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलॉग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रयागराज में होने वाले राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की। एक और कांग्रेस जोर शोर से इस आयोजन की तैयारियों में लगी हुई है। प्रयागराज के पी इंटर कॉलेज मैदान पर ये रैली होनी है, जिसके लिए कांग्रेस काफी दिनों से तैयारियां कर रही थी और अब राहुल गांधी की ये रैली होने वाली है। इस बीच में कांग्रेस के भीतर ही शशि थरूर ने एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने छात्रों की गूंज कैंपेन और सीजेपी के आंदोलन में एक बड़ा फर्क बताया है। थरूर ने कहा कि पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे कांग्रेस और राहुल गांधी पहले से उठा चुके थे, लेकिन उनकी मुहिम सीजेपी के प्रदर्शन जितना इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकी, असर नहीं छोड़ सकी।
2: राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं। बिल्कुल छात्रों को प्रेशराइज किया जा रहा है, जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, जो बच्चों को कोचिंग सेंटर हैं, जो कोचिंग देते हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बच्चों को न भेजिए। हम लोग जिस होटल में थे, इसके पहले जिस एक होटल में थे त्रिवेणी ग्रैंड में, वो जबरदस्ती सरकार के दबाव में खाली कराया गया हम लोगों से। फिर मैं इस होटल में आया, ये दूसरा होटल है मेरा, हो सकता है आज भी खाली कराने का प्रयास हो, पर अब तो कोई दिक्कत नहीं, हम सड़क पे भी रह लेंगे। इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन देश के भविष्य के लिए हमें अगर सड़क पे भी सोना पड़ेगा तो हम उसके लिए पीछे नहीं है। निश्चित तौर से बच्चे परेशान हैं, इनका भविष्य खराब कर रही है, कोई एग्जाम नहीं। मैं कल एक छात्रावास में गया था, यहाँ एक बाटी दाल चोखा का यहाँ बड़ा रिवाज है, उनके बीच में बैठ के मैं बाटी दाल चोखा खाया रात को। उन बच्चों ने कहा कि हम लोग का भविष्य बर्बाद कर रही है सरकार।
3: पहले कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के अजय राय समेत तमाम कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी

0: अमित शाह सब डर गए राहुल गांधी से इसलिए कार्यक्रम।
1: अच्छा, तो पहले डर गए थे, अब डर खत्म हो गया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब कहाँ कौन सा कार्यक्रम को उन्होंने अनुमति ली कि नहीं ली, और कैसे मीडियाबाजी शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। श्री राहुल गांधी बहुत बार प्रयागराज आ चुके हैं, उनके आने का कोई असर नहीं हुआ, पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे इस इलाके में कहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है।
2: और अब रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ बोले ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: नहीं इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
13: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
12: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
14: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता, तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं वहीं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: दिल्ली एनएसआर में आसमान से बरसी आफत ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम नोएडा और फरीदाबाद तक कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं अस्पताल की सेवाएं ठप हो गईं, तो कहीं मंदिर परिसर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के साथ साथ घंटों लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली में लगातार हुई भारी बारिश के बाद एमबी रोड पर जलभराव ने वाहनों की रफ्तार रोक दी। ओखला मोड़ से खानपुर तक लंबा जाम लगा रहा और कई जगह सड़क और नाले का फर्क मिट गया। उधर वाल्मीकि कॉलोनी में करीब 5 फीट तक पानी भर गया। बच्चों को घर पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जुगाड़ वाली नाव का सहारा लिया। ये तस्वीरें बारिश के असर की गंभीरता बयां करती हैं। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंदिर परिसर में पानी भर गया। वहीं सिविल अस्पताल के बेसमेंट में पानी घुसने से मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो गई। फरीदाबाद में हालात और भी खतरनाक हो गए। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में जलभराव के बीच एक फॉर्च्यूनर कार पानी में फंस गई। चालक कार के अंदर ही कैद हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक स्कूल बस भी पानी में फंस गई। नोएडा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हैं। सेक्टर 37 से सेक्टर 18 मार्ग समेत कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रशासन पानी निकालने में जुटा है। बारिश ने एक बार फिर दिल्ली एनएसआर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़कों पर जलभराव, अस्पतालों में पानी और जानलेवा हालात, इन सब ने साफ कर दिया कि हर बारिश के साथ सिस्टम की तैयारियों की भी परीक्षा होती है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की दो दो बैठकें, 14वीं परीक्षा रद्द करने का अल्टीमेटम, फीडबैक के लिए ईमेल नंबर जारी। दिल्ली आईआईटी में जेंजी के बीच बोले पीएम मोदी, जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वालों को दिया जिंदगी का मंत्र, बता कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए प्रयागराज पहुंचे थे राहुल गांधी, शाम 6 बजे जेंजी के साथ कार्यक्रम। बीजेपी ने झारखंड न जाने पर उठाए सवाल, शहर में विरोध वाले पोस्टर्स लगे। महिला आरक्षण बिल पर पोस्ट बार, राहुल के महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू का तंज, लगता है कांग्रेस अब बिना शर्त समर्थन को तैयार। राहुल गांधी बोले 2023 में सर्वसम्मति से पास हो चुका है बिल। और सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, मेरठ में पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा रूट और सुविधाओं का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर मंच पर आकर किया शिव भक्तों का स्वागत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि आप स्वागत करेंगे या हम स्वागत करें उज्जैन के माटी के लाल डॉक्टर मोहन यादव का, आज तक के मंच पर उज्जैन में महाकाल की नगरी में स्वागत है।
1: बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं मध्यप्रदेश की सरकार की ओर से बाबा महाकाल की नगरी और मध्यप्रदेश में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समाचार चैनल की दुनिया में लंबे समय से, जब से ये समाचार चैनलों का संसार चला है हमारे देश के लिए, मैं दुनिया की तो नहीं बात करता हूँ, लेकिन आज तक कभी कल तक नहीं हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वाकई अद्भुत है, अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत अभिनंदन।
0: धन्यवाद। समय मोहन यादव जी के पास यहाँ पर कम है, हम आगे उनका इंटरव्यू फिर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि सब लोग इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं कुछ देर तो सबके सामने बात करूंगा। डॉक्टर यादव, ये चीज मुझे बताइए कि जब यहां तो आपका बचपन बीता, जब आप यहां पर और खासकर सावन के महीने में आते हैं तो आपकी वो प्रशासनिक भूमिका हावी रहती है या एक शिव भक्त का जुनून?
1: यहाँ बाबा महाकाल के नगर में कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, जो है सब भक्ति के भाव से समर्पित है। सब एक नारा लगाते हैं, महाकाल महाराज की।
0: पर पहले, आपसे पहले कोई भी प्रशासनिक पद वाला व्यक्ति यहाँ पर आकर रात रहता नहीं था, आपने कहा मेरा तो घर है।
1: देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, यहाँ प्रशासन के साथ शासन वाले भी लोग, जितने राजा और समर्थ राजा उज्जैन में पैदा हुए उतने तो दुनिया में कहीं हुए नहीं है। सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, उदयादित्य, हमारे सम्राट अशोक यहाँ युवराज करके 10 साल तक रहे उज्जैनी में। तब पाटलिपुत्र में सम्राट रहते थे, यहाँ युवराज रहते थे। परवर्ती काल में महाराज सिंधिया जी, महाजी सिंधिया, जिनके पूरे वर्तमान का सिंधिया साम्राज्य जो दिखता है ये राणोजी और महाजी के समय का है, उनकी राजधानी उज्जैन रही, सब उज्जैन रहे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ बातें चल जाती जिसका कोई इलाज नहीं होता। वैसे भी 47 के बाद कोई राजा महाराजा का स्वरूप में रहा भी नहीं, तो ये जो भी हुआ, लेकिन मुझे इस बात का परमात्मा की कृपा भी है। हमने इस बात को रेखांकित किया था कि यहाँ ये झूठ है, हम सब इस ब्रह्मांड में बाबा महाकाल के पुत्र समान हैं। तो जब उनके बेटे हैं तो पिता से कैसे खतरा, पिता का तो स्नेह सदैव मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माता पिता के रूप में हमारे भगवान हैं, तो उनकी छत्र छाया में रह करके तो और ऊर्जा बढ़ती है, आनंद आता है, उनसे काय का डर।
0: अब देखिए, हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं जो हम आपसे सिंहस्थ कुंभ के आयोजन को लेकर, उज्जैन में जो एक औद्योगिक विकास की आपकी कोशिश है और बहुत कुछ बदलता जो दिख रहा है उसके बारे में, ये सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन चूंकि यहां पर हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछना चाहती हूं, और उसमें शामिल है दतिया में क्या हुआ डॉक्टर यादव?
1: देखो, दतिया में क्या हुआ, दतिया कांग्रेस की सीट थी, जब 165 सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन दतिया हम नहीं जीते थे, दतिया कांग्रेस की सीट थी। हमने उस समय भी कोशिश की, उस समय जितने 7,700 वोट पाए जिसके कारण से हमने अपनी हारी, अभी 1700 वोट बढ़ा करके अब 6,000 पे लाए, आने दो 2028 पूरी छीन लेंगे जनता, उसमें क्या दिक्कत की बात है? क्योंकि ये आखिर लोकतंत्र में मैं विनम्रता के साथ ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारी बात रखने का, चुनाव में जाने का, लोगों के आगे अपने बात समझाने का एक अवसर आता है, लेकिन इस अवसर में आप सदैव जीतोगे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये बात भी सही कि हमारी सरकार बनने के बाद 2023 के बाद 29 की 29 लोकसभा सीट हमने जीती। 2029 की लोकसभा सीट के मतलब 29 लोकसभा के बाद जो विधानसभा के चुनाव आए, तब 3 चुनाव हुए, उसमें से एक कांग्रेस की अमरपाटन सीट हमने उनसे छीन करके अपने पास लाए, हमारी बुदनी बीजेपी की बीजेपी के पास रही, ये हमारा अनुकूलता वाला समय आधार है। ऐसे लगातार जब भी मौका पड़ रहा है तो हम उनकी सीट ले रहे हैं। तीनों राज्यसभा के चुनाव हुए, तीनों राज्यसभा पहली बार तीनों की तीनों बीजेपी जीती, तो लगातार जीत भी रहे हैं और लगता है कि हमारे वोट बढ़ रहे हैं, वोट में कमी नहीं आ रही, आगे फिर आएगी मान के चले। अभी विनम्रता के साथ, ये तो लोकतंत्र है, कभी जीतेंगे कभी कोई बात नहीं, आने वाले समय।
0: क्या आप इसको इस बात से नहीं जोड़ेंगे जो विपक्ष कह रहा है कि ये
1: अपन धर्म संसद में बैठे,
0: हम तो कह रहे हैं कि हम तो महाकाल के दरबार के में जाकर
1: धर्म संसद में तो धर्म संसद में रहो, ये अपन किसी और प्लेटफॉर्म पे कर लेंगे।
0: नहीं, वो दतिया को छोड़ दीजिए आप, लेकिन उससे जुड़ा मैं ये पूछ रही हूं कि मध्य प्रदेश का जो युवा है, आप रोजगार के मुद्दे को लेकर कहते हैं कि आप नौकरियों को लेकर या फिर लटकी हुई भर्तियों को लेकर सीरियस हैं और आप उस पर काम करना चाहते हैं, पर क्या ये युवाओं का फीडबैक था, कुछ ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि उसी समय जेन ज़ी आंदोलन खत्म हुआ और ये रिजल्ट आया, आपके विचार?
1: मैं दोनों बात एक साथ नहीं जोड़ता हूँ। ये बात सही है कि बहुत सारी बातें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया एक वातावरण तो बनाते हैं, उसका है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां असर नहीं था, उस सबका असर सब दूर होता है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार बनी है हम तब से रोजगार परक कामों के लिए लगातार आगे बढ़े, तो पूरे देश में सबसे तेज गति से रोजगार के आधार पर इंडस्ट्री लगने का अगर कोई रिकॉर्ड बना तो मध्य प्रदेश में बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लगातार हमारे राज्य के अंदर 10 लाख करोड़ से ज्यादा के कामों के नीचे भूमि पूजन लोकार्पण होकर के अब इंडस्ट्रियां चालू हो गई।
0: तो अब ये महाकाल कॉरिडोर में हम प्रवेश कर रहे हैं इस समय, बेहद भव्य, जब से निर्माण हुआ है और अब हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। मोहन यादव जी, आपका एक फेवरेट टॉपिक भी रहा है जो धार्मिक अर्थव्यवस्था है
2: जी,
0: कितना बढ़ी है।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने स्मार्ट सिटी के पैसे से महाकाल के महालोक का निर्माण कराया, ये 360 बदल गया एकदम से उज्जैन और इकोनॉमी पूरी हमारे क्षेत्र की। पहले 60-70 लाख लोग साल में आते थे, आज की स्थिति में 8 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं और इस प्रकार से सभी वर्गों को इसका लाभ मिला, सभी धर्मों को लोगों को भी लाभ मिला, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और कई लोग लाज भी चलाते हैं, लेकिन धार्मिक श्रद्धालुओं के कारण से उज्जैन की चारों तरफ से एक तरह से इकॉनमी बदली है। लगभग 2000 करोड़ का व्यापार व्यवसाय एक तरह से उज्जैन में हो रहा है, ये एक तरह से चमत्कार होने जैसी बात है। ये आप कॉरिडोर भी देखोगे, इस कॉरिडोर के साथ एक एक सनातन धर्म की वो सारी गाथाएं इससे जुड़ी हुई है, इसके स्थापत्य के अद्भुत नमूने हमारे सामने हैं। जिस प्रकार से हमारा गौरवशाली अतीत है, माँ के जीवन काल का प्रसंग, उनके विवाह के प्रसंग, उनके पुत्रों की कहानी, बाबा महादेव की कहानी, उज्जैन में भगवान कृष्ण की भी शिक्षा स्थली है, उनका ससुराल भी
0: संदीपनी
2: आश्रम में शिक्षा स्थली है, जहाँ उन्होंने कृष्ण सुदामा बलराम ने शिक्षा ग्रहण की, और गरीब अमीर की दोस्ती का वो अद्भुत उदाहरण उस काल का। कुछ भी हो जाए मित्र को मत भूलो।
0: हालांकि एक सुदामा श्री कृष्ण की दोस्ती का अभी अभी अखिलेश यादव ने भी एक जिक्र किया था,
2: वो क्या था?
0: वो ये था कि पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों से उनकी दोस्ती है यहाँ पर,
2: इसमें तो कोई शक नहीं है, दोस्ती तो सदैव रही है
0: जी,
2: लेकिन उस काल में ये बड़ा उदाहरण है, एक तबड़े भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए, लेकिन मित्र को मदद करने के लिए जो उन्होंने मौका दिया वो अद्भुत है। ये भगवान शंकर की देखो सवारी निकल रही
0: जी,
2: धूमधाम से भगवान के लिए उनके गण नाचते गाते जा रहे हैं आनंद के साथ,
0: हर एक प्रसंग का चित्रण है यहाँ पे।
2: हाँ हाँ, सारे प्रसंग है, ये गरल पीते हुए हैं
0: जी
2: भगवान शंकर
0: समुद्र मंथन के साथ। राजनीति में भी तो विष का पान भी है,
2: ये तो राजनीति का क्या, जीवन के सब क्षेत्रों में आप गृहस्थी भी चला रहो
0: सीख
2: तो
0: ले सकते,
2: बैलेंस करना चाहिए, ये बैलेंस में ही अपना काम चलता है।
0: ये सिंहस्थ कुंभ का जब यहाँ पर आयोजन होना है
2: जी,
0: उसके जरिए आप उज्जैन नगरी से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि नगरी का विकास उस रूप में हो
2: जी,
0: कि उस समय लोग आए तो वापस लौट कर आना चाहिए।
2: ये विश्व का मेला है हमारा सनातन संस्कृति का, और ये कुंभ का मेला, सिंहस्थ का मेला जो कहलाता है, वाकई परमात्मा ने एक मौका देते हैं, जब ये लाखों करोड़ों लोग 12 साल में वो दिन का इंतजार करते हैं, जब हमारे बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और वो नक्षत्रों की घटनाओं के बलबूते पर लोग उस काल में छिपराजी में स्नान करना चाहते हैं, ये परंपरा हजारों साल की है और उज्जैन में प्रत्येक 12 साल के बजाय अब तो हर साल पूरे साल इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए हमने सब स्थायी प्रकृति के काम किए हैं ताकि ये हमारे यात्रियों के लिए जो सुविधा जुटाएं वो पूरे साल भी बाकी लोगों में उनका लाभ मिलता रहे।
0: थोड़ा मतलब होटल्स मैंने देखा बहुत सारे बने हैं,
2: होटल के अलावा
0: कंपैरिजन
2: आश्रम यात्री गृह, एक पूरा शहर में हम एक आंदोलन जैसा माहौल बना रहे
0: हैं। अभी भी मुझे लगता है यातायात पर शायद आप लोग को बहुत काम करना
2: है, बहुत दबाव है। हमने सबने कहा कि मेरा स्वयं का भी जहाँ मैं पैदा हुआ मकान भी हम हाथ से तोड़ने वाले हैं, हमारे भी जहाँ जहाँ भी मार्ग चौड़े करना वो सब जमीन हमारे मकान सारे लोग, और केवल हम क्या हिंदू क्या मुसलमान बल्कि हमारी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जैन मंदिर सब लोग अपने हाथ से जगह बना रहे हैं क्योंकि वो अद्भुत अवसर रहेगा और लोगों की सुविधा के लिए काम करना चाहिए। तो एक सकारात्मक बहुत बड़ा संदेश उज्जैन से जा रहा है।
0: सैनिटेशन भी
2: बिल्कुल सभी प्रकार की व्यवस्था चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या लाखों करोड़ों करोड़ों लोग 40 करोड़ का अंदाजा है, अभी 8 लाख की आबादी हमारे शहर की है, तो एकदम कहाँ 8 लाख और कहाँ 40 करोड़ 2 महीने में आके जाएंगे तो बहुत अद्भुत होगा। इसलिए स्नान की व्यवस्था भी ऐसी कर रहे हैं कि हमारे लगभग 29 किलोमीटर के नए घाट 8 किलोमीटर के पहले हमारे तो 36 किलोमीटर में एक बार में 4 करोड़ से ज्यादा लोग 24 घंटे में स्नान कर लेंगे प्रबंधन अब कर।
0: अच्छा
2: आवागमन की सर सारी भी व्यवस्था कर ली है, 2-3 नए रेलवे स्टेशन है, हमारी रेलवे ट्रैक है, 3 नए रोड निकाल रहे हैं, जो हर रोड जो उज्जैन से जा रहा है उसको 4 लेन 6 लेन इससे कम कोई रोड नहीं, क्योंकि यातायात की सारी व्यवस्था के लिए आसपास के राज्यों से भी तालमेल कर रहे हैं ताकि वहां से भी यात्रियों के प्रबंधन में हमको राज्य में मदद मिले।
0: क्या प्रयागराज मॉडल आप लोगों ने देखा है, इसलिए कि कैसे उतना दबाव पड़ा उस जगह, वो तो काफी खुला भी एरिया था, ये एक पूरा शहर हो जाएगा जिसके ऊपर
2: हमने आउटर के सारे रिंग रोड बनाए हैं आने जाने की व्यवस्था के लिए ताकि शहर की व्यवस्था ध्वस्त,
0: अभी से तैयारी
2: पूरी तैयारी कर ली बहुत जबरदस्त, लगभग 500 किलोमीटर की सड़कें बन रही है अपने शहर के लिए अंदर अंदर में, बाकी बाहर के रोड तो बनी रहे हैं और हमारे सारे NH से एयरपोर्ट से उज्जैन में स्वयं एक एयरपोर्ट बन रहा है, हमारा अपना रेलवे स्टेशन अलग अलग रेलवे स्टेशन के भी बाईपास बनाए हैं ताकि रेलों को आवागमन में उनको दोहराव से बचाया जा सके।
0: पर ये एक बहुत अच्छा अवसर होगा आपको, ये
2: विकास की दृष्टि से अच्छा मॉडल बना सकते हैं और राज्य के अंदर इसमें केवल उज्जैन नहीं, उज्जैन संभाग के सभी 8 जिले, इंदौर संभाग के सभी जिले और भोपाल से लगा करके मंदसौर तक ये पूरे बेल्ट में हम लगभग इसको 14,000 से ज्यादा किलोमीटर के एरिया में पूरा प्लान करके चल रहे हैं।
0: पूरा जगमग है अभी, ये न केवल महाकाल लोक जिससे होकर हम आए बल्कि अब जो हम महाकाल की का जो मंदिर है जो स्थान है
2: में आ गए
0: वहां पर हम पहुंच चुके हैं और अब हम आगे की बातचीत जो है वो हम नीचे अब पैदल चलकर करते हैं।
2: ये बाबा महाकालेश्वर का पुराना प्रांगण है
0: जी
2: और ये देवस्थान है और ये महाजी सिंधिया राणोजी सिंधिया के उस कार्यकाल में ये मंदिर का निर्माण हुआ था और वैसे मूल मंदिर 1235 में जब इल्तुतमिश आया था गुलाम वंश का सेकंड शासक उसने मंदिर ध्वस्त कर दिए थे, फिर दोबारा जब हमारे शासकों का अच्छा समय आया तो एक आप देखिएगा जूना महाकाल का शिखर दिख रहा है, ये जूना महाकाल राजा भोज के काल के बाद के शासनकाल में जब तोड़ा गया फिर दोबारा बनाया गया तो ऐसा वो दौर चलता रहा लगभग 700 साल में हम जब मजबूत हुए फिर मंदिर बन गया, फिर हम कमजोर हुए तो उन्हें तोड़ दिया, फिर बना फिर बिगड़ा, लेकिन ये स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से सारे देवस्थानों का जीर्णोद्वार सिंधिया वंश में महाजी सिंधिया जी के समय हुआ, इनके राणोजी दीवान थे उनके कारण से जो स्कंद पुराण के एक अवंती खंड में एक एक देवस्थान का जो वर्णन है वो बनाएगा। इसके जो सबसे ऊपर वाला तल है वो नागपंचमी दिन साल के एक बार खुलता है,
0: अच्छा
2: उसके बाद में वो साल के बाद दोबारा नहीं खुलेगा, और मध्य में यहाँ ओंकारेश्वर है नीचे महाकालेश्वर है और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बीच में महाकाल है और नीचे ओंकार है, तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी एक महिमा है और वैसे ऐसा माना जाता है कि महाकाल शरीर की दृष्टि से ये हमारी प्रत्येक श्वास की गिनती बाबा महाकाल भगवान कृष्ण की दी हुई है, इसलिए रोम रोम में जो हमारी ओंकार की ध्वनि जो निकलती है वो ओंकार महाराज की है और ये जो दी गई आयु ये महाकाल की,
0: अच्छा
2: ये परमात्मा की लीला।
0: अच्छा मोहन यादव जी मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश वो राज्य है
3: जिसे कृषि कर्मण अवार्ड तक मिला है। अन्नदाता नाराज क्यों हो गए आपसे?
4: कहा नाराज हुए,
3: आप मार्च करते हुए आ रहे थे।
4: तो हमने क्या मना कर, उनका अपने अधिकार की बात करेंगे। हाँ। हमने मान ली, चले गए।
3: मान ली है आपने?
4: भाई हमको क्या आपत्ति है।
3: हाँ।
4: हमने कहा कि संवाद से हल होगा, इसलिए हमने किसी को लाठी नहीं चलाई, किसी को रोका नहीं। अगर वो बात करना है तो हमको बात करना चाहिए, हम तो संवाद करते ही हैं।
3: तो केवल ये एमएसपी का मुद्दा है या सिंचाई, आप कह रहे हैं कि आपने नहर?
4: नहीं, हमने सभी क्षेत्रों में काम किया, बिजली, पानी, सड़क, एमएसपी पे खरीदी। आज बताइए, पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं अगर कहीं खरीदा, उपार्जन हुआ, 14.25 लाख किसानों से 104 लाख मेट्रिक टन वो मध्यप्रदेश ने खरीदा है। ये मध्यप्रदेश के अंदर की आज की स्थिति है कि हम अपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं। उसमें सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता है किसानों के साथ है, जो हमारा कृषि आधारित राज्य बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था है। अब दूध उत्पादन पे भी हम बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में दूध उत्पादन देश में हमारा 12% होता है। हम प्रयास कर रहे हैं 5 साल में इसको 20% तक ले जाए।
3: अच्छा,
4: तो दूध की राजधानी बना देंगे मध्यप्रदेश को। आज की स्थिति में
3: आपका लक्ष्य है,
4: हमारा टारगेट है, क्योंकि इससे कई सारे लोगों को, किसानों को, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए फसल के साथ दूध उत्पादन एक बड़ी भूमिका है।
3: हाँ, अब चूंकि हम महाकाल के सामने इस समय हैं, तो मोहन यादव जी, महाकाल से सबसे बड़ी चीजें क्या सीखते हैं अपने जीवन में, क्या आत्मसात किया है आप?
4: देखिए, महाकाल सबसे, महाकाल मतलब काल
3: जी,
4: और काल मतलब समय। उस समय परमात्मा ने सबको नियत दिया है, ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ऐसे में परमात्मा उस समय का सब सदुपयोग करे, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करे, जो जिसका दायित्व तो मिला उस दायित्व तो का ठीक से निर्वहन करे। इतनी महाकाल से कामना और परमात्मा वो सफल करे।
3: मुख्यमंत्री बने थे उस समय, किसी को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता होगा कि आप सीएम बनने वाले हैं, लेकिन समय बीता है, अब आप ढल चुके हैं अपने रोल में, और अगले चुनाव से पहले तक आपका लक्ष्य क्या है?
4: हमारा 3-4 तरह से काम करने का लक्ष्य है। एक तो 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, 20% दूध हम परचेस करें, इस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। हमारा 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़े, उस पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे हर क्षेत्र के अंदर रीजनल इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करते हुए, रोजगार के अवसर देते हुए सब क्षेत्रों में काम किया है, उसका धरातल पे उतार करके वो इंडस्ट्रियल लोकार्पित कर देंगे। एआई से लगा करके ड्रोन, और ड्रोन से लगा कर डिजिटल, और डिजिटल से हेल्थ, एजुकेशन, सब सेक्टर में हमारा राज्य देश में नंबर वन का राज्य बने, इस पे हम काम कर रहे हैं।
3: और ये आज चूंकि फ्राइडे है, आपने कहा फ्राइडे फील्ड में,
4: बिल्कुल,
3: इसका क्या?
4: हमने कहा कि ये जो हमारी कार्य पद्धति है, मोटे तौर पर जैसे सोमवार से लगा गुरुवार तक आप मीटिंग करिए, प्लान करिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन प्रत्येक शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे अधिकारी कर्मचारी, जिले के अधिकारी कर्मचारी सब फील्ड में रहे, उस दिन कोई मीटिंग नहीं रहे। और जनता के बीच जो हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन होने वाला है, जो हम काम कर रहे हैं, उनकी कठिनाई, उनकी अच्छाई, उनके बीच में समाधान करना, और ऐसे में जो व्यवधान हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, सकारात्मक अच्छा काम कर प्रोत्साहन देना, इस दिशा में।
3: तो आपका फ्राइडे कैसे बीता है?
4: मेरा आज, मैं छिंदवाड़ा गया था, छिंदवाड़ा के अंदर बहुत अच्छे से हमने अपने सारे कामों को किया है। वहाँ अच्छे प्रतिभाशाली बच्चों से भी मिले, अच्छे उद्योगपतियों से भी मिले, सभी प्रकार के नवाचार करने वाले स्टार्टअप वालों से भी मिले, शासन की योजनाओं का नीचे क्रियान्वयन भी देखा, और जहां गलतियां दिखी तो हमने एक सीएमएचओ को सस्पेंड किया, एक तहसीलदार, एक पटवारी, तीनों को हमने मौके पर सस्पेंड करते हुए, और वहीं जिनने 1039 अधिकारी कर्मचारी जिनने अच्छा काम किया उनका प्रमोशन किया, तो उनने हमारा सम्मान भी किया। तो अच्छे काम में भी हम उनके साथ हैं, और कठोर कार्रवाई में भी जनता की आवश्यकता के आधार पर अगर निर्णय लेना तो हमारी सरकार में खड़ी है।
3: मोहन यादव जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
4: बहुत धन्यवाद।
3: देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
1: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
0: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
2: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
3: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
4: वो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माय अंकल एंड दैट ही इज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी। लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फ्राक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
0: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
5: तो प्रधानमंत्री साहब कोई भी मिल सकता, तो मैं उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साढ़े वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असीं कल्ले लड़ा।
0: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बत्सी, चंडीगढ़, आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग। इन एनी कैंपेन वी हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अफेयर्स। आवर प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट देयर इज सो मच करप्शन दैट देयर इज अ ह्यूज लाइन इन व्हाट वी हैव टू सीक्वेंस। डोंट वरी, दिस इशू वी आर गोइंग टू टेक इट अप इन अ मैसिव वे, बिकॉज दिस इज डिस्ट्रॉइंग पीपल्स कार्स, डिस्ट्रॉइंग पीपल्स स्कूटर्स, डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइव्स, एंड लिटरली इज स्टीलिंग डायरेक्टली फ्रॉम देम।
1: इफ देयर इज कंटामिनेशन, the contamination can take place in anything. Contamination can take place in the food you eat, in the air you breathe. It can take place in kerosene, it can take place in diesel, it can take place in anything. You know, somebody said there was some one organization wrote a letter. That letter was, I think, 28th July. 2 weeks before that, we had started rigorous testing. They found 4 cases out of 107,000 petrol pumps, with 6 crores to 7 crores going every day. So obviously someone out there is trying to place some things out of context.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों के साथ सरकार की दो दो बैठकें, चौथी परीक्षा रद्द करने का अल्टीमेटम, फीडबैक के लिए ईमेल और नंबर जारी किए गए। दिल्ली आईआईटी में जनरेशन जेंजी के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वालों को दिया जिंदगी का मंत्र, बताया कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस।

0: राहुल के महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू का तंज, लगता है कांग्रेस अब बिना शर्त समर्थन देने को तैयार। राहुल गांधी बोले 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है बिल। सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की फूलों की बारिश। मेरठ में पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा रूट और सुविधाओं का लिया हवाई सर्वेक्षण, फिर मंच पर आकर किया शिव भक्तों का स्वागत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक बात अक्सर मजाक में कही जाती है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। शायद आप भी समझ गए होंगे कि हम कौन से देश के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला ये सोचकर किया था कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के वजूद को मिट्टी में मिला देंगे, नए रणनीतिक समीकरण बनाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। बावजूद इस समय अमेरिका का सबसे ज्यादा खतरे में है, नए समीकरण भी बन रहे हैं लेकिन बिना अमेरिका के, और पैसा भी कमाया जा रहा है लेकिन वो भी ईरान और ओमान के खाते में ही जा रहा है। आज रणभूमि में बात करेंगे इन्हीं चुनौतियों की जो अमेरिका के सामने आकर खड़ी हो गई है। लेकिन रणभूमि स्पेशल में आज आपके लिए कौन सी बड़ी खबरें होने वाली हैं? वो ऐसी खबरें जो ना सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के साथ भी जुड़ी हुई है। उनका असर, उनका सरोकार भारत से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आज रणभूमि में बात करेंगे, पहली खबर हम आपको बताएंगे, अमेरिका और ईरान में अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। डील की बातें भी हो रही हैं और युद्ध की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर में आपको बताएंगे, ईरान के राष्ट्रपति ने वो धमकी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमें छेड़ा गया तो फिर अमेरिका को अंजाम भुगतना पड़ेगा। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप की परेशानियां भी आपको बताएंगे, क्योंकि ईरान से युद्ध को लेकर ट्रंप अब अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं, अमेरिका में ही उन्हें घेरा जा रहा है। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर में आपको लेकर चलेंगे हम रूस युद्ध की और, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन का भेजा फ्राई हो चुका है जिसका खामियाजा यूक्रेन को और ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। रणभूमि स्पेशल में आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की वो 3D साजिश जिसमें उसने तुर्की और सऊदी अरब को सामरिक समझौता किया है, ये त्रिकोण सीधे सीधे भारत के खिलाफ शहबाज और मुनीर की एक नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आज रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह सर होंगे और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की उस खबर की जिसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। शुरुआत करते हैं मध्यपुर में, जहां पर हथियारों की खामोशी क्या पहले से कोई बड़े तूफान की शांति तो नहीं है, या फिर स्थायी सीज फायर की ओर लगातार दोनों देश बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच कई देशों की मध्यस्थता के जरिए बातचीत आगे बढ़ तो रही है, लेकिन हॉर्मूज को लेकर दोनों ही अपना अड़ियल और डेडलॉक रवैया अपनाए हुए हैं, कोई बदलाव नहीं है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने ताजा बयान में कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने दुनिया को एक बार फिर से बड़े दावे कर चौंका दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही ईरान के साथ बातचीत और शांति समझौते पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है।

0: अमेरिका और ईरान में अब आर पार। ईरान की चेतावनी, गड़बड़ की तो हम हैं तैयार। कब खत्म होगा हॉर्मुज में हाहाकार? मिसाइलें बेशक ना गरज रही हों, लेकिन बातों की बमबारी जारी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे युद्ध विराम के इस दौर में आम जनता और सेनाएं बेशक राहत महसूस कर रही हों, लेकिन नेताओं के बयान चिंगारी को आग में बदलने के लिए काफी हैं। इन सब के बीच हॉर्मुज का पेच तो ऐसा फंसा है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईरान साफ साफ कह रहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, और जहाज उसके तय रूट के अलावा किसी दूसरे रूट पर निकले तो उन्हें हमला झेलना पड़ेगा। उधर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा है। उसका कहना है कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाज आई सामान्य और बिना खौफ के होते ही वो नाकेबंदी खत्म कर देगा। दोनों पीछे हटना नहीं चाहते, और नतीजा ये है कि हॉर्मुज के हालात आज भी वही हैं जहां महीनों पहले थे। ऊपर से बयानों का बवाल भी थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले आपको सुनाते हैं ईरान के राष्ट्रपति का ये दो टूक बयान, जो सीधे सीधे अमेरिका पर कई निशाने साध रहा है।
1: باید بدونیم چیکار میکنیم کی میخوایم بجنگیم کی میخوایم صلح کنیم کی میخوایم در حقیقت اون کار خودشو بکنه من کار خودمو بکنم اصلا نه جنگ نه صلح کار خودشو چین و آمریکا با هم دوستن بزرگترین دشمن آمریکا چینه چرا دعوا نمیکنن چین کار خودشو میکنه روز به روز داره قوی تر میشه وقتی میتونیم با گفتگو حق و حقوقمون رو بگیریم وقتی ما تونستیم در همین تفاهم نامه‌ای که انجام دادیم جنگ لبنان رو به اصطلاح جلوشون رو بگیریم هر روز اونجا 100 نفر 200 نفر از
0: پزشکیان امریکا اور چین کے رشتوں کے بہانے تنج کس رہے ہیں تو ٹرمپ نے بھی چین کو چڑھانے والا بیان دے دیا ہے
2: China is smart and they're using coal they're building 58 coal plants right now generating plants all coal they don't have too much wind. You know, they sell us wind turbines, but they don't use too many of them. So it's because they're smart. They sell them, but they don't use them. They have one that's pretty big. Does it work? It just is for purposes of show. When they go to look at a turbine, they go and show them, and here we are. But they never work. So it's crazy. But clean, beautiful coal is.
0: वैसे ट्रंप तो हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद जगा रहे हैं कि युद्ध बस खत्म होने ही वाला है. क्योंकि उनकी कोशिशें लगातार रंग ला रही हैं।
3: Oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please.
0: ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को भी जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते रहे हैं, लेकिन इजराइल की नीयत और नीति ऐसी नहीं है।
1: मैं मुझे किसी में ज़ोर न गया। मैं ज़ीरो बार ज़ोर नहीं मिले। बाकी करार ज़ीरो बार ज़ोर नहीं। پس بهترین راه اینه که اونا دست از سر ما بردارن ما هم دست از سرشون برداریم ولی خب دست از سر ما بر نمیدارن نه اینکه ما با اونا میخوایم بجنگیم اونا نمیخوان ما رو ذلیل میخوان
0: فی الحال کئی دیش امریکہ اور ایران کے بیچ یدھ ویرام کو ستھائی طور پر لاگو کرنے کے لیے جٹے ہوئے ہیں ادھر امریکہ اپنی ضد پر اڑا ہے لیکن تیل کا یہ کھیل میل ملاقاتوں کے بیچ آپسی سہمتی کب تک بنا پائے گا اس کا انتظار پوری دنیا کو ہے आज तक ब्यूरो
4: आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की चुनौतियां क्या है उनकी परेशानियां क्या है डोनाल्ड ट्रंप इस समय चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी कई वजह भी सबसे पहला दबाव उन पर जो है वो ये कि अमेरिका को अपने लगातार हथियारों की कमी को झेलना पड़ रहा है खासतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइलों की कमी अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है दूसरा दबाव यह है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान की संधि हो रही है जिसमें अमेरिका बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तीसरा बड़ा दबाव यह है कि पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर सामरिक समझौता किया है जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम होती नजर आ रही है यानी सऊदी आने वाले वक्त में चाहता है कि अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहे बल्कि अपने नए ऑप्शंस को तलाशे चौथा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर यह है कि उन्हीं के घर में अब वो घिरते जा रहे हैं अमेरिका में ही उनके लेकर उनकी नीतियों को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला जारी है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बयानों में यह भी कहा जा रहा है कि वो इस युद्ध में उलझ गए हैं और वो इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता नहीं तलाश पा रहे। यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई मसलों के ऊपर खिरते जा रहे। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें अमेरिका में रोजगार में कमी और बढ़ती लागत में जवाब में वहां के सीनेटर ने चक शूमर ने डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक कामकाज और ईरान के साथ उनके टकराव की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर किसी की नौकरी जानी चाहिए तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नौकरी जानी चाहिए। अमेरिकी डेमोक्रेट सीनेटर ने अमेरिका में 23,000 नौकरियों के खत्म होने को ट्रंप की विनाशकारी नीति और ईरान के खिलाफ उनके लापरवाह जंग के नतीजों को बताया। आइए आपको चक शूमर के उस बयान को सुनाते हैं।
5: The jobs report this morning revealed America lost 23,000 jobs because of Trump's disastrous agenda, his tariffs, and his failed war. The only person who ought to lose their job right now is Donald Trump. Trump sowed mayhem in our economy with his costly war, with his chaotic and inconsistent economic policies, and with his nonstop corruption. But he's not suffering the consequences. Working Americans are. Trump cost America 23,000 jobs last month. But he has the gall to call this, quote,
6: "We have the greatest economy maybe in the history of the world for any country."
5: What planet is he on? Does he not care at all about the people, the 300 and some odd million Americans he represents? It's cruel and callous to the people who are no longer earning a salary.
4: और इसी से जुड़ी एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें जो डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां बढ़ाने वाला है। अमेरिका में 11 अमेरिकी सीनेटर ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव रखा है। 11 अमेरिकी डेमोक्रेट सीनेटर ने कांग्रेस में एक प्रस्ताव किया है जिसमें उसने ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने की मांग की है। अमेरिकी सीनेटर जॉन हिकिन लूपर ने कहा है कि एक संदेश में उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों की जान गई है, पेट्रोल और केमिकल फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ रही हैं और हमारी सेनाओं के हथियारों का भंडार कम हो रहा है। हालांकि युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में घोषणा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ नए वित्तीय लेनदेन रोकने के लिए नए कदम उठाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हमारे कदम वित्तीय लेनदेन करने वाली कंपनियों और शेल कंपनियों के उस नेटवर्क को निशाना बनाते हुए लिए गए हैं जिसमें ईरान को लाखों डॉलर ट्रांसफर करने का काम अब भी जारी था। और एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ईरान से जहां पर जिसने यूएस एयरफोर्स के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें जारी की। आपको बता दें कि ये वही फाइटर जेट है जो लगातार गिर गया था, जिसमें SX-2 इजेक्ट सीट और एयरक्राफ्ट की कैनोपी भी शामिल है। दरअसल उसके हथियार या फिर उस जो रिंकेजेस थे यानी उनके जो मलबा था उस मलबे को दिखाया गया है ईरान में। एक बार फिर से आपको याद होगा कि ईरान ने कहा था कि अमेरिका के कई फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार ईरान में गिरे हैं। एक पायलट भी था जिसको रेस्क्यू कराने का काम वहां यूएस फोर्सेस ने किया था, उसके मलबे की तस्वीरें लगातार ईरान ने दिखानी शुरू कर दी। ईरान ने कहा कि देखिए ये वो क्ल्यू है, ये वो लगातार सबूत है जो दिखाते हैं कि अमेरिका को, अमेरिका के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। और ईरान के हमलों में IRGC ने भी दावा किया है कि अबू असन अल अमीरी के अनुरोध पर आज का हमला उसने सऊदी अरब और अमेरिकी बेस पर टाल दिया। दरअसल एक तरफ अमेरिका की तरफ से कहा गया उन्होंने सऊदी के हवाले से उनके अनुरोध पर हमला ईरान पर टाला, वहीं अब दूसरी तरफ IRGC ने भी दावा किया है कि उन्होंने भी सऊदी अरब और अमेरिकी बेसिस पर हमले टाल दिए हैं। लगातार ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी एक मानवीय चेहरा रखता है, वो भी लगातार इस मानवीय चेहरे के तहत अपने ऑपरेशंस को रोकता है अगर बातचीत आगे बढ़ती है तब।

0: और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह सर, ये आखिरकार हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से घिरे हुए हैं, जिस तरीके से उनके हथियारों की सप्लाई कम हो रही है, सीनेट में उनके सीनेटर जो है उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार एक नया समीकरण बन रहा है, ये तमाम तो अमेरिका सोचकर इस युद्ध में नहीं कूदा था। सर आपका ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आप उसको दोबारा से दुरुस्त कर सके तो मैं आपका रुख दोबारा से करूंगा। हमारे साथ संजय मेस्टन सर भी हैं। संजय मेस्टन सर, यही सवाल कि आखिरकार अमेरिका इन सब चीजों को, इन खामियाजों को सोचकर तो इस युद्ध में नहीं कूदा था, लेकिन अब वो सारे खामियाजे अमेरिका के सामने आ रहे हैं।
1: सुमित थोड़ी ना आवाज कट सी रही है, बट मैं आपका सवाल जो समझा हूं कि आप पूछ रहे हैं अमेरिका घिर चुका है और तो क्या पता नहीं था, यही आप पूछ रहे हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: सुमित देखिए, साफ जाहिर है कि अमेरिका आज की तारीख में एक दलदल में फंस चुका है, और वो आपने चार पॉइंट्स जो पांच पॉइंट्स बताए हैं डोमेस्टिकली तो हमने देख ही लिया है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहां से, सेनेटर से और डेमोक्रेट से खासकर। सबसे पहला तो प्रॉब्लम है कि हथियार की कमी, और जनरल केन ने साफ बोला है कि अभी हमें ऑफ रैंप ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसका मतलब उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म करने की गुजारिश कर दी अपने प्रेसिडेंट को।
0: बिल्कुल।
1: जो ओमान और ईरान के बीच में ये जो टॉक्स हो गई है वो भी तकरीबन फाइनलाइज तो हो गई है, अभी शायद साइन होना बाकी है, तो वो भी साफ जाहिर दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फाइनल कंट्रोल ईरान का ज्यादा रहेगा, ओमान का रहेगा, लेकिन कंट्रोल अमेरिका का हट जाएगा। तीसरा, जो अमेरिकन फोर्सेस वहां डिप्लॉयड हैं जो पर्शियन गल्फ में, उसके लिए भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब वो बोल रहे हैं आपने अगर उनको वहां पर कुछ भी किया तो हम आपकी और इसराइल की शिप्स, अमेरिकन और इसराइली शिप्स को वहां से जाने नहीं देंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है। और तीसरा, जो सऊदी अरेबिया ने ये पहल की है एक टर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक करने की, तो ये भी एक ऑब्वियसली मैं तो बोलूंगा तमाचा है अमेरिका के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया को थोड़े दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि हम आपको सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद करेंगे लेकिन आपको अब्राहम अकॉर्ड में साइन करना है, तो अब्राहम अकॉर्ड भी अब हटता हुआ दिख रहा है, और मेरे ख्याल अब सऊदी अरेबिया ने रियलाइज कर लिया है कि अमेरिका ने उनको डिच कर दिया है। तो कहने का मतलब है ये हर जगह से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप घिर चुके हैं और उनके सामने अभी ना रास्ता कोई दिख ही नहीं रहा है। क्या उनको ये मालूम था पहले? मेरे ख्याल उन्होंने शायद ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ जो 28 फरवरी के अटैक्स प्लान किए थे उसमें साफ जाहिर है कि वो उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और मिलिट्री असेसमेंट को इतना गौर नहीं देखा, और उन्होंने शायद दुश्मन का या ईरान के काउंटर रिएक्शंस और उनकी शायद इंटेलिजेंस फेलियर थी, उनको ये नई उम्मीद थी कि ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स द्वारा गल्फ कंट्रीज को टारगेट करेगा और

0: इस लड़ाई को कुछ ऐसी शेप दे देनी है कि आप जनता के पास जा सके और वोट मांग सके। वो शेप नहीं आ पा रही, कोशिश करने के बावजूद वो शेप आ नहीं पा रही है। और उसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि हर एक अपना कुछ डील कर रहा है, ईरान और ओमान हॉर्मुज की डील करने लगे हैं, और जैसे मेस्टन साहब बता रहे थे कि अरब मुल्कों ने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया है। तो सारे जो हालात हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम तो आशावादी रहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आए। इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, तो हम तो बहुत जल्दी चाहते हैं कि कोई डील हो, और सारे लोग यही मान रहे
1: सर
0: हैं कि
1: बिल्कुल
0: इसके अंदर ईरान और ओमान कोई ऐसा चार्ज लगाएंगे जिसको टैरिफ का नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो होगा फैसिलिटेशन चार्ज,
1: बिल्कुल, लेकिन सर दिक्कत तो
0: दो
1: इसका
0: परसेंट
1: मतलब
0: या
1: बिल्कुल केजी सिंह, इसका मतलब दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही देखिए ओमान और ईरान के बीच में समझौता हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का के ऊपर जो उसका आर्थिक दबाव बनेगा, जो टैरिफ वो वसूलेंगे, वो भी इन्हीं देशों को चुकाना पड़ेगा। यानी मानिए अमेरिका तो वहां से अपने आप को पीछे खींच लेगा, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो हम अपने दर्शकों को बताएं, जो लगातार यमन की तरफ से, हूती की तरफ से आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि यमन की सेना द्वारा मारिब पर किए गए हमलों में सऊदी ड्रोन यूनिट में कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला अल अंजी मारे गए हैं। इस खबर की अब पुष्टि हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यमन के सेना, या फिर आप कह सकते हैं कि लगातार जो सऊदी पर अटैक किए गए थे, उसमें सऊदी ड्रोन यूनिट के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला अली अंजी मारे गए हैं। इसको लेकर भी लगातार अब जो इनपुट था वो क्लियर हो चुका है।

0: और देखिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के पास लगातार अपने डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइलों की कमी हो रही है, लगातार हथियारों की कमी हो रही है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अरब देशों को 5,000 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइल्स की बिक्री पर अमेरिका ने मोहर लगा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय या फिर कैसे विदेश विभाग ने कई अरब देशों को 5,250 पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्ट बेचने की पुष्टि की है। विभाग ने बताया है कि मिसाइल बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को उनके मिसाइल स्टॉक की को भरने के लिए दी जाएगी। दरअसल ये मजबूरी भी है अमेरिका की, क्योंकि अगर अमेरिका इनको ये मिसाइल प्रोवाइड नहीं करता तो फिर आने वाले दिनों में ये तमाम देश जो हैं वो अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी चेंज कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज्यादा बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शायद इसी वजह से एक फौरी तौर पर अमेरिका इन तमाम देशों को ये पेट्रियट मिसाइल्स देगा, ताकि कम से कम इनको ये सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका इनके साथ खड़ा है और अमेरिका पर किसी भी तरीके के मिसाइलों के भंडार की कमी नहीं हुई है। संजय मेस्टन सर, अभी जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये मजबूरी बन गई है अमेरिका की अपने वजूद को दिखाने के लिए, संभालने के, कि देखिए हमारे भंडार में कोई कमी नहीं हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सऊदी का जो टेक है, लगातार जो यूएई का टेक है, वो तो ये दिखाता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं।
1: सुमित, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ही कट गई है, कुछ नहीं समझ में आया।
0: मेरा सवाल सर आपसे दोबारा से था, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो।
1: नहीं आ रही है,
0: मैं आपका दोबारा से रुक करूंगा सर, केजे सिंह सर का रुक कर लेता हूं। केजे सिंह सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो।
2: मैंने ये सवाल सुना है
0: जी,
2: और मैं कोशिश करता हूं आपको इसका जवाब देने का, कि और शायद मेस्टन साहब भी उससे सहमत होंगे। देखिए ऐसा है, जो ऑर्डर्स है, जो सप्लाई का कमिटमेंट है, वो इमीडिएटली तो पूरा नहीं होगा, ये स्प्रेड होगा कई सालों तक। ये एक तरीके से किसी को बांध लेने की कार्रवाई है, और लॉकेट मार्टिन नहीं, मुझे तो आ रहा है
0: जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जो अब खाड़ी से आ रही है, जहां पर यमन की मिसाइलों के खतरे से बचने के लिए सऊदी तेल टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लिया है। अमेरिकी समाचार एजेंसी के मुताबिक लाल सागर में सऊदी बंदरगाहों

0: की ओर जा रहे कुछ तेल टैंकर सऊदी अरब के बजाय अब स्विस नहर या मिस्र के बंदरगाहों को अपनी अंतिम मंजिल बता रहे हैं। दरअसल होता यह है कि जो भी टैंकर मूव करता है वो अपने डेस्टिनेशन को बताता है, लेकिन अब ये हो रहा है कि सऊदी के तमाम टैंकर जो हैं वो अपने डेस्टिनेशन या तो मिस्र यानी इजिप्ट बताते हैं या फिर स्विस कैनल के आसपास के इलाकों को बताते हैं, और इसी वजह से ये तरीका बदलकर वो चाहते हैं कि उनके ऊपर हूती का अटैक ना हो। असली मकसद सऊदी कच्चे तेल को लोड करना, जिसके पीछे यमनी मिसाइल लगातार हमले कर रही है, और इसी वजह से डेस्टिनेशन चेंज कर वो सऊदी की जगह इन दूसरी लोकेशंस को अपने अपने आप कह सकते हैं कि अपने पोर्टल में डालते हैं, ताकि कम से कम उनके ऊपर इस तरीके के अटैक ना हो सके। और चले, क्या पुतिन अब यूक्रेन पर निर्णायक हमला करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश का एक और त्रिकोण बना लिया? ये तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आगे आगे
4: उधर
3: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: एक जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते. मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती. लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है. और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब PVR आइनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए. इसे जरूर देखिए. PVR आइनॉक्स 7th August onwards.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए, क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण में फंसी कंपनी को नए हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने का टेंडर मिलना चाहिए? क्या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करने वाली कंपनी को मिला नया टेंडर निरस्त होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरी कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए? एनएचएआई के अधिकारियों को घूस देकर प्रोजेक्ट पाने का खेल पुराना है, आरोपों पर यकीन करें तो इस खेल में पीएनसी पुरानी खिलाड़ी है। 2024 में सीबीआई ने हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत मामले में केस दर्ज किया था। मामले में एक एनएचएआई अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। पीएनसी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई थी। यही नहीं, अवैध खनन से जुड़े मामले में कंपनी पर करीब 104 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। पीएनसी कंपनी के दामन पर दाग ही दाग हैं, लेकिन एनएचएआई को ये दाग अच्छे लगते हैं। क्या इसकी वजह कंपनी से जुड़ा बीजेपी सांसद का नाम है? पीएनसी इंफ्राटेक के घटिया निर्माण के बावजूद मिल रहे ठेकों पर उठ रहे सवालों की कई वजह हैं, क्योंकि कंपनी का सीधा कनेक्शन बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद नवीन जैन 2017 तक पीएनसी इंफ्राटेक के फुल टाइम डायरेक्टर रहे। साल 2017 में नवीन जैन बीजेपी के टिकट पर आगरा के महापौर बने। फरवरी 2024 में नवीन जैन को बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बनाया। राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में पीएनसी के 291 करोड़ के शेयर होने की घोषणा की। साथ ही ये भी बताया कि नवीन जैन कंपनी में सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन बड़े शेयर होल्डर होने की वजह से उनके हित जुड़े हुए हैं। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन नवीन जैन के बड़े भाई प्रदीप कुमार जैन हैं। नवीन जैन के भाई योगेश कुमार जैन और चक्रेश कुमार जैन कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। नवीन जैन खुद कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं। वक्त के साथ राजनीति में सक्रिय होते गए और कंपनी के ऑपरेशंस और कंट्रोल उनके भाइयों के हाथ में रहा, लेकिन कंपनी के शेयरों में बड़ी हिस्सेदारी आज भी बीजेपी सांसद नवीन जैन की है। यही वजह है कि कंपनी और कंपनी से जुड़े सांसद की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास हाईवे देने का दावा करते हैं, अमेरिका जैसे हाईवे की उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन अमेरिका तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे की मरम्मत आज पेडेस्टल पंखों के भरोसे है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: के बाद रणभूमि स्टेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से बड़े हमले किए गए। रूस के ताबड़तोड़ हमलों में कीव के कई शहरों में तबाही का मंजर दिखने लगा है। इन हमलों में कई लोगों की मौत हो गई है तो कई लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने सुसाइड बोट्स के जरिए रूस के एक बड़े गैस प्लेटफॉर्म को तबाह करने में कामयाबी हासिल कर ली है।
4: क्यू पर रूस ने फिर बरसाए ताबड़तोड़ बम। एक बच्चे समेत तीन ने गंवाई जान। यूक्रेन का पलटवार, सुसाइड बोट से किया रूस का नुकसान। हर दूसरे दिन क्यू के अलग अलग शहरों को रूस निशाना बना रहा है। इनमें सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। आग की लपटों में घिरा यह इलाका क्यू रीजन का पुखियुका है, जहां रूस की ताबड़तोड़ बमबारी में कई इमारतें जलकर राख हो गई। मिसाइलों से किए गए हमले से इस इलाके में एक के बाद एक धमाके होने लगे और कई इमारतें, वाहन और दुकानें धू धू कर जलने लगे। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई परिवार आग के शोलों के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गया और सारी रात आग बुझाने और घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाने का काम किया गया। इन हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के थे।
5: मृतकों में 3 साल का एक बच्चा और उसके दादा दादी शामिल थे। उसके माँ बाप, 15 साल के भाई और एक पड़ोसी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूस कई मोर्चों पर यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। ओडिशा के पास उसने 3 मिलिट्री कार्गो पर हमला करने का दावा किया है। उसका आरोप है कि ये कार्गो जहाज सैन्य उपकरण और हथियारों को यूक्रेन ले जा रहे थे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने सिजरान और इल्स की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला कर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हमले से पूरे रिफाइनरी परिसर में आग लग गई। आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। यूक्रेन की नेवी ने भी एक वीडियो जारी कर रूस के गैस प्लेटफॉर्म को नष्ट करने का दावा किया है। दावा तो ये भी है कि इस हमले में 15 सुसाइड बोट्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। 4.5 साल से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है। रूस की सेना एक तरफ जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों से हर दिन कीव और आसपास के इलाके में भीषण बमबारी तेज कर दी गई है। एंटी मिसाइल सिस्टम की गैर मौजूदगी की वजह से यूक्रेन रूस के मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम तो हो रहा है, लेकिन उसके ड्रोन लगातार रूस की तेल रिफाइनरी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज तक पे
3: तो आपने अभी हमारी एक खास रिपोर्ट देखी। अब रुख करते हैं एक बड़ी खबर का, जहां पर रूसी सेना ने भी रात भर इस्कंदर एम मिसाइलों और गैरन ड्रोन से इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैन्य और ईंधन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त हमले किए। कीव के अलावा माइक्रोलिव, खार्किव, सुमी और चेनिहाइव में इन क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। कीव में कम से कम 10 धमाकों की रिपोर्ट की गई है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि औद्योगिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खबर यह भी है कि कीव के एक फ्यूल डिपो, जो यूक्रेनी सेना को पेट्रोलियम उत्पादन सप्लाई करता था, उसे भी नष्ट कर दिया गया है। कीव क्षेत्र में भीषण आग भी लग गई। कई जगहों पर इसके नुकसान की खबरें भी मिल रही है। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि काला सागर यानी ब्लैक सी में हथियार ले जा रहे 2 कार्गो जहाजों को भी रूस ने निशाना बनाया है। दरअसल ब्लैक सी के अंदर रूस सबसे ज्यादा यूक्रेन के उन कार्गो शिप्स को टारगेट कर रहा है, जो दरअसल यूक्रेन के लिए साजो सामान यानी खाने पीने के सामान के साथ साथ हथियारों को भी सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा कीव से लगातार जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है, जो रसद की लाइनें जा रही है, उनको भी लगातार रूस काटने के लिए बड़े अटैक्स कर रहा है। रूस की कोशिश यह है कि आगे के इलाकों में यानी जो फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर यूक्रेन की फोर्सेस तक हथियार और साजो सामान ना पहुंच सके और फिर रूस जो है अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस को और तेजी से इलाकों में आगे बढ़ा सके। और रूस के अटैक को लेकर एक बड़ी खबर, एक बड़ा इनपुट यह भी मिल रहा है, रूस के साथ उत्तर कोरिया की फोर्सेस भी लड़ रही थी। अब उत्तर कोरिया ने फोर्सेस ने कुछ फोटो और कुछ फुटेज जारी किए, जिसमें रूसी संघ यानी रूस के कुछ इलाके में यूक्रेनी लड़ाकों से आजाद कराने के लिए नॉर्थ कोरिया की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, उनके ऑपरेशन कैसे थे, इसकी तस्वीरें जारी की गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया की वो तस्वीरें, सैनिकों की तस्वीरें साझा की गई थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस ने, आर्मी ने ये खुद वीडियो जारी किए हैं। दरअसल कुर्स के इलाके में 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूस की मदद की थी ताकि कुर्स के इलाके को यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस से खाली कराया जा सके। अब वो इलाका पूरी तरीके से कहा जाता है कि रूस के हाथ में है, दोबारा से वहां पर यूक्रेन के सैनिकों की मौजूदगी नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया की मदद से ही रूस ने उस इलाके को खाली कराया था। और देखिए यूक्रेन की दिक्कतें भी चारों तरफ से बढ़ती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम्स के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत खुद अमेरिका को ही है। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है पहले से इन मिसाइलों की कमी का रोना रो रहा है। यूक्रेन लगातार तमाम यूरोप के देशों से इन मिसाइलों की खेप को लेकर मांग करता रहा है, लेकिन ऐसे में अब अमेरिका ने कहा है कि वो भी अब यूक्रेन को इन पेट्रियट मिसाइलों के खेप नहीं दे पाएगा। Successfully conducted a flight test today of the terminal high altitude area defense. और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केजे सिंह सर, क्या आपको लगता है कि अभी ताजा हालात में यूक्रेन के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो रूस के साथ लंबी लड़ाई लड़ सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये कुछ ही महीनों, कुछ ही हफ्तों की बात रह गई है?
6: देखिए सुमित, एक नया मोड़ जो लड़ाई में आया है, आपने भी इसको फॉलो किया होगा। अब यूक्रेन कोशिश ये कर रहा है कि लड़ाई को रूस के अंदर जाकर उनके सिटीजन्स नागरिकों को हिट करें, जो उनका अमेजोन की तरह से उनका एक नेटवर्क है जिसको बोलते हैं वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड बेरीज के 40 जो गोदाम है, जो वेयर हाउसेज हैं, उनको टारगेट किया गया है। और एक टैनबर्ग जो कि यूरल के पास है, जहां मैं भी कभी गया था टैंकों की ट्रायल्स के लिए, वो एक बहुत डीप में सिटी है, वहां तक मार की गई है। तो मेरे विचार से एक डेस्परेशन है। अब इस डेस्परेशन में कौन पहले पीछे हटेगा या एक्सेप्ट करेगा टर्म्स को, वो एक
3: बड़ा
6: बहुत निर्णायक मोड़ होगा। क्योंकि रूस ने तो लड़ाई को यूक्रेन के अंदर कैपिटल, एनर्जी स्ट्रक्चर्स, हर चीज को टारगेट कर रहे हैं। अब यूक्रेन भी लंबी रेंज के ड्रोन की मदद से, आप देखिए, अगर अमेजोन डिस्ट्रॉय हो जाए एक स्टेट का तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी चीज होगी। नागरिकों पे इसका फर्क पड़ेगा। और मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, बहुत बढ़िया रिपोर्ट नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की, पर वो भी तो ये बात दिखाती है कि रूस के पास लड़ने के लिए लोग ही नहीं है।
3: बिल्कुल,
6: वो बाहर से लोगों को लेके आ रही है।
3: बिल्कुल, और सर शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज दोनों देशों के साथ है कि आप मैन पावर कहां से लाएंगे। जब लंबा युद्ध जाता है कैजुअल्टी ज्यादा होती है, और शायद ये दोनों तरफ से, यानी रूस और यूक्रेन दोनों को झेलना पड़ रहा है। संजय मेस्टन सर, हम जब इस युद्ध को देखते हैं, हमने देखा, क्योंकि मैं भी जब ये वॉर कवर कर रहा था, मॉस्को में कहा जाता था कि मॉस्को हो, सेंट पीटर्सबर्ग हो, ये बहुत सुरक्षित है, यहां तक कभी जंग का दायरा नहीं आएगा। लेकिन यूक्रेन ने लगातार उस जंग के दायरे को मॉस्को तक पहुंचा दिया, और अभी भी ब्लैक सी हो, आप कह सकते हैं कि क्रीमिया का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर, रुस्तोव के इलाके में लगातार यूक्रेन भी बड़े अटैक्स कर रहा है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ने भी अपने आप को साबित किया है ड्रोन वॉरफेयर के अंदर, मिसाइलों की ताकत से, कि वो भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है रूस को?
7: बिल्कुल सुमित, यूक्रेन ने एक ये बहुत बड़ा प्रूफ दे दिया पूरे विश्व को कि उसकी जो ड्रोन शक्ति है वो सॉलिड है। और देखिए, 4:30 तक ये लड़ाई को खींचना एक्चुअली बहुत कमेंडेबल है। दूसरा, यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजी पहली रही थी, ग्राउंड ऑफेंसिव भी किया था, जैसे आपने बताया था कुर्स को, वो बड़ा एक अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनूवर था, और साथ में ड्रोन से तो हर जगह स्ट्राइक कर रहे हैं, और कई बार क्रीमिया में अटैक्स किए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यूक्रेन के पास है कि उनके पास इंटरसेप्शन मिसाइल्स, पैट्रियट सिस्टम वगैरह तकरीबन ना के बराबर है। तो इसीलिए आज की तारीख में पूरी छूट, खुली छूट रशियंस के पास है, और रशियंस भी ड्रोन में माहिरता तो कर ली है। आज ही प्रेसिडेंट पुतिन ने एक जनरल को नॉमिनेट किया, वो तमाम ड्रोन ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करेगा। तो कहने का मतलब है ये ऑपरेशंस यूक्रेन, सॉरी रशिया बहुत भारी मात्रा में चलाएगा। उसके पास मिसाइल्स का जखीरा बहुत ज्यादा है और ड्रोन्स का भी है। लेकिन यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ड्रोन्स की, और जैसे केजे ने भी बोला था, मैं एग्री करता हूँ कि अब लड़ाई ये है कि यूक्रेन कितना उनपे क्षतिग्रस्त पहुंचा सकता है, खासकर इनके इकोनॉमिक एनर्जी टारगेट्स पे जो कर रहा है, और इनकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने की। लेकिन देखिए, रशिया एक बहुत बड़ा देश है, उसके पास स्टेइंग पावर ज्यादा है, और अमेरिका ने भी अपनी सीनेट में पास कर दिया है एक और सैंक्शन बिल जो अभी हाउस में शायद पास हो जाएगा सितंबर में। और सर्बिया में अभी जेलेंस्की ने जाके अभी विजिट कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जो सर्बिया एक प्रो रशियन स्टेट है, उस स्टेट को भी अपनी तरफ करने के लिए कि वो भी सैंक्शंस लगाएं। तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पास अब ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। सिर्फ उनकी आज मैं ताकत बोलूंगा तो वो ड्रोन्स है, और ड्रोन वॉरफेयर में वो शिप्स को भी काफी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ब्लैक सी में, अजोव सी में, कर्च जो कनेक्ट करता है। लेकिन लंबी रेस में अगर देखा जाए तो आज पलड़ा रूस का जरूर भारी है, क्योंकि उनके पास इंटरसेप्शन मिसाइल्स हैं, ये भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और ड्रोन्स हैं।
3: और शायद सर, अभी मैं, मुझे जब दोनों युद्धों को मैं कंपेयर करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, दोनों तरफ से अब एक दूसरे के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनके एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। ये आप ईरान में भी देख रहे हैं, और आप लगातार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में भी देख रहे हैं। यानी आर्थिक रूप से जिसको जितना ज्यादा नुकसान होगा, उसको रिवाइव करने में उतना ही वक्त लगेगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर से कोई नई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के साथ तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है? पाकिस्तान इसके बाद से बेशक सीना चौड़ा कर घूम रहा, लेकिन उसका दोस्त ईरान ही इस कदम से चिढ़ गया। सऊदी अरब को चेतावनी देने के बाद ईरान ने इस गठबंधन के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिया। तो राष्ट्रपति ने भी सभी मुस्लिम देशों को एक साथ रहने की अपील भी की है।
8: सऊदी अरब और तुर्की के साथ आया पाकिस्तान, क्या भारत के खिलाफ नया गठबंधन चाहता है पाकिस्तान, नए गठबंधन से क्यों भड़क गया ईरान, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता ये है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा। साथ ही तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग भी मजबूत किया जाएगा। भारत इस समझौते पर नजर बनाए हुए है तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ाने वाली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। ईरान के राष्ट्रपति तो अब मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब एक हैं, भाई हैं, फिर चाहे वो शिया हो या सुन्नी, सबको अमेरिका की साजिश से बचकर रहना चाहिए।
9: در رابطه با همسایگان ما خیلی از مشکلاتمون رو حل کردیم، خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه، خب گفتمم.
8: ایران کی سنسد کی راشتریه سرکشا اور ویدیش نیتی سمیتی کے سدسے ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکیے اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا۔ उनका कहना था कि अमेरिका के साथ इतने सालों के संबंध भी सऊदी अरब को पूरी सुरक्षा नहीं दे सके। खैर, ये सलाह तो पाकिस्तान को भी सुननी चाहिए। हाल ही में जब ईरान ने सऊदी अरब पर हमलों की बौछार की तो उसने ईरान के दोस्त पाकिस्तान को दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते की याद दिलाई थी, लेकिन पाकिस्तान की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पाकिस्तान को इतना समझ लेना चाहिए कि आतंक को पालने पोसने की नीति की वजह से वो अगर भारत से उलझेगा तो उसे करारा जवाब मिलता रहेगा और उस सूरत में उसका साथ देने कोई नहीं आगे आएगा। आज तक भी
10: और देखिए, वही पाकिस्तान है जिससे अपना मुल्क संभलता नहीं लेकिन पूरी दुनिया को मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर जोड़ने की कोशिश की जा रही। और इसी वक्त इसी से जुड़ी एक पाकिस्तान से बड़ी खबर मिली है, जहां पर पाकिस्तान से एक बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि पेट्रोलियम की बड़ी कीमतों के खिलाफ हजारों लोगों ने रैलियां करनी शुरू कर दिया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारियों की रैलियां हो रही। ये रैलियां धार्मिक राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी ने सरकार द्वारा पेट्रोलियम लेवी लगाए जाने के विरोध में आयोजित की है। पार्टी प्रमुख ने इस विरोध प्रदर्शन को पूरे देश में और तेज करने का आह्वान भी किया है। पेट्रोलियम लेवी एक तरीके का टैक्स है जो केंद्र सरकार पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन पर आयात या घरेलू बिक्री के समय लगाती है और ये पाकिस्तान में इसी का विरोध जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। आज सड़कों पर निकल आए हैं जमात इस्लामी में पूरे पाकिस्तान के कई इलाकों में, कराची भी जिसमें शामिल है, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है और पूरे देश में इस तरीके के आयोजनों का आह्वान भी किया है। और चलिए, रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के बीच साजिद रशीदी का अपमानजनक और भड़काऊ बयान आया है। ऐसा बयान जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
1: क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिवभक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिवभक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिवभक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिवभक्त हैं? ये शिवभक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ।
0: साजिद रशीदी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना के ऐसे विवादित बयान को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आतंकी वाले बयान को लेकर पलटवार भी किया।
2: अब बहुत हो गया है ये मौलाना, अगर कांवड़िए खड़े हो गए तो मौलाना की पीढ़ियां नहीं बचेंगी। और ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये देश धर्म के आधार बटा था कि जो यहाँ राम का नाम लेंगे, सनातन संस्कृति के अनुसार रहेंगे, उनका सम्मान होगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर सनातन का अपमान करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान बना था।
0: नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान है। उन्होंने मौलाना पर FIR दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है और कहा है कि मौलाना को ऐसे बयान के लिए फांसी होनी चाहिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल. डेमोग्राफी हैज बीन चेंज. हमारी सीमा असुरक्षित. भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी, बार बार लेटर दे रहा है, भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो. ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है. नो नो नो नो. वोट बैंक, तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो. मेरा घर का आदमी बिपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था. हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं भाई. देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था. इसको छोड़ना चाहिए.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा झारखंड के छात्रों का आंदोलन। 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स की गड़बड़ियों पर सीबीआई जांच की मांग। सरकार छात्रों की दो राउंड की वार्ता अब तक बेनतीजा। दिल्ली आईआईटी में जेंजी के बीच बोले पीएम मोदी, जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने वालों को दिया जिंदगी का मंत्र, बता कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, शाम 6 बजे का जेंजी के साथ कार्यक्रम। बीजेपी ने झारखंड न जाने पर किया सवाल, शहर भर में विरोध वाले पोस्टर्स। महिला आरक्षण बिल पर पोस्ट हुआ राहुल के, महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू का तंज लगता है। कांग्रेस अब बिना शर्त समर्थन को तैयार, राहुल बोले 2023 में सर्वसम्मति से पास हो चुका है बिल। और सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की फूलों की बारिश। मेरठ में पहले हेलीकॉप्टर से यात्रा रूट और सुविधाओं का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर मंच पर आकर किया शिव भक्तों का स्वागत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आप देख रहे हैं दंगल। दंगल की हम शुरुआत करने से पहले एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात, दिल्ली में स्थित यूपी सदन से ही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करने वाले हैं। अब इस बैठक में जानकारी मिल रही कि यूपी के विकास पर योजनाओं, प्रशासनिक कार्यों, आने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर बातचीत की उम्मीद है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या एजेंडा रहेगा मुलाकात का?
1: देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और अगले साल की शुरुआत में ही जो है पांच राज्यों के बड़े विधानसभा चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। जब वो पिछली बार दिल्ली आए थे तो उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वाराणसी से सांसद हैं और अगर देखा जाए तो चुनाव का समय है और ऐसे में चुनाव में आगे किस तरीके की क्या रणनीति रहेगी, कैसे सरकार के कामकाज है, इसका पूरा फीडबैक और रिपोर्ट जो है वो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करेंगे योगी आदित्यनाथ। और क्योंकि पिछले ही महीने जो है वो प्रदेश की नई संगठन की टीम बनी है और आज ही प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को जो है उनकी जो भी मोर्चे और जिन क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है उसको उनको वो जिम्मेदारी दी गई है। देखना यह है कि ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की मुलाकात कितनी देर चलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियों पर जो है वो बातचीत जरूर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे और सभी का मार्गदर्शन भी लेंगे किस तरीके से जो है सरकार काम करे। और क्योंकि चुनाव का समय है तो कितनी परियोजनाएं जो है वो पूरी की जा सकती है, ये तमाम इश्यूज जो है वो रहेंगे।
0: ठीक है, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दंगल में आज भारत की राजनीति की बात करेंगे। भारत की राजनीति में एक नई पीढ़ी दस्तक दे रही है और इस दस्तक को नजरअंदाज करना अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। बात हो रही है जेन जी की, एक ऐसी पीढ़ी जो मोबाइल और इंटरनेट के साथ बड़ी हुई, लेकिन अब उसके हाथ में सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है, वोट की ताकत भी है। वोट। आज IIT दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य, तकनीक और विकसित भारत पर बातचीत की, तो वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों के बीच में पहुंचने वाले हैं। छात्रों की गूंज के जरिए राहुल गांधी पेपर लीक, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जैसे सवालों को यूपी में उठाने की तैयारी में है, यानी कि युवा राजनीति के केंद्र में है। अब देखना होगा पीएम मोदी का विजन और राहुल गांधी की आवाज जेंजी के सवालों को कितना जवाब दे पाते हैं। आज भारत के जेंजी के इर्द गिर्द घूम रही सियासत के आखिर मायने क्या है, 2027 में यूपी के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के रांची में छात्र आंदोलन ने कैसे सियासत बदल दी है, आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। उससे पहले दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट।
2: आज देश की राजनीति में एक ही पीढ़ी पर दो बड़े दांव दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ IIT दिल्ली का मंच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने देश के युवा, दूसरी तरफ थोड़ी देर में प्रयागराज में होंगे राहुल गांधी और सामने होगी युवाओं की भीड़। एक तरफ पीएम मोदी देश की नई पीढ़ी से संवाद कर रहे हैं, IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में जिंदगी का फलसफा बता रहे हैं।
3: कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। IIT की परीक्षा में सिलेबस होता है लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है।
2: तो दूसरी तरफ राहुल गांधी छात्रों की गूंज के जरिए छात्रों के सवालों को राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रहे हैं, यानी मंच अलग है, रास्ते अलग हैं, लेकिन नजर एक ही जगह है, जेन जी पर, युवाओं पर, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो AI को समझती है, सोशल मीडिया को चलाती है, दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली से युवाओं के सामने जिस विजन की बात कर रहे हैं उसमें तकनीक है, एआई है, इनोवेशन है, स्टार्टअप है और विकसित भारत की युवाओं की भूमिका है।
3: अभी ऐसे भी अनेक सेक्टर्स हैं जहां भारत अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ देश आप जैसे युवाओं की ओर देख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरीज, पावर शॉर्टेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे अनेक क्षेत्र आपके टैलेंट, आपके इनोवेशन और आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं।
2: ये वो वोटर हैं जो सवाल पूछने वाला वर्ग है और आने वाले चुनाव में इसकी राजनीतिक ताकत और बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री युवाओं की महत्वाकांक्षा को समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार में ऐसे कई कदम उठाए जिनसे युवाओं को भविष्य संवारने का सुनहरा मौका मिला। नंबर एक, स्किल इंडिया। इसके तहत पीएम के वीवाई, अप्रेंटिसशिप और जन शिक्षण संस्थान जैसे कार्यक्रमों के जरिए स्किलिंग पर जोर दिया गया। नंबर दो, स्टार्टअप इंडिया। 2016 में शुरू हुई ये मुहिम मार्च 2026 तक 2,23,000 से ज्यादा स्टार्टअप को पहचान दिला चुकी है, जिससे 23,36,000 से ज्यादा सीधी नौकरियां बनी। नंबर तीन, मुद्रा स्कीम। मार्च 2026 तक पीएम मुद्रा के तहत कुल 40,07,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। चौथा, अटल टिंकरिंग लैब्स। जून 2026 तक 1,10,00,000 से ज्यादा छात्रों को इनोवेशन मौका मिला है। नंबर पांच, पीएम श्री स्कूल। जून 2026 तक 13,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए जा चुके हैं। नंबर छह, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। जुलाई 2026 तक 98,000 से ज्यादा युवाओं को फायदा मिला। लेकिन भारत का युवा क्या चाहता है, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि जेन जी की दुनिया तेज है, एआई बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स का नेचर बदल रहा है, लेकिन युवाओं की चिंता आज भी बेहद सीधी है। नौकरी मिलेगी, भर्ती होगी, पेपर लीक तो नहीं होगा, डिग्री के बाद करियर का क्या होगा, एआई नौकरी देगा या नौकरी लेगा, और क्या मेहनत का परिणाम मिलेगा, यही सवाल अब राजनीति के केंद्र में पहुंच चुके हैं। इसी सवाल को लेकर राहुल गांधी आज प्रयागराज में युवाओं के बीच आने वाले हैं। छात्रों की गूंज के जरिए कांग्रेस युवाओं के उन मुद्दों को सामने लाने की कोशिश कर रही है जिसमें सबसे प्रमुख है पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती में देरी, महंगी शिक्षा और छात्रों की राजनीतिक भागीदारी। राजस्थान के कोटा से राहुल गांधी की जो मुहिम शुरू हुई थी वो देहरादून होते हुए अब प्रयागराज के पड़ाव पर है। ऐसे में सवाल ये है कि प्रयागराज में राहुल की गूंज कितनी दूर तक जाएगी, क्या जेन जी के लिए कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक पिच बनेगी।
4: स्टूडेंट्स आर ऑन द स्ट्रीट इन सिवियर पेन, दे डोंट हैव वर्क, दे आर आस्किंग फॉर फेयरनेस इन एग्जाम्स, दे आर आस्किंग फॉर एन एजुकेशन सिस्टम दैट वर्क्स, and on the other side we have the prime minister who is forgiving them. Who he is to forgive them I don't know, where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India I don't know, but that's what he chooses to do.
2: Yahi wajah hai ki ye peedh hi chunavi rajneeti ka bada power center hai. Jantar mantar par pradarshan ke baad Jharkhand mein ho rahe aandolan is baat ki aur ishara karte hain. 2026 में भारत के कुल 142.6 करोड़ आबादी में जेन जी की संख्या लगभग 36.74 करोड़ है, यानी देश की आबादी का 25.8%। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के आधार पर किए गए अनुमान से सामने आया है। इसमें 25 साल और उससे ज्यादा की उम्र वाले जेन जी की आबादी ही देश की कुल आबादी का करीब 8.9% है। एक तरफ भविष्य का विजन, दूसरी तरफ वर्तमान की परेशानियां। युवाओं के सवाल सियासत से हैं।
5: क्योंकि ये पीढ़ी सिर्फ वोटर नहीं है, फैक्ट चेकर भी है, सिर्फ ऑडियंस नहीं कंटेंट क्रिएटर भी है, सिर्फ फॉलोअर नहीं ओपिनियन मेकर भी। अब सबसे बड़ी बात, ये पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर बेहद सजग है, इसलिए आने वाली राजनीति में जेन जी सिर्फ भीड़ नहीं होगी, जेन जी मुद्दा होगी। और आने वाले चुनाव में जिसने जेन जी के सवाल समझ लिए, शायद वही युवा भारत की नब्ज समझ पाएगा। आज तक भी।
0: और अब दंगल में सवालों पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर एक, क्या युवाओं को पीएम मोदी का संदेश है और ये संदेश अब बीजेपी के लिए क्या बूस्टर डोज बनेगा? सवाल नंबर दो, क्या प्रयागराज कार्यक्रम के जरिए यूपी चुनावों पर राहुल गांधी की नजर है? और सवाल नंबर तीन, क्या जेन जी ही अब भारत के सियासत के केंद्र में आ गया है? बड़ा सवाल है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ी हैं हमारे साथ। जेनजीज भी आज मौजूद हैं हमारे साथ, एबीवीपी से अर्जुन आनंद हैं, इसके साथ साथ एनएसयूआई से राहुल सिंह काजला हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक लेखक युवराज पोखरना भी हैं। लेकिन शुरुआत बीजेपी से करते हैं, गुरु प्रकाश पासवान से करते हैं कि बदले बदले से दिखते हैं जनाब, मतलब रवैये में एक नयापन सा दिख रहा है। हम तो ट्रेडिशनल राजनीति देखते चले आ रहे थे, नेताओं की स्पीच बिल्कुल अलग थी, अब वो जो भाषण है वो बदल गए हैं क्योंकि शायद पहले के भाषण उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, जेन जी को पसंद नहीं है। तो क्या इसी वजह से ये बदलाव है गुरु प्रकाश?
6: नहीं देखिए राजीव जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि राजनीति भी बदलते समाज के साथ तीव्रता के साथ बदलनी चाहिए और इसी का परिणाम है कि आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब आईआईटी में छात्रों को संबोधित करते हैं तो परम प्रज्ञा की भी बात करते हैं और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि भाई स्टेम क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, करियर में पर्पस कैसे आए, ओनरशिप कैसे आए। वो कहते हैं कि चिप से लेके शिप तक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, एक देखिए चिप वॉर इस किताब का नाम है, क्रिस मिलर ने लिखा है कि चिप जो होता है सेमीकंडक्टर, वो आपके स्पेसशिप से लेकर के आपके मोबाइल में होता है और चिप का निर्माण आज गुजरात के धोलेरा में ताइवान की टीएसएमसी की कंपनी के साथ मिलकर के हो रहा है। तो सर्वांगीण बहस, युवाओं में संवेदनशीलता, महिलाओं की भागीदारी, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका, आज एक होलिस्टिक भाषण
0: गुरु प्रकाश जी, ये जो जेन जी को लेकर अब संवेदनशीलता दिख रही है ये पहले नहीं थी, तो क्या पहले के फेल्योर से आप सीख रहे हैं? क्या ट्रेडिशनल राजनीति आप छोड़ेंगे? मतलब एक आरोप जो बीजेपी पर लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं, फिर जब हिंदू मुस्लिम जाना हो वहां जातियों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको, एजुकेशन, आपको हेल्थ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको हैप्पीनेस इंडेक्स, आपको सब चीज पर बातचीत करनी होगी।
6: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने राजीव जी, और हम तो बोलना चाहते हैं कि भाई जेन जी का मुद्दा हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एज क्या है? आज जितने भी 7 नेशनल पार्टीज है उनमें सबसे युवा अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। युवाओं के मुद्दे पे संवेदनशीलता से कोई बात करता है, पेपर लीक के विषय पे दीर्घकालिक समाधान हो, उस स्तरीय समिति की बात हो, कानून को कड़ा करने की बात हो, 10 करोड़ तक का फाइन हो, 10 साल तक का रिग्रेस पनिशमेंट हो, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कैसे आए, हम इस बात की पैरोकारी करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, युवाओं की भूमिका पर कोई आज से हम चिंतन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। लंबे समय से यदि आप भारतीय जनता पार्टी में सांसदों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों का मीडियन एज देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवाओं के हाथ में निर्णायक भूमिका आ रही है और यह भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही संभव हुआ है। आपके मैं प्रारंभिक प्रबोधन को सुन रहा था कि प्रयागराज जाने वाले हैं नेता विपक्ष, पटना आने वाले थे, पता है आपको 3 हफ्ते पहले पटना में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम था, संख्या आई नहीं, छात्र आए नहीं, उस कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा। तो किसकी कितनी मंशा है, हु इज रेडी टू वॉक द टॉक? प्रधानमंत्री जी ने आज आईआईटी के बच्चों से संवाद करके सीधे तौर पे स्थापित किया है और लगातार वन ऑन वन कैसे कम्युनिकेशन हो, वन ऑन वन कनेक्शन कैसे हो, इसका एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण आज हमको देखने को मिला।
0: डॉक्टर पूजा, अगर सत्ता पक्ष से जेन जी असंतुष्ट है और वो नाराजगी सड़कों पर दिखाता है तो वो असंतुष्टि ऑपोजिशन से भी है कि वो ऑपोजिशन जिसको उन्हीं मांगों को उठाना चाहिए था, जिनको मतलब मजबूर हुए जेन जी को सड़कों पर आने के लिए, हमारा ऑपोजिशन वैसा नहीं कर पाया। आपकी पार्टी के भीतर से अब तो ऐसी आवाज आ रही है कि हाँ हम वैसे वो मुद्दे उठा नहीं पाए, हमारा वैसा इंपैक्ट नहीं रहा।
7: कौन सी पार्टी से राजीव जी, कैसी आवाजें आ रही है?
0: शशि थरूर का
7: जहां
0: आपने
7: तक
0: शायद नाम
7: छात्रों
0: नहीं
7: के
0: सुना।
7: मुद्दों की बात है, जहां तक नीट पेपर लीक की बात है, जहां तक बेरोजगारी की बात है, जहां तक अपॉर्चुनिटीज के सिकुड़ने की बात है, एनएसई और आवाईसी पिछले 2 महीने से हर दिन देश के किसी ना किसी सड़क शहर में मशाल मार्च निकाल रहा है, लाठियां खा रहा है, तो छात्रों के मुद्दे नहीं और उनसे भी मिल रहा है जिनसे शायद प्रधानमंत्री जी भूल गए मिलना, या धर्मेंद्र प्रधान जी भूल गए थे जिन्होंने अपने बच्चे खोए नीट पेपर लीक के कारण, उन्हें तो इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी जेंसी है। और आज अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे कि इस देश की राष्ट्रीय पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष, मुझे याद है ये जो युवा अध्यक्ष है ये कह रहे थे कि देश में नए वायरस और कॉकरोच जैसे दल उभर रहे हैं, उन्हीं वायरस और कॉकरोच जैसे दल से आपके ही 2 केंद्रीय मंत्री डिस्कशन करते हैं, उनको बुलाते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी जेंजी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें वायरस मान रहे हैं, कॉकरोच मान रहे हैं कि क्या। सबसे बड़ी बात राजीव जी यह है कि मैं दो दो विरोधाभास दिखाती हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लेकर बड़ी बात की कि मुझे यहाँ पे महिलाएं नहीं दिख रही हैं, लड़कियां नहीं दिख रही हैं मेडल लेती हुई, पर प्रधानमंत्री जी शायद उस लड़की नूतन टोपको के बारे में भूल गए जिनको पैलेट गन से जिनको इंजरी आई, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रधानमंत्री जी शायद उस लड़की को भूल गए, वो भी जेंजी थी जिसके पिछवाड़े पे डंडा मारा था पुलिस ने, प्रधानमंत्री जी उस लड़की को भी भूल गए जिसको एक मेल पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ मारा था। तो आज जब आप और प्रधानमंत्री जी तो मन और मन संवाद में व्यक्त करते हैं, बस वो संसद में यकीन नहीं करते। आर्टिकल 75(3) के तहत उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देश के युवा सड़क पर थे, पूरा का पूरा
0: डॉक्टर
7: देश
0: पूजा
7: उबाल पर
0: ठीक
7: था,
0: है डॉक्टर पूजा मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं कि हम जब से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ है आप और दूसरे आपके पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, हमने ये बातें लगातार सुनी है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो उपलब्धि सीजेपी को हासिल हुई, जो प्रेशर सीजेपी ने बनाया, वो प्रेशर कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई, आप इसका जवाब दीजिए, बाकी जो सवाल थे वो मैं जवाब ले लूंगा गुरु प्रकाश से।
7: वो प्रेशर को आईवाईसी और एनएसए पिछले 2 महीने से थी।
0: नहीं बना,
7: सवाल
0: मैं तो कह रहा हूँ क्यों नहीं बना पाए,
7: क्या मीडिया ने उन्हें स्पेस दिया? बड़ी बात ये मैं कहूंगी राजीव जी,
0: कितने प्रोटेस्ट किए सड़क पर आपने, राहुल गांधी कितने प्रोटेस्ट में सड़कों पर दिखे, सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद
7: राहुल जी कोटा में छात्रों की गूंज ले रहे हैं, राहुल जी उत्तराखंड में छात्रों की गूंज ले रहे हैं, और बात यहाँ पे सिर्फ पेपर लीक की नहीं थी, बात थी कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन की। अभी आपके स्टार्ट देख रही थी, स्किल इंडिया मिशन, पीएम श्री योजना, पीएम इंटर्नशिप, छोटे छोटे फैक्ट देना चाहूंगी क्योंकि जब हम स्किल इंडिया मिशन की बात करते हैं तो राजस्थान में उसका कन्वर्जन रेट सिर्फ 0.7% है। राजस्थान में किसकी सरकार है? आपकी सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार है। बिहार में 6% है, उड़ीसा में 0.5% है, महाराष्ट्र में 12% है और यूपी में 10% है। ये स्किल इंडिया का कन्वर्जन रेट है। अभी आप इंटर्नशिप की बात कर रहे, मैं बता रही हूँ कि युवा इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। आपने 1 करोड़ नौकरी क्यों की बात की थी, 6,300 करोड़, ये निर्मला सीतारमन का बजट में ये एलोकेशन है, पर आपने एप्लीकेशन निकाले 2.56 लाख और आपने इंटर्नशिप दी 16,000 जिसमें से 7,000 बच्चों ने छोड़ दी क्योंकि उनको डीबीटी पेमेंट नहीं मिल रहा था। तो मैं आप कन्वर्जन बताती हूँ स्कीम का, 6%। युवा क्यों नहीं फ्रस्ट्रेट होगा? ना उनके पास नौकरी है। आज कन्वोकेशन में मोदी जी बड़ा सच दच के बड़ा लोगों से कनेक्ट करने के लिए, मोदी जी कनेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, शायद वो इंस्टाग्राम के ही प्रधानमंत्री है क्योंकि सदन में तो वो दिखाई नहीं दे रहे। सदन में तो उन्होंने देश के इतने बड़े रिवोल्यूशन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। तो मोदी जी का कनेक्ट 1-on-1 है, पर सिर्फ अपने कैमरे
0: और टेली प्रॉम्प्टर के साथ। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में
6: नहीं, 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा राजीव जी। ये देखिए कांग्रेस पार्टी की खोखली बातें मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को अपने 10 साल उठाइए, हमारे 10 साल उठाइए, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट उठा करके देख लीजिएगा, पीएलएफएस के आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, ईपीएफओ के आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, आपके पूरे 10 साल में मात्र 2 लाख सरकारी नौकरी दी गई थी। हमारे 10 साल की सरकारी नौकरी में आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं राजीव जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरा यह स्वभाव नहीं है राजीव जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था।
0: बिल्कुल नई तरह की आप जर्नलिज्म करेंगे, नई तरह की राजनीति कर रहे हैं, एजेंसी की बात करें तो जब आपका नंबर आएगा प्लीज तब बोलिए, फैक्ट के साथ बोलेंगे, बिल्कुल पूरा मौका दिया जाएगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा आपको बीच में। गुरु प्रकाश
6: नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए व्याकुलता की बात होती है, ये कह रहे थे भाई प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने कहा कि महिलाएं कहां हैं, लड़ती हूं लड़ सकती हूं, कर्नाटक में इनकी सरकार है, कहां मंत्री परिषद में एक भी महिला है? पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कर्नाटक में सरकार है
0: और एक महिला है। मैं उनका जो स्पेसिफिक सवाल था आपकी केंद्रीय योजनाओं की पराकाष्ठा है कि
6: ये बताना होगा आपको,
0: केंद्रीय योजनाएं आपकी विफल हुई है उस पर आप जवाब दीजिए। उन्होंने कुछ आंकड़े रखे थे उस पर मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें, क्या केंद्रीय योजनाएं तमाम फेल हुई?
6: जनधन योजना के

0: ना स्टैंड अप योजना, आज भारत पहला ऐसा देश बनता है दुनिया में चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाला। आज हमारे यहां बात हो रही है परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर की, आज हमारे यहां बात हो रही है तो हमारा देश में बना हुआ सैटेलाइट ऊपर जाता है तब आपको समस्या समझ में नहीं आती है।
1: लेकिन मैं फिर पूरा बोलना चाहता हूं, इतना कुछ बदलाव हो रहा है तो फिर आज भी हर स्टेट में लगभग प्रदर्शन, हर स्टेट में पेपर लीक हो जाता है, हर स्टेट में नौकरी मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब बेरोजगारी संघ बन गए, ये आलम है। अगर इतना विकास हो गया है तो फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ कागजों में दिखाई देते। चले जेंजी के पास चलते हैं, मैं आ गया हूं पूजा आपके पास मुझे कुछ पेपर आप दिखा रहे, मैं लौट रहा हूं। अर्जुन आनंद, आप तो एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं, सवाल यह कि जो अगर हम सेंटर की पॉलिटिक्स या स्टेट की पॉलिटिक्स देखें या जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनकी पॉलिटिक्स, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो भी तो नहीं बदले ना, आप भी उसी ट्रेडिशनल, आप उसी ढरे पर चल रहे हैं, आप ही के बीच के लोग जो शायद आपके संगठनों से जुड़े हुए नहीं है उनको सड़क पर आकर लड़ना पड़ता है, जो आप कर ही नहीं पाए क्योंकि आप भी वही बोल रहे थे जो पॉलिटिकल पार्टियां बोल रहे हैं, उसके इतर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं।
2: पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता, आपने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई उदाहरण नहीं दिया, तो आप ये जो बोले आप कहां से
1: मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट मान लीजिए हुआ, वो प्रोटेस्ट कैसे हो गया, इतनी बड़ी संख्या में छात्र कैसे आ गए, इसका मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर आप लोग नहीं सुन रहे उनके, या स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को, आप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं। हाँ
2: नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे पता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रहा है, तो अगर मैं ही प्रवक्ता हूँ तो मुझे ही बोलना चाहिए। पिछले साल से हम यहाँ तक कि अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी और अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी हम जो है प्रस्ताव पे प्रस्ताव लाए हैं, जितने भी पेपर लीक्स हो रहे हैं या फिर जितना भी एनटीए का ओवरहॉल हुआ उसके लिए, मई 13 और 14 को हमने एनटीए के ऑफिस के बाहर सबसे पहले विरोध प्रदर्शन किया। जब पेपर लीक की घोषणा हुई उसके बाद भी जुलाई 22 को हमने फिर से एनटीए के दफ्तर पे ताला लगाने लगे थे हमें पुलिस ने, वहां पे भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जहां तक बात रही है हर एक प्रांत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखिये छात्रों के विषय जहां पे भी उठ रहे हैं उसका हम पूरा समर्थन करते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आज भी हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड में हैं, भले ही कोई अगर मोर्चा ऐसा बन रहा है जिसमें जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें हम अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताएंगे, परंतु जहां पे भी लोकतांत्रिक रूप में प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम साथ में हैं। और जहां तक बात रही है ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट और न्यू प्रोटेस्ट की, मुझे लगता है ये बहुत मेडअप टर्मिनोलॉजी है। प्रोटेस्ट एज अ मीडियम ऑफ डाइसेंट या फिर एज अ मीडियम ऑफ एक अपनी उत्कंठा या अपना कुछ जो बुरा हो रहा है उसके विरोध में प्रदर्शन करने का जो माध्यम है वो बहुत पुराना है। बस सोशल मीडिया के आने के बाद ये हुआ है कि वो अच्छे से कोई भी अपनी बात रख सकता है, कोई भी जो है अपना मत रख सकता है और लोग प्रभावित भी हो सकते हैं किसी से भी। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कुछ ट्रेडिशनल धड़े से कुछ हटके ही हो गया है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो 1973 में नवनिर्माण आंदोलन हो, चाहे वो इमरजेंसी का आंदोलन हो, 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता हमारे उसमें मीसाबंदी थे, चाहे वो कश्मीर में तिरंगा फहराने को लेकर 1990 का आंदोलन हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हमारा 2005 तक
1: आप जेंजीज जो है वो देखते हैं कि भाई हम जब प्रेजेंट की बात करें तो पास्ट में चले जाते हैं कि हमने तब क्या किया था। एक प्रश्न ये है कि नहीं नहीं आप प्रोटेस्ट तो करते हैं लेकिन वो सिर्फ प्रतीकात्मक होता है, वो ऐसा नहीं होता कि सरकार को झुका दे दबा दे। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी जैसे झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां जो प्रोटेस्ट का तेवर है वो आपका दिल्ली में नहीं होगा, वो आपका सेंटर के खिलाफ नहीं होगा क्योंकि वहां पर वो दल है जो आपसे जुड़ा हुआ है।
2: मैं बस इतना बोल रहा हूं कि देखिए जेंजी कोई एक मोनोलिथ नहीं है जो 5 लोग हैं जिनके बारे में आप ना तो प्रतिनिधि हैं उनके, ना उनका प्रतिनिधि मैं बोल रहा हूं खुद को, तो आप जेंजी के प्रतिनिधि बन के ये मत बोलिए कि जेंजी यही चाहता है। मैं बोल रहा हूं मैं पूरे देश में घूमता हूं, मेरा एक दायित्व अपने मैं समझ गया हूँ। हाँ। पर मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने बोला ना कि जेंजी ये चाहता है, आप इतिहास में चले जाते हैं, जब भी आप किसी विषय पे चर्चा करते हैं आप बिना उसके इतिहास को समझे उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाहे वो एनटीए की विरोध में प्रदर्शन हो, चाहे देश में शिक्षा एवं समाज का कोई भी विषय हो, हमेशा विद्यार्थी परिषद उसके लिए खड़ा रहा है।
1: ठीक है, राहुल सिंह काजला, आप तो एनएसयूआई से जुड़े हुए, आप एनएसयूआई मतलब उनकी पॉलिटिक्स कितनी बदली है?
3: राजीव जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडियो के हमारे साथी अपना ऑडियो जो है उसको बंद कर दें, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसके बाद मैं अपनी बात रखूं। एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी मैं अग्री करता हूं जब आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी शायद अपने जो प्रदर्शन है, अपनी जो पूरी रणनीति रही है वो अपने ही इको चैम्बर में करती आ रही है। जो रिसेंट में प्रोटेस्ट हुए हैं उससे हमने इस चीज को देखा है, समझा है कि प्रोटेस्ट करने का हमारा तरीका

0: पॉलिटिकल पार्टीज का था उसको बदलने की एक जरूरत है, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज और उसका मोड है उसको बदलने की एक जरूरत है। पर उसके साथ ही हम जब ये भी चीज देखते हैं कि जब ये आंदोलन हुए, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन हो, चाहे वो झारखंड का आंदोलन हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में पुलिस भर्ती से रिलेटेड आंदोलन हो, हर जगह जब मांग करी जाती है वो एक ही तरफ उम्मीद रख करके अब मांग करी जाती है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी जो है वो छात्रों की आवाज को आगे रखे। मैं आपसे आपकी जब जो बात थी कि कितना जो प्रोटेस्ट करने का तरीका और प्रोटेस्ट और अपनी बात को आगे रखने का तरीका है वो बदला है, उसमें मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ महीनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जेन जी और जेन अल्फा की जो पॉपुलेशन है उससे कनेक्ट करने का जो पूरा मेथड था वो एक तरीके से काफी ज्यादा उसमें बदलाव देखने को मिला है। जो नए न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसको काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिप्लॉय कर रही है, एम्प्लॉय कर रही है।
1: ठीक है, हमारे साथ युवराज भी जुड़े हैं जो कि लेखक हैं। युवराज, मेरा सवाल आपसे है कि भाई मीम, रील, ये इन्फ्लुएंसर्स वाली जो एक पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेसी को आपकी नजर में मजबूत करेगी या कमजोर करेगी? जेन जी को लेकर आपका थॉट क्या है?
2: राजीव, नमस्ते आपको और सभी मित्रों को। देखिए, सर्वप्रथम लोकतंत्र में अपनी बात को रखना वो एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राइट है। आज वो जो लोकतांत्रिक तरीका है वो सोशल मीडिया और खास करके इंस्टाग्राम के माध्यम पे बच्चे प्रकट करते हैं अपने विचारों को, ये लोकतंत्र का एक पहलू है। लेकिन यदि कोई मुझे ये कहे कि मेरे भारत का युवा कॉकरोच है, और मैं भारत के युवा की बात करता हूं, तब उसमें राजीव ढोंडिया भी है, युवराज पोखरना भी है, अर्जुन भी है, भले एनएसयूआई के मित्र भी और गुरुप्रकाश भी है। आप भारत के युवाओं को केवल कॉकरोच कह के, इंस्टाग्राम चलाने वाले कह के ये बता रहे हैं कि वो गाली गलौज करते हैं, वो ठीक बात नहीं, मैं ये नहीं मानता। और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना, कटु शब्दों में रखना, ये भी लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यदि हम केवल इंस्टाग्राम की राजनीति करें कि केवल आस्क मी एनीथिंग करें, तो वो मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। क्योंकि आप भी समझे, जब ये रीलबाजी आगे बढ़ेगी तो गवर्नेंस पीछे छूट जाएगा, मुद्दे पीछे रह जाएंगे, और हम किसके पीछे भागेंगे? कितने लाइक्स, कितने फॉलोवर्स, कितनी रीच? और जैसा कि दोनों पार्टियों ने ये काम किया, अमुक पार्टी ने कहा कि हमारे नेता के इतने फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो दूसरी पार्टी ने ये कहा कि ट्विटर पे या यूट्यूब पे हमारी इतनी रीच है। तो क्या लोकतंत्र हमारा सोशल मीडिया की रीच पे चलने वाला है? ये दोनों पार्टी को डिसाइड करना है। ये मेरा इसमें मेरा मंतव्य मायने नहीं रखता, इनको डिसाइड करना है इनका मंतव्य क्या रहेगा, वक्तव्य क्या रहेगा। लेकिन मैं 10 सेकेंड लेके एक बात और कहना चाहूंगा, युवा जेंजी भी है भारत का, मिलेनियल भी है, बूमर भी है। हमें किसी को एक कंपार्टमेंट बना के जेंजी ये कर रहा है, जेंजी वो कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। ना ही जेंजी कॉकरोच है, ना ही इंस्टाग्राम रील बनाने वाला, इन्फ्लुएंसर की बातों में बहकने वाला या गाली गलौज करने वाला जेंजी है। तो दोनों पक्षों से मेरा निवेदन है, युवाओं की बात करें, मुद्दों की बात करें, और ऐसा कुछ करें आपके एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में जेंजी को इंटर्नशिप मिले। और
1: तो क्या लगता है युवराज, 20 सेकंड में इसका भी जवाब दे, क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिक्स बदलती दिख रही है? पीएम भी है, राहुल गांधी भी है, अब जेंजी के बीच में जा रहे हैं, उनको ही देखते हुए उनके संबोधन शुरू हो रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स बन रही है।
2: देखिए, रील बनने से राजनीति, राजकरण और समाज नहीं बदलने वाला। आई एम सॉरी फॉर बीइंग डेविल्स एडवोकेट। और जब जेंजी की बात करते हैं, हाँ, तो क्या इंग्लिश मीडियम साउथ दिल्ली में इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने वाला ही जेंजी आपके लिए? मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा जेंजी नहीं है? उत्तराखंड का जेंजी अलग है या झारखंड का जेंजी अलग है? इन प्रश्नों के उत्तर अभी हमें मिले नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि राजनीति बदल रही है, और राजनीति की बदलाव की शुरुआत मोड ऑफ कम्युनिकेशन से हो रही है। अब प्रधानमंत्री साहब भी रील बना के गेट रेडी विथ मी कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अवश्य बदला है, और मुझे लगता है राजनीति भी बदलेगी। और 2029 का चुनाव वो ट्विटर की जगह इंस्टाग्राम पे लड़ा जाएगा, ये हम सभी जानते हैं।
1: ये अब 29 से पहले मैं 27 पर आ जाता हूँ डॉक्टर पूजा। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, प्रयागराज में राहुल गांधी भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं, इससे पहले भी किया है। ये छात्रों की गूंज, ये कितना परिवर्तन आपको लगता है कि ला पाएगी?
3: राजीव जी, छात्रों की गूंज से पहले, मैं उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का जो उन्होंने कल स्टार्क क्रिटिसिज्म किया है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को आना कहना पड़ा कि कुर्सी तो आज है कल नहीं रहेगी, उस पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि जेन जी सिर्फ रीलबाजी नहीं करते, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्शन लूंगी, शायद प्रधानमंत्री सिर्फ रीलबाजी कर रहे हैं, पर जेनजी सिर्फ रीलबाजी नहीं करती, जेनजी सवाल भी पूछती है। और आज जेनजी का ही सवाल है कि मोहन भागवत को आपके कहना पड़ा है कि वो हमारे सबसे बड़े स्ट्रेंथ है, गटर जनरेशन से वो सबसे बड़े स्ट्रेंथ बन गए हैं, जहां अतुल लमियन को देशद्रोही कह रहे थे, कोई उन्हें पंचर वाला का बेटा बेटा कह रहा था, सिर्फ उनके सवाल है। और सवाल है मूलभूत सुरक्षा पे। आज जब छात्रों की गूंज सिर्फ एक इवेंट नहीं है जहां पे हम बात करते हैं, छात्रों की हर छात्रों की गूंज में जब राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन होता है तो वो बताते हैं कि इस देश में शिक्षा का जीडीपी पे खर्चा कितना है, वो बताते हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे जितना पैसा दे रहे हैं उससे कम तो पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रालय का बजट है। वो सिर्फ पीड़ित छात्रों और परिवारों से नहीं मिलते, वो सिर्फ हार्ड फैक्ट्स भी सामने लाते रहते हैं। और यहाँ आज ये जो गूंज है, ये भी कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार ने किया, कैंसिल कर दिया परमिशन बाजू में किसी सिंगर डांसर का, लोक सिंगर पॉप सिंगर डांसर का प्रोग्राम कर दिया, पर भीड़ इतनी ज्यादा थी, आज छात्र उससे कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छात्रों को भी पता है ना, आज जब आप झारखंड के प्रोटेस्ट की रील्स वो देखें, वीडियोस देखें, तो हर दूसरा
1: डॉक्टर पूजा, डॉक्टर पूजा, फिर एक सवाल आपसे भी, मतलब आप, आपको देखकर भी लोग समझ रहे हैं ना कि आप जिन जिन जगहों पर सत्ता में हैं, आपका वहां पर काम करने का तरीका या दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में काम करने का तरीका, जहां पर आप अपोजिशन, वहां सवाल तो बड़े अच्छे आप पूछ लेते हैं, वहां पर आपको तमाम कमियां दिखती है, लेकिन जहां पर आप सत्ता में हैं वहां पर आप बिल्कुल वैसा ही आप भी कर रहे हैं, और दूसरी जगहों पर आप सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आप राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं चले गए?
3: आपको मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप आज तक के व्यूअर्स को, या मैं निकाल के दे देती हूँ, वो तस्वीर दिखाइए जिसमें बैंगलोर के छात्र किसी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जमीन पर बैठ के छात्रों से बात करते, ये होता है वन ऑन वन इंस्टाग्राम रील बनाने होता है।
1: झारखंड,
3: मैं झारखंड पे आती हूँ क्योंकि शायद आप झारखंड की बात करना चाहते हैं घुमा फिरा के, झारखंड पे आती हूँ।
1: मैं सीधे ही पूछ रहा हूँ, वहां पर जवाबदेही क्यों नहीं? अगर दिल्ली में जवाबदेही मांगते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं?
3: मैं जान रही थी आप झारखंड पे आ रहे हैं, तो झारखंड पे हम अलायंस पार्टनर में, मैं एनडीए की किसी भी एक, एनडीए तो बहुत बड़ा घटक दल है ना, परिवार है, मंगल मिलन होता है, कोई भी एक घटक दल का कोई भी एक नेता आकर मोदी जी को ये मैसेज दिया कि जनसे की बात सुनिए, पर आज आप झारखंड देखिए, हमारा प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मिलता है, वो ज्ञापन ले जाके मुख्यमंत्री को देता है, मुख्यमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के क्यों छात्रों की डिमांड में हमारे मंत्री दीपिका पांडे सिंह जो वहां पे पंचायती राज मंत्री है वो खुद कहती है हमारे स्टेट इंचार्ज।
1: लेकिन डॉक्टर पूजा, ऐसा क्यों है कि दूसरे प्रदेश में आपको सीधा इस्तीफा चाहिए लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम बात भी करें? बात तो वहां पर भी हो रही थी, हालांकि वहां पर बहुत देर से बात हुई, लेकिन मैं राहुल आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले गुरुप्रकाश मैं चाहता हूं कि आप इस पर जवाब दें।
4: नहीं देखिए, मैं सुन रहा था ध्यान से इनकी बातों को। ये राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं, पटना के छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं, पिछले महीने कार्यक्रम होने वाला था, अब तक आने की साहस हुई नहीं। और देखिए, मैं तो सरकारी नौकरी में हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट का एज, और भारतीय रेलवे में भी आप 60 के ऊपर चले जाते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन का कोटा मिलता है। तो राहुल गांधी जी जो 3 से 4 साल के बाद सीनियर सिटीजन की परिभाषा में आ जाएंगे, उनके पास कौन सा नैतिक अधिकार है जेंजी पे बोलने का, पहली बात। और दूसरा, हम बताना चाहते हैं कि भाई छात्रों की गूंज क्या सुनेंगे, अपने दादा के कब्र की गूंज तो सुन नहीं पाए, आज देखिए क्या स्थिति हो गई है, और वहां भी नहीं गए। राहुल गांधी जी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं। और आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, झारखंड के आदिवासी बच्चे, आदिवासी विरोधी है कांग्रेस पार्टी, युवा विरोधी है कांग्रेस पार्टी, देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पर हमने बिठाया, तो क्या क्या अपशब्द बोले गए हैं उस आदिवासी की बेटी को हम जानते हैं। तो ये आदिवासी अस्मिता के विरोधी, ये युवा अस्मिता के विरोधी, आप इनसे कहां से उम्मीद करते हैं कि संवेदनशीलता लेकर के आएंगे? पीएलएफएस का आंकड़ा उठा के देखिए, ईपीएफओ का आंकड़ा उठा के देखिए, मोस्टपी का आंकड़ा उठा के देखिए, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट उठा के देखिए, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि 2014, 2019, 2024 और आने वाले 2029 में भारतीय जनादेश हमें मिला है, युवाओं का आशीर्वाद हमें मिला है, तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि युवाओं का बड़ा वर्ग इंक्लूडिंग जेंजी हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। ना तो कोई 60 साल का चिर युवा राहुल गांधी, और व्याकुल हो गई बीच में बोल रही है, राहुल गांधी जी 3 साल बाद होने वाले हैं, इनको कोई नैतिक अधिकार है क्या? जाके देखिए कर्नाटक में आप चुप रहिएगा, झारखंड में चुप रहिएगा, पंजाब में दलित समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप बंद है, चुप रहिएगा। ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है, ये हिपोक्रेसी है, ये डुअल स्टैंडर्ड है, छात्र छात्र में डिस्क्रिमिनेट करते हैं आप। डिस्क्रिमिनेट करते हो आप छात्र छात्रों के बीच में। झारखंड का छात्र छात्र नहीं है, दिल्ली का छात्र छात्र है, ये आपकी असली चाल चेहरा और चरित्र है। दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, युवा विरोधी, छात्र विरोधी, ये मानसिकता है आपकी।
1: ठीक है, मैं डॉक्टर पूजा आपके पास भी लौटूंगा, थोड़ा जेंजीज के पास भी चलते हैं, युवाओं के पास भी चलते हैं। मैं राहुल आपके पास आते हुए कि क्या आज का जेंजी क्या चाहता है, क्या वो आइडियोलॉजिक बेस्ड पॉलिटिक्स चाहता है या वो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स चाहता है?
0: राजीव, मोर देन आइडियोलॉजी बेस्ड और इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, जो पहली चीज आज का एक जो जनरेशन है वो चाहता है एक हाइपर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत ओपेक बन करके रहा था। जैसे हमारे साथी जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने शायद अभी कहा कि वो सरकारी नौकरी में भी है, तो मेरे जैसा एक यंग जनरेशन का, जो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, बच्चा ये जानना चाहेगा कि कैसे एक सरकारी कर्मचारी एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता भी बन सकता है, उसी प्रकार किस प्रकार जो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे फंक्शन करता है, इस चीज के ऊपर जो आज की जनरेशन है वो सवाल उठाएगी। उसी की वजह से जो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके बारे में मैंने पहले बात कही थी वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि इंस्टाग्राम में जब आस्क मी एनीथिंग आप करते हैं तो जो बच्चे हैं वो ये नहीं जानना चाहते कि आप आम कैसे खाते हैं और संतरा कैसे खाते हैं, वो आपसे आपकी आइडियोलॉजी और आपकी पॉलिटिक्स पे सवाल पूछेंगे। इसके पहले आपने एक और बात कही कि अच्छा बच्चे इशू के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आइडियोलॉजी के ऊपर, इशू के ऊपर आई थिंक आज एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा हो गई है। झारखंड का, जम्मू कश्मीर का, जंतर मंतर का जो इशू है वो इसे रिफ्लेक्ट करता है, एक उनको प्रदेश में बांटने का काम नहीं करती है।
1: ठीक है, गुरु प्रकाश आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके।
4: दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं और विश्वविद्यालय के शिक्षक होने के नाते ये छूट सबको होती है कि आप विश्वविद्यालय में पढ़ाएं भी, जेएनयू देख लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय देख लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए, ये छूट होती है। तो आप यहां नेशनल टेलीविजन पे आते हैं और एक गंभीर शो है, एक संवेदनशील शो है, वहां पे इस प्रकार की निराधार बेबुनियाद बातों को करने से पहले, आरोप लगाने से पहले थोड़ा पढ़ के आया करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आज का जो जेंजी है वो जागरूक भी है, आज का जेंजी है वो कॉन्शियस भी है, सवाल पूछिए, लेकिन सवाल पूछने के पहले आपका एथिक अधिकार भी होना चाहिए, ये बोलना चाहिए आपको, मैं आपको जानकारी होना चाहिए। अरे भैया आप फिर बीच में बोल रहे हो, अब जेंजी हो तो व्याकुल क्यों हो गए, सवाल पूछा जवाब तो सुनो, अब सवाल पूछा है जवाब तो सुनो। राजीव जी आप इनसे मैं बहस नहीं कर सकता, आप करवा लो आप। अरे आप व्याकुल हो रहे तभी तो बीच में बोल रहे हो,
1: गुरु प्रकाश 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा।
4: नहीं बिल्कुल, ये जो एनएसयूआई के प्रवक्ता बिल्कुल कांग्रेस प्रवक्ता के लाइन में खड़े हैं, जैसे वो बीच में डिस्टर्ब करती हैं, ये भी बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप एनएसयूआई के प्रवक्ता से जल्दी कांग्रेस के प्रवक्ता बने, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन जब नेशनल टेलीविजन पे आते हो मेरे भाई तो सुना करो, सीरियस सवाल पूछा करो। यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वालों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये छूट होती है, तभी तो फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है ना। कुछ भी बात कर दोगे नेशनल टेलीविजन पे वायरल होने के लिए, मुझे लगता है थोड़ी गंभीरता का परिचय देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बिल्कुल सही ट्रैक पे हो,
1: राहुल अपनी बात अब कह दें, ठीक है, कांग्रेस पार्टी राहुल अपनी बात कह दें, फिर मैं अर्जुन के पास जाते हैं, फिर मैं आपके पास भी आ रहा हूं युवराज। राहुल 20 सेकंड में बोलिएगा बस।
0: सर इन्होंने कहा कि आप पढ़ लिख करके आइए, मेरे पिताजी खुद एक प्रोफेसर थे, अगर ये राजनीतिक पार्टी की ऑफिशियली प्रवक्ता हैं तो मैं, हमारा जो लीगल सेल है वो इनके खिलाफ जाकर के आज कार्रवाई करेगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, ये एबीवीपी के जिस प्रकार लोगों को बीजेपी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भर रही है उसी का एक एग्जाम्पल है कि एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल पोस्ट पे होते हुए आज राष्ट्रीय चैनल पे आकर के और पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, एज अ स्पेशलिस्ट और एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप आकर के।
4: मनोज झा कौन है जरा पूछिए इनसे, मनोज झा कौन है राजीव जी, मनोज झा कौन है जी,
0: मनोज झा कौन है, मनोज
4: प्रोफेसर नहीं है क्या, प्रोफेसर वेतन नहीं देते हैं क्या, मनोज झा कौन है,
1: मनोज कौन है, भटक रहे
4: बात करते हो यार,
1: इशू से भटक रहे हैं,
4: कोहली जी कौन है,
0: मनोज झा,
4: अरे मूर्ता वाली बात कर रहे हैं यार, मनोज झा कौन है, मनोज झा बताइए कौन है, मनोज झा बताइए ना, आप यूनिवर्सिटी से सैलरी लेते हैं, मनोज बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप कुछ आरोप है नहीं आपको, फालतू की बात करते हैं, मनोज झा लेते हैं सैलरी, जाके चेक करके आइए आप, कोई जानकारी नहीं है आपको, मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं यहाँ पे आप।
1: ठीक है, मैं चाहता हूँ हम इशू से भटक रहे हैं, मैं वापस जेन जी पर आता हूँ, मैं इशू डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, आपको जो करना होगा अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं, है ना, वो आपकी जो आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। लेकिन अर्जुन आपके पास आते हुए कि क्या अब आपको लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग में आप जैसे युवाओं की भागीदारी अब बढ़ेगी जब जेंजी की बात हो रही है हर तरफ?
5: है कि हर पीढ़ी का ही जो युवा होता है उसका डिसीजन मेकिंग में पार्ट होना ही चाहिए, परंतु मैं आशावान हूँ, विद्यार्थी परिषद आशावान है कि आने वाले समय में जो भाग युवा लेगा वो केवल यह नहीं होगा धरना प्रदर्शन हम करेंगे, विरोध भी हम करेंगे जो नीति गलत

0: होगी, परंतु नीति निर्धारण एवं नई संस्थाएं खड़ी करना, यदि यह संस्थाएं जो है सफल नहीं हो पा रही हैं, सार्थक नहीं कर पा रही हैं, तो उन योजनाओं में भी जो है, उस नीति निर्धारण में भी जो है, हम अपना योगदान देंगे। और इसलिए भी हम सकारात्मक हैं क्योंकि आज के समय में वो सभी संसाधन हमारे पास है जिससे हम ये सब कुछ काम अच्छे से कर सकते हैं। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि जेंजी के ऊपर एक बहुत बड़ी राजनीति यह मान के हो रही है कि जेंजी कोई एक एक रूप, एक कोई गुट है, तो ऐसा नहीं है। जेंजी में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, बहुत भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो उतना आइडियोलॉजिकल नहीं है और इशू बेस्ड है,
1: ठीक है,
0: ऐसे भी हैं जो दोनों हैं। तो उसको समझ रख के हमको, ना कि बहुत सेंसेशनलाइज करके इस राजनीति में घुसना चाहिए, तो वो समझदारी रहेगी।
1: ठीक है युवराज। अब तक हम जो देख रहे थे जिस पीढ़ी को, या शायद जिस पीढ़ी को बहुत हल्का समझा जा रहा था कि ये उतनी पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, तो क्या उसे अब तक अंडर एस्टिमेट किया गया और उसने अब अपनी प्रेजेंस दिखा दी है कि आप हमें जो हल्का समझ रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है और क्या डिलीवर नहीं कर रहा है।
2: राजीव जी, मुझे लगता है सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया की वायरलिटी को हमने एक पैमाना बनाया है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, दो तिहाई आबादी 35 वर्ष की है, उसके नीचे की है, और औसतन आयु 28 वर्ष है। और 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता नारी। तो जब युवा की कंसिडरेशन मोदी जी ने या भारत सरकार ने या पॉलिटिकल पार्टियों ने एट लार्ज कर रखी, तो हम ये नहीं मान सकते कि युवाओं को दरकिनार किया गया। लेकिन रातों रात जो सीजेपी नामक एक फिनोमिनन भारत में निकला, जिससे युवा सड़कों पे आए, सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन से इतर हटके ग्राउंड मोबिलाइजेशन हुआ, तो आज चर्चा का केंद्र, कहना गलत होगा, चर्चा ही जेंजी हो चुकी है, ये कहना उचित होगा। तो हाँ, जेंजी की चर्चा हो रही, हमारे पास तमिलनाडु का एक मॉडल आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि 2029 के चुनाव में लगभग 24% वोटर्स हमारे जेंजी हो जाएंगे। तो एक चौथाई वोटर भारत का जेंजी है, युवा पीढ़ी है। तो जिस डिस्कोर्स गति से डिस्कोर्स आगे बढ़ रहा था, अब ये उससे तीव्र गति से आगे बढ़ता हम सबको दिखाई दे रहा है। और ए पार्टी या बी पार्टी, हर पार्टी जेंजी का रहनुमा रहबर बनने की कोशिश में, कवायद में लग चुका है। और यदि आप 20 सेकंड और दें तो आदरणीय पूजा जी की तलखी का उत्तर मैं मोहब्बत की दुकान से देना चाहूंगा। आपने मोहन भागवत जी की बात की और उनकी तुलना कुछ तीखे शब्दों से कंगना रनौत से शायद करने का प्रयास किया। तो ये 89,000 शाखा है जो आरएसएस चलाता है, उसमें 90% लोग जो आते हैं वो 45 के नीचे के एज ब्रैकेट के हैं। लगभग 60% शाखाएं जो है वो बाल और तरुण शाखा है। एबीवीपी जो संघ प्रेरित है, 75 लाख का एबीवीपी का मेंबरशिप बेस है। तो ये मान लेना कि युवा पीढ़ी और स्पेशली जेंजी से संघ या मोहन भागवत ने पहली बार आउटरीच किया, मुझे
1: ठीक
2: लगता
1: है,
2: है ये बेवकूफी कही जाएगी। अगर और कुछ शब्द नहीं है मेरे पास तो
1: ठीक है डॉक्टर पूजा, इस पर जवाब तो दीजिएगा, लेकिन साथ साथ में इस सवाल का भी जवाब कि आप युवाओं की अब बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी में कोई युवा जुड़ता है और वो ऊपर धीरे धीरे आता है, तो उसको आप आगे बढ़ाते नहीं है ज्यादा, आप उसको मौके देते नहीं है। मतलब उसका एक बहुत उदाहरण हमारे पास सचिन पायलट का है, डीके शिव कुमार ने कितनी मेहनत की, बहुत मशक्कत के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन सचिन पायलट जैसे और दूसरे लीडर्स फिर उसके बाद पार्टी भी छोड़कर गए, आपने मौका ही नहीं दिया उन्हें।
3: ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि हम मौका नहीं देते। सचिन पायलट जी आज जनरल सेक्रेटरी हैं और डीके शिव कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहाँ बात है राजीव जी की, पर्ची नहीं निकलती दिल्ली से, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप हम एमएलए से बात करते हैं, जनाधार की बात करते हैं और उसके बाद करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली से पर्ची आती है और हम उस पर कर देते हैं। और सिर्फ युवाओं का नहीं, हम वरिष्ठों का भी पूरा सम्मान करते हैं। मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेज देते, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी, तो मुझे याद है कि जेंजी के वक्त सरकार को चेताया भी था पर सरकार नहीं चेती। अभी जो हमारे संघ के सॉफ्ट कॉर्नर, जिनका आपने लेखक कहके इंट्रोड्यूस किया, उनकी बात पे मैं जवाब देना चाहूंगी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, संघ को आउटरीच करनी भी है और संघ के ही अतुल्य ये कह रहे हैं कि ये देशद्रोही और संविधान विरोधी जनता है। अगर किसी को गटर जनरेशन बुलाया जा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद है।
1: ठीक है,
3: अगर ये कहा जा रहा है पंचर वाला का बेटा बेटी है तो ये रमेश बिदुड़ी है, ये भी शायद भारतीय जनता पार्टी के सांसद है।

0: ठीक है, पूजा 10 सेकंड पे कंप्लीट करें, कि समय का मैं सबसे एक एक करके रिएक्शन लूंगा।
1: संगठन है
0: ठीक है,
2: संघ के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना।
0: मैं लास्ट की समय कम है, मैं एक एक करके सबसे रिएक्शन ले रहा हूँ। युवराज आप ही बोल दें पहले।
2: मैं पूजा जी से इतना निवेदन हाथ जोड़ के करूंगा कि देश विरोधी ताकतों के साथ चलना, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ चलना, जॉर्ज सोरोस के साथ चलना, इससे बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना।
0: मैं समय कम है, मैं एक एक करके रिएक्शन लूंगा, एक एक करके। अर्जुन आनंद आप भी लास्ट लास्ट लास्ट रिमार्क आपके, बस समय कम है।
3: मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे शशि थरूर जी ने ही कहा था कि जब छात्रों के गूंज सफल नहीं हुआ तो उनका, मैं उनको कोट कर रहा हूं कि व्हाट डिड वी फेल टू डू। मुझे लगता है आज एनएसयूआई भी यही पूछ रही है कि हम क्या चूक गए कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल्स के साथ जाके, ISI SFI वालों के साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देश का युवा जो है वो मांग कर रहा है, पर ABBP उस मांगों के साथ खड़ी है।
0: राहुल लास्ट 20 सेकंड्स।
4: राजीव जी जो मतलब पूरा एक समरी थी वो लास्ट आर्गुमेंट अर्जुन जी का जो था उससे निकल करके आ गई कि ISI SFI जो लेजिटिमेट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसे अर्बन नक्सल कहते हैं। इसी के सख्त खिलाफ आज की जो जनरेशन है वो है जेन अल्फा जेन जी है। जब वो ट्रांसपेरेंसी की बात करती है वो इसी की बात करती है कि एक मंथ से तो आप आकर के यंग जनरेशन को देश की ताकत बताते हैं।
0: आप ही बताएं कि ये आपका बदला हुआ अंदाज कितने दिनों तक रहेगा।
5: नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि ये नक्सल की बात हो रही थी, मैं बताना चाहता हूं कि आज भारत नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। और दूसरा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि भाई सचिन पायलट नहीं पहुंच पाते हैं, पंजाब में चन्नी की क्या हालत हो गई है, दुर्गति हो गई है, हरियाणा में कुमारी शैलजा की क्या हालत हो गई, दुर्गति हो गई है, बिहार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष उनकी धुलाई हो गई थी एयरपोर्ट के बाहर, तो इनके पार्टी में ना युवाओं का सम्मान है, ना दलितों का सम्मान है, ना महिलाओं का सम्मान है, ना आदिवासियों का सम्मान है। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में एक नव सामंती संगठन, इट हैज बिकम अ फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन। और फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन में वही होता है कि मैं और मेरा परिवार। कांग्रेस पार्टी के पास जेंजी के विषयों पे बोलने का कोई मॉरल अथॉरिटी, कोई नैतिक अधिकार आज की तारीख में रह नहीं गया है। और यह बात जेंजी भी स्वीकार कर रही है, भारत का युवा भी स्वीकार कर रहा है, और भारत के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं।
0: चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देश के राजनीति में एक बदलाव तो देखने को मिल रहा है, और ये अच्छा बदलाव अब तक तो कहा जा सकता है, क्योंकि न जाति की बात हो रही है, न धर्म की बात हो रही है, इश्यूज की बात हो रही है, देश के लोगों की, देश के युवाओं की समस्याओं की बात हो रही है। इन्हीं समस्याओं की बात होनी चाहिए, वही असली राजनीति भी है। रुकने छोटे से ब्रेक के, आप देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
0: छक्का
1: सब कैशलेस हो गया है।
0: हाँ ला भाई मेरा बैट,
1: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
0: चार्ज हुआ यार,
2: बैट किसका है?
3: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade aaram se.
4: Jahan jurm, wahin kahani. Jahan kahani, wahin saazish. Jahan saazish, wahan crime. Jurm chahe kitna hi uljha ho. उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।
5: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को PVR INOX में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विटनेस

लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर परीक्षा के साथ इन छात्रों में एक उम्मीद जगती कि शायद इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, शायद इस बार नतीजा साफ सुथरा हो, शायद इनकी मेहनत का असर दिखे, शायद झारखंड की परीक्षा व्यवस्था इस बार सुधरे। लेकिन बार बार इनकी उम्मीद टूटती है। ये हर बार खुद को ठगा महसूस करते हैं, हर बार सिस्टम की नाकामी का शिकार बनते हैं। भ्रष्टाचार इन छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और छात्रों के हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। 25 साल के मनीष बताते हैं कि कैसे हर परीक्षा में वो बर्बाद हो चुके सिस्टम का शिकार बनते हैं। मनीष एक नहीं कई कई परीक्षाओं का उदाहरण देते हैं और सवाल करते हैं कि अगर यही हाल रहा तो झारखंड का छात्र कहां जाएगा।
1: आपको तीन एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि CHO का एग्जाम्पल एग्जाम हुआ था, उसमें एक राज्य विशेष लोगों का चयन हुआ। फिर 11-13 JPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष का सिलेक्शन हुआ। फिर महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक राज्य विशेष महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ। हम लोग झारखंड वाला कहाँ जाएं, क्या करें।
0: मनीष के माता पिता खुद झारखंड आंदोलन में शामिल थे। अब वो सवाल करते हैं कि आखिर अलग सुबह बने 25 साल से भी ज्यादा बीत जाने पर भी झारखंड के लोगों को क्या मिल रहा है।
2: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया।
1: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा। और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए, लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है। यहाँ पे बस अदर स्टेट वाले आते हैं, मलाई खा के चल जाते हैं। झारखंड के हिस्से में वही आता है, कोयला बिछो, बकरी पालो। हेमंत सोरेन भी तो वही बोलते हैं ना, बकरी पालो, सुअर पालो और रिच मिनरल रिच है, ये तो कोयला बिछता ही है यहाँ का लोग, क्योंकि नौकरी तो बाहर वाले आके ले जा रहे हैं ना, या फिर जो वैसे सुखदार ले जा रहे हैं।
0: झारखंड के हजारों छात्रों की शिक्षा व्यवस्था से नाराजगी है, क्योंकि ये उनके रोजगार और भविष्य का सवाल है। और इसे लेकर अब रांची के आंदोलन में शामिल छात्रों में जबरदस्त उबाल है।
3: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस समय लगा मुझे शायद मेरा ही कहीं पे हॉल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड हैं सर, और जितने सारे मेंबर है JPSC के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है सर। कोई किसी से है, कोई किसी से है, और उन लोग का अपना पर्सनल बायस होता है। तो एक बोर्ड सबको 65 प्लस दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। और सर एक उसके बाद जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, तो मैं अगले बार इसमें सुधार कर लूंगा।
0: झारखंड की इस धरती ने कई आंदोलन देखे और अब बिरसा की इस धरती पर नौजवानों की इस आंदोलन को पूरा देश गौर से देख रहा है। झारखंड का छात्र बदलाव की उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहा है। इनके मंच पर गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा की तस्वीर है और इनकी प्रेरणा के साथ बदलाव की उम्मीद। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
4: अलकनंदा नदी का ये रौद्र रूप देखिए, सैलाब का रौद्र रूप ऐसा है जिसे देखकर जिंदगी सहमी हुई है। ये तस्वीरें पौड़ी की है जहां लगातार बारिश हो रही है। इसका साफ असर अलकनंदा के जलस्तर पर दिख रहा है। नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास या उसके ऊपर बह रही है, इसे लेकर हाई अलर्ट है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि खतरे से दूर रहे। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार भूस्खलन और मलबा आने से बार बार बंद हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच गंगोत्री धाम से गंगा जल लेने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सड़क धंसने से यात्रियों और कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश का संकट टिहरी में भी दिख रहा है। गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। नदी किनारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं, कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। उधर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का विकराल रूप दिख रहा है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर नदी के किनारों तक खतरा बढ़ गया है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्तों पर मलबा ही मलबा दिखा। वहीं विकास नगर के जौनसार बावर में भी कुदरत के कहर का खतरा दिखा। वहां हीरपुर क्वानो मिनस मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जहां सेब से लदा एक ट्रक अचानक उफनते नाले के मलबे में फंस गया। फिर तो वहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात ऐसे हो गए कि ट्रक को निकालने के लिए JCB मशीन का सहारा लेना पड़ा। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक, विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा के कयास। थोड़ी देर में प्रयागराज में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। बीजेपी का तंज, मोहब्बत की दुकान से नफरत फैलाने की राजनीति लेकर आए हैं कांग्रेस नेता। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा झारखंड के छात्रों का आंदोलन, 14वीं जेपीएससी प्रीलिम्स की गड़बड़ियों पर सीबीआई जांच की मांग। सरकार छात्रों के दो दौर की वार्ता अब तक बेनतीजा। दिल्ली आईआईटी में पीएम मोदी का जेनजी मंत्र, कहा जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। महिला आरक्षण बिल पर पोस्ट वार, राहुल के महिलाओं के समर्थन पर रिजिजू का तंज, लगता है कांग्रेस अब बिना शर्त समर्थन को तैयार। राहुल बोले 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका है बिल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2027 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव का ट्रेलर मिलने लगा है। अब की बार भी इस चुनाव का क्लाइमैक्स जातियां ही होने वाली है। संकेत साफ दिख रहे हैं, जाति वाले समीकरणों में अखिलेश यादव का पीडीए दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए का ऐसा विस्तार किया है कि उसमें पीडी का मतलब पिछड़ा, दलित के साथ साथ अब पंडित भी वो बता रहे हैं। पीडी मतलब पंडित। यूपी के पिछले दो विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का एक तरफा सपोर्ट बीजेपी को मिलने के दावे हुए। ऐसे में यूपी में 10 से 12 फीसदी आबादी ब्राह्मणों वाली है, उस पर अखिलेश अपना दाव खेल रहे हैं ताकि उलट फेर हो सके। उधर योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व की पिच पर कायम है, जहां जातियों से ऊपर उठकर एक होने की बात वो कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावा चोरी जैसे मसलों पर भी अखिलेश को राजनीतिक जवाब देने में कमी नहीं छोड़ी है। सवाल है कि क्या बीजेपी की कोशिशें ब्राह्मणों पर अखिलेश की तैयारी को नाकाम कर सकेंगी, या अखिलेश का पीडीए इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। पीडीए यानी पंडित देंगे आशीर्वाद। हल्ला बोल में पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत।
1: अखिलेश के नए पीडीए फॉर्मूले पर सियासी घमासान।
2: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
1: चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण कार्ड।
3: पूरा पीडीए परिवार एक आपस में दर्द से जुड़ा हुआ है, पीड़ा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मानने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी गुणागारी लगा ले, पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे।
1: अयोध्या से अखिलेश ने पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के दांव पर बीजेपी का पलटवार।
4: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
1: क्या यूपी की सियासत में अब ब्राह्मण पर टकराव?
5: ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं।
6: आरोप लगाइए तो ऐसा लगाइए कि जो सच्चा साबित हो। हम लोग बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए वचनबद्ध हैं।
0: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉली शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, पीयूष मिश्रा प्रवक्ता SBSP के, और सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर पंडित उधर आशीर्वाद दे देंगे तो क्या होगा? और देखिए, विपक्षी पार्टियां लगातार एक ड्रिफ्ट दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अगड़ों में जैसे एक वक्त पर सोशल इंजीनियरिंग मायावती जी ने किया था और ब्राह्मण उनकी तरफ गए थे, वैसे ही इस बार अखिलेश यादव कर लेंगे सफलता से। चैलेंज है या नहीं?
7: देखिए, पंडित आशीर्वाद देता है लेकिन पात्रों को देता है, तो नीरज मिश्र के हत्यारे को पंडित आशीर्वाद दे देगा? उसके सामने नीरज मिश्र का जो कटा हुआ सिर, जो गायब हो गया, क्या उसकी स्मृति से लोप हुआ है? उसका बिल्कुल नहीं लोप हुआ है। समाजवादी पार्टी की रैलियों में सारे ब्राह्मण समुदाय के लिए गालियों के नारे लगना, इसको लोग भूल जाएंगे क्या? हर जिले में जो है पंडितों का उत्पीड़न 2012 से 17, क्या ये ब्राह्मण भूल जाएगा? तो भली भांति सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, तमाम जातियों का उत्पीड़न एक मजहब विशेष के द्वारा और एक जाति विशेष के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और तमाम अन्य पिछड़ी जातियां और सवर्ण, सबके सब श्रीमान अखिलेश यादव के 2012 से 17 के कार्यकाल के भुक्त भोगी रहे हैं। जैसे ही श्रीमान अखिलेश यादव,
0: क्या नारेबाजी हुई है प्रेम शुक्ला जी,
7: उनका चेहरा
0: ब्राह्मणों के खिलाफ क्या नारेबाजी हुई है? क्या समाजवादी पार्टी में क्या नारेबाजी होती है
7: ब्राह्मणों के खिलाफ? ब्राह्मण, हाँ, समाजवादी पार्टी में आपको वीडियो भेज देता हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बाकायदा ब्राह्मणों को गालियां देने वाली नारेबाजी हुई है, जिन गालियों का अगर मैं चैनल पे जिक्र कर दूं तो मुझे लोग गालीबाज कहने लगेंगे, लेकिन ब्राह्मणों की जाति को लेकर समाजवादी पार्टी की रैली में बाकायदा गालियां दी गई है और गालियों वाले नारे लगे हैं। मैं इसका वीडियो आपको भेज सकता हूं।
0: अब तो वो जनेश्वर मिश्रा जी का देखिए जो आयोजन तो हुआ है, इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है प्रेम शुक्ला जी, और वो एक स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं। पांडे जी को, पवन पांडे को टिकट दे दिया अयोध्या से, ये सब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा सा जवाब फिर मैं अनुराग जी के पास।
7: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पंडित जनेश्वर मिश्र ने स्वयं जो है अपने पांडित्य का यज्ञोपवीत खंडित कर दिया था, तोड़ दिया था। जनेऊ तोड़कर जनेश्वर मिश्र ने कहा था कि मैं स्वयं को ब्राह्मण नहीं मानता। अब उन लोहियावादी जनेश्वर मिश्र जी को आप ब्राह्मण बनाने पे आमादा है, जो स्वयं को ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनके मरणोपरांत उनको पांडित्य का जो है उपाधि प्रदान करने पर श्रीमान अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण इस तरह के जो है छलावे में आ जाएगा, ये अखिलेश यादव की कल्पना हो सकती है, वास्तविकता नहीं है।
0: चलिए ठीक है अनुराग जी, अब आप जवाब दीजिए, क्या आप लोगों को वाकई भरोसा है कि पंडित देंगे आशीर्वाद पीडीए का? चूंकि आप लोगों का पीडीए जो है ना वो ओपन हो गया है, मतलब उसमें कभी आप लोग पी से पिछड़ा कहते हैं, कभी पीडी से पंडित कह देते हैं, कभी कहते हैं ए से आदि आबादी अल्पसंख्यक भी, अगड़ा भी कहते हैं ए से, तो जब ओपन ही है पूरा इसका फुल फॉर्म, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या पंडित वाकई समाजवादी पार्टी को देंगे आशीर्वाद?
8: देखिये, समाजवादी का परिवार बड़ा होता जा रहा है, समाजवादियों का परिवार बड़ा है, तो जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। अब जहां तक ब्राह्मणों की बात है तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर में, जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे जितना बड़ा पार्क हमने बनाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई इतना बड़ा पार्क बनाया है क्या? जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे हम जयंती भी मनाते हैं हमेशा, लेकिन इनका क्या है? ये मूर्ति भी अगर लगाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो फिर कैसी होती है हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि ब्राह्मण, बिल्कुल ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहा है। हमारे यहाँ देखिए जनेश्वर मिश्र जी की आपने बात की, माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता विरोधी दल हैं, पवन पांडे की आप बात कर रहे थे, सनातन पांडे जी देखिए हम किस तरह से बलिया से सनातन पांडे जी जीत के आए, तो जो जहां पे सनातन पांडे जी हमारे साथ हों, अब फिर बचता क्या है बताइए? अब इनके साथ क्या है मैं बता रहा हूं, जनेश्वर मिश्र जी का मुझे आपको एक वाक्य सुना रहा हूं, ये जनेश्वर मिश्र जी की बात कर रहे हैं ना, जनेश्वर मिश्र जी ने आदरणीय नेताजी से बोला कि नेताजी मेरे सामने की बात है कि अखिलेश यादव में यही वर्ड था उनका कि अखिलेश जी में एक हमें राजनीतिक गुण दिख रहा है और नेतृत्व की क्षमता दिख रही है। आप मेरी बात माने ना माने, मैं मीटिंग करूंगा और मैं बोलूंगा अखिलेश यादव की कि अखिलेश यादव हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इस लड़के में जो गुण है वो गुण मैं देख रहा हूं, मैं बता सकता हूं। आनंद प्रसाद रोड की बात है जिसमें वो रहते थे, उन्होंने मेरे सामने बात बोली थी और एक अच्छे खासे माने पढ़े लिखे ब्राह्मण व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और ये लड़का बहुत आगे जाएगा।

0: फिर उन्होंने जब नेताजी ने कहा नहीं अभी तो हमने ऐसा कुछ अभी मैं जानता हूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो कि ये आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं जानता हूं कि हमें दूसरी पीढ़ी लेके आनी है और इनको मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता हूं, मेरे सामने की बात।
1: अच्छा सुनिए,
0: सवाल उठता है कि जब ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया सुनिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया वो एमपी बने पहली बार और उसके बाद लगातार जीत गए।
1: राजपूतों से क्या भूल हो गई है भदौरिया जी?
0: जी जी,
1: राजपूतों से क्या भूल हो गई है? भूमिहारों से क्या भूल हो गई है? सब सबका नाम तो लीजिए, जब ले ही रहे हैं तो अगड़ों में ये नहीं चाहिए क्या?
0: अरे राजपूत तो देखिए, राजपूत तो आपके सामने गरज रहा है ना,
1: तब पीडीए
0: समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब मैं मुझे बताने की जरूरत है,
1: पीडीए में राजपूत कैसे आएगा?
0: अरे समाजवादी पार्टी में राजपूत ही हमेशा से ज्यादा रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। राजपूत हमेशा समाजवादियों के साथ ही रहे हैं और राजपूत में सबसे ज्यादा मंत्री अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में ठाकुर समाज से मंत्री थे। आज कितने मंत्री ठाकुर समाज से, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में। अगर मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए तो कितने मंत्री हैं ठाकुर समाज से?
1: और समाजवादी पार्टी में कितने
0: मंत्री थे? राजा भैया को मंत्री जो बनाया, हमारे समय राजा भैया भी मंत्री थे।
1: समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे, मतलब पिछड़ों से ज्यादा
0: राजा भैया को तो
1: मंत्री बनाया है।
0: अरे सुन तो नहीं, राजा भैया को तो, अरे राजा भैया आज की बात कर रहा हूं, आज देखिए राजा भैया मंत्री नहीं है, हमारे समय राजा भैया भी मंत्री थे। हमारे यहाँ जो भी ठाकुर नेता था, ज्यादातर ठाकुर नेता मंत्री होते थे, ऐसा नहीं है। समाजवादी ने ठाकुरों का, पंडितों का, मैंने सभी सभी जातियों का सम्मान किया है। और जिस पीडीए की हम बात करते हैं, पिछड़ा जिस पीठ से आप बात कर रहे हैं, जिसमें पंडित है, पिछड़ा है, पीड़ित भी है, कोई भी पीड़ित हो, चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज से आता हो, अगर पीड़ित है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। मैं इसने पूछना चाहता हूं, पंडितों की बात करते हैं, जब यहाँ पे शंकराचार्य के साथ अन्याय हो रहा था तब कहाँ थे ये? जब यहाँ पे बटक यहाँ पे शिखा पकड़ी गई थी बटकों की, तब कहाँ थे? तो समाजवादी ने आवाज उठाई ना, समाजवादी हर व्यक्ति के साथ खड़ा है, समाजवादी हर पीड़ित के साथ खड़ा है, हमने प्रूव करके दिखाया है। इसलिए हमने जब यहाँ पे विकास की बात की, इसलिए हम विकास की बात करते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो आप देखिए, इन्होंने इतने एक्सप्रेस वे बनाए, सारे एक्सप्रेस वे जितने उन्होंने बनाए, और अगर बारिश पहली बारिश की बूंद पड़ते ही वो टूट जाती है। लेकिन समाजवादियों पार्टी के समय में एक्सप्रेस वे बनाए लखनऊ आगरा, आज तक टूटा क्या? सभी जात धर्म के लोग चलते हैं, मेट्रो पे सभी जात धर्म के लोग चलते हैं, लैपटॉप भी सभी जात धर्म को दिया गया, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, सभी जात धर्म के लोग वहां पे इलाज कराते हैं। तो सभी का सम्मान करते हैं, किनका सम्मान करते हैं बता दें मुझे, ये तो विकास की बात।
1: डॉली जी भी बोल रहे थे, सांस ले जी। डॉली जी आपके पास सब आ रहे हैं, जब राजपूत की मैंने बात की, याद दिलाया उनको, तो आप भी मुस्कुरा रही थी, सतीश जी भी मुस्कुरा रहे थे। मग किस किस का जात गिनाया जाएगा? मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहे, मतलब ऐसी कोई जाति नहीं जो पीडीए में आती नहीं, धीरे धीरे सबको घुसा रहे हैं।
2: अंजना जी देखिए, समाजवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग सबको साथ लेने के लेकर चलने की बात करते हैं, हम किसी एक जाति धर्म किसी एक विषय पर बात नहीं करते। हाँ ये बात सच है, किसी के साथ भी कहीं अन्याय हो रहा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, ये एक सबसे पहला काम जो मुझे राहुल गांधी जी में और राहुल गांधी जी के साथ साथ अखिलेश यादव जी में समान दिखता है, वो ये दिखता है कि वो हर उस वर्ग की आवाज उठाते हैं जहां उनको उनकी जरूरत है। तो अभी ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें ब्राह्मणों के बारे में कर रहे थे, ब्राह्मण, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ अंजना जी, और यहाँ जितना ब्राह्मणों को इनकी सरकार में हत्याएं हुई ना, पूरी सूची मेरे पास है, पूरी सूची मेरे पास है, मैं पढ़कर बता देना चाहती हूँ जो यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे। ब्राह्मण छोड़िए, दलितों के साथ जितने अत्याचार इनकी सरकार में हुए हैं वो भी एक पूरी लिस्ट है। लखीमपुर खीरी की देख लो, हाथरस की देख लो, उन्नाव की देख लो, बहुत लंबी लंबी फेरिस है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ते, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं। सत्ता को कैसे कब्जाया जाए, वहां किस धर्म को किससे लड़ा जाए, किस प्रदेश में कैसे समीकरण बिठाया जाए, वहां धर्म को लड़ाना है, जात को लड़ाना है, आपस में कहां किसको भिड़ाना है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है और वो अब पूरे देश ने और पूरे देश के युवा ने डीबंक कर दी है। अब पूरा देश जब छात्र आंदोलन में पेपर लीक के लिए लड़ा तो किसी जात किसी धर्म का नहीं, सबका होकर लड़ा। तो ये इन्हें एक संदेश चला गया। अभी उत्तर प्रदेश में कितने भी समीकरण बैठाए, जनता के मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे अंजना जी, और जनता अपने मुद्दों के लिए लड़ेगी, और ये बेहद खुशी की बात है कि हमारा देश अपने मुद्दों के लिए लड़ने लगा।
1: ठीक है, शर्मा जी शुक्ला जी से बता रही हैं कि शुक्ला जी आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, तो फिर मिश्रा जी बोले, उससे पहले एक जवाब दे दीजिए।

0: बहुत अच्छा कहा। 10,000 ब्राह्मणों की हत्या श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अकेले महाराष्ट्र में करवाने का की छूट दी थी और एक FIR दर्ज नहीं हुआ था। एक FIR 10,000 ब्राह्मणों से बड़ा नरसंहार आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ है। या तो औरंगिया के कार्यकाल में हुआ था या नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था। और जो गौभक्त आए थे उसमें अधिकांश ब्राह्मण ही थे। 1966 में उन गौ भक्तों पर गोलियां चलाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उससे बड़ा नरसंहार और क्या हो सकता है। तो जिनके कार्यकाल में जो पंडित स्वयं को बताते हैं पारसी पिता और ईसाई पुत्र की ईसाई मां की कोख से जन्मा जो ब्राह्मण है उसके पिता के कार्यकाल में, उसकी दादी के कार्यकाल में और उसके नाना के कार्यकाल में किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है ये सकल ब्राह्मण समाज भलीभांति जानता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के गांवों में ब्राह्मण बचे नहीं, इस तरह से नरसंहार किया गया 1948 में। फरवरी 1948 तिथि याद कर लीजिए और इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए। भयंकर रक्त रंजित इतिहास स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी का है।
1: तो यूपी में नेहरू जी का इतिहास बताइएगा चुनाव के समय में।
2: नहीं अंजना जी, ये कोई
0: जगह जवाब नेहरू जी का इतिहास नहीं बताना है। यूपी में ही तो नेहरू जी यूपी में बयान है क्या?
2: ये मुझे सोर्स दे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कोई आदेश दिया था। ये सोर्स
0: मैं सोर्स दे रहा हूँ। ये हाँ कराया है। अरे 10,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई है।
2: देश ने ये स्थापित
0: महात्मा गांधी के हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया। चुन चुन कर कांग्रेसियों ने मारा। चुन चुन कर व्हाट्सएप नहीं, ये तो इतिहास के पन्नों में महाराष्ट्र का हर गांव इसका गवाही देगा। महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का, विदर्भ का गांव गांव इसकी गवाही देगा। महाराष्ट्र का हर गांव गवाही देगा और मैं इसकी गवाही इसके साक्ष्य देने को तैयार
1: हूँ। सोर्स बताइए ना, देने को तैयार हूँ। अच्छा सोर्स बताइए, वो सोर्स पूछ रही है।
0: तैयार हूँ,
1: सोर्स बताइए।
0: बता रहा हूँ ना। अरे
2: आप सोर्स दिखाइए, आप तो
0: सारा महाराष्ट्र इसका सोर्स है भाई। महाराष्ट्र में हर जिले का इतिहास है। आप महाराष्ट्र के तमाम ब्राह्मण परिवारों में चले जाइए, हर परिवार को कोई ना कोई मारा गया है। तमाम ब्राह्मण परिवारों के एक FIR आदेश उन्होंने इग्नोर किया। अब आप कहेंगे सिखों का नरसंहार तो राजीव गांधी का आदेश गजब है भाई, गजब है। सिखों के नरसंहार का आदेश कर दिया, ऐसा गजब, ऐसा गजब है। नेहरू जी के कार्यकाल में 10,000 से अधिक ब्राह्मणों को चुन चुन कर गांव से चुन चुन कर कर उनके घरों में आग लगाकर उनकी हत्याएं की गई। अरे पूरे महाराष्ट्र का इतिहास है। एक सोर्स 10,000 सोर्सेस के, 10,000 ब्राह्मणों के 10,000 सोर्स है। आप बताओ तो तुम्हें लेके आ रहा हूँ अभी मैं। आप आज तक के कैमरा मैन को भेज दीजिए ना, सावरकर के घर में भेज दीजिए।
1: अपने कैमरा मैन को
0: अरे
1: नेहरू जी के वक्त में उनका
0: घर भेज दीजिए।
1: अच्छा, सावरकर
0: के घर, सावरकर का परिवार बता देगा। सावरकर के छोटे भाई की
2: परिवार ने बताया कि की गई थी, माफीनामे लिखे थे 10,000 घर है और वो 60 रुपए पेंशन भी लेते थे।
0: 10,000
2: घर परिवार ने
0: और 10,000
2: के पड़ोसी ने बताया
0: आज तक अपना कैमरा भेज दिया। माफीनामे उन्होंने लिखे थे।
1: बीजेपी तो बीजेपी
0: आज तक को चुनौती
1: ब्राह्मणों के लिए
0: आज तक कैमरा भेज
1: अरे आज तक को चुनौती दे रहा हूँ शुक्ला जी, कुछ तो काम आप लोग भी कीजिए। आजकल बैठे बिठाए सबको चाहिए कि कोई और ही उनके लिए काम कर दे। अरे जो जो बोल रहे हैं
0: निमंत्रण दे देता हूँ मैं।
1: अरे तो राहुल जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं छात्रों के साथ, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए उनके परिवार के साथ।
0: महाराष्ट्र का इतिहास जानता है।
1: चलिए सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी
0: सब किया हुआ है, कोई आज की बात है।
1: सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी
0: एक एक गांव में इसका इतिहास है।
1: जी शुक्ला जी, सतीश प्रकाश जी आपने सोचा था कि ऐसा एक दिन आएगा जब ब्राह्मणों के लिए, हालांकि मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग कर चुकी हैं और आप लंबे वक्त तक BSP से एसोसिएटेड भी रहे, लेकिन ऐसे ही खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणों के लिए सब जंग लड़ेंगे ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है।
3: नहीं देखो अंजना जी

0: और निश्चित रूप से उनकी आबादी है, पढ़ा लिखा समाज है और सत्ता में कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और तीन चार बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, चारों की चारों सरकारों में इस विशेष रूप से 2007 से लेकर के 2012 के बीच में सत्ता की अच्छी खासी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को दी। देखो एक चीज ध्यान रखो, ये जो हम सोशल इंजीनियरिंग की बात, ये आज से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है इस देश में ब्राह्मण और दलित ने मिलकर के 6 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस कम्बिनेशन ने बाकायदा कांग्रेस को 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, ये भी आप ध्यान रखें। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो दलितों की और ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लैंडलेस पीपल है। अगर पूर्वांचल को आप छोड़ेंगे, वहां पे कुछ ब्राह्मण परिवारों के पास जमीन है, बाकी अधिकतर उत्तर प्रदेश के परिवार जो है, जो ब्राह्मण परिवार है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ है, एजुकेशन है, सरकारी नौकरी लेती है। अब दोनों के साथ समस्या ये है कि दोनों की आजीविका का मुख्य साधन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। ये ब्राह्मण समाज याद करता है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 6.5 लाख पदों के ऊपर 5 साल में कहीं ना कहीं भर्ती हुई। तो मेरा मानना यह है कि, और दूसरी बात, एक छोटी सी बात रुके तो, तमाम राजनीतिक दलों को यह भी मान लेना चाहिए, उन जैन जी की बात भी सुनो, उस नई आबादी की भी बात सुनो, वहां जाति भी टूट रही है, वहां धर्म भी टूट रहा है, वहां लिंग भेद भी टूट रहा है। जो नया वोटर है वो कुछ और कह रहा है, वो आपको, आप पॉलिटिकल दलों के ऊपर ये इनके झांसे में नहीं आने वाला कि आप इस समाज की बात करेंगे, आप इस जाति की बात करेंगे, वो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, आपसे रोजगार की बात कर रहा है। मैं आम पूरे देश में अगर आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि छोटा छोटा यूथ जो है ये जातियों के चंगुल से निकल करके उस एक दकियानूसी सोच के साथ निकल करके एक नई सोच के साथ खड़ा है, और वो एक सवाल भी उठा रहा है, पूरे समाज से उठा रहा है, सरकारों से उठा रहा है, सरकार से रोजगार की मांग कर रहा है। मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा धर्म नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का मुद्दा जाति नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश में भयानक रूप से बेरोजगारी है, बेरोजगार व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, और सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने में कहीं ना कहीं नाकाम है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, बाकायदा हाईकोर्ट ने कई बार,
1: अनुराग जी मैं आ रही हूँ, अनुराग जी मैं आ रही हूँ, उससे पहले मिश्रा जी भी तो बोल रहे हैं, पीयूष मिश्रा जी, पीयूष मिश्रा जी क्या स्थिति है, ये जो आरोप लग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जाति धर्म ये सब जो पारंपरिक पॉलिटिक्स है ना उससे पार्टियां बाज आए, अल्टीमेटली जो युवा है, रोजगार है, ऐसी चीजें मायने रखेंगी।
2: देखिए आदरणीय अंजना जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी ने अभी शुरुआत में एक बात कही, सपा बड़ा परिवार है और सारे परिवार सपा के हैं, सारे परिवार में सब सपा के हैं, मैं उनकी बातों से मैं एकदम सहमत हूँ, चाहे वो चाचा अगर बटा तो आपने देखा ही होगा कि जितने भी टिकट बटे वो यादवों में केवल इन्हीं के परिवार के बटे, नंबर एक।
1: भदौरिया जी, और ये तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कि आपका इन सबसे कोई लेना देना है नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपका, पीडीए।
3: अच्छा ये बताइए, ये बताइए, जनरेशन मिस पार्क हमने बनाया तो क्या परिवार वाद की अथॉरिटी जो भी वो बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो बोलते क्या हैं। दूसरा, हमने जैसे महाराणा प्रताप की हमने कहा कि हमारी सरकार होगी तो महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति, जिसको हमने बोलता गोल्ड का उनका भाला होगा, सोने के भाला होगा, क्या इन्होंने किसी ने उसको कहा हम बना के देंगे ना रिवर फ्रंट पे। दूसरी बात, आपकी डिबेट में देख लीजिए, डॉली जी हैं ब्राह्मण समाज से आती हैं, सतीश जी हैं दलित समाज से आते हैं, मैं ठाकुर समाज से आता हूं, और तीनों हम एक साथ हैं। अब देखिए दो लोग बचे, प्रेम शुक्ला, उनका प्रेम तो हो सकता है बीजेपी के साथ, लेकिन आधा जो बच्चा है वो शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी कंफ्यूज हैं, वो मिश्रा जी जो पीयूष मिश्रा जी, उनकी आवाज इसलिए गायब होगी क्योंकि कंफ्यूज है, उन्हें पता नहीं चला वो बोल क्या रहे हैं, बात हो रही है राष्ट्र पे, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, बात हो रहे हैं वो किसी विषय, वो बात कर रहे हैं परिवार की, यहाँ परिवार का मतलब ही नहीं समझते, उत्तर प्रदेश को हम अपना परिवार समझते हैं।
2: अंजना जी, मौका देंगे
3: समाजवादी परिवार, मतलब उत्तर प्रदेश का परिवार, हमने मेट्रो बनाई है तो कोई घर के लोग चलते हैं क्या उसके अंदर में, हम नहीं हम उसके घर के अंदर चलते हैं क्या, सवाल उठता है कि हमने जो मेडिकल कॉलेज बनाए वो घर के अंदर घर के लोग चलते हैं क्या, ये इनकी सोच दर्शाती है। दूसरी बात, जो बड़ी बात कर पीडीए की बात बार बार आप अंजना जी करती, मैंने आपसे बोला पीडीए का मतलब पंडित है, पीड़ित है, पिछड़ा है,
2: परिवार,
3: ये से आप पूछ रहे हैं।

0: अगला पिछड़े अगले
1: जो अगड़े पिछड़े रह गए हैं बोलिए आगे ले जाना है पिछड़े अगड़े
0: में सीटें दी आबादी केवल परिवार की आदमी
1: उसमें आपकी आधी आबादी में तो हम लोग
0: आपने उसी बात को आपने शुरुआत में अपने
1: कितने लोगों को साथ लेके चलते हैं एक पीएमपी में कितने लोगों को साथ लेके चलते हैं एक डीएडी में कितने लोगों को साथ लेके चलते हैं ये तो किसी को साथ लेके चलना ही नहीं चाहते ये तो हमारे प्रभु राम के यहाँ भी चंदा वहां पे चढ़ावा चोरी होता है उसमें भी साथ देने को तैयार नहीं होते हम तो प्रभु राम को भी अपना चूंकि प्रभु राम मेरे राजनीतिक विषय नहीं है वो मेरे श्रद्धा मेरी आस्था का विषय है लेकिन हम पी में कितने लोगों को जोड़े हुए हैं डी में कितने लोगों को जोड़े हुए हैं ए में कितने लोगों को जोड़े हुए हैं हम जोड़ के चलते हैं सबको एक साथ जोड़ के चलते हैं तभी तो हम हिंदुस्तानी हैं तभी तो हम भारतीय हैं तभी तो हम उत्तर प्रदेश या एक समाज को अपना बांधते हैं लेकिन
0: अंजना जी जो भदौरिया जी कह रहे हैं कि ये कितना सम्मान करते हैं चार दिन पहले विधानसभा में आपने देखा होगा ये चंदा के मुद्दे पर आए और प्रभु श्री राम की मूर्ति को और फोटो को लेकर बेल में नाच रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक और उसी फोटो को फाड़ करके पैर से इन्होंने कुचला है कितने प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं और कितने भक्त हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी अयोध्या में सबको बताया और सुनवा चुके हैं और जो अब ये पीडीए की परिभाषा नहीं बैठ के गड़ रहे हैं ना
1: चढ़ावा चोरी पे क्या मत है
0: पीट देगा अहिर अभी चार दिन पहले
1: चढ़ावा चोरी में आपका क्या मत है
0: मार के लाल कर दिया वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं था कन्नौज की घटना जो बताई कि नीरज मिश्रा की मूड़ी काट कर ले गए थे अखिलेश यादव जी के समय में वो कौन था ब्राह्मण ही था देखिए समाजवादी पार्टी को करना कुछ और आज 7 अरब की सौगात माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी अंबेडकर नगर में दिए हैं और अंबेडकर नगर में आप चेक करवा लीजिएगा कितने पार्टी के कौन कौन से विधायक वहां केवल भाजपा का एक विधायक है लेकिन 7 अरब की सौगात दिया गया उन्होंने तो यह नहीं देखा कि 4 विधानसभा में कौन से पार्टी के विधायक है तो एनडीए की सरकार जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो सपना लेकर आए थे जो विजन था माननीय मोदी जी का जो केंद्र का सपना था उसको साकार देगा अहिर पीडीए जो इनका जो कर्मकांड चलता रहता है ये इनसे ही परेशान है और बौखला गए इसी के लिए ये ब्राह्मणों को साधने की तैयारी किए हुए हैं लेकिन ये ऐसा आगामी आपको देखने को मिलेगा अंजना जी ऐसा कुछ होना नहीं है आपको याद होगा एक बार माननीय अखिलेश जी ने इंटरव्यू दिया किस जात के हो ओ मिश्रा जी हो तो ये ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे और कितने हितैषी हैं ये सर्वविदित है किसी को न बताने की जरूरत है न किसी को छुपाने की जरूरत है और इनके एक प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मण महिलाओं को किससे तुलना की ये तो स्क्रीन पे भी बोलने में शर्म आनी चाहिए और इन्होंने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने उसको बढ़ाया और आगे प्रमोट कर दिया ब्राह्मणों पे अगर ये सब चर्चा करते हैं तो इनके प्रवक्ताओं को भी देखना पड़ेगा कि ये अपनी तुलना और ब्राह्मणों की तुलना किससे कौन कहां कर रहे थे
2: ठीक है अनुराग जी इसका जवाब दीजिए और आप जब बार बार सबका जात बना रहे हैं मुझे लग रहा है कि आज मैं ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हूं क्या शो में
1: नहीं नहीं मैं इनको बता रहा था दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे एक प्रवक्ता ऐसे प्रवक्ता जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की कोई सम्मान नहीं है सुन लीजिए कान खोल के अगर इस तरह की बात कोई
0: पार्टी
1: किसी
0: से
1: जात की बात बोल के कोई
0: तो
1: किसी के व्यक्तिगत बात बोल के मैं आपके बीच में नहीं बोला देखिए अब आपके बीच में नहीं बोला आप आज तक में बैठे हैं प्रभु हल्ला मचाने नहीं बैठे हेलो हेलो करने नहीं बैठे अरे आवाज आती है टेक्नोलॉजी समझिए आपकी आवाज आ रही है हेलो बोलने की जरूरत नहीं है अब आप मैं अपनी बात कह लूँ
2: अंजना
1: जी मैं अपनी बात कह लूँ या हल्ला अंजना जी मैं अपनी बात बोल लूँ मैं इनको सुना मैंने धैर्य से सुन लीजिए सवाल यह है कि हमारी पार्टी में कोई भी प्रवक्ता अगर इस तरह की बात किसी विशेष जाति के बारे में बात करता है उसका कोई सम्मान हमारी पार्टी में नहीं होता कान खोल के सुन लीजिए दूसरी बात जब आप बता रहे थे यहाँ पे परिवारवादी पार्टी तो निषाद जी कौन सी पार्टी से
2: परिवारवादी
1: पार्टी
2: ले लीजिए
1: जिनको आप मंत्री बनाए बैठे हैं राजभर परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या अपना दल नहीं अपना दल परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या परिवारवादी पार्टियों के साथ सरकार बनाओगे वहां केंद्र में चले जाओ तो रामविलास पासवान जी परिवारवादी पार्टी से नहीं है क्या एनसीपी परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या जिसके साथ सरकार बना रहे हो शिवसेना परिवारवादी पार्टी नहीं है टीडीपी परिवारवादी पार्टी नहीं है बताइए आप परिवारवादी पार्टी को सरकार बनाओगे आप तो जेडीयू परिवारवादी पार्टी है सारी परिवारवादी पार्टी के साथ सरकार बनाओगे मलाई खाओगे और दूसरों के परिवार खोजते हो थोड़ी शर्म बची है कि नहीं बची है माने उत्तर प्रदेश में परिवारवादी पार्टियों के साथ सरकार बनाए बैठे हो केंद्र में परिवारवादियों के साथ सरकार बनाए बैठे हो और जब हम आपसे सवाल पूछे विकास की तो आप परिवार की बात करते हो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पे आ जाते हो अरे सवाल है कि आपने क्या किया आपकी 10 सालों में आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई कितनी आपने रोजगार दिया कितनी महंगाई कम की महिलाओं पर अत्याचार कितना कम हुआ छात्रों का सम्मान आपने किया कि नहीं किया। छात्रों का तो सम्मान आप करते नहीं हो, उनका सम्मान तो आप लाठियों के स्वागत से करते हो ना। और बार बार हम लोग कहते हैं जो छात्र है ना, जो हमारा जैन जी है जिसकी हम बात करते हैं, जैन जी की एक बहुत अच्छी आदत है, वो रिवाजों का सम्मान करता है और नए ख्वाबों की उड़ान, यही है जैन जी की पहचान। सुन लीजिए, जो आप नहीं पहचान पाते, आप समझ नहीं पाते नया ख्वाब क्या है, आप समझ नहीं पाते। यहाँ पे कहते हैं ना रिवाजों का सम्मान, वो रिवाजों का सम्मान, नए ख्वाब की उड़ान,
2: प्रेम शुक्ला
1: जैन जी की पहचान। इसको समझने में आपको मिश्रा जी बहुत टाइम लगेगा, जरा पीयूष जी सोचिएगा।
2: ठीक है, शुक्ला जी को बोलने देते हैं। शुक्ला जी, ऐसा तो नहीं, एक खबर भी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां है उत्तर प्रदेश में, सुनिए ना, वो बार बार मुख्यमंत्री जी की जाति को लेकर कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण वहां हो गया है ब्यूरोक्रेसी में हर जगह, सही है क्या
3: जी? देखिए, पीडीए का मतलब साफ है, पाएंगे सिर्फ डिंपल और अखिलेश, और इस बात को समाजवादी पार्टी के नेता भी जानते हैं, स्वयं अनुराग भदौरिया भी भली बात जानते हैं कि पीडीए में भी जो है चचा का नहीं चलता, सिर्फ जो है डिंपल और अखिलेश के आसपास जो है वही पीडीए हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और जहां तक बात रही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी नाथ संप्रदाय के संत हैं, संत में सारी जातियां समाहित हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं, इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है उसको साकार करने का कार्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही हुआ है। अब श्रीमान भदौरिया जी कह रहे थे, राजकुमार भाटी जी ने जिन्होंने मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था तो बीच में मत आइए, मैं श्रीमान राजकुमार भाटी जी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जरा बताइए ना, ब्राह्मणों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों का प्रयोग अगर मैं करूंगा तो गालीबाज कहलाऊंगा, ऐसा गंदा शब्द ब्राह्मणों के लिए अंजना जी चाहेंगी नहीं कि मैं राजकुमार भाटी जी के द्वारा प्रयुक्त शब्दों को यहां उद्धृत भी करूं, ऐसी स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद राजकुमार भाटी जी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जरा बताइए, कारण बताओ, नोटिस भी जारी हुई क्या? नहीं जारी हुई, क्यों? क्योंकि आपके मूल में जो है ब्राह्मण द्रोह है, आपके मूल में राजपूत द्रोह है, आपके मूल में यादव द्रोह तक है भाई। चचा शिवपाल का कितना अपमान हुआ सबको ध्यान है, और सबको जाने दीजिए, स्वयं श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव के बारे में जो बातें कही हैं उनको उद्धृत कर दें, तो अखिलेश यादव को तो उनके पिता भी कह रहे थे कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये उनके पिता कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, मेरा आरोप नहीं है, जो उनके पिता के आरोप हैं उन आरोपों को ही अगर सा, और उनके कार्यकाल में उनके पिता ही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हर जिले में सिर्फ जमीन कब्जा करते हैं, जमीन कब्जा करने के अलावा भी कोई काम कर लो, ये समाजवादी पार्टी की बैठक में बाकायदा नेताजी मुलायम सिंह यादव का अब सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को उद्बोधन था, तो इससे ज्यादा क्या होगा? और वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा आपका प्रोजेक्ट हुआ करता था, ऐसा कोई जिला नहीं था जहां पर गुंडा ना रहा हो, आपने आपका पाला हुआ, तो आपके उन हरकतों को आज भी आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, 2012 से 17 के बीच और 17 से 26 का जो क्राइम का डाटा है, चाहे डकैती हो, चिनैती हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, हत्याएं हो, सब में जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में नियंत्रण हुआ,
2: ठीक है,
3: जबरदस्त कमी लाई गई।
2: कोई इनकार नहीं कर सकता है,
3: उपलब्ध है कभी भी जो
2: इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कम से कम पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरे तो उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाया था।
1: देखिए अंजना जी, इन्होंने श्रीमती डिंपल जी की बात की, मैं तो चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, जब यहां जैन जी परेशान था, छात्रों पर लाठी बरस रही थी, तो बीजेपी की कौन सी महिला एमपी थी जो उनको हॉस्पिटल ले जा रही थी? जरा फोटो दिखा दीजिए किसी की, श्रीमती डिंपल जी थी ना, गोदी में लेके उनको किस तरह से अपने हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रही थी। ये एक होता है कि नेता कोई बनाता नहीं है, ये सेवा भाव है, उनका सेवा भाव था, ये मातृत्व था, वो समझ रही थी मेरे बच्चे हैं ये, इसलिए उनको लेके दौड़ रही थी कैसे उनको पानी पिलाया जाए, हॉस्पिटल पहुंचा जाए। बीजेपी का कौन सी महिला थी जरा बता दीजिए मुझे, आप कंपेयर तो करते हो लेकिन कंपेयर करो जो दुनिया को दिखा के, फोटो है आपके पास तो दिखा दीजिए, बच्चों पे खून निकल रहा था तो वही पहुंच रही थी और कोई नहीं था वहां पे। और श्री अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, अरे भाई पूरी बीजेपी पार्टी लग गई उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो 33 सीटें लोकसभा में जीते और श्री अखिलेश यादव जी अपने नेतृत्व में 37 सीटें लोकसभा में जीत गए और देसी तीसरे नंबर की पार्टी बना दी तो नेता कौन बनेगा? जो जो पार्टी को आगे बढ़ाएगा वही तो नेता बनेगा ना। आप मोदी जी के अलावा दूसरे को आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते? आप दूसरे को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि दूसरे नेता के नाम पे आपके पास वोट नहीं है, प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट है मोदी जी के नाम पे, इसलिए आप मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं। हमारे यहाँ श्री अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट है समाजवादी में, तो हम समाजवादी उनको नेता मानते हैं, इसमें बुरा क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उन्होंने प्रूव करके दिखाया ना।
0: हिंदू देखिए अंजना जी,
1: आप अंजना जी इनके बीच में बोलूं क्या? पीयूष मिश्रा जी के बीच में
0: इनके इनके बीच में बोलूं? नहीं बचा हुआ है, उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं को क्या क्या कहा, ये बंदा निर्लज्ज तरीके से बैठ के उसका भी अभी तक डिफेंड कर रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई। और हिंदू हिंदुत्व सत्य सनातन धर्म को गाली देना, रामचरित मानस को फड़वाना, ये इनके डीएनए में, समाजवादियों के डीएनए में बसा है। याद होगा इनके एक पहले
1: चढ़ावा चोरी प्रभु राम के घर में
2: इतना
0: बड़ा निर्लज्ज आदमी है कि ये नहीं बोल रहा है कि राजकुमार
2: तू तड़क पे मत आइए पीयूष जी, मैं आप सबसे कह रही हूँ मर्यादा पर हम सब रखेंगे, फिर वो आपको तू तड़क कर लेंगे, ये आदमी नहीं बोल रहा है, वो नहीं कर रहा है। हम लोग एक दो मतलब एक बहस तो कर सकते हैं ना बिना तू तड़क किए। बोलिए बोलिए शर्मा जी बोलिए।
0: और केवल डिंपल यादव जी और अखिलेश जी के बारे में चाटुकारिता करके गुणगान करेगा, ये बंदा इसीलिए टीवी पे बैठता है आकर कि केवल केवल यही काम करे। जो कमियां उसको नहीं बताएगा, ब्राह्मणों पे डिबेट होगी और ये ब्राह्मणों को गाली देने वाले प्रवक्ताओं का डिफेंड करेगा, ये बंदा केवल इसी काम के लिए आता है और उसपे कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जैसे इसके प्रवक्ता है वैसे उसकी पार्टी इनकी पार्टी है।
2: डॉली शर्मा
4: अंजना जी
2: तो मुमकिन नहीं है ना कि कोई भी पार्टी हो आज वो सोच ले कि हम ब्राह्मण को सीएम कैंडिडेट बना देंगे, है क्या?
4: अंजना जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, नारायण दत्त तिवारी जी आपको याद होंगे कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे और ब्राह्मण थे, और ये तो साफ है, आपने जो कहा उसका जवाब मैंने दिया। दूसरी बात, ये यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इन्होंने सनातन धर्म का जितना मजाक भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया है ना, उतना किसी ने सनातन धर्म की बेइज्जती नहीं की। नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी का रूप बनाकर उसे नचाया जा रहा है, ये कितना बड़ा महापाप इन लोगों ने किया है। उसके बाद राम मंदिर राम राम राम करते रहे, वोट भी ले लिया, चंदा भी ले लिया और चंदा चुरा भी लिया, ये पूरा देश देख रहा है। और जब हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले चुप रहते हैं चंदा चोरी के नाम पर, हमारे सुर में सुर मिलाकर ये नहीं कहते कि हाँ जिस किसी ने चोरी करी गलत है, क्योंकि इन्हीं के बिठाए हुए तो लोग हैं ऊपर से नीचे तक, सब राम मंदिर में इन्हीं का बनाया ट्रस्ट है, तब वहां कुछ नहीं होता अंजना जी। तो इनका ये जो दोगला दो मुहा चेहरा है ना, हम यूपी से आते हैं, इन्हें ये अब समझ जाना चाहिए रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, किसानों के विकास पर। अगर ये काम नहीं करेंगे, विकास पर नहीं बोलेंगे, जितने खाली पद है ना उत्तर प्रदेश में, शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, कितने स्कूल बंद हो गए, कितने पद रिक्त हैं, उन्हें जरा भर दें। आज ये अहम मुद्दे हैं, जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं ना, ये आज देश की जनता के लिए, युवा के लिए सबसे अहम मुद्दे हो गए। और मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी इन पर काम नहीं करेगी तो जनता इस बार इन्हें सबक सिखा देगी। इस देश के जेंजी ने इन्हें दिखाया है कि बस झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये झुके हैं। और इन्होंने ये पहले जिन बच्चों को एंटी नेशनल कह रहे थे, जिन बच्चों को ये कह रहे थे विदेशी फंडिंग आ रही है, इन्हें ही उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। ये कितने भी सवाल उठा ले, कितना भी बवाल मचा ले, उन बच्चों को बदनाम कर ले, लेकिन सच्चाई बदलने वाली नहीं है। अब जनता सजग है, उन्हें उनके मुद्दों पर काम चाहिए। जात
2: जवाब दीजिए इसका,
4: ये सब ये करते
2: शुक्ला जी, जेंजी ने बैकफुट पर डाल दिया है बीजेपी को।
3: नहीं, बैक फुट पर बिल्कुल बीजेपी को जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जेंजी से सबसे बढ़िया कनेक्ट जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ही है। ये तो जेंजी को जो है झारखंड में जाने के लिए हफ्तों का समय लगता है, कर्नाटक की जेंजी में जो है किसी ने अगर जो है राहुल गांधी पर पोस्ट कर दिया तो क्रिमिनल केस कर दिया, केरला में 5,000 प्रदर्शन करने वाले जेएनजी के छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, ये इनका जेएनजी है, ये जेएनजी की बात करेंगे, 56 साल वाला जेएनजी हो गया, गजब है भाई, कहते रहिए। और जहां तक बात है ब्राह्मणों की, ये मुख्यमंत्री गिना रहे हैं, आज जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यालय में दो ही मूर्तियां लगती हैं, श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, दोनों ब्राह्मण हैं। पहला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, आज तीन मुख्यमंत्री, तीन प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जरा कांग्रेस बता दे आज कौन मुख्यमंत्री उनका ब्राह्मण है, किस प्रदेश का मुख्यमंत्री उनका ब्राह्मण है, कांग्रेस बता दे, जरा गिन के बता दे, कहीं से ढूंढ के बता दे, नहीं है। आज तीन प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो ब्राह्मण हैं। और जिस महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ और उद्धव ठाकरे के
4: नहीं बता पा रहे प्रेम शुक्ला जी, झूठ बोलेंगे, मैं झूठ बोलने नहीं दूं।
3: नरसंहार,
4: मैंने उत्तर प्रदेश की बात की थी, उत्तर प्रदेश को आखिरी मुख्यमंत्री ब्राह्मण की कांग्रेस पार्टी ने दिया।
3: चिल्ला रही अंजना जी, इनका चिल्लाना बंद हो जाए तो मैं कोर्ट कर दूं।
4: अजय राय जी ब्राह्मण है,
3: चिल्ला कर हो जाए तो मैं कोर्ट कर दूं।
4: ब्राह्मण के साथ साथ
3: इनका चिल्लाना हो जाए तो मैं कोर्ट कर दूं। चिल्ला लीजिए, पहले चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, कांग्रेस चिल्ला ही सकती है,
4: पर्दा दिखाने
3: अंजना जी को चिल्लाने की आपने अनुमति दे रखी, तो चिल्ला
2: लीजिए,
5: बीच में
4: 81,000
3: चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए,
2: डॉली जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, शुक्ला जी जल्दी से पूरी कीजिए बात, शुक्ला जी सिर्फ दो लाइन में, चैलेंज आपके सामने है सबसे बड़ा आज, अगर जेंजी उतरा है जिनको आप पहले डिस्क्रेडिट कर रहे थे उन्हीं से बात करके समझौता करना पड़ा।
3: उद्धव जो इनके गठबंधन के सहयोगी उद्धव ठाकरे के दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे के समग्र वांग्मय में ब्राह्मणों की हत्याएं जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में किस तरह से हुई उसका पूरा चित्र है।
4: समग्र मांग में 1996
3: महाराष्ट्र के शासन द्वारा,
2: शुक्ला जी आपका जवाब वो देंगे, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी, डॉली जी जल्दी
3: फिर चिल्लाने लगी, फिर चिल्लाने लगी,
2: अब आप
4: मैं चिल्ला नहीं रही हूँ अंजना जी, ये झूठ बोलते हैं, मैं इनसे बोलती हूँ सोर्स दिखाओ, ये सोर्स दिखाते नहीं है,
3: चिल्ला लो और चीख लो, चीखने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको विकृत इतिहास दिखा रहा हूँ, विकृत इतिहास देखकर चिल्लाने के अलावा कुछ बचता नहीं है, विकृत इतना आपका चेहरा है, ब्राह्मणों की हत्याएं करने का, नरसंहार करने का, इतना कुकृत्य और कुकर्म आपके हिस्से में है, उसे आप माफ नहीं हो सकती।
2: इसी के साथ इस हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: बहुत टायर्ड हो गई।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: ओ ला ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: अभी तो चार्ज हुआ यार।
7: ओ ला बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग रहे। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: In association with
2: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: तक, Digital First Channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one-stop solution for your brand, regional or hyper-local reach. हर शहर, हर कस्बे तक, advertise करने के लिए email करें।
4: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं महीने।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: Oh, sorry.

0: दिल्ली एनएसआर में आसमान से बरसी आफत ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद तक कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं अस्पताल की सेवाएं ठप हो गईं, तो कहीं मंदिर परिसर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के साथ साथ घंटों लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली में लगातार हुई भारी बारिश के बाद एमबी रोड पर जलभराव ने वाहनों की रफ्तार रोक दी। ओखला मोड़ से खानपुर तक लंबा जाम लगा रहा और कई जगह सड़क और नाले का फर्क मिट गया। उधर वाल्मीकि कॉलोनी में करीब 5 फीट तक पानी भर गया। बच्चों को घर पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जुगाड़ वाली नाव का सहारा लिया। ये तस्वीरें बारिश के असर की गंभीरता बयां करती हैं। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंदिर परिसर में पानी भर गया। वहीं सिविल अस्पताल के बेसमेंट में पानी घुसने से मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो गईं। फरीदाबाद में हालात और भी खतरनाक हो गए। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में जलभराव के बीच एक फॉर्च्यूनर कार पानी में फंस गई। चालक कार के अंदर ही कैद हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक स्कूल बस भी पानी में फंस गई। नोएडा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हैं। सेक्टर 37 से सेक्टर 18 मार्ग समेत कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रशासन पानी निकालने में जुटा है। बारिश ने एक बार फिर दिल्ली एनएसआर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़कों पर जलभराव, अस्पतालों में पानी और जानलेवा हालात, इन सब ने साफ कर दिया कि हर बारिश के साथ सिस्टम की तैयारियों की भी परीक्षा होती है। आज तक ब्यूरो। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के बीच साजिद रशीदी का अपमानजनक और भड़काऊ बयान आया है। ऐसा बयान जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
1: क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ।
0: साजिद रशीदी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना के ऐसे विवादित बयान को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आतंकी वाले बयान को लेकर पलटवार भी किया।
2: अब बहुत हो गया है ये मौलाना, अगर कांवड़िये खड़े हो गए तो मौलाना की पीढ़ियां नहीं बचेंगी। ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये देश धर्म के आधार बटा था कि जो यहाँ राम का नाम लेंगे, सनातन संस्कृति के अनुसार रहेंगे, उनका सम्मान होगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर सनातन का अपमान करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान बना था।
0: नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान है। उन्होंने मौलाना पर FIR दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की और कहा है कि मौलाना को ऐसे बयान के लिए फांसी होनी चाहिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल। डेमोग्राफी हैज बीन चेंज। हमारी सीमा असुरक्षित। भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी, बार बार लेटर दे रहा है भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो। ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है। नो नो नो नो, वोट बैंक, तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मेरा घर का आदमी बीपीएन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं भाई, देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था, इसको छोड़ना चाहिए।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: प्रेजेंटेड बाय
1: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़ी जरूरी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ आधे घंटे भर तक मुलाकात, अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले, विधानसभा चुनाव पर चर्चा के खास। थोड़ी देर में प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। बीजेपी का तंज, मोहब्बत की दुकान से नफरत फैलाने की राजनीति लेकर आए हैं कांग्रेस नेता।

0: रांची में सरकार और छात्रों में दो दौर की वार्ता अब तक बेनतीजा। सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी प्रीलिम्स की गड़बड़ी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका दाखिल। दिल्ली में आईआईटी में पीएम मोदी के जेन जी मंत्र का, जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात लगभग एक घंटे तक चली है, उसे थोड़ा सा बल्कि ज्यादा समय तक चली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए भी पहुंचे। यूपी में अगले साल चुनाव है, उससे पहले संगठनात्मक चीजें और इसके अलावा विकास परियोजनाओं को लेकर भी बताया जा रहा कि चिंतन मंथन दोनों के बीच में हुआ है। तो पीएम मोदी से मुलाकात और एक घंटे से ज्यादा समय तक की मुलाकात चली, और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात उनकी हुई है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या बातचीत हुई है दोनों से?
1: देखिए, योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली आते हैं तो वो पार्टी आलाकमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। जब वो पिछली बार आए थे तो उन्होंने जो है वो गृह मंत्री से मुलाकात की थी। इस बार वो दिल्ली आए हैं तो प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई है लगभग एक घंटे से ज्यादा, और उसके साथ साथ पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन बड़ी चीज ये है क्योंकि अब एक साल से भी कम का समय रह गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, और उत्तर प्रदेश एक ऐसी राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की जो है दो बार लगातार सरकार हो चुकी है, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर उनकी सरकार जो है वो बने, और इसी कारण से जो है लगातार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने जो मुलाकात की है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है संगठन नात्मक चीजों पर जो है उनकी चर्चा हुई है, उनके सरकार के कामकाज किस तरीके से चल रहा है उसका फीडबैक, उसकी रिपोर्ट खुद उन्होंने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आगे का चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कर रहा है, और किस तरीके से चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है उनको लेकर कब से जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं उन परियोजनाओं के लिए वहां पहुंचेंगे। ये तमाम चीजों को लेकर जो है वो डिस्कशन जो है चर्चा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुआ है, और संगठनात्मक चीज को लेकर नितिन नवीन जो पार्टी के अध्यक्ष है उनसे चर्चा हुई। मेरा जी
0: बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में अब हर पार्टी की नजर जेन जी पर, ऐसे में राहुल गांधी के यूपी दौरे को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है।
2: राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के साथ संवाद के लिए पहुंचे तो सियासत की पिच पहले से ही गीली थी।
3: राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं। बिल्कुल छात्रों को प्रेशराइज किया जा रहा है, जो यहाँ पे संस्थाएं हैं, जो बच्चों को कोचिंग सेंटर हैं, जो कोचिंग देते हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बच्चों को न भेजिए।
4: पहले डर गए थे, अब डर खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहाँ कौन सा कार्यक्रम को उन्होंने अनुमति ली कि नहीं ली, और कैसे मीडियाबाजी शुरू हुई, क्यों शुरू हुई। श्री राहुल गांधी बहुत बार प्रयागराज आ चुके हैं, उनके आने का कोई असर नहीं हुआ, पूरे जनपद में ही नहीं पूरे इस इलाके में कहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला।
2: उधर कार्यक्रम से पहले सड़क पर पोस्टर वार भी छिड़ गया।
5: दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर अपने दाएं तरफ, यहां पे आप देखेंगे तो राहुल गांधी के स्वागत में जगह जगह इस तरीके के पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे राहुल गांधी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। वहीं इसके ठीक बगल में बाईं तरफ ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है।
2: उधर शशि थरूर राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम को कहीं न कहीं फेल बता रहे हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस में ही दो फाड़ होते दिख रहे हैं।
6: Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chhatron Ki Goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things
7: and that so didn't resonate. Sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did.
6: Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Fail to listen? Did we fail to tap into, you know, the old cliche of having your finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? And that's something we really need to.
8: कोई राष्ट्रीय राजनेता युवाओं की आवाज को उठा रहा है और युवा उससे अपने आप को जुड़ा महसूस कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी है। मेरे ये विचार हैं। मैं नहीं जानता कौन और क्या पहला है।
2: उधर योगी सरकार का फोकस भी जेएनजी पर बढ़ा है। योगी सरकार की नई पहल के तहत अब हर महीने छात्रों से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी संवाद करेंगे। इंटरमीडिएट के छात्रों को करियर विकल्प और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर मार्गदर्शन दिया जाएगा। वहीं यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसएससी, एनडीए, जेई, नीट और सीयूईटी जैसे परीक्षाओं की तैयारी पर विशेष चर्चा होगी। जिलाधिकारी हर महीने अधिकारियों के स्कूल दौरे का कार्यक्रम तैयार करेंगे। मंडलायुक्त समय समय पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। हर माह की 5 तारीख तक कार्यक्रमों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। साफ है कि दिल्ली के जंतर मंतर से निकली जेएनजी आंदोलन की इस चिंगारी ने सत्ता की रणनीति को नए सिरे से गढ़ने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस समय जुड़ गए। आशीष, इस समय क्या अपडेट है, क्या ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है, ये चल रहा है अभी?
9: नहीं बिल्कुल, देखिए ये प्रोग्राम अब शुरू हुआ क्योंकि राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं और अगर आप मेरे पीछे की तस्वीर पाएंगे तो देखेंगे जो हुजूम है यहाँ पर छात्रों का, ये युवाओं का, ये इस पूरे केपी ग्राउंड पर भरा हुआ है। और कुछ जो आप देखेंगे युवा छात्र हैं वो ट्रकों पर खड़े हुए हैं, ऊपर अगर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ जो स्टेज लगा हुआ उस स्टेज पर भी वहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ जो दूर दूर तक जो छतें हैं उस पर भी लोग खड़े हुए हैं क्योंकि ये शाम से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था प्रयागराज में, चूंकि उनका मानना है राहुल गांधी वो आवाज है उनके लिए जो कि इस समय चाहे वो पेपर लीक के मामले हो, चाहे वो अन्य बेरोजगारी के मुद्दे हो, उन पर वो उनकी बात सुनेंगे। इसको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया, उसके बाद एक एक करके एंट्री करी गई और अभी भी देखिए जैसे जैसे राहुल गांधी स्टेज पर पहुंचे हैं प्रोग्राम वहां पर वो एड्रेस कर रहे हैं उसको लेकर यहां पर लोगों की लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं और ये सभी उस ग्राउंड पर जो केपी ग्राउंड है हाथों में झंडा लिए हुए हैं, फ्लैग है जो इंडियन वो है, साथ ही साथ जो उनके हाथों में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं वो ले। मैं आपको एरियल ये व्यू दिखा रहा हूं जहां से आप पूरी तरीके से देख पाएंगे कि इस ग्राउंड की कैपेसिटी के हिसाब से कितना ज्यादा लोग यहां पर मौजूद हैं और किस परिस्थिति में यहां पर खड़े हुए हैं क्योंकि हर जगह होर्डिंग लगाई गई है। ये बड़ी बड़ी एलईडीज हैं उनको लगाया गया है क्योंकि एलईडीज के जरिए जो दो लोग दूर हैं वो राहुल गांधी
0: की भीड़ तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो संभव है कि एलईडी स्क्रीन लगानी ही पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, एक यात्रा का ये आगाज है, अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।
10: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है, उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
0: उधर यूपी के बुलंदशहर से आई तस्वीर पर सियासत चल रही है, जहां पर पप्पू यादव पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया है।
2: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे,
11: फूल बरसाए जा रहे, मारे जा रहे। इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है, आगे ये मारेंगे हम।
2: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल

0: खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात पंजाब के, जहां पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
2: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
3: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपोर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दित्ता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
2: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
4: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे, जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
5: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा। इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
2: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
6: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे तां इह आ मनसूबा सी बई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये तां होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। इहदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
5: अपनी टाइमिंग देखे, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं
1: प्रयागराज आपके लिए चलते हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम।
7: की स्ट्रेंथ है, चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है, 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st century इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है, एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको

0: समझना चाहिए, आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है, आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है, जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। आइए एक युवा की आवाज सुने, ये जो बोलेंगे ये आप सबके दिल में है, ये जो सवाल उठा रहे हैं, हिंदुस्तान का हर एक युवा यही सवाल पूछ रहा है, उठा रहा है।
1: होता हम भी सीट खरीद लेते। आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया। सीट खरीदता, मैं ब्लिंकिट में काम नहीं करता।
0: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद, 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है। आइए वेलकम, कैसे हैं आप, नाम क्या आपका?
2: मेरा नाम सर अजय राघव है।
0: अविनाश और अजय, आइए अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं। इनसे थोड़ा सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए।
3: सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ।
0: हाँ, तो पास पकड़ के।
3: सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है 2020-21। यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी, इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था।

0: मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों FIR दर्ज हुई, 350 से ज्यादा फेक एलिमेंट डमी कैंडिडेट।
1: और अब रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर
4: उधर किधर,
5: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हां
3: ओ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: बिना तो चार्ज हुआ यार।
6: ला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
10: लायन डेट नट बाइट्स।
11: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से.
2: एक जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं. मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती. लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है. और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब पीवीआर आईनॉक्स में आप देखेंगे, तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए. इसे जरूर देखिए. पीवीआर आईनॉक्स 7th अगस्त ऑनवर्ड्स.

0: दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आयोजित आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के 16वें संस्करण का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। देश भर के 22 से अधिक प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रतिभागियों ने अपनी तर्क शक्ति, वाक्पटुता और वैचारिक अभिव्यक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
1: आपको चार अलग फॉर्मेट होते हैं, चार अलग प्रारूप होते हैं, सबकी तैयारी करनी, रिसर्च करना, क्योंकि कोई भी राउंड प्रिपेयर नहीं होता, तो आपको सबकी तैयारी यहीं पे आकर करनी है। तो इसलिए चैलेंजिंग था, अच्छा भी था, मजा भी आया, क्योंकि जो चीज चैलेंजिंग है इट्स वेरी फन,
2: इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस आई वुड से। और आत्मविश्वास जुटाना होता है, वहां पे जाकर बोलना काफी मुश्किल होता है, तो आत्मविश्वास जुटाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात रही।
3: हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिला, जिससे हम अपने आप में बदलाव ला सके और फिर हम अपने को बहुत बेहतर कर सके।
0: प्रतियोगिता में व्यक्तिगत श्रेणी में द दून स्कूल के अभिनव और सरदार पटेल विद्यालय की झीलम संयुक्त विजेता रहे। वही उपविजेता का सम्मान द दून स्कूल के प्रतिभागी ने हासिल किया। टीम श्रेणी में सरदार पटेल विद्यालय ने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।
4: जब हमने आज तक वाद विवाद शुरू किया था 16 साल पहले, हमने सोचा था हिंदी डिबेट है, कौन आएगा, और वसंत वैली स्कूल जो इंडिया टुडे डिबेट करती है, अंग्रेजी की डिबेट करती है।

0: हिंदी डिबेट में कौन आएगा, बट वी वर रियली सरप्राइज्ड।
1: दो दिवसीय प्रतियोगिता ने छात्रों को न केवल अपनी अभिव्यक्ति का मंच दिया बल्कि तर्कपूर्ण संवाद और सीखने का भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात, अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले, विधानसभा चुनावों पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज, कहा 1000 में सिर्फ 12 युवाओं को स्थायी नौकरी, सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया, पेपर लीक का फिर उठाया मुद्दा।

0: रांची में सरकार और छात्रों में दो दौर की वार्ता अब तक बेनतीजा। सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी प्रीलिम्स में गड़बड़ी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका दाखिल। दिल्ली आईआईटी में पीएम मोदी का जेंजी मंत्र, कहा जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश। दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। अगस्त को पीएम मोदी से मिलेंगे शरद गुट के सभी 8 सांसद। सुप्रिया सुले ने कहा महाराष्ट्र में सांसदों को नहीं मिल रहा है फंड, मांगा था औपचारिक समय।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। विशेष में बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन की, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हुए हैं। इस बीच बातचीत का दौर तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी
1: बंद है। और आखिरी होप जो आपका था, कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, बैक ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलता था, वो दरवाजा भी भाइयों और बहनों आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से ये भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद है, और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है, और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के। हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भगवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट चला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। आइए हम आपकी आवाज सुने। नमस्कार, आपका नाम?
2: और मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ।
1: नमस्कार, आप?
3: हिमांशु कुमार हुआ।
1: हिमांशु
3: जी, जी, जी।
4: शिफत फैज,
5: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, LLB।
1: नमस्कार
6: सर, मेरा नाम कुणाल पांडे, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से।
1: शाबाश, वेलकम आप सबका। मैं आपसे आज, अभी मैंने कहा कि अंधेरे में आप लोगों ने लाइट दिखा दी, अंधेरे में आप लोगों ने टॉर्च दिखा दी, और आपने प्यार से किया, मोहब्बत से किया, नफरत से नहीं किया, क्रोध से नहीं किया, हिंसा से नहीं किया। तो ये पूरी भीड़ आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहती है, आपने क्या सहा, आपने क्या किया, थोड़ा बताइए, एक एक करके बताइए।
2: साथियों, जो 22 जुलाई को पटना में बिहार बंद का कॉल था, हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे और वहाँ एक चीज हमें एहसास हुआ कि पुलिस ऐसे मौके की तलाश में थी कि वो हम पे लाठी भी चार्ज कर ले, उन पे इल्जाम ना हो। जब हम राजभवन से थोड़ी देर पहले पहुंचे, वहाँ पे पुलिस वाले थे बिना बैच के और लाठी की जगह पे वो बैम्बू लिए हुए थे। उनसे जब पूछा गया आपका बैच कहाँ है, तो वहाँ से अधिकारी पूछते हैं कि आप कौन हो पूछने वाले, मैं बताता हूँ, तो कहते हैं इससे क्या होगा। हमने कहा सर इतने बच्चे मरे, उनका जवाब कौन देगा। कहते वो तो चले गए, अब क्या तुम भी जाना चाहते हो। मैंने कहा सर वो तो चले गए, लेकिन आप बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि आप नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा, हम छात्र युवा देश के भविष्य है। उसके बाद वो वाटर कैनन चलाने लगते हैं जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लाठी चार्ज करते हैं जिससे उनका टारगेट था या सर पे मारो या पैर में। उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, मैं गिर गया। उसके बाद वो लाठी चार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं गिर गया उसके बाद जो DSP है वो आके दोबारा मेरे पेट पे मार दिया, जबकि मेरा लेग डैमेज था। कुछ छात्र मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं, पुलिस वाले आके कहते हैं ये छात्र थोड़े है, इसको तो जेल भेजना चाहिए। इवन वो एम्बुलेंस नहीं आने देते हैं, मुझे 3 Idiots की मूवी की तरह स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है।
1: बीच में आ जाओ।
2: जैसे सर मैंने बताया कि वो एम्बुलेंस तक नहीं आने देते हैं, हमें 3 Idiots के स्कूटी की तरह मुझे स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और नेक्स्ट डे जब फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे डिटेन किया जाता है, मेरे पैर में बैंडेज लगा था, 15 घंटा मुझे थाने में बंद करके रखा गया और जितने फोटो थे सबसे मुझे मिलाया गया। नाम पूछा गया, जब मैं नाम बताया तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है कहीं देखा है। मैंने कहा मैम मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर भी FIR नहीं है। तो कह रही वो तो मैं देख लूंगा। तमगे दिए जाते हैं उन्हें हमें। मैं ये बता दूं कि जब हमें PR बॉन्ड साइन करवाया गया, उसके बाद हमारे एड्रेस पे डिटेन करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। हम छात्र हैं, देश के भविष्य हैं, और आज आप हमारे पते चार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमें तो नौकरी चाहिए। हम पहले नौकरी के लिए आंदोलन करें, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करें, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करें, और फिर पेपर लिखे उसके लिए आंदोलन। हम छात्र हैं या आंदोलनजीवी है, हम छात्र हैं। और आप हमसे वोट लेते हैं तो सर सर कहते हैं, भैया भैया कहते हैं। आज हमें कहते हैं कि हम कॉकरोच हैं। सर हम देश के जेंजी हैं, और आज आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं। लेकिन ये गलत फहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने तमगे देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं, और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के अगले हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर संसद सड़के सुनियोगे संसद आवाज।
0: छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में चल रहा है। छात्रों की बात भी राहुल गांधी सुन रहे हैं और उन्होंने बीजेपी, अडानी, अंबानी सबको एक बार फिर से घेरा है। तो छात्रों के आंदोलन की बात चल रही है तो आंदोलन रांची में भी चल रहा है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से छात्र बैठे हुए हैं। इस बीच बातचीत का दौर भी शुरू हुआ है, लेकिन छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हो पाई। ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार सुनेगी, कांग्रेस भी साथ में, क्या वो सुनेगी, क्या छात्रों की नाराजगी दूर कर पाएगी, और 10 अगस्त को क्या रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
5: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन, आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी। बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है, अब तक नहीं निकला कोई समाधान। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने NSUI और JMM के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल ID और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
7: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों की संख्या बीते दिन के साथ बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहाँ बढ़ गया है।
5: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
8: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को विधानसभा घेराव
7: होगा।
8: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
7: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
8: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
5: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
9: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ पकड़ो बंद करो लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
5: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
10: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलूट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
5: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंचे। वही छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
11: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए, जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
5: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी और छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द भी आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
12: देश में छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम मनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
13: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे, पापा कितने दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
14: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर संविधान से कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
15: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
7: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो की रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
14: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
7: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गई?
14: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हुआ ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक। और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
7: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
14: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी, जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है। मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
15: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी है, 2019 से परीक्षाएं दे रही है, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही। घर के हालात भी ठीक नहीं है।
13: तैयारी करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे। 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
7: आपने कितनी परीक्षाएं दी
13: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
7: 7 साल हो गए?
13: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
7: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
13: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है, और मेरे 4 बहनें हैं तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है। तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए।
0: विशेष में आज के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
2: अलकनंदा नदी का ये रौद्र रूप देखिए। सैलाब का रौद्र रूप ऐसा है जिसे देखकर जिंदगी सहमी हुई है। ये तस्वीरें पौड़ी की है जहां लगातार बारिश हो रही है। इसका साफ असर अलकनंदा के जलस्तर पर दिख रहा है। नदी कई जगहों पर खतरे के निशान के आसपास या उसके ऊपर बह रही है, इसे लेकर हाई अलर्ट है। नदी किनारे रहने वालों को प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि खतरे से दूर रहे। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार भूस्खलन और मलबा आने से बार बार बंद हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा के बीच गंगोत्री धाम से गंगा जल लेने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सड़क धंसने से यात्रियों और कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश का संकट टिहरी में भी दिख रहा है। गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। नदी किनारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाउड स्पीकर से श्रद्धालुओं, कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों को लगातार आगाह किया जा रहा है। उधर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का विकराल रूप दिख रहा है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर नदी के किनारों तक खतरा बढ़ गया है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्तों पर मलबा ही मलबा दिखा। वहीं विकास नगर के जौनसार बावर में भी कुदरत के कहर का खतरा दिखा। वहां हीरपुर क्वानो मिनस मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जहां सेब से लदा एक ट्रक अचानक उफनते नाले के मलबे में फंस गया। फिर तो वहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालात ऐसे हो गए कि ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
3: काश वो एआई आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
4: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
2: एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
3: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना एआई यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
4: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
2: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था। लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़ रहे, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला। साथियों,
3: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कह रहे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके एआई वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे गलियारे में तीन तीन चार चार क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर।
2: क्या घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा।
3: लेकिन एक स्कूल की इमारत तो दिला देती सरकार पहले, वरना बिहार में एक मंदिर में स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाना ना पड़ता। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, आज तक की खबरदार करते इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें, वक्त निकाल कर देखें, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात, अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले, विधानसभा चुनावों पर चर्चा। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज, कहा 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को स्थायी नौकरी, सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया, पेपर लीक का फिर उठाया मुद्दा। राज्य में सरकार और छात्रों में दो दौर की वार्ता अब तक बेनतीजा, सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी प्रीलिम्स की गड़बड़ी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका दाखिल। दिल्ली आईआईटी में पीएम मोदी का जेंजी मंत्र, कहा जितना सशक्त युवा उतना सशक्त देश, दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा कैंपस के बाहर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस। 10 अगस्त को पीएम मोदी से मिलेंगे शरद गुट के सभी 8 सांसद, सुप्रिया सुले ने कहा महाराष्ट्र में सांसदों को नहीं मिल रहा है फंड, मांगा था औपचारिक समय।

नगर पावन तीर्थ बन जाते हैं, भक्त खुद भगवान बन जाते हैं जब महाकाल स्वयं भक्तों से मिलने आते हैं। सावन के पवित्र महीने में महाकाल के अद्भुत भक्त, अविश्वसनीय भक्ति, अकल्पनीय दृश्य,

काल यानी समय, काल यानी मृत्यु। कहते हैं काल के आगे किसी की नहीं चलती, तब सोचिए महाकाल के आगे किसी की क्या हैसियत। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज उन्हीं महाकाल के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संसार में आपको लिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों ये मान्यता है कि कोई अधिकारी, कोई मंत्री उज्जैन नगरी में रात नहीं बिता सकता? क्या आप जानते हैं क्यों भस्म से श्रृंगार किया जाता है महादेव का, और क्यों महाकाल की राजसी सवारी में वर्दीधारियों का अनुशासित परेड होता है? अविश्वसनीय सवालों के अकल्पनीय जवाबों के साथ चलिए अद्भुत महाकाल लोक।

0: सावन के महीने में महाकाल के दरबार में भक्ति की ये अद्भुत तस्वीर। महाकाल राजा के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं, तब पूरा शहर ही शिवालय बन जाता है।
1: राजा हैं यहाँ के, तो नगर भ्रमण के लिए स्वयं ही अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकलते हैं।
0: भक्तों में महाकाल का रूप उतर आता है।
2: जो अंतिम सत्य है उसको जो धारण करता है वो शिव है।
0: सामने आते हैं महाकाल तो समय वहीं ठहर जाता है।
3: बाबा महाकाल जो है वो राजा धीराज है, वो ब्रह्मांड के नायक है।
0: 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल की महिमा अलग है, उनका हर रूप अलौकिक है।
2: अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है।
0: उनकी पूजा की विशिष्ट विधि से लेकर उनके श्रृंगार तक का विधान अलग है। जो राख इंसानी देह का अंतिम सत्य है, वो क्यों बना महाकाल का श्रृंगार? हर दिन की शुरुआत महादेव को भस्म के स्नान से होती है।

0: रस्म से कराया जाता है महादेव को स्नान।
1: धरती का जो अंतिम सत्य है उसको वो नित्य अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे अभिषेक करते हैं।
2: जैसा बाबा महाकाल हाथ चला देता है वैसा बाबा महाकाल का श्रृंगार हो जाता है।
3: जब भगवान को भस्म अर्पण होता है तब भगवान निराकार रूप में व्याप्त होते हैं।
0: क्या सचमुच कोई भी राजा कोई भी शासक उज्जैन में रात को नहीं रुक सकता?
4: अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है।
0: क्यों उज्जैन को ही महाकाल की धरती माना गया? क्यों महाकाल है उज्जैन के शाश्वत राजा? क्यों सावन के महीने में आज भी मंदिर से बाहर निकलते हैं महाकाल और शान से निकलती है उनकी वो सवारी जिसमें प्रशासन के सिपाही उनकी सेवा में साथ चलते हैं?
2: भगवान महाकाल राजा स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन देते हैं।
5: ऐसा लगता है कि पालकी में साक्षात भोलेनाथ विराजमान होके निकले और भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं।
6: महाकाल की नगरी बहुत बढ़िया लग रहा, आनंद आ रहा महाकाल।

जब कुछ भी नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब शिव होंगे। आज अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय में हम आपको देवाधिदेव महादेव, जो आदि भी हैं, अनंत भी, जो भोलेनाथ हैं, तो रुद्र रूप भी, जो काल के स्वामी हैं, उन महाकाल के अलौकिक संसार लिए चलते हैं।

राजा मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जब निकलते हैं तो सारे सांसारिक पद और प्रतिष्ठाएं गौण हो जाती हैं। श्रावण मास के हर सोमवार को प्रचंड आस्था के बीच महाकाल की सवारी उज्जैन में निकलती है और वो दृश्य अद्भुत होता है। हम आपको महाकाल की इस सवारी में अपने साथ लिए चलते हैं।

0: जहां पैर रखने की जगह नहीं बचती, वहां कण कण में महाकाल के प्रति आस्था का सैलाब उमड़ता है। हर किसी को यह अनुभव होता है कि विशाल भीड़ में भले वो महाकाल को न देख पाए, लेकिन महाकाल उन्हें देख रहे हैं, उनकी आस्था को ग्रहण कर रहे हैं।
1: 15-20 साल हो गए हमको बाबा के दर्शन करते करते, चैतन्य वीर हनुमान के यहाँ से देखते बाबा दर्शन देते, बहुत बढ़िया।
2: 10 साल से आ रहे हैं पैदल महाकाल दर्शन करने के, बहुत प्यारा रूप है उनका, उनके दर्शन होते ही हमारी सब थकान उतार जाती है।
3: बहुत अच्छा लगा मेरे को, उनको देखते से ही मेरे को आँखों से आंसू निकल आते हैं।
0: महाकाल के प्रति अद्भुत आस्था उज्जैन की ऊर्जा है, जो लोगों की सांसों में और आचरण में बसती है। डम डम डमरू, झाल, मृदंग के साथ जब महाकाल की सवारी निकलती है तो वो अद्भुत होती है। संसार में ऐसी भक्ति कहीं और नहीं मिलती। इस समय वहां उपस्थित हजारों लोगों के मन को पढ़ पाना मुश्किल नहीं होता, उनकी आंखें, उनके भाव सब कह देते हैं।
4: बहुत ही आनंद आए, और बाबा तो सबको हमारे हमारे उज्जैन के महाकाल के राजा हैं, और हम धन्य होते हैं उनके दर्शन पाकर। मैं तो 5 ईयर की थी जब से देखती आ रही हूँ, और मेरी 50 एज है।
1: बहुत अच्छा लगा,
5: मन खुश हो जाता है महाकाल की सवारी देखकर, आनंद आता है।
6: सभी दूर से आए, इतनी दूर से इतनी भीड़ में दर्शन करने बाबा के,
5: हमें बहुत अच्छा लगता महाकाल के।
1: कैसा लगा बोल?
0: कई कई दिन पहले से महाकाल के नगर भ्रमण की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए रूप धारण करते हैं। इन्हें देखिए, ये शैलेंद्र व्यास हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल, लेकिन महादेव के प्रति श्रद्धा के वशीभूत ये दशकों से महाकाल की सवारी का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी एक अलग रूप धारण करके।

0: मंगल कलश लहराते हुए आनंद और मस्ती के द्वार पर तोरण द्वार सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या छत, क्या चौबारा, क्या छज्जा, चौवन आनंद और मस्ती के इंद्रधनुष छाए हुए हैं।
1: महाकाल उज्जैन के राजा हैं और जब इस रूप में निकलते हैं तो प्रशासन की तरफ से उन्हें सलामी दी जाती है। प्रशासन महाकाल की सवारी की व्यवस्था राजा की तरह ही करता है। ये वो भाव होता है जिसमें ये माना जाता है कि एक राजा अपनी प्रजा के बीच निकले हैं उनका हाल चाल लेने के लिए। महाकाल की सवारी सावन में ही निकलती है और सिर्फ सोमवार के दिन ही निकलती है, पर ऐसा क्यों होता है इसके भी कई आध्यात्मिक कारण हैं। सावन के महीने को आध्यात्मिक ऊर्जा के तौर पर पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें वायुमंडल भी स्वच्छ रहता है। लेकिन 12 महीनों में क्यों सावन ही पसंद है महाकाल को, इसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं।
2: अपने कंठ में जब उन्होंने विष को धारण किया था, उनका शरीर ज्वलनशीलता का प्रभाव उनके ऊपर अत्यधिक हुआ, जिसके कारण चंद्रमा ने उनको शांत करने के लिए उसके मस्तिष्क पे धारण हुए, परंतु फिर भी उनकी ज्वलनता शांत नहीं हुई। तब माँ पार्वती ने प्रार्थना की सृष्टि से और सृष्टि में जल वर्षा के प्रभाव से संपूर्ण रूप से हरियाली व्याप्त हुई। इस हरियाली के प्रभाव से भगवान की ज्वलनशीलता शीघ्र शांत हुई और भगवान प्रसन्न होकर प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में संपूर्ण सृष्टि पर कैलाश से निकलकर विचरण करते हैं।
1: सोम यानी चंद्रमा, वार यानी दिवस, यानी चंद्रमा का दिवस। महाकाल ने चंद्रमा को सर पर धारण किया है जिसके कारण यह दिवस बेहद पवित्र माना जाता है, न केवल सावन में बल्कि हर महीने। कहते हैं कि महाराजा भोज ने 11वीं सदी में महाकाल की सवारी की परंपरा शुरू की थी। इसके बाद सिंधिया राजाओं ने इस परंपरा को और विस्तार दिया। आज भी उसी वैभव और शान के साथ महाकाल की सवारी निकलती है मंदिर परिसर से पालकी में, आगे हाथी पर सवार होकर। सवारी में वैसे तो कई वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन डमरू का विशेष प्रयोग और महत्व होता है और इसका सीधा संबंध महाकाल की महिमा से।
3: इंसान के मन को चंचल कहा जाता है, किसी बंदर की तरह जो कभी इधर कभी उधर भटकता है, लेकिन वो डमरू की आवाज पर मदारी के इशारे पर नाचता है। शिव मन को नियंत्रित करने की प्रेरणा देते हैं और डमरू की डम डम उसी का प्रतीक है।
1: अद्भुत पौराणिक और मध्यकालीन परंपराओं की अविश्वसनीय संगम होती है ये यात्रा। हाथी, घोड़े, तलवारबाज मध्यकालीन समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भूत, पिशाच, गण पौराणिक मान्यताओं का सजीव चित्रण करते प्रतीत होते हैं। और अंत में ये वो घड़ी होती है जब खुद कालों के काल महाकाल निकल रहे होते हैं सड़कों पर। ऐसा भी संसार में कहीं और नहीं होता। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यानी मैं शिव भगवान को नमन करती हूं जो निर्वाण रूप हैं, सर्वव्यापी हैं, ब्रह्म और वेद स्वरूप हैं। शिव रुद्राष्टकम की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी जिसमें भगवान शिव के अलग अलग रूप और गुण का वर्णन है। इन्हीं रूपों में है उनका महाकाल रूप। महादेव महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन में वास करते हैं। यूं तो शिव जी की उपासना कई तरह से की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर में भस्म आरती की अद्भुत परंपरा है।

जो विश्व के विश्वनाथ वो यहाँ रुद्र हैं। जो संसार में महादेव वो यहाँ प्रलयंकारी हैं, जिन्हें दुनिया शिव शंकर के रूप में पूजती है वो यहाँ प्रचंड हैं, काल के भी काल महाकाल हैं। रात्रि के तीसरे पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब उज्जैन में महाकाल की नगरी जागती है। ये वो समय होता है जब ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक सक्रिय होती है। इसी पवित्र समय में पट खुलते हैं महाकाल के और प्रारंभ होती है महाकाल के अद्भुत श्रृंगार के साथ भस्म आरती। महाकाल को पहले पवित्र गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान संपन्न होता है।

स्नान के पश्चात प्रारंभ होती है महादेव के रूप श्रृंगार की प्रक्रिया। प्रतिदिन महादेव को एक नया रूप धारण कराया जाता है और इसकी भी एक अद्भुत मान्यता है।

0: बाबा महाकाल निराकार और साकार दोनों रूप हैं, इसलिए बाबा महाकाल निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। साकार रूप अर्थात शिव से शंकर बनते हैं, तो जब शंकर बनते हैं तो बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किए जाते हैं। कभी बाबा महाकाल मन महेश के रूप में श्रृंगार देते हैं, तो कभी उमा महेश के रूप में, कभी अर्ध नागेश्वर के रूप में श्रृंगार होता है। जब हम श्रृंगार करने बैठते हैं मंदिर का जो पुजारी परिवार, तो पहले से यह नहीं रहता कि क्या श्रृंगार करना है, जैसा बाबा महाकाल हाथ चला देता है वैसा बाबा महाकाल का श्रृंगार हो जाता है।
1: ये माना जाता है कि महाकाल के प्रतिदिन परिवर्तित होने वाले रूप सृष्टि के चक्र में निरंतर होने वाले परिवर्तन के प्रतीक होते हैं। आम धारणा ये भी है कि महाकाल अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं और हर रूप के साथ एक अलग संदेश और आशीर्वाद होता है। जैसे महाशिवरात्रि में महाकाल का श्रृंगार दूल्हे के रूप में किया जाता है, जबकि सावन के महीने में राजाधिराज की तरह, और दोनों का अर्थ और महत्व अलग अलग है।
0: जब पुजारी श्रृंगार करने के लिए चालू करता है तो उसके मन में जो भगवान भाव दे देता है वही भाव श्रृंगार के अंदर आ जाते हैं। कभी राजा के रूप में आ जाते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं, कभी योगी के रूप में आ जाते हैं, कभी भगवान शिव के साथ में माता पार्वती विराजमान हो जाती है। ये उस समय जो भावना आती है बस उसी पर बाबा का श्रृंगार चालू हो जाता है। पहले से किसी प्रकार का इसमें यह नहीं रहता है कि आज हम जाकर ये बनाएंगे या ये स्वरूप होगा बाबा का कि वो स्वरूप होगा।
1: जब रूप धारण कर लेते हैं फिर शुरू होती है भस्म आरती। आखिर क्यों होती है महाकाल की भस्म से आरती? सिर्फ उज्जैन ज्योतिर्लिंग में ही क्यों होती है भस्म आरती? ये भस्म आरती होती है या भस्म से महाकाल का प्रथम स्नान? भस्म आरती में प्रयोग होने वाली राख कहां से आती है? क्या चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती की जाती है? और जैसी की मान्यता है, क्यों महिलाओं को भस्म आरती देखना वर्जित है? महाकाल शमशानवासी है। महाकाल की आरती जब भस्म से की जाती है तो ये संदेश होता है संसार की नश्वरता का और देह के राख से अंतिम संबंध का।

0: अवस्था हो, उसकी अंतिम गति क्या होती है? भस्म होना है। जो अंतिम सत्य है उसको जो धारण करता है वो शिव है। तो बाबा महाकाल चूंकि मृत्यु के देवता हैं, तो इस धरती का जो अंतिम सत्य है उसको वो नित्य अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे अभिषेक करते हैं और उससे अपना श्रृंगार करते हैं, यानी कि सत्य से जो श्रृंगार करता हो वो महाकाल है।
1: महादेव की उपासना में अभिषेक का महत्व बड़ा होता है। इस शब्द को इस संदर्भ में देखें तो मतलब होता है पवित्र जल से स्नान कराना। पौराणिक कथा यह है कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिससे उनका शरीर गर्म हो गया। उस जलन को दूर करने के लिए तब देवताओं और दानवों ने मिलकर उनका अभिषेक किया। तब से अलग अलग सामग्री से उनके अभिषेक की परंपरा है। वैसे तो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में अभिषेक की विधि एक समान रहती है, पर केवल महाकालेश्वर की भस्म स्नान या भस्म आरती की परंपरा है। बारह ज्योतिर्लिंगों में केवल उज्जैन में ही महादेव महाकाल रूप में विराजमान है और इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं।
2: भगवती महासती को जो लेकर के भगवान महाकालेश्वर जो शिव जी चले थे, तो उज्जैन अवंतिका जो है अवंतिका नगरी में आकर के भगवती को महासती जो है वो पूर्ण रूप से भस्म जो साक्षात मतलब भस्म के रूप में हो गई थी, और भस्म रूप में भगवान शिव जी ने महाकाल को वो भस्म लेकर के भगवती सती का जो है अपने मस्तक पे धारण किया था, अपने शरीर के ऊपर धारण किया था।
0: दैत्य के वध के लिए ब्राह्मण बच्चों के रक्षार्थ जो बाबा के भक्त थे उनकी रक्षा के लिए बाबा यहाँ पर प्रकट हुए थे। काफी आक्रोशित भाव से प्रकट हुए थे कि ये छोटे बच्चों का वध करने जा रहा है, तो इसलिए फिर हुंकार भरी और काल रूप में प्रकट हुए और उसका वध किया, और फिर यहाँ पर वो भगवान महाकाल के रूप में स्थापित हो गए।
1: कई लोगों का मानना है कि महाकाल भस्म से स्नान करते हैं, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो महाकाल का स्नान श्रृंगार से पहले ही हो जाता है और श्रृंगार के पश्चात भस्म के साथ आरती होती है, जिसे भस्म आरती कहा जाता है। महाकाल से मृत्यु पर विजय के साथ जीवन में मंगल का आशीर्वाद भक्त लेते हैं, इसी कारण से इसे मंगला आरती भी कहा जाता है।

0: ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में अखंड ब्रह्मचारियों या साधु संतों की चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन समय के साथ भगवान की आरती के लिए मनुष्यों की चिता के राख का प्रयोग अतार्किक लगने लगा, इसे रोक दिया गया। अब जिस राख का प्रयोग होता है उसे पीपल, शमी, पलाश, बरगद, अमलताश, बेर के पेड़ों की लकड़ी और कपिला गाय के कंडों को जलाकर प्राप्त किया जाता है। इसे लौकिक भस्म भी कहा जाता है।
1: भगवान महाकाल के ऊपर भी 2.5 किलो की पोटली से 5 मंत्रों से अभिमंत्रित कर भगवान शिव के ऊपर गाय के उबले जो कंडे होते हैं उसकी भस्म भगवान पर रमाई जाती है।
2: बाबा महाकालेश्वर की जो भस्म है वो यहाँ पे शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित होती है, न कि कोई चिता की होती है।
0: मान्यता यह है कि महाकाल स्नान के समय दिगंबर रूप में होते हैं और उन्हें उस रूप में महिलाओं को देखना उचित नहीं माना जाता। दूसरे ये भी व्यवस्था है कि महाकाल के स्नान, श्रृंगार और भस्म आरती के समय अधो वस्त्र ही पहना जाता है, यानी सिर्फ कमर से नीचे बिना सिला वस्त्र। यही कारण है कि पुजारी केवल धोती धारण करते हैं भस्म आरती के समय।

घूंघट अथवा पट धारण करें, जिससे उस निराकार स्वरूप को ना देखें परंतु भस्म आरती एवं प्रातः मंगला आरती के दर्शन महिलाएं कर सकती हैं।

जब भगवान को भस्म अर्पण होता है तब भगवान निराकार रूप में व्याप्त होते हैं। उस समय महिलाओं को उस स्वरूप का दर्शन निषेध किया गया है। भस्म चढ़ते समय मंदिर प्रांगण में भी यही कहा जाता है कि महिलाएं अपना

भस्म यानी अंत और अंत यानी मृत्यु, और जब अंत की प्रतीक ये भस्म महाकाल का श्रृंगार बनती है तो ये केवल उनकी आराधना नहीं मृत्यु का उत्सव बन जाता है।

शिव आदि यानी प्रारंभ भी है और अंत यानी समापन भी है। भस्म आरती आदि से अंत तक की ऐसी अद्भुत यात्रा है जो धरती पर कहीं और देखने को नहीं मिलती।

0: आस्था, श्रद्धा और भक्ति के भाव के अलावा महाकाल एक ऐसे रहस्य की ओर भी अनादिकाल से संकेत दे रहे हैं जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। महाकाल को उज्जैन का शाश्वत राजा माना जाता है, उनके समक्ष किसी की नहीं चलती। यहां से जुड़ता है एक और मान्यता का सिरा, जिस कारण कहते हैं कि सदियों सदियों से सत्ता की किसी भी नुमाइंदे ने महाकाल की नगरी में रात नहीं बिताई। पर क्या वाकई क्यों कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में कोई राजा या शासक रात्रि विश्राम नहीं कर सकता? इस मान्यता के पीछे क्या कारण है कि अगर कोई राजा, कोई मंत्री उज्जैन नगरी में रात को रुका तो या तो उसकी सत्ता चली जाएगी या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उज्जैन में महाकाल ही राजा है और इसीलिए सदियों पुरानी मान्यता है कि कोई भी यहां राजा की हैसियत से रात को नहीं रुक सकता।
1: क्या सचमुच में यहाँ पर कोई भी राजा रात्रि विश्राम नहीं कर सकता है?
2: बिल्कुल सत्य है। ये प्रथा भी जो थी, यहाँ विक्रम का जो राज्य था, विक्रम राज्य करते थे, उसके पहले एक प्रथा थी कि जो भी राजा बनेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसकी मृत्यु निश्चित होने के कारण जब वो राजा विक्रम का नंबर आया, वो एक छोटे से आदमी थे, तब उनका भी नंबर इसमें आया, तब उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया और उन्होंने फिर ये व्यवस्था को समाप्त की कि राजा कोई भी व्यक्ति रहे, गादी खाली रहेगी, केवल राज्य के रूप में उसका नाम चलेगा और राजा विक्रम की गादी के नाम से ये गादी होगी। तो यहाँ विक्रम संवत भी चलता है और विक्रम को भी माना गया और विक्रम ने इस प्रथा को बंद किया। लेकिन आज भी ये प्रथा है कि अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है।
0: ये परंपरा इस हद तक निभाई जाती है कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि डीएम नहीं रुके। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को बदला।
3: जब डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आए हैं, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, लोग यहाँ पर थोड़ा सा उत्साहित होकर आपको घेर भी लेते हैं। मुझे लगता है कि सबसे परिचय आपका होगा नाम नाम से।
4: तो उज्जैन में छोटे से बड़े हुए और इंदौर उज्जैन अलग अलग नहीं, भाई साहब भी शुरू से आते रहे हैं और वर्षों से यहाँ के इस आबोहवा में जब बाबा के आशीर्वाद से सब अपना जीवन निकला, बाबा से कामना ये और अच्छे से निकले।
0: मोहन यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं और उनका घर नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो उज्जैन गए तो उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और इसका बेहद दिलचस्प कारण उन्होंने बताया।
5: देखिए, हम सब बाबा महाकाल के एक तरह से पुत्रवत हैं, उनके संतान हैं और बाबा सब पे कृपा करते हैं और ये सौभाग्य की बात है कि मैं तो यहीं निवास करता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं समझ नहीं सकता हूँ कि इसमें कोई गलत बात है। और अतीत के काल में भी ऐसे जवाहरलाल नेहरू जब आए थे 1956-57 में, जब विश्वविद्यालय के शुभारम्भ के वो दो दिन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ रहे हैं, बाद में भी लोग रहे हैं, तो मैं तो उसी सिलसिले में और हम तो मुख्य सेवक हैं और बाबा कृपा करेंगे।
0: तो क्या ये वाकई मिथक है? क्या कभी किसी शासक की चतुराई के कारण ये मान्यता बनी या फिर इसे किसी और रूप में समझना होगा? हमने इसे समझने का प्रयास किया।
2: परिधि उज्जैन की बहुत बड़ी भी हो सकती है नगर निगम के हिसाब से, लेकिन हमारी महाकाल की और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भगवान महाकाल का जो ध्वज होता है, जो शिखर के ऊपर उसकी जहाँ तक परछाई जाती है, उसको हम भगवान महाकाल की परिधि मानते हैं। उस परिधि के अंदर कोई राजा नहीं रहेगा और रहेगा तो उसका नुकसान निश्चित होता है।
0: ये एक सुंदर सोच है कि महाकाल की ध्वज पताका ही उज्जैन का शासन है, यानी जहाँ तक ध्वज की छाया वहाँ तक महाकाल की राजसी माया, क्योंकि महाकाल केवल उज्जैन नहीं सृष्टि के नियंता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहां पर महाकाल में काल के अर्थ को भी समझना आवश्यक है। काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ मृत्यु भी है। कालों के काल है महाकाल, पर वो उज्जैन में ही क्यों स्थापित है? उज्जैन के ही राजा महाकाल को क्यों माना जाता है?
6: उज्जैन यानी वो अद्भुत धरती जहां स्वयं प्रकट हुए महाकाल।
7: हमारे यहां 24 तत्वों की चर्चा की गई है और उसमें मूल जो दो तत्व दर्शाए गए हैं वो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति वो है जिसे हम देख सकते हैं, जो एक विस्तारवादी है, जो फैलाव करती है, उसे हम प्रकृति कहते हैं, और जो परम चेतना है उसे हम पुरुष कहते हैं। यहाँ केंद्र में भगवान उस पुरुष तत्व को एक लिंग के रूप में, एक पिंड के रूप में स्थापित किया गया और उसके चारों तरफ जलेरी है। जलेरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर की तरफ से जलेरी का प्रारंभ होता है, जो कि बहुत पतला होता है स्वरूप, और जैसे जैसे वो दक्षिण की यात्रा करती है वो विस्तार करते हुए आगे चली जाती है और एक अवस्था में आकर के दक्षिण की तरफ व्यासाकार होकर के अस्तित्वहीन हो जाती है।
6: उज्जैन यानी वो धरती जो पृथ्वी की नाभि मानी गई, जहां से दुनिया का विज्ञान और गणनाएं चलती रही है।
1: उज्जैन को पृथ्वी की नाभि, नेवल ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है?
8: देखिए क्या है कि उज्जैन का प्राचीन समय पर जो महत्व था वो खगोलीय गणना के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण किस हिसाब से था? एक तो उज्जैन कर्क रेखा पर उस समय स्थिति थी, अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, और दूसरी बात क्या है कि जो समय की गणना होती थी, जो जीरो देशांतर, जो अभी ग्रीनविच को मानते हैं या भारत के लिए 82.5 डिग्री का मानते हैं, उस समय उज्जैन के देशांतर को जीरो मान के समय की गणना होती थी। महत्वपूर्ण ये रहता है कि अगर कर्क रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब क्या है, जब हम आकाश में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक होता है, क्योंकि जो हमारा जितना भी राशियां की स्थिति है वो राशियों की स्थिति हम इक्वेटर से 9.5 डिग्री उत्तर और 9.5 डिग्री दक्षिण दोनों तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कर्क रेखा पे होगा तो ऑब्जर्वेशन हम एकदम परपेंडिकुलर सर के ऊपर कर पाएंगे। तो जितना ऑब्जर्वेशन हम परपेंडिकुलर करेंगे उतना एरर की संभावना कम रहती है। अगर कोई एंगल होगा एरर की संभावना ज्यादा रहती है, गणनाएं गलत होंगी, तो इसलिए उज्जैन को प्राचीन समय से खगोल का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित है।
6: उज्जैन यानी वो धरती जहां से समय अपनी गति तय करके चलना शुरू करता है।

0: उज्जैन का कण कण अद्भुत है, उज्जैन का चप्पा चप्पा अविश्वसनीय है, उज्जैन से जुड़ा हर रहस्य अकल्पनीय है। अद्भुत है कि दुनिया में जब समय को मानने का कोई एक तय नियम नहीं था, तब से उज्जैन दुनिया को सटीक समय बता रहा है।
1: निश्चित रूप से उज्जैन प्राचीन समय में कालगणना की महत्वपूर्ण नगरी रही है। हम देखते हैं विक्रमादित्य के नवरत्नों में बड़ा महेर जो प्रसिद्ध खगोलवेत्ता हैं, वो एक बात ऐसे खगोलवेत्ता हैं जिसमें हमारे तीन पक्ष होते हैं ज्योतिष के, जिसमें गणित फले तो होरा, जिसमें तीनों में उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। वर्तमान अगर हम वेधशाला देखते हैं तो इसका निर्माण 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया है। ये पहली वेधशाला है जो उन्होंने बनाई है। इसके बाद दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस सब बाद में बनी है। पहली वेधशाला उज्जैन में बनी है।
0: विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे। शक साम्राज्य को जब उन्होंने पराजित किया तो उस समय से समय की गणना के लिए विक्रम संवत शुरू किया। इसमें दिन, सप्ताह और महीने की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की गई, जो आज भी भारत की मान्य परंपरा है। मान्यता है कि विक्रमादित्य ने भी एक वेधशाला बनाई थी जिसने उज्जैन को विश्व में ज्योतिष के प्रमुख शहर के तौर पर स्थापित किया।
1: वो राजा अपने नाम से संवत चला सकता है जो प्रजा का जितना भी कर्ज हो वो उसको चुका दे। और ये विक्रमादित्य एक ऐसे राजा रहे हैं कि जिन्होंने वो सब चुका के और प्रजा के कल्याण में जिस प्रकार से कार्य किया कि वो अधिकृत हुए कि अपने नाम से संवत चला सकें और वो संवत प्रचलन में।
0: समय की गणना से जुड़ा उज्जैन का इतिहास और पृथ्वी पर उज्जैन जिस जगह स्थित है, समझ में आता है कि यही वो कारण हो कि महादेव उज्जैन की भूमि पर महाकाल के रूप में स्थापित है। महाकाल शिवलिंग दक्षिणमुखी है और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं पाया जाता। उज्जैन में महाकाल का दक्षिणमुखी होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की ऐसी व्यवस्था है जो आदिकाल से चली आ रही है और इसका सीधा संबंध महाकाल की महिमा से है। उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग की दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर होती है और सनातन मान्यताओं में दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है। अब अगर मान्यताओं का गूढ़ अर्थ समझें तो समझना मुश्किल नहीं कि कालों के काल महाकाल यमराज की ओर दृष्टि रखे हुए हैं और जो भक्त महाकाल के समक्ष अर्जी लगाते हैं उसका क्या प्रभाव रहता होगा।
2: दक्षिण दिशा जो है वो काल की दिशा है और कोई भी व्यक्ति काल की दिशा में कोई शुभ काम करना नहीं चाहता है, उसको भय होता है, मृत्यु भय होता है, अन्य भय होता है, इसलिए उसको दक्षिण। तो भगवान स्वयं शिव जो महाकाल हैं, कालों के काल हैं, यानी कि मृत्यु के ऊपर भी यदि किसी ने विजय प्राप्त की है तो केवल शिव ने की है। महाकाल की जो दक्षिण तरफ मुख है वो इसलिए भी है कि काल का नियंत्रण, काल यदि अपनी सीमा छोड़ दे तो प्रलय प्रलय है, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना, भगवान महाकाल उसके ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं।

0: उज्जैन में महाकाल का शासन, उन्हीं की सत्ता चलती है। लिहाजा ये भी माना जाता है कि जो उनकी शरण में आ चुका होता है उसकी मृत्यु और मोक्ष दोनों का निर्णय महाकाल लेते हैं और यमराज को उसका अनुपालन करना होता है।
1: जो भी बाबा महाकाल का दर्शन करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसके पीछे जो एक भाव है। और चूंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे घरों में पहले पूर्वज कहा करते थे कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। हमारे यहाँ दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम लोग साउथ पोल से आने वाली जो ऊर्जा है उसको हमारे यहाँ ऐसा माना गया कि नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए हम दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करेगी, इसलिए कहते थे कि उत्तर की तरफ पैर करके सोना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा मिले। और दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो दक्षिण की दिशा जो है मृत्यु की दिशा मानी गई है। भगवान महाकाल का जो गर्भगृह है वो दक्षिण मुखी है, तो जो दक्षिण की का देवता मृत्यु है और मृत्यु का जो देवता है, जो काल का भी देवता है, वो महाकाल है।
0: महाकाल की जागृत ऊर्जा को लेकर ये मान्यता है कि जब तक खुद महाकाल का बुलावा न हो कोई महाकाल के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जिसको दर्शन मिल जाता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। महाकाल अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, इसको लेकर कई प्राचीन और पौराणिक कथाएं हैं और इन्हीं में से एक कथा मृत्यु के संकट को टालने वाले महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ती है।
2: हम उस त्रिनेत्र वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं जो सुगंधित है और सभी प्राणियों की आरोग्यता व पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी या फल पक जाने पर बेल से स्वतः अलग हो जाती है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए लेकिन अमृत्यु से नहीं।
0: सनातन मान्यता है कि जब किसी पर मृत्यु का संकट छाता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है।
3: मृकंड ऋषि ने भगवान शिव से आराधना की कि उन्हें एक दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हो। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य बालक की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत आकाशवाणी भी साथ में हुई कि उस बालक की आयु केवल मात्र 16 वर्ष ही रहेगी। इससे ऋषि पत्नी चिंतित हुए। जब बालक 14 वर्ष की आयु में आया तो माता की चिंता का कारण पूछा। तब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की और महामृत्युंजय के जप से अपनी मृत्यु को वश में किया। जब यमराज उन्हें उनके प्राण हरने को आए तब उन्होंने भगवान शिव के उस महामृत्युंजय जप के प्रभाव से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को क्रोधित होकर वहां से भगाया और उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया।
0: शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद ऋषि मार्कंडेय अमरत्व को प्राप्त हुए और अष्ट चिरंजीवियों में उनकी गणना होती है। महाकाल के दरबार में आने वाले श्रद्धालु जीवन की विषमताओं से मुक्ति की कामना करते हैं और ये क्रम सदियों से अनवरत जारी है। जितनी भी अद्भुत बातें हम अपने आसपास देखते हैं उनका एक अविश्वसनीय स्वरूप होता है और एक अकल्पनीय सच भी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित बधवार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
3: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites. Take it, take it.
4: Lion Date Nut Bites.
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ ओ ला ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
9: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
10: ओला बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: अरे इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
0: In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
3: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसके अलग अलग रंग तस्वीरें सामने आ रहे हैं. आज मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का सम्मान करने के लिए वो पहुंचे.

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोबिल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था, तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि ये सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ की हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Oh, sorry!

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
3: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
2: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के स्वरूप बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
4: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो के किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी?
5: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको, मेरा ख्याल है हर, देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
6: वो अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माय अंकल एंड दैट ही इज द मिलिट्री हिस्टोरियन। उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी, लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फ्राक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
2: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
7: तो प्रधानमंत्री साहब को कोई भी मिल सकता, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साडे वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असीं कल्ले लड़ा।
2: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बत्सी, चंडीगढ़, आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेनजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, मतलब जंतर मंतर के बाद यहां पर संवाद है। जेनजी से संवाद की बात का दबाव अब हेमंत सोरेन के पास है और बहुत सारे लोग उनके प्रतिनिधिमंडल से जा रहे हैं। जेनजी से संवाद लगातार राहुल गांधी भी कर रहे हैं। जेनजी से ही संवाद आज अगर आप देखिए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश कर रही हैं। और आज बड़ा सवाल यही बनकर सामने आ रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेनजी से संवाद की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि जेनजी ने अपनी आवाज की ताकत हर पार्टी को, हर वर्ग को, संगठनों तक को महसूस करा दी है। और इसी कड़ी में आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या अब जेन जी एक ऐसी प्राथमिकता हर पार्टी की बनेगी जिसमें उन्हें शायद इस बात का एहसास हो कि भाई परीक्षा तो ठीक से करा लो, नहीं तो हमारी सरकार ना खतरे में आ जाए। जेन जी का सर्टिफिकेट तभी बचेगा विकेट। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस राउंड टेबल में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद बीजेपी के, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए हैं। और इसी राउंड टेबल में हमारे साथ अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। अरुण भारती जी जो कि सांसद है चिराग पासवान की पार्टी LJPR से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अखिलेश यादव जुड़ गए हैं जो कि छात्र नेता हैं NSUI के। और हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं जो कि डूसू में छात्र नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। एकदम पूरा ऐसा करके उन्होंने एकदम मतलब ताकत, अब यही ताकत है जो सुधांशु जी आप लोगों को देखनी है, क्योंकि ये जो अब जिसको कहते हैं एक assertion, अंग्रेजी का शब्द है, जो अपनी ताकत ये पीढ़ी दिखा रही है, वो शायद आप लोगों को समझना पड़ेगा। और अब खैर सबको समझ भी आ रहा है, बच्चों ने ही समझा दिया है। चर्चा करेंगे कि तभी बचेगा विकेट जब मिलेगा जेन जी का सर्टिफिकेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट।
1: दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों से लेकर झारखंड के स्टेडियम तक देश ने इस बार उस जनरेशन की बुलंद आवाज की ताकत देख ली है जिसे दुनिया जेन जी कहती है।
2: हम लोग भी देश की सेवा करने चाहते हैं।
1: एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे संवाद साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनके बीच चौपाल लगा रहे हैं।
3: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा।
4: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। Students are on the street in severe pain. They don't have work.
1: और तो और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब जेन जी के साथ वैचारिक संवाद की टेबल पर हैं।
5: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो इंटरनेशनल तो है नहीं जी, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
6: जी। सर
5: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है। तो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
6: अरे वाह, बढ़िया है।
5: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील।
1: सवाल है आखिर अचानक सबका ध्यान जेन जी से बात करने, मनाने, समझाने या अपने साथ लाने पर क्यों है? क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसने बीते दौर की पुरानी राजनीतिक लड़ाइयों को नहीं जिया है। ये अतीत के बस्ते ढोने वाली पीढ़ी नहीं है, ये वो दौर है जो वर्तमान की हर एक चाल को खुली आंखों से देख रहा है और भविष्य का बारीक आकलन कर रहा है। साफ है देश का ये युवा इतिहास के पन्नों को पलटकर नहीं बल्कि आज के हालात को देखकर अपना फैसला करेगा। जेन जी के वोट का रिमोट अब पुराने नारों से नहीं बल्कि नेताओं और राजनीतिक दलों के आज के एक्शन से कंट्रोल होगा। इसलिए आज हमारी बड़ी राउंड टेबल पर सवाल एकदम सीधा और चुकता हुआ है। जेन जी का सर्टिफिकेट तभी बचेगा विकेट।
0: चर्चा की शुरुआत सांसद जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्या अब ये तमाम पार्टियों को एहसास हो गया है, बीजेपी को भी, कि भाई देखिए जिनको शुरू में मतलब अनदेखी की जा रही थी ना छात्रों की, उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे एंगेज करना पड़ेगा, और अगर अपने अपने किले को मजबूत रखना है तो जेंजी से एंगेज करना पड़ेगा।
7: देखिए जो आपने कहा जेंजी, तो इसके बारे में जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस समय कोई जेंजी से बात हो रही, तो भारत को ही नहीं समझता। भारत में तो अनादिकाल से आज तक, ये बताइए कठोपनिषद में जाकर सबसे पहले ब्रह्म विद्या किसने बताई? नचिकेता ने, जो बालक था 16 साल की आयु में, जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण वेदों को आत्मसात कर लिया था। उसके बाद मध्यकाल में छोड़िए, अभी 125 साल पहले की बात है, स्वामी विवेकानंद 29 साल की उम्र में जब अमेरिका में गए तो शिकागो के अखबारों ने क्या लिखा कि इस 29 साल के युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो सागर है जिसकी एक बूंद मिलाकर भी हमारे सारे लोगों के पास नहीं है। अब आप उसके बाद आइए आजादी के समय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, बागा जतीन, सचिन नाथ सान्याल, ये सब क्या थे? 19, 20, 21, 22, 23 साल के नौजवान थे। आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन क्या हुआ? जेपी का मूवमेंट, जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, उठो जवानों तुम्हें जगाने, क्रांति द्वार पर आई है, वो भी था जिसने भारत की राजनीति की धारा बदल दी, वो राम मंदिर आंदोलन। वो कौन थे बच्चे जिनके लिए कहा गया था वो चढ़ तो गए थे गुंबद पे मगर गोली मारी गई और वो नीचे गिरे आकर कान से सटा सटा के गोलियां मारी गई, उन्होंने भारत की राजनीति बदल दी। तो हमेशा युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाते हैं, नित नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आते हैं, तब करने करके सरसंधान जवानी जागा करती है। और आज देखिए
0: तो ये विपदा है ना, परीक्षा परीक्षा व्यवस्था विपदा है ना, आप खुद ही कह रहे हैं।
7: आज क्या है? आज कौन है? भारत ने फिजिक्स का ओलंपियाड में 5 गोल्ड मेडल के साथ ज्वाइंट ही सही टॉप किया है। अगर आप देखें मैथ्स के ओलंपियाड में 3 गोल्ड मेडल। भारत का जेंजी कौन है? विक्रम 1 फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का जो स्पेस में सैटेलाइट सेटल हो गया और स्काई रूट कंपनी की एवरेज है 28। भारत का जेंजी कौन? गुकेश डोमराजू 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन। भारत का जेंजी कौन? वो देवव्रत महेश रेखे जिसने 19 साल की उम्र में शुक्ल यजुर्वेद का दंड कंपारण किया और पहली बार इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप में मेंस का भी चैंपियन और वुमेन्स का भी चैंपियन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा, और इसके लिए अगर सबसे गंभीरता से आइए परीक्षा के विषय पे,
0: एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आज जेंजी की बात हो रही है तो ऋषभ शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर, और ऋषभ आप संस्थापक भी हैं IIMUN के और छात्रों के साथ आप लगातार संवाद करते हैं। हालांकि आज मुझे लग रहा है कि जो जेंजी है वो सुधांशु जी हम लोग को आउट नंबर कर रही है, तो ऋषभ भी यहाँ पर मौजूद हैं और 3 यहाँ पर युवा नेता भी, अजय जी का मुझे पता नहीं वो अपने आप को कहाँ रखेंगे, आपका एज मैं नहीं पूछूंगी लेकिन
7: बाकी मैं तो टीचर भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने दोनों तरफ से देखा है, छात्र के रूप में भी देखा है और इंजीनियरिंग का ही रहा हूँ। तो जो नीट के बच्चे हैं ना, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले, तो मैंने उसको दोनों तरफ से महसूस किया है, एज ए स्टूडेंट भी कंपटीशन के बाद और एज ए टीचर भी।
0: अब मैं यहाँ पे बस ऋषभ को मैं कंग्रेचुलेट पहले करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया ऋषभ मोहन भागवत।
8: थैंक यू अंजना जी, थैंक यू अंजना जी कि आपके शो पे आपने बुलाया और इंटरव्यू के बारे में बात की। खाली एक ही चीज करेक्ट करूंगा कि मैं मिलेनियल हूँ, मैं जेंजी के और जेन अल्फा के साथ काम करता हूँ, पर मैं खुद हूँ मिलेनियल। पर आपने ये बोला कि मैं जेंजी दिखता हूँ तो अच्छा है,
0: कॉम्प्लीमेंट समझिए। अब सुधांशु जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद मैं आपके,
7: अब देखिए जो नीट का विषय यहाँ मैं बताना चाहता हूँ।

0: कि मोदी जी ने आने के बाद किस किस प्रकार से चीजों को व्यवस्थित किया। एक छोटी सी बात, आज नेट सब कुछ सोशल मीडिया पे है ना, याद करिए जीबी की कॉस्ट क्या थी, 290 रुपए पर जीबी पर मंथ, आज क्या है 19 रुपए। और अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्रॉडबैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस वो अलग है। जब नीट नहीं था तो क्या होता था, प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें नीलाम होती थी 25 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए में अंडर ग्रेजुएट की, और मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट की तो एक एक करोड़ तक जाती थी। गरीब सामान्य मध्यम वर्ग और का बच्चा सोच ही नहीं सकता था कि वो 25-50 लाख एक करोड़ देके एडमिशन पाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज तमिलनाडु के बहुत से लोगों ने कहा नीट खत्म कर देना चाहिए, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र में वो कॉलेजेस किसके हैं, किस पार्टी से जुड़े नेताओं के हैं,
1: तो
0: जो सैकड़ों करोड़, भाई तो कह रहा हूं सैकड़ों करोड़ पर डे कमाते थे, बंद हो गया नीट आने के बाद, कैपिटेशन फी के थ्रू एडमिशन खत्म। इसीलिए तन बदन में आग लगना कहावत होती है, ये तन बदन और धन में आग लगी है, पीछे यह भी एक रहस्य है, इसे भी आज के जनजी को समझना चाहिए कि मूल स्रोत कहां से आ रहा है। और इसीलिए वही लोग और वही पार्टियां ज्यादा एक्टिव हैं जिनके लोग नीट आने से पहले सैकड़ों करोड़ पर डे कमाते थे, किसकी कीमत पे, उन गरीब बच्चों की कीमत पे। जैसे बाड़मेर में राजस्थान में एक दिहाड़ी मजदूर लखाराम की बेटी का एडमिशन हुआ है, विशाल तिवारी लखनऊ का जिसका पिता ऑटो ड्राइवर है उसका एडमिशन हुआ, ये कभी 25 लाख 50 लाख वाले में सोच सकते थे? इसलिए विचार करें, मैं जनजी से कहूंगा लॉजिकली करिए, कंपैरिजन करिए, फिर जाके कंक्लूजन ड्रॉ।
1: ठीक है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे अकम्प्लिश करते हैं, लेकिन इसलिए नीट का पैटर्न नहीं बदला था कि पेपर लीक हो जाए ना सुधांशु जी। और अब तो ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस इंटरव्यू में मोहन भागवत जी ने क्या बीजेपी को आईना नहीं दिखाया जब उन्होंने कहा कि बच्चों से पहले बात करनी चाहिए थी, जब उन्होंने कहा कि वो एंटी नेशनल नहीं है, कोई भी अगर व्यवस्था के खिलाफ बोले तो सबको एंटी नेशनल ब्रांड मत कर दीजिए, क्या एसेंस था उनकी बातों का, क्या ये नहीं था?
2: क्या एसेंस था वो प्रश्न उनके लिए ज्यादा उचित रहेगा, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनके लिए ज्यादा उचित रहेगा। मैं तो छात्रों के साथ काम करता हूँ और मैं खाली एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये जेनजी के प्रोटेस्ट थे, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर में नहीं है, ये झारखंड में है, ये राजस्थान की 8वीं 9वीं कक्षा की लड़कियां बैठी है और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे पास स्कूल में टीचर नहीं है। ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स आज बन गए हैं भारत में, पर 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी है। आज ये बात भी सही है कि 1 लाख स्कूल में हम लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है, हम लोगों के पास 15,000 स्कूल में अभी तक वी डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी बात भी जरूरी है रखने के लिए। और जो लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन कि जब प्रोटेक्टर बनते हैं या फिर यूथ के बारे में बात करते हैं और यूथ के लिए बोलते हैं, तो वो पॉलिटिसाइज कर देते हैं पूरे विषय को कि किसी को हटाओ किसी को लेके आओ। पर एक्चुअल जो इशू है, जो नीट का इशू है, जो सीबीएसई का इशू है, जो फिक्स करना है, वो इशू फिक्स नहीं हो रहा है। सिर्फ कमेटी पे कमेटी, मेरा सुझाव भी ये था कि कमेटी बनाए, बट जो लास्ट कमेटी थी वो कमेटी के राधाकृष्णन जी की जो कमेटी बनी थी उसमें से 160 जो सजेशन दिए थे उसमें से 57 सजेशंस आर ओनली इम्प्लीमेंटेड फुल्ली, तो बाकी की सजेशंस भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। तो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि एक्चुअल में जेन जी और जेन अल्फा की हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी 40 करोड़ हो गए हैं, जेन जी इज 40 करोड़ पीपल। तो जेन जी जो है उनकी जो मांगे हैं उनके साथ आप बातचीत करिए, संवाद कीजिए और संवाद से समाधान निकालिए। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को। जी
1: बिल्कुल, संवाद करिए और उसी से रास्ता निकलेगा। अब मैं अजय जी आपके पास आ रही हूँ, हालांकि लेकिन ऋषभ भी ये कह रहे हैं कि किसी का इस्तीफा, आप लोगों ने सबसे बड़ा अचीवमेंट बना दिया कि हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, सबसे बड़ी विक्ट्री हो गई, लेकिन व्यवस्था में क्या बदलाव का आप दबाव बना पाए हैं, क्योंकि बिल पर तो अच्छे से चर्चा ही नहीं। अब आप सोचिए कि लोकसभा की कार्यवाही हो नहीं रही है, कितने सारे बिल ध्वनि मत से पास कराए जा रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, फिर कौन तय करेगा?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है, और शिक्षा सुधार प्रणाली कैसे हो ये बहुत पूर्ण है, और भागवत साहब ने भी जो बात कही है ठीक है कि सुधांशु भाई को हो सकता है इसकी जानकारी होते हुए भी वो छुपाना चाहे, उन्होंने भी क्या कहा कि संवाद और सुधार होना चाहिए, उन्होंने बात रखी। अब ये उसी जेनजी के बारे में, जिन जेनजी ने प्रदर्शन किया उसको एंटी नेशनल कहने वाले की एक लंबी फहरिस्त है, किसी ने वायरस कहा भाजपा वालों ने, किसी ने गुमराह कहा, किसी ने तो गट्टर का कीड़ा तक कह दिया, भाजपा के ऑफिशियल पदाधिकारी और सांसदों का ये रूप है। तो अब ये संवाद इस तरीके से करना चाहते हैं, लाठी डंडों से, कील लगे लाठियों से, करेंट बैरिकेड में लगाकर, उन पर पेलेट गन चलाकर, या संवाद का तरीका होना चाहिए

0: वाद विवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है, अब ये आपस का कंफ्लिक्ट है, पहले इसको क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात, संवाद कैसे होगा? 12 सालों में सरकार है, मैं आरएसएस के भी साथियों से जरूर ये बात पूछना चाहता हूँ, 12 साल में क्या कभी यही मोहन भागवत जी ने या बाकी लोगों ने परीक्षा सुधार पर कभी कोई चर्चा करने का प्रयास किया? कभी जो परीक्षा में धांधली होती रही है इस पर कोई सरकार से प्रश्न करने का काम किया? कोई मांग नहीं है आज तक उठा करके रिकॉर्ड में दिखाएं। सरकार किसी की भी हो सकती है, यदि गलती हो रही है तो उस पर डिमांड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये संसद क्यों नहीं चल रहा है? सिर्फ दो बातें हैं, बार बार हम एक मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी संसद में आए, बात रखें। ये मंदिर है लोकतंत्र का, खुद कहते हैं और सच्चाई है। क्या उस मंदिर में आने से डर लग रहा है या वो मंदिर अहंकार में नहीं आना चाहते हैं? ये दो में से एक कारण हो सकता है। ये बताएं कि भाई वो लाठी डंडे जो चले हैं, पैलेट गन चले हैं, आखिर किसने चलवाए, ये कौन सा बड़ा मांग है, इसको आकर जवाब देना चाहिए। जवाबदेही तभी तय होगी ना, पहली बात। दूसरी बात, जो सुधार की बात की है और अभी चर्चा लंबी हुई,
1: पहले आपने क्या शर्त रखी थी?
0: मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी।
1: पार्टी ने छात्रों ने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब हम लोग चर्चा करेंगे, रखी थी या नहीं? अगर मैं गलत हूं तो बता।
0: एकदम बहुत अच्छी बात आपने कही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, परीक्षा सुधार पर चर्चा हो, और इस बीच में लाठी चार्ज उसी दौरान हो गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 3 मई जब नीट का परीक्षा जब ये हुआ था, लीक हुआ था पेपर लीक, तब से हम मांग रहे थे। लेकिन जिस तरह से लाठी चार्ज और बच्चों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, उसकी जिम्मेदारी तो बनती है ना, जिम्मेदार तो कोई ना कोई होगा ना, जवाबदेह तो होगा। और पार्लियामेंट के लिए अंतिम बात, आपने जो भी चर्चा अभी की है, हमारी मांग क्या है? पैलेटगंज जिसने चलाया उस किसके आदेश पर चलाया, उसको आप चर्चा में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आखिर बच्चों पर टीयर केस किसी ने तो कहा होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? सुधार की बात की है, राधा कृष्णन कमेटी ने बनाया था इन्होंने टास्क फोर्स, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन भी किया, उसमें 101 रिकमेंडेशन दिया। उस रिकमेंडेशन में से 9 रिकमेंडेशन अभी जो नंदन लेखनी जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बना है, उसी में से 9 रिकमेंडेशन के लिए ये समिति गठित कर दी, और उस 9 में से 7 ऑलरेडी वो रिकमेंडेशन दे चुका है राधा कृष्णन कमेटी ने, 2 आंशिक तौर पे भी उसने अपना सुझाव दे दिया है।
1: ठीक है, अरुण
0: जी, जो सुझाव हमने दे दिया या जो कमेटी ऑलरेडी बन गई थी उसका सुझाव मान लेती सरकार, ये नया बनाना मतलब प्रधानमंत्री जी सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं, अपना इमेज प्रबंधन कर रहे हैं, अपने अहंकार को कहीं ना कहीं कम करके कैमरे का जो है सेल्फी लेने में कैमरे को खाली डेविएट कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जवाबदेही तय करनी होगी, परीक्षा सुधार प्रणाली पर बात करनी होगी, और हम सबको मिलकर के एक पारदर्शी निष्पक्ष व्यवस्था करनी होगी जिसमें किसी पार्टी और विचारधारा का मामला नहीं हो। जो बच्चा, जो जेएनजी, जो लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देता है, मेहनत करता है, उसके गार्जियन पैसे खर्च करते हैं, हम लोग भी छोटे परिवार से
1: हैं, हम भी लड़ा सांसद,
0: उनको न्याय मिलना चाहिए।
1: तो पता चला है कि चिराग जी भी सोच रहे हैं कि जेएनजी के साथ संपर्क करें और जेएनजी के साथ बातचीत करें, झारखंड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे?
2: सबसे पहले अंजना जी, हमारे नेता जेंजी में बहुत ज़्यादा स्वीकार्य हैं, आपने बिहार में भी देखा होगा, अभी आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, और हमने जेंजी को मौका दिया है। शांभवी जेंजी हैं, हमारे 2 विधायक जो लड़े हैं बिहार के चुनाव में वो भी जेंजी हैं, तो उनको हमने मौका ही दिया, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। परीक्षा सुधार पर कांग्रेस को तय करना है कि पहले इनका गोल पोस्ट क्या है, क्योंकि लगातार हर रोज बदलता रहता है। जब इस बात को लेकर के संसद में चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने अपनी तरफ से, मैंने संसद में स्पीच दिया था, तो मैंने कहा था कि परीक्षा सुधार और छात्रों के अधिकार, इन दोनों पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी इस बात को लेकर के इतना कंफ्यूज हैं कि जब जेंजी की बात करते हैं तो सिर्फ उसको एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि वो बात करते हैं दिल्ली के छात्रों की मगर वो रांची की बात नहीं करते हैं। अरे रांची कराची नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, भारत में ही है। अभी तक पता नहीं चला कि छात्रों की गूंज रांची में कब होगी, केरला में कब होगी, पंजाब में कब होगी, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। जब जेंजी की बात की, अभी चिराग पासवान जी ने भी जब तीसरे दिन ही जब
1: हुआ था, कौन जाएगा विरोध करने?
2: देखिए
1: मतलब राहुल गांधी यहाँ दिल्ली में भी करेंगे और रांची में भी करेंगे या आप लोग करेंगे?
3: में तो सरकार है, मेरा सीधे एक्शन
1: लेना चाहिए, आप जाइए ना
2: अंजना जी,
3: हम तो कर रहे हैं, वो तो सरकार में है ना, यहाँ
1: मेरा छात्र, आप कह रहे हैं कि वो इस्तीफा मांगे हेमंत सोरेन का, वो क्यों मांगेंगे, उनकी सरकार है सुधांशु जी, सुधांशु जी उनकी सरकार है, 4 मंत्री है कांग्रेस के,
3: इस्तीफा मांगे नहीं, आप तो कार्रवाई करिए, आप सरकार में है, इस्तीफा दीजिए,
4: एक जवाब
3: यहाँ शिक्षा मंत्री मांगे तो
2: इस्तीफा दीजिए। देखिए किसी भी नेता को, किसी के भी, किसी भी छात्र और युवा के आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। आप जब वहां जाते हैं तो सिर्फ आप अपनी राजनीति करके आते हैं। बताइए आम आदमी पार्टी के लोग गए, अब

0: अपनी बात करके आए, ऐसे में छात्रों का मुद्दा डाइल्यूट हुआ। आप देखिए सपा के लोग गए वहां पर, जितने भी नेता गए सिर्फ अपनी पार्टी की बात करके आए हैं, छात्रों के मुद्दों को डाइल्यूट करके आए हैं। किसी भी नेता को किसी भी छात्र के मुद्दे पर किसी भी मंच पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब राहुल गांधी जी जाते हैं प्रधानमंत्री जी क्या गए थे, सिर्फ और सिर्फ वहां पर लाभ लेने गए थे। उनको पता चला कि अंत में कोई जंतर मंतर पे नहीं जा रहा है, तो लगा कि कुछ तो करेंगे शॉर्ट में। अब उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो घुमा फिरा करके, देखिए छात्र मेरा और छात्र तेरा नहीं हो सकता है, छात्र देश का भविष्य है।
1: उन्होंने वीडियो बनाया है भाई, झारखंड के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है।
2: 30 सेकंड दे दीजिए,
1: टाइम ज्यादा लग गया। अब फिर बच्चों को बोले दे, जेन जी
2: लास्ट है,
1: खत्म नहीं होगा सर, जल्दी से बोलिए।
0: अनुराग जी लास्ट लास्ट लास्ट पॉइंट, अभी तक छात्र के अधिकार पर एक भी शब्द कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है।
2: अरुण भाई, छात्रों के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए तो सबको बात रखनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के। झारखंड के बारे में जरूर आपने चर्चा की, राहुल गांधी जी ने उन एजिटेट जो
0: छात्रों की गूंज करने के लिए
2: 10 सेकंड, जो झारखंड में जो हमारे नेता वहां के जो विद्यार्थी हैं उनसे बात भी की है, और कांग्रेस पार्टी का पूरा एकदम क्लियर कट स्टैंड है कि हम चाहे वो झारखंड की बात हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, या देश के किसी हिस्से
0: की,
2: हमारी भी सरकार क्यों ना हो, यदि छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम उसकी आवाज उठाएंगे,
1: यहाँ पर दिल्ली में नीट का एग्जाम, रुकिए लड़ाई,
2: लेकिन आप लोग क्या,
1: ये लड़ाई इसका क्या, एक सेकेंड बाप,
0: पहले ही मैंने
1: अरे कुछ सामने भी सुनिए, कुछ सामने भी सुनिए ऋषभ, इसका क्या इलाज है, क्या क्या सोल्यूशन है, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए पॉलिटिकली ही सोल्यूशंस निकलेंगे ना, देश की संसद से ही सोल्यूशंस निकलेंगे। अगर आपको कोई कमिटी के रिकमेंडेशंस हैं, शिक्षा मंत्रालय को ही करना है, सरकार को ही करना है, ये तो मेरा झारखंड तेरा झारखंड तेरा केरल, केरल कब जाओगे, तुम यहाँ क्यों आए, तुम वहां क्यों गए, यही चल रहा है।
3: नहीं, यही राजनीतिक विषय बन गया है, और ये मतलब इसमें तूतू मैमे में सब लोग थक गए हैं, तो उसके लिए मैं खाली यही उम्मीद रखता हूँ कि जो सारे राजनीतिक दल से लोग आए हैं वो लोग एक्चुअली छात्रों के बीच में जाए, उन लोगों को पूछे, यूथ को पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या विषय है, एडुकेशन के बारे में क्या विषय है, क्लाइमेट चेंज का क्या विषय है, ये सारे अन्य विषय के बारे में उनसे बातचीत करे एक्चुअल में, और वो खुद की अपने यूथ विंग में ना जाए, क्योंकि अपने यूथ विंग में वो लोग को एक और चेंबर मिलेगा कि मतलब
1: एक सेकेंड, आप बहुत ही क्रांतिकारी चीज सजेस्ट कर रहे हैं ऋषभ, आप ये कह रहे हैं कि सुधांशु जी NSUI की बैठक में जाए, और अजय उपाध्याय जी, मैं आप गुस्सा है ना, मैं इनको भी कह रही हूँ, अजय उपाध्याय जी जाए ABVP की बैठक में, आप ऐसा कुछ सजेस्ट कर रहे हैं
3: जी? बिल्कुल, मैं क्यों ऐसा
1: बोल रहा हूं, बूइंग नहीं होगी और हल्ला गुल्ला नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा?
3: नहीं, मैं मतलब वही तो चले गया है ना, पहले जैसे अटल जी ने बोला था कि मनभेद आप लोग मत कीजिए, मतभेद हो सकता है पर कभी मनभेद नहीं होना चाहिए, वो हम लोग को वो राजनीति वापस लेके आनी है। और इसमें पूर्व पक्ष स्टाइल डिबेट, खाली आपको मैं बताऊंगा अंजना जी, कि मतलब आप तो जानते रहेंगे कि पहले हमारे जो डिबेट्स होते थे वो वन वर्सेस दी अदर कभी नहीं होते थे, वो हम लोग करते थे कि आप विपक्ष का पहले पक्ष समझो, बाद में अपना जो चीज है वो आप व्यक्त करें। अभी ऐसा हो गया है कि मतलब पहले से ही लड़ाई चालू हो जाती है, और उसमें यूथ को हम लोग खाली माध्यम बना रहे हैं। और मैं ये एक चीज बताऊंगा कि हमको तो माध्यम बनाया था, मिलेनियल्स को माध्यम बनाया था, और ज्यादा करके बहुत सारी आवाज नहीं निकली थी, पर जेन जी को यदि माध्यम बनाया और एक्चुअल में वो लोग ने इश्यू सॉल्व नहीं किए, तो ये जेन जी एक्चुअली रास्ते पे आ जाएगा, और देश भर में आंदोलन होते रहेगी, और भारत अगला नेपाल और बांग्लादेश बन जाएगा, और यही चीज विश्व के जो बहुत सारे पावरफुल नेशंस है वही ये चाहते हैं कि देश टूटे। तो मैं राजनीतिक दल को यही पता है कि ये क्रांतिकारी चीज है, पर यदि सुधांशु जी NSUI जाए, और यदि आपकी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन BJYM आए, और मैं चाहता हूँ कि दोनों IMN भी आए और ऐसे युवा संगठन में जुड़े,
1: दोनों मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दोनों कमिट नहीं कर रहे हैं, चलिए इसके लिए इंतजार करते हैं ऋषभ। लेकिन मुझे पता है कि आपको कहीं जाना है, एक आखिरी आपसे मेरा सवाल है, इस सवाल के जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं, एक डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, एक स्पष्टता के साथ भी हो सकता है, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन आपने एक सवाल पूछा था कि जब भी कोई देश में प्रोटेस्ट करता है तो उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, कोई भी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है उसको एंटी नेशनल, तो जो ऑडियंस थी वहां पर वो बहुत जोर से तालियां बजाने लगी, और जो रिएक्शन था संघ प्रमुख का वो ऐसे संकेत दे रहा था जिसमें साफ दिखा कि वो चाहते थे कि छात्रों से पहले एंगेज करते तो ऐसा नहीं होता। क्या इस बातचीत के दौरान आपको ऐसा लगा कि वो ये चाह रहे थे कि मतलब कहीं से एक कोर्स करेक्शन की बात आए कि भाई छात्रों से पहले क्यों नहीं एंगेज किया जंतर मंतर पर?
3: नहीं, आई थिंक उन्होंने स्पष्ट रूप में ये चीज बताई तो बता दी थी कि बच्चों के साथ संवाद हम लोगों को करना चाहिए था और कर अभी भी कर रहे हैं और आगे करते जाएंगे। तो मतलब ये तो स्पष्ट रूप में उन्होंने बता ही दिया था।

0: ही दिया था कि डायलॉग शुड हैव बीन नेसेसरी, और मैं भी ये मानता हूं कि डायलॉग यदि पहले हो गया होता तो ऑटोमेटिकली ये आंदोलन आगे बढ़ता नहीं। पर जैसे मैंने ये भी बोला है कि आंदोलन इस कारण नहीं होना चाहिए कि किसी की पक्षपात हो या किसी की सरकार गिरानी है। एक्चुअल में आपको देश को विकसित बनाना है। मुझे पता है कि मैं, मतलब इट इज वेरी आइडियलिस्टिक एंड यूटोपियन जो मैं चीज बोलते बोल रहा हूं, पर मैं यही मानूंगा कि जो हमारे नेता बने हैं वो नेता इस कारण बने हैं कि देश को विकसित बनाना है, और यदि देश को विकसित बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने कई सारी चीज ये इंटरव्यू में बताई, पर मैं आखिरी चीज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने एक चीज ये भी बताई कि 6% एजुकेशन बजट में से हम देने का प्रयास नहीं करेगी, पर प्रॉमिस कर रहे हैं। ये 68 से कांग्रेस की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी 86 में रिवाइज हुई, और बाद में 2020 में रिवाइज हुई एनईपी में, पर कोई भी सरकार ने दी नहीं है। तो यदि देश को हम लोग को विकसित बनाना है तो प्लीज एजुकेशन पे फोकस कीजिए एंड संवाद कीजिए। संवाद नहीं करेंगे तो ये अगला नेपाल और बांग्लादेश बनेगा, एंड आई डोंट थिंक द कांग्रेस नॉर द बीजेपी नॉर एनीबडी हु सीरियस अबाउट दिस कंट्री वांट्स दैट।
1: बिल्कुल,
0: अगर
1: और
0: छोटा
1: मैं
0: होगा
1: देख रही हूँ कि कितना स्ट्रेटेजिकली आपने IIMUN अपने पीछे लगा रखा है। तो इस आप
0: आपसे
1: हैं
0: आपसे
1: मिलेनियल।
0: थोड़ा
1: हाँ
0: थोड़ा
1: मैं, हाँ हमारे तो चारों तरफ आज तक लिखा ही
0: सीख
1: रहता है, लेकिन आप हैं मिलेनियल, लेकिन जेंजी की बात करते हैं और संवाद कराते हैं जनता और लोगों के बीच
0: जी,
1: में।
0: बांग्लादेश
1: रियली
0: और नेपाल
1: अप्रिशिएट
0: बन
1: यू
0: जाएगा,
1: ज्वाइनिंग
0: उस
1: अस,
0: पर
1: बहुत
0: आपत्ति है
1: धन्यवाद।
0: मुझे।
1: हाँ
0: बांग्लादेश और नेपाल बन जाएगा, भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमेशा जीवित रहेगी, वाद विवाद संवाद चलते रहेगा। यहाँ कभी भी कोई बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति नहीं बनेगी। हम सब
1: ऋषभ
0: पॉजिटिव
1: वो कह रहे
0: हैं,
1: हैं बांग्लादेश
0: पार्टियां अलग
1: नेपाल
0: अलग हो
1: का
0: सकती
1: जो
0: है, विचार
1: आपने
0: अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग हो
1: ड्रॉइन किया
0: सकती
1: वो
0: है,
1: गलत है,
0: पर सभी लोग मिलकर
1: ठीक
0: के
1: है, उसे रिएक्शन
0: देश का
1: लेंगे।
0: निर्माण करेंगे।
1: नेपाल
0: नेपाल में अभी चंद महीनों में
1: हम
0: क्या हुआ है अभी?
1: बोलिए,
0: नहीं,
1: सॉरी सॉरी, आई कुड नॉट हियर दैट, वो कह
0: आप
1: रहे हैं कि
0: बताइए।
1: आप नेपाल और बांग्लादेश की जो बात आपने कही कि वो बन जाएगा वो गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा भारत के साथ।
0: नहीं,
1: भारत
0: यही
1: डेमोक्रेटिक
0: उम्मीद
1: तौर
0: है,
1: पे डीप रूटेड डेमोक्रेसी है यहाँ।
0: नहीं
1: डीप रूटेड
0: यही उम्मीद
1: डेमोक्रेसी
0: वर्षों से हम लोग के जेहन में है। हम सब लड़ेंगे, संवाद करेंगे, अपने अधिकार मांगेंगे। जेन जी को भी ये पता है, संवैधानिक दायरे में रह करके वो लड़ाई लड़ेगा और उसे मिलेगा
1: अधिकार
0: अधिकार,
1: उसको
0: उसको
1: मिलेगा।
0: मिलेगा।
1: हाँ बोल बोलिए ऋषभ, एक छोटा सा रिस्पॉन्स बस।
0: जी, छोटा सा रिस्पांस इसमें यही कि यही उम्मीद है सुधांशु जी और जिन्होंने भी ये बात बोली, यही उम्मीद है
1: राइट,
0: सरकार से, विपक्ष से, कि ये संवाद एक्चुअल में स्टार्ट हो और वो संवाद बना रहे और एक्चुअल की जो इश्यूज है वो बाहर आए। और
1: ठीक,
0: मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि यूथ को सिस्टम पे अभी भरोसा दिलाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हो रहे, 35 प्रोटेस्ट आर हैपनिंग एट दिस टाइम अंजना जी, तो ये सारे प्रोटेस्ट में
1: पैंतीस
0: से
1: प्रोटेस्ट
0: 27 प्रोटेस्ट यूथ प्रोटेस्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। और सरकार, मैं जानता हूं कि सरकार विकसित भारत बनाना चाहता है, उसके लिए मेरी उम्मीद यही है सुधांशु जी से और विपक्ष से कि संवाद बना रहे।
1: ठीक
0: थैंक
1: है।
0: यू सो
1: चलिए
0: मच,
1: सुधांशु जी, इस
0: थैंक
1: वजह
0: यू।
1: बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपके पास आती हूँ अखिलेश यादव जी, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि छात्रों की भी बात आए। आप लोग NSUI की तरफ से एक्टिव हैं, मुझे ये भी पता चला है कि झारखंड में भी है, लेकिन सवाल है कि एक, एक एक आपको नहीं लगता है कि वहां पर तो जो हालत है, मतलब नौकरियों की लिस्ट, अगर आप गए हो, मुझे नहीं पता आप गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन गजब मायूसी है वहां पर लोगों में।
2: आपकी बातों का जवाब मैं एक दार्शनिक, बड़े दार्शनिक रहे, उनकी कहानी से देना चाहूंगा कि जब पहले कोल माइंस में मजदूर जाते थे तो जहरीली गैसों से मर जाते थे, तो वह क्या करते थे कि अपने कंधे पर कनारी की चिड़िया को लेकर के जाते थे। तो कनारी की चिड़िया जैसे जैसे अंदर जाती थी, टें टें टें करते हुए, एक गाने के मतलब गाते हुए अंदर जाती थी, और जैसे जैसे जहरीली गैस अंदर से आती थी तो वह या तो गाना स्लो कर देती थी या तो वह दम तोड़ देती थी। तो इससे क्या होता था कि जो मजदूर हैं उनको पता चल जाता था कि जहरीली गैस शुरू हो गई है, तो सारे मजदूर बाहर निकल करके भाग जाते थे। यहाँ लोकतंत्र में छात्र राजनीति का काम, स्टूडेंट्स का काम, जेंजीज का काम उस कनारी की चिड़िया के तौर पर है कि देश में आने वाली जो समस्या है, जो खतरा है, उसके बारे में देश को, सरकार को, समाज को, विपक्ष को जगाने का काम करती है। हम क्या देखते हैं कि ये जो कनारी की चिड़िया है, जहरीली गैस से मरने की बजाय ये जो सत्ता के लोग हैं लोहे की किल लकड़ियों में बांध करके मारते हैं। उसको पायलट गन से उसको मारने का काम करते हैं। जब जंजीज अपनी बातों को लेकर के जंतर मंतर पर आते हैं, देश भर से लोग आते हैं और कईयों बार, मतलब कईयों बार बोलते हैं, आज जो बोल रहे हैं कि जंजीज को सुन लेना चाहिए, इस तरीके से कर लेना चाहिए, भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पिछले 12 सालों में जितने बड़े आंदोलन हुए, छात्र आंदोलन हुए, लगातार एंटी नेशनल घोषित कर दो, उन्हें आतंकवादी बता दो कहीं और से फंडेड है, तो भाई वो देश का आपका

0: भविष्य है। हम वह लोग थे जिनको लगता था कि 2014 में जब हम हाई स्कूल में थे, हमें लगता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें लगता था कि इस तरीके का है। हम वह व्यक्ति थे जो कि अपने परिवार वालों को, मतलब अपनी माँ को, दीदी दी को, इन लोगों को मैनेज किया कि नहीं नहीं मोदी जी आएंगे तो चीज़ें बदलेंगी। मेरा भाई जो फौज में था, वो लोग उस समय अरुणाचल में थे, अरुणाचल में ये लोगों की अलग खुशी थी। और मैं बता रहा हूँ आपको, NSY तो मैं यूनिवर्सिटी में आने के बाद ज्वाइन किया।
1: अच्छा, बचपन तो पहले की बात होता है।
0: हाँ, ये पहले की बात बता रहे हैं कि
1: आप
0: समझिए कि इस तरीके की चीज है कि इन्होंने आर्मी को भी अग्निवीर बदल दिया, जो कि हमारे गांव में बच्चे दौड़ते थे, निकलते थे, वो अग्निवीर हो गए। फिलिप अल्टबैक ने बोला है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होते हैं टू टाइप से होती है, नॉर्म ओरिएंटेड और वैल्यू ओरिएंटेड। नॉर्म ओरिएंटेड वह है जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, वैल्यू ओरिएंटेड यह है कि ये जो सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने का काम किया जाए। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि वही लोग हैं जो कनारी की चिड़िया को जिस किल से मार रहे हैं कि पूरे देश के जो छात्र कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़ दिया जाए तो छात्र संघ के चुनावों को बैन किया है। हाँ। और जहां पर छात्र यदि आवाज उठाए तो वहां पर उनके ऊपर इतने मुकदमे लाद देते हैं, जहां से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आता हूं, तमाम FIR किए हुए।
1: आपने नॉर्म ओरिएंटेड का, तो ये नॉर्म ओरिएंटेड काम झारखंड में भी होना चाहिए,
0: बिल्कुल होना चाहिए।
1: यदि नहीं
0: नहीं मानते हैं मांगे और नहीं चलते
1: हैं,
0: तो बिल्कुल देना चाहिए। और क्या, छात्र आंदोलन विपक्ष में है ना, वहां पे आवाज उठाए थे, तो यहीं से इस्तीफा मांगने जाइए, वहां पर कौन मना किया है आपको। और मेरा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि छात्र आंदोलनों को चाहे कोई भी सरकार हो, सत्ता हो, उसको सुनना होगा। नहीं सुनेगी तो वही जो छात्र हैं बंगाल की खाड़ी में, उस सत्ता को, उस सरकार को फेंकने का काम।
1: अर्जुन जी, क्या वो सही कह रहे हैं, क्या छात्रों की आवाज दबाई जाती है?
2: मुझे नहीं लगता, मुझे लगता थोड़ा सा इसको हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। हर समय में, जैसा कि सुधांशु जी ने भी कहा, युवा जो है वो विरोध करते हैं, वो उभरते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हम देखते हैं खुदीराम बोस, अनंत कन्हरे, भगत सिंह, सुखदेव थापर, बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया देश के लिए, क्योंकि उस समय आवश्यकता थी एक सीमा तक जाके रिबेलियस होने की। और आज के भी समय में हम देखते हैं जहां पे भी पॉलिसी लेवल पे कुछ गड़बड़ होती है या देश में कुछ गड़बड़ होती है तो एक ग्रीवेंस होता है, और उस ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए युवा पहले ही सोचता है कि हमें आंदोलन करना है। अब उस आंदोलन में हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक जनरेशन है तो वो सब एक जैसा ही सोचते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कोई एक जनरेशन है तो उसकी एक ही विचारधारा है। हर एक जनरेशन में भांति भांति के लोग होते हैं, हमको यह समझना पड़ेगा। जो कि आज हमें
1: पेपर लीक पर गुस्सा आता है कि नहीं?
2: ऑफकोर्स
1: आता है।
2: ABVP ने
1: तो किस पर गुस्सा निकालते हैं?
2: बिल्कुल सरकार पे निकालना चाहिए। एबीवीपी ने इस बार वो तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। एबीवीपी ने इस बार हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी पारित किया प्रस्ताव कि जितने पेपर लीक हो रहे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, और उसका आंदोलन खड़ा हुआ, उसका हमने देखा क्या परिणाम हुआ। पर मैं ये कह रहा हूं कि हम आशावान हैं, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं भारतीय युवा से, ये कभी बांग्लादेश नेपाल नहीं बन सकता, कि भारत में दायित्व बोध पे हमेशा बात होती है, हम ऋणों की बात करते हैं, तो भारत का जो युवा है वो ना केवल सिस्टम के बाहर बैठ के हम ये बात करेंगे कि ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, कैसे बदले वो नहीं पता, तो अनार्की की दिशा में नहीं जाते हुए वो पॉलिसी क्या होगी जिससे परिवर्तन आएगा, उस डिबेट में अब हम
1: क्या मोहित जेंजी इस डिबेट में भी है कि क्या क्या सोल्यूशन निकालना है, कैसे निकालना है?
3: जी बिल्कुल,
2: मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही गलत है, बिकॉज जेन जी इज नॉट अ होमोजेनस ग्रुप। नो जनरेशन, कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं होती है जो एक रूप होती है। हर जनरेशन में भांति भांति के लोग होते हैं। उदाहरण के लिए कॉकरोचेज में से ही 2-3 लोगों ने यह बोला, उनके मुखियाओं ने, कि उस प्रदर्शन में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप उसको किसी जनरेशन में बांध के नहीं देख सकते हैं कि इस जनरेशन का, बस 1997 जनवरी 1 को कोई पैदा हो गया तो वो अलग होगा, और 1996 31 दिसंबर को कोई पैदा हो गया तो वो बिल्कुल अलग इंसान होगा। मतलब बात करने को हम ये बात कर सकते हैं, परंतु इसका कोई तार्किक कुछ आधार नहीं दिखता है।
1: आपको क्या लगता है?
3: पहले तो मैं आपने जो पहले बात की थी, मोहन भगवत जी ने एक मीटिंग की जेन जी के साथ, उस पर बात करना चाहता हूँ कि यूथ के साथ क्लॉक इट करके, या प्रधानमंत्री मोदी रात के 12 बजे रील बना के, अच्छी अच्छी रील्स बना के, वो जेन जी नहीं बन जाएंगे। जो जेन जी है, जो यूथ है, उसका एक टेम्परामेंट होता है कि वो एक तो इंक्लूसिव है, ये जो पूरी जनरेशन है बहुत इंक्लूसिव है, जो कि RSS BJP नहीं है, वो सोशल इंक्लूसिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव है। लेकिन जेन जी जो है वो प्रोग्रेसिव है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करते हैं, जो कि RSS की विचारधारा के, आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। और सुधांशु जी ने कुछ बातें की, बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया, वो उस वक्त बरतानवी हुकूमत के खिलाफ थे, अगर आज होते तो वो आरएसएस बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ होते, क्योंकि उस वक्त गोरों की सरकार थी। आज जो सरकार है वो चोरों की सरकार है, चाहे वो वोट चोरी करती हो, चाहे पेपर लीक करती हो। और जिस तरह
4: व्यवस्था से क्या मतलब है?
3: अरे बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था से
4: इशू नहीं है,
3: अगर वोट चोरी करके सरकार आती है तो वही
4: ठीक है। ये कांग्रेस का इशू है, ये छात्र का
3: कांग्रेस का इशू नहीं है,
4: इससे बहुत साफ समझ में आ जाता है।
3: एजुकेशन को आप कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते, एजुकेशन वोट एम्प्लॉयमेंट
4: से कोई कनेक्शन नहीं,
3: बहुत कनेक्शन है।
4: एक राजनीतिक
0: क्या वोट नहीं देता है,
4: ये बताइए। नीट एंट्रेंस का सो कॉल्ड वोट चोरी से कनेक्शन बताइए मुझे, साइंटिफिक आधार पर बिल्कुल पक्का बताइए।
3: मेरी पंजाब में वोट है, वहां पे ऐसा ही चल रहा है। अगर मान लीजिए अगले साल हमारी वहां पे इलेक्शन में वोट ना मैं दे पाऊं तो मेरा रिप्रेजेंटेशन कहाँ रहेगा?
4: उसका तो है ऑल ओवर इंडिया, जहां आप रहेंगे वहां इलेक्शन 15 दिन पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
3: जिस तरह से वोट चोरी हो रही है ना, उसका है असर।
4: लॉजिकल बताइए, वोट चोरी का आधार बताइए।
3: जो
4: लाखों में एक हजार भी एप्लीकेशन नहीं आती है,
3: पॉलिसीज कहाँ से बनती है? पार्लियामेंट से नहीं बनती क्या?
2: मैं एक बात,
3: जो पेपर लीक होते हैं वो कहाँ से होते हैं?
2: आप कौन से संगठन से हैं?
3: ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से।
4: तो समझ में आ गया ना,
3: तो मेरे और भी कुछ सवाल के जवाब थे, मैं बात कर रहा था जरा।
2: एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक
4: पूरी बात।
3: और आपने बोला कि जीडीपी 14 से पहले कितनी थी, अब कितनी होगी?
4: मैंने नहीं बोला भाई,
3: आपने कहा।
4: मैंने जीडीपी बोला ही नहीं भाई, आप लगता है वो लिख के आए पहले। मैंने कोई जाके ड्रैग नहीं,
3: मैंने अभी भी लिखा
4: मैंने स्टूडेंट सुसाइड भी नहीं बोला,
3: मैं ये बोला।
4: मेरा वर्ड ही नहीं आया।
3: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है,
0: स्टूडेंट सुसाइड से
3: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि एक साल में जो स्टूडेंट सुसाइड होते थे 2014 में वो 8,000 था आंकड़ा, 2024 की लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट है वो है 14,000। तो ये जो 6,000 का इजाफा हुआ है ये इन 10 सालों में हुआ है, तो ये भी एक चीज देखने वाली है। दूसरा, आपने नीट के ऊपर बात की कि तमिलनाडु में से आपने ये इल्जाम लगाया कि जो लोग नीट के खिलाफ कर आ रहे हैं वो लोग हैं जिनके पहले बच्चे पैसे देके एडमिशन लेते थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस राजन
4: मालिक,
3: हाँ माल ठीक है, तो जस्टिस राजन की कमेटी की रिपोर्ट देख लेना आप, उसको पता चल जाएगा किस तरह से जो सोशल पहले इक्वालिटी थी ना, जो स्टेट बेस्ड एग्जाम होते थे उनके थ्रू होते थे, उसमें क्या था कि जो उस सोशल बैकवर्ड स्टूडेंट थे जिस तरह से उनको एडमिशन मिल पाता था वो अब नहीं मिल पाता, जिस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को मिल पाता था वो अब नहीं मिल पाता। सेंट्रलाइज एग्जाम्स का बहुत फायदे हुए हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये भी है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर सोशल सेक्टर से ही स्टूडेंट आ पा रहे हैं।
1: और
3: एक और भी, नीट के आने के बाद कोचिंग माफिया कितना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस कितनी उतनी होती है, 2 लाख 2.5 लाख, क्या ये सोशल बैकवर्ड स्टूडेंट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या एक साल का ड्रॉप सोशल बैकवर्ड स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं? जिन लड़कियों के सर पे तलवार लटकी रहती है कि एक साल में अगर नीट क्लियर नहीं होगा तो आपकी शादी करवा दी जाएगी, जिन बच्चों के मतलब जिन लड़कियों के सर पे तलवार लटकी रहती है कि बेटा दिन में तुम दिहाड़ी मजदूरी करो और रात में तैयारी करो, या दिन में तैयारी करो तो रात में स्विगी जोमेटो में काम करो, क्या वो लोग कर सकते हैं?
1: ठीक है,
4: प्रिविलेज है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मगर यहीं पे मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने अच्छी बात कही, 2-3 लाख रुपए देना पड़ता है कोचिंग में, तो गरीब वर्ग का बच्चा कैसे दे पाएगा? पर इन्होंने कहा कि साहब नीट से पहले सोशल इंक्लूजन होता था, मतलब 25 लाख 50 लाख डोनेशन दे सकता है। अरे वो कैसे मान सकते हैं गरीब बच्चा दे सकता है 1-1 करोड़ का डोनेशन? और उन्होंने कहा कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और वो जो जो बच्चे बैकवर्ड क्लासेस, अरे वो तो 13 लैंग्वेजेस में अब शुरू हुआ है तो वो सब बच्चे आ पाए गाँव वाले, वरना पहले वो सिर्फ अंग्रेजी तो वो आ ही नहीं सकते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जो भी बात हो बिल्कुल लॉजिकल होनी चाहिए। और अगर आप देखें जो आपने बात कही साइंटिफिक वाली बात, अच्छा ये बताइए, पेपर के ऊपर चर्चा हो रही थी, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, कोई जाकर राहुल गांधी की स्पीच देख ले, एक बार भी कोई क्लॉज का उल्लेख ही नहीं किया कि मुझे इस बिल के इस क्लॉज के इस सेक्शन पे आपत्ति है और मेरे हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, अननेसेसरी गोमूत्र आ गया बीच में, इसका नीट परीक्षा से क्या लेना देना था? और उसका भी मैंने साइंटिफिक जवाब दिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जब आप बात करें, आपके मुंह से अनायास निकला, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बात हो रही परीक्षा की और बात आ गई सो कॉल्ड वोट चोरी पे, और फिर जब रीजनिंग की बात हो तो देखिए कितनी जबरदस्त है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हार जाते हैं मगर हम सब मैनेज करके रखते हैं, हम 2024 का चुनाव हार जाते हैं, प्रधानमंत्री जी की लीड कम हो जाती है, हम सब मैनेज करके रखते हैं। और कितना जबरदस्त मैनेजमेंट है कि देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता, हरियाणा गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड गड़बड़ करता है, राजस्थान में 2018 में सही करता 23 में गड़बड़ कर देता है, मध्य प्रदेश में 18 में सही था 23 में गड़बड़ था, यूपी में दो बार से गड़बड़ कर रहा है, अब आइए बंगाल में अभी तक ठीक था इस बार गड़बड़ कर दिया, अब
1: आइए तेलंगाना
4: सही काम करता है, कर्नाटक सही काम करता है, केरल सही काम करता है, आंध्रा सही काम करता है, आसाम में गड़बड़ कर देता है।
3: जो रिसर्च पे सेमिनार होते हैं वो बंद करवा के 5 दिन का गौ रक्षा के ऊपर सेमिनार होता है।
5: विद्यार्थी जी,
3: तो ऐसे इसलिए इसी वजह से ना ये इन चीजों पे बात करना जरूरी है, क्योंकि
5: लॉजिकल बात की है। पहली बात, रुक जाओ भाई,
2: छात्रों में संवाद होना
1: चाहिए।
2: फर्स्ट पॉइंट कि जब कोई मार्क्सवादी साइंस की बात करता है वो वैसा ही है जैसे कोई कांग्रेसी भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। मार्क्सिज्म इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक थॉट ऑफ ऑल टाइम। माओ के समय में, माओ के समय में जितनी हत्याएं हुई थी वो सब साइंस के नाम पे हुई थी। स्टालिनवाद के समय जितनी हत्याएं हुई सब साइंस के नाम पे हुई थी। सब चीजें साइंस के नाम पे हुई, तो पहली बात तो मार्क्सवादियों को साइंस के ऊपर तो बोलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, नीट से पहले जो एग्जाम्स होते थे जो स्टेट्स में अलग अलग होते थे, आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछिए जो उस समय बैठा था, लोग रात को कहीं जाते थे, वहां पे बस का भाड़ा खर्च करके वहां होटल रहते थे, वहां एग्जाम देते थे, अगले दिन कहीं और की टिकट कराते थे दूसरी स्टेट में जाने के लिए, वहां जाकर एग्जाम थे, तीसरे दिन अगले स्टेशन कराते थे, वो कौन गरीब बच्चा कर पाता है। तीसरी बात, सीयूईटी आने से पहले हम देख रहे हैं, मैं जेएनयू में चुनाव लड़ा हूं, मैं छात्र नेता हूं, मैं एबीपी का रिसर्च का काम देखता हूं, पूरे देश में मेरा प्रवास होता है। दूसरी बात, नीट से पहले जो एग्जाम्स होते थे जो स्टेट्स में अलग अलग होते थे, आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछिए जो उस समय बैठा था, लोग रात को कहीं जाते थे, वहां पे बस का भाड़ा खर्च करके वहां होटल रहते थे, वहां एग्जाम देते थे, अगले दिन कहीं और की टिकट कराते थे दूसरी स्टेट में जाने के लिए, वहां जाकर एग्जाम थे, तीसरे दिन अगले स्टेशन कराते थे, वो कौन गरीब बच्चा कर पाता है। तीसरी बात, सीयूईटी आने से पहले हम देख रहे हैं, मैं जेएनयू में चुनाव लड़ा हूं, मैं छात्र नेता हूं, मैं एबीपी का रिसर्च का काम देखता हूं, पूरे देश में मेरा प्रवास होता है। गैर अंग्रेजी भाषी बैकग्राउंड के पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स जितना अब विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं उतना कभी भी नहीं कर रहे थे।
0: सीटें जो पहले समझ होती थी वो सीटें नहीं समझ जाइए, वह दिल्ली विश्वविद्यालय का भी डेटा,
2: जहां तक
0: वह आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी डेटा
2: है, जहां तक
0: और जो ये बात कर रहे हैं,
2: जहां तक
0: आपके इतिहास पे आते हैं जानते हैं आप,
1: जहां तक पूरा कीजिए, फिर आप शुरू कीजिए जल्दी,
2: जहां तक
1: एक लाइन में पूरा कीजिए,
2: जहां तक बात है कि हमें नीति के स्तर पे को कमियां दिख रही है तो स्वाभाविक रूप से हम उस पर काम करना चाहिए, हमें उस पर आवाज उठानी चाहिए, परंतु कोई वामपंथी आके शिक्षा पे भाषण दे, मुझे लगता है उससे बड़ी विडंबना तो कोई हो ही नहीं सकती।
0: ये जो एनईटी की बात हो रही है, जो एनईटी की बात हो रही है, एफवाई यूपी इन्हीं की सरकार द्वारा लाया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र उसको भुगत रहा है। एक दूसरा यह चीज है कि बिना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर,
2: बताइए
0: नाम नहीं, 2000 छात्रों की सूची है, इसे अभी ग्रुप दिखाऊंगा, अभी मैं ग्रुप दिखाऊंगा, दूसरा यह चीज है, अभी दिखा दूंगा। अरे ऐसे नहीं, अब आई बात है, हम नहीं करते, हो सकता है आप करें। एक दूसरा चीज है कि इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में आप,
2: मेरे पास 3000 छात्रों की,
0: एक बार मैं बोल दूं,
2: नहीं मेरे पास 3000 के, मैं ग्रुप दिखाऊंगा।
0: अरे इसी एफवाई यूपी में यदि मुझे हिस्ट्री का ऑनर्स करना है, उसमें हमें ये बताएंगे कि योगा पढ़ो, आर्ट्स ऑफ लिविंग पढ़ो, जीवन कैसे जीते हैं उसके बारे में पढ़ो, विकसित भारत पढ़ो। यदि अगले व्यक्ति को पीएचडी मास्टर्स करना है हिस्ट्री में, तो इन चीजों का क्या, एक दूसरा यह चीज है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चीजें लाए, और कौन प्रोफेसर पढ़ाएगा, वही हिस्ट्री का प्रोफेसर योगा भी पढ़ा देगा, वही हिस्ट्री का प्रोफेसर आपको बता देगा कि आर्ट्स ऑफ लिविंग। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जो है क्या वह चूहे का लेबोरेटरी का चूहा है क्या, कि लगातार उस पर नए नए आप प्रयोग करेंगे। एक इतिहास की बात हो रही है, वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जिसका निर्माण आप जानते हैं कैसे हुआ, महात्मा गांधी जी की जब हत्या नथुराम गोडसे किया, उसके बाद स्वयं सेवक अधिकतर युवक थे, जब स्वयं सेवक जब जाते थे शाखा में तो गांव वाले दौड़ा लेते थे मारने के लिए,
2: ये भी मैसेज आया है
0: ट्रोजन हॉर्स के तौर पर, ये भी निर्माण
2: मुझे लगता है
0: कि चर्चा की बात करते हैं,
2: मुझे
5: लड़िएगा जरा, हमें सुधांशु जी का जरा, सुधांशु जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि अब जो है डोनेशन नहीं चलता है और फी स्ट्रक्चर भी बहुत सस्ता हो गया, आप तो 2-3 हजार रुपए में ही एडमिशन मेडिकल वाले का जो बच्चे होते हैं उसका हो जाता है। सुधांशु जी आपकी पार्टी
4: हजार तो नहीं बोला, मान लीजिए मैंने कहा 25 लाख से 1 करोड़ का डोनेशन नहीं
5: कम, अच्छा फी लेकिन बहुत कम हो गया है,
4: फीस जो है वो है वो तो
5: सुधांशु जी आप ही बताइए, आपकी पार्टी मंगल ग्रह पर भी है आजकल, वहां के प्रभारी आप हो गए हैं क्या,
4: क्यों
5: भाजपा
4: आप बताइए, नहीं इसका तर्क
5: तो ये तर्क इसलिए कह रहा हूं कि आज भी डोनेशन का हाल प्राइवेट

0: इंस्टीट्यूशन जो है मेडिकल कॉलेजेज उसका जाकर
1: अरे मुझे बताइए डोनेशन वाले कॉलेज आपके नेताओं जुड़े हुए कि नहीं जुड़े स्ट्रक्चर है मैं तमिलनाडु में एक भाजपा नेता का होता
0: सबसे ज्यादा है अब
2: दूसरी बात हम लोग 13 दिन भूख हड़ताल पर मार करके लाठी जेल में डाल दिया
0: अगले 2 मिनट दूसरी बात इन्होंने कहा वोट चोरी से संबंध नहीं है अरे भैया जब वोट चोरी करके सरकार बनाओगे तो जनता और छात्र की क्या जरूरत है आपको उसके वोट की जरूरत नहीं है तभी तो उसे संवाद नहीं कर रहे थे
2: तो
0: धर्मिता अपने अपना रहे थे पहले गन तक छात्रों पर चलाया इसलिए क्योंकि वोट चोरी नहीं
3: समय समाप्त हो रहा है सिर्फ दो दो लाइन का कमेंट सबसे
0: आप नफरत हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद कीजिए छात्रों का सुधार का मामला है शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार होगा कैलेंडर हो एग्जामिनेशन का इस पर ध्यान दीजिए फी स्ट्रक्चर कम हो और प्राइवेट सेक्टर के बदले पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेज और स्कूल जैसे आपने 1,00,000 बंद किए उसको फिर से शुरू कीजिए यह डिमांड है इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया आप लोगों ने और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को तो आने की हिम्मत नहीं आते तब सुनते
1: अभी
0: सुनने ही नहीं देते वापस बोलने देते
1: हम लोग वापस घूम करके वही हो गया बैक टू स्क्वायर वन तेरा छात्र मेरा छात्र
0: नहीं नहीं
1: होना चाहिए यहां पर होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बात करेंगे तो उनके भविष्य की बात करेंगे परीक्षा सुधार की बात करेंगे और छात्रों के अधिकार की बात करेंगे। यहां पर एक भी विमर्श छात्रों के अधिकार को नहीं हुआ है। अभी जो भी नीट की परीक्षा ये पेपर लीक के बाद जो भी हुई वो सरकार की तरफ से हुई कि हमने सद्भावना में किया ये कानूनी बाध्यता होनी चाहिए इस पर कोई विचार किसी का नहीं आया। मैंने संसद में भी कहा है कि कम से कम इसमें चार ऐसे अधिकार हो जहां पर छात्रों में कोई भी ऐसा पेपर लीक भविष्य में हो तो आप 30 दिन की बाध्यता रखिए कि फिर से वो टेस्ट होगा कैसे छात्र का वो साल सुरक्षित रहेगा दाखिले का कैलेंडर ठीक रहेगा और छात्रों को परीक्षा देने के लिए आने जाने के लिए
3: पूरी दो लाइन का जवाब
1: अधिकार की बात जब करनी थी इस विमर्श में हम नहीं आए तेरा छात्र मेरा छात्र हो गया ये कहीं से छात्रों के भविष्य में नहीं है।
2: एआईएसएफ ने इस प्रोटेस्ट से पहले भी और अब बाद में भी हमारी वही डिमांड्स हैं कि फ्री एजुकेशन एक्सेसिबल एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन फॉर ऑल और ये डिमांड्स हम बहुत पहले से कर रहे हैं। और एक बात मैं और कह दूं इन्होंने अभी बात की थी एबीवीपी के साथी ने कि वामपंथी साथी साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात ना करें तो मैं कह दूं कि हमारे लोग हमेशा से साइंटिफिक टेम्परामेंट बात करते हैं लेकिन वो जो हिटलर और मुसोलिनी के फॉलोअर्स हैं वो ना करें जो माफी वीर के सावरकर के फॉलोअर्स हैं
4: रात में 11 बजे मोदी जी आते हैं इंस्टा पे और बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स और डॉग विसलिंग करने का काम करते हैं क्या कि उन छात्रों छात्राओं को बोलते हैं कि हम माफ कर दिए छात्रों को माफ कर दिए और इनके जो गुर्गे हैं जो जिनको या इंस्टा पे ट्विटर पर फॉलो करते हैं उन छात्राओं को महिलाओं को गाली देने का काम करते हैं और जाकर इनकी पुलिस प्रताड़ित करती है तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। डॉग विसलिंग करना बंद करें।
5: विद्यार्थी परिषद आशावान है कि आने वाले समय में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आंदोलन हो रहे हैं ये सकारात्मक दिशा लेंगे और छात्र जो है वो नीति
4: ट्विटर पर फॉलो करते हैं उन छात्राओं को महिलाओं को गाली देने का काम करते हैं और जाकर इनकी पुलिस प्रताड़ित करती है तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। डॉग विसलिंग करना बंद करें।
5: विद्यार्थी परिषद आशावान है कि आने वाले समय में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आंदोलन हो रहे हैं ये सकारात्मक दिशा लेंगे और छात्र जो है वो नीति निर्धारण में एक सकारात्मक अपना योगदान भी देगा और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में जो है हम जो है छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स।
0: यदि शिक्षा व्यवस्था में वाकई सुधार आप चाहते हैं तो एनईपी जो बना है मैं प्रोफेसर भी हूं साथ में पढ़ाता भी हूं और पढ़ता भी हूं बच्चों के बीच बच्चों की समस्या रियल है कि उनको टाइम पर उनका सिर्फ न कैलेंडर है ना एक परीक्षा का कैलेंडर है न्यायिक सिस्टम हो एनटीए जो आपने बनाया है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनजीओ बना दिया है उसको खत्म कीजिए और जिम्मेवार व्यक्ति को उसमें रखिए। पूरी व्यवस्था में यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसको सख्त से सख्त
3: ये जो पीढ़ी है ना सुधांशु जी इसने आप ही को देखा है 12 साल से आपको देखा है तो बार बार क्या कांग्रेस में हुआ ये याद दिलाने से नहीं होगा आपकी परफॉर्मेंस को ये जनरेशन आंक रहा है।
6: हाँ तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जो आपके सरोकार हैं उनको उठाइए प्रबलता से उठाइए पुरजोर विरोध के साथ उठाइए सरकार स्वागत करने को तैयार है मगर यह भी ध्यान रखिए जैसा कि अभी एक बच्चे ने बोला यह भी ध्यान रखिए यह सच है कि भारत इस समय वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज में सबसे हाई फास्टेस्ट ग्रोथ से बढ़ रही है। इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर एक्सपोर्ट में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी शक्तियों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो आपके आंदोलन की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे तो इसे मैं कहना चाहूंगा मोदी जी जिस परिस्थिति में लेके जा रहे हैं ये भी सावधानी रखिए जो पुराना गीत है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के
3: और आप बीजेपी से संभाल पेपर लीक रोकना ये आप चूंकि आप सरकार है तो उसमें एक लाइन उसमें भी कर लीजिए कि बच्चों को संभाल के रखना, पेपर लीक रोकना, क्योंकि ये अगर घी नहीं होता तो ये आंदोलन में इस तरह से तमाम जेंजी नहीं पहुंचते। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर यार
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
4: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का. और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं.
5: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना. ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा. PNB, मेरा अपना बैंक.
6: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं. बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा.
7: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।
3: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। IIT की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने IIT के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
2: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत की एक पोस्ट ने हलचल तेज कर दी है। ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ट्वीट पर जमीन खरीदने में हो रही परेशानी की बात कर दी और उसके बाद से मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया।
4: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के CM से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद CM पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
5: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
4: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी, आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था आज तक। ब्यूरो
2: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात, अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक, विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज, कहा युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसा, बोले दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की, रिजिजू बोले उन्हें जाना चाहिए था रांची। रांची में सरकार और छात्रों के बीच कल तीसरे दौर की बातचीत, अब तक की वार्ता बेनतीजा, प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा मांग पूरी नहीं तो विधानसभा घेरेंगे। 10 अगस्त को पीएम मोदी से मिलेंगे शरद गुट के सभी 8 सांसद, सुप्रिया सुले ने कहा महाराष्ट्र में सांसदों को नहीं मिल रहा है फंड, मांगा था औपचारिक समय। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल, एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आपका स्वागत है वॉर रूम में। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों पाकिस्तान से लेकर यूरोप और पश्चिम एशिया तक गहरा रहे हैं महासंकट के बादल, कैसे हक की मांग के बदले गोलियां कत्लेआम पाकिस्तान का निजाम बन गया है, क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बदहाली और बगावत को रोकने के लिए इस्लामाबाद में सेना खामोशी से तख्ता पलट भी कर सकती है, दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान से बातचीत की कोशिशें जारी हैं, वहीं रेड सी में हूथी विद्रोहियों के हमले एक नए संकट को न्योता दे रहे हैं। उधर रूस और यूक्रेन की जंग अब पूरी तरह आसमान की खतरनाक लड़ाई बन चुकी है, जहां भीषण हवाई हमले शहर के शहर तबाह कर रहे हैं। दुनिया के इन चारों सुलगते मोर्चों की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग।
1: महंगाई की मार से दहल गया है पाकिस्तान और वहाँ के जो लोग हैं वो पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ खासकर कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में सड़कों पर उतरे हैं। हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं। जमात इस्लामी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, देशव्यापी आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम दिया है।
0: अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहाँ सरकार और पाकिस्तानी सेना मिलकर आवाम की आवाज को दबाने में लगी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। लोगों की मांग सिर्फ एक, बिजली, सड़क, पानी, जमहूरियत में सही प्रतिनिधित्व मिले। इन्हीं बुनियादी अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे लोगों को गोलियां मिल रही हैं। पीस कमिटी में आतंकियों की जगह बता रही है कि शांति के लिए शरीफ और मुनीर कितने चिंतित हैं। उधर मोहसिन नकवी बता ही चुके हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं। दूसरी ओर तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के एक साल पूरे होने पर उनकी पार्टी पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बड़े आंदोलन और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा होना तय है।

0: परेशान नहीं चाहते, लिहाजा आप पीछे हट जाओ।
1: POJK, जिसे दुनिया गुलाम कश्मीर के नाम से भी जानती है, इस पर आज भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, पिछले कई महीने से जल रहा है।
2: क्या जुल्म हो सकता है?
3: लगातार फायरिंग जारी है।
1: पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों ही इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अपना दमन चक्र चला रही है। हक और आजादी की मांग कर रही बेकसूर जनता को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने खूनी खेल शुरू कर दिया। हालात ये है कि POJK में पाक सेना ने पूर्ण नाकाबंदी लगा दी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गई। इन हमलों में करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
4: पिछले 3-4 दिनों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे शहादतें हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथियों को जख्मी किया गया है। पीसफुल प्रोटेस्टर पे अंधाधुंध फायरिंग की गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में यह शहादतें हुई। और इसी तरह मुजफ्फराबाद के अंदर भी
5: दोस्तों हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। अब कोई हया कर लो, जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं। 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो बगैर।
1: जब विदेशी मीडिया ने ये दिखाया कि POJK के लोगों ने चुनावों का बायकॉट कर दिया है, तो पाकिस्तान ने कई चैनलों को ही बैन कर दिया। हर बार की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी POJK में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भारत पर इल्जाम लगा दिया है। शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह अब टीवी पर आकर भारत विरोधी चूरन बेच रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का काम।
6: अब उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
1: लेकिन पाकिस्तान के इस दावे की हवा खुद भारत के विदेश मंत्रालय ने निकाल दी है।
7: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य उसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: POJK को लेकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है। POJK भारत का अभिन्न अंग है, जो आज नहीं तो कल भारत के पास होगा फिर से। ये बात पाकिस्तान में बैठी ISI, पाक सेना और वहां की हुकूमत को बेहतर मालूम है। पाकिस्तान में गंभीर प्रशासनिक विफलताओं, राजनीतिक खींचतान और प्रांतों के साथ साथ POJK में बढ़ते नागरिक असंतोष के बीच तख्ता पलट की खामोश चहलकदमी बयानों के जरिए सुनी जा सकती है। बस इस बार की तानाशाही में यह फर्क है कि पारंपरिक मार्शल लॉ लागू करने के बजाय पाकिस्तानी सेना ने नागरिक प्रशासन पर पूरी तरह से अपना अप्रत्यक्ष और कड़ा नियंत्रण बना लिया है।

0: दुनिया में हर देश का अपना एक राष्ट्रीय खेल है, शायद पाकिस्तान के मामले में ये तख्ता पलट है। अलग पहचान के नाम पर बने इस देश की अब पहचान ही तानाशाही, अफरा तफरी, चरमराता सिस्टम और कट्टरपंथी विचारधारा बन गई।
1: पाकिस्तानी कौम हर कुर्बानी के लिए तैयार है।
0: POJK गुलाम जम्मू कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक, खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान के पंजाब तक और पंजाब से सिंध तक, हर जगह बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अब इस्लामाबाद के हुकूमत के गलियारों में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी मिलकर शहबाज शरीफ की सरकार की जड़ें खोदने में लगे हैं। उनके बयान तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं।
2: आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने।
0: पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो पाक आर्मी चीफ की दया पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान का 70 साल पुराना सिस्टम सड़ चुका है।
3: और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिजल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए, ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निजाम है वो तबाह है, बिकॉज अदरवाइज अगर सदाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करना, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। बात यह है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें, तो एक 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। सब मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे, शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वजीर आजम अपना टाइम पूरा करेंगे।
0: वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम हाइब्रिड मॉडल से पाकिस्तान चलाने की वकालत कर रहे हैं।
4: ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये चीजें पॉसिबल करेगा, ये मुमकिनात में ये चीजें हाइब्रिड सिस्टम के जरिए आएंगी। ये PMLN या मैं या शहबाज शरीफ या कोई बंदा इसको अकेला सॉल्व नहीं करेगा। ये हाइब्रिड सिस्टम की सक्सेस, द ग्रेटेस्ट सक्सेस जो होगी ये होगी कि इस मुल्क में एक रोबस्ट सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का हो, इसमें जो है वो सूबे जो है वो मल्टीपल जो है उनकी मल्टीप्लाई करें, ज्यादा हो, 15 हो, 12 हो, 20 हो, जितने भी हो, ये तो कंसेंसस से होगा ना। ये एक्सरसाइज इमीडिएटली शुरू हो जानी चाहिए और ये 4-5 महीने के अंदर ये एक्सरसाइज जो है ना ये खत्म हो जानी चाहिए। फिर ये जो एक नया निजाम आएगा जिसके अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना एक वेट रखेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना वेट रखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिवली।
0: आजादी के नारों, चलती गोलियां, मारे जाते लोगों और इस सब के बीच तख्ता पलट का मंडराता खतरा। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अंदर ही अंदर जल रहा है या पाक फौज के द्वारा जलाया जा रहा है। नफरत की पहचान से पैदा हुआ ये मुल्क एक फेल्ड स्टेट बनने की राह पर है। पाकिस्तान का हर सूबा जल रहा है। पंजाब सूबे में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कराने के लिए समर्थकों की पुलिस और फौज से भीषण जंग छिड़ी हुई। बलूचिस्तान प्रांत में आजादी का सशस्त्र रण छिड़ा हुआ है। बलूच लोगों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में TTP पाकिस्तान फौज पर सिलसिलेवार हमलों को अंजाम दे रही है। सिंध, जहां पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है, वहां भी महंगाई ने भुखमरी के हालात पैदा कर दिए हैं। पाक के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बयान बता रहे हैं कि पाक आर्मी के बूटों के नीचे हुकूमत का चेहरा है, लेकिन आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द अब भी इमरान खान ही है। इमरान की पार्टी PTI ने अब हुकूमत के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है।
5: मेरे मेरे नौजवानों आज नौजवानों उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो तो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
0: लेकिन 27 सितंबर की तारीख पर इमरान खान का परिवार ही नाराज हो गया। कारण बताया गया कि इमरान खान को जानबूझकर जेल में रखने की साजिश हो रही है।
6: आपसे मैडम कोई मिशान रखनी की गई थी इस हवाले से
7: डिस्कस करते हुए?
0: एक तरफ सड़कों पर समर्थकों का खून बह रहा है, दूसरी तरफ देश का गृह मंत्री खुद टीवी पर आकर कबूल कर रहा है कि सिस्टम सड़ चुका है। तो ये मान लेने में कोई शक नहीं बचता कि इस नाकाम मुल्क की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। पीओजेके में जो हालात हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी इस समय जुड़ रहे हैं। अशरफ, वहां जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो इतने दिनों से हम देख रहे हैं, वहां पर कैसे दमन उसका किया जा रहा है वो हम देख रहे हैं, पर प्रदर्शन से जो हालात पैदा हुए हैं और उसको दबाने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान ने बर्बरता से कार्रवाई की है, उसे क्या सिर्फ कानून व्यवस्था का संकट माना जाए या पाकिस्तान के भीतर जो राजनीतिक और सुरक्षा संकट गहरा रहा है उसे भी हम देखें? अशरफ,
8: बिल्कुल श्वेता, दरअसल गहराता राजनीतिक और सुरक्षा संकट है पाकिस्तान के लिए। कहीं से बाय हुक और क्रूक उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव तो करा लिए, लेकिन जिस अंदाज से उन चुनावों का बहिष्कार न सिर्फ जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ ही महीने पहले एक समूह बना है उसने उसका बहिष्कार किया, हिंसा हुई और साथ ही साथ प्रमुख जो राजनीतिक दल पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसने भी इस चुनाव से बहिष्कार किया था। लेकिन उससे ज़्यादा जो है राजनीतिक संकट से ज़्यादा सुरक्षा का संकट इसलिए है क्योंकि नियंत्रण रेखा से पूरा पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर जो है वो पड़ता है।
0: पर अशरफ, एक और चीज़, इतने दिनों से पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, अव्वल तो वो एक कोशिश करता था कि खबरें बाहर नहीं निकलें, लेकिन अब उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बेकाबू हो रही है स्थिति वहां पर। तो पाकिस्तान क्या चाहता है? क्या वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके विरोध की हर आवाज को दबाएगा या पीओजेके के इलाकों में अपना नियंत्रण वो हर कीमत पर बनाए रखना चाहता है और इसी की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा है?
8: बिल्कुल श्वेता, दरअसल ये कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो सुरक्षा के एतबार से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर अपनी गिरफ्त बनाए रखे यानी अपनी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर मजबूत रखे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि नियंत्रण रेखा पूरी तरह से जो भारत से लगती है वो ही एक रास्ता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर में और देश में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान को, बल्कि साथ ही साथ उनको भी ये पता है कि खासतौर से अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें वहीं पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही पाकिस्तानी सेना को जो है सबसे बड़े हमलों का जो है झेलना पड़ा था जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की तरफ से किए गए थे, तो वहाँ पर तो हमेशा उनकी सेना और सुरक्षा की चौकसी रहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि अगर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग सेना के खिलाफ होते हैं या जिस अंदाज से उन्होंने आंदोलन के दौरान भारत से समर्थन मांगा था, भारत की मदद मांगी थी और यहाँ तक कि आरोप भी लगाया था पाकिस्तान ने कि भारत इस आंदोलन को हवा दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, लेकिन सुरक्षा के एतबार से काफ़ी मजबूत है ये अगर हम कहें पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए, क्योंकि उसी पर पाकिस्तान की चाहे राजनीति हो चाहे पाकिस्तान की सुरक्षा हो उसी कश्मीर के नाम पर वहाँ पर चलती है और वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ या सरकार के खिलाफ इस तरह का बड़ा आंदोलन चले।
0: अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि वही पाकिस्तान है जिसने, हमने देखा कि बालाकोट के बाद वो विदेशी पत्रकारों को वहां पर लेकर गया ताकि वो एक नैरेटिव बना सके, हालांकि वो आधा अधूरा और प्रायोजित नैरेटिव था, लेकिन अब विदेशी पत्रकारों के लिए उसने एनओसी अनिवार्य कर दिया है। ऐसे समय पर उसने ये क्यों किया, क्या वजह आप देख रहे हैं अशरफ इसके पीछे, और पाकिस्तान में प्रेस की आजादी पर बढ़ते दबाव का संकेत है?
8: بالکل شویتا، دراصل جس انداز سے پاکستانی قبضے والے کشمیر میں جو بڑا ہنسک آندولن پچھلے کئی ہفتوں سے اور خاص طور سے پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اس میں جس انداز سے لوگ مارے گئے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بربرتا ہوئی، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے پاکستان چاہتا تھا کہ وہ انتراشٹریہ میڈیا پر وہ تصویریں نہ آئے، وہ بات نہ آئے، لیکن ایک انتراشٹریہ نیٹورک الجزیرہ نے پاکستانی قبضے والے کشمیر کی ہنسا اور وہاں کی مارداڑ کی تصویریں جو ہیں وہ نہ صرف ٹیلی ویژن پہ دکھائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے ویب سائٹس پہ جو کہ کافی لوک پریہ ہے پورے ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ان کو دکھایا، اس سے کہیں نہ کہیں فضیحت پاکستان کی ہوئی اور اس پر جو ہے اس رپورٹ کو دیکھ کر انتراشٹریہ مانو ادھیکار کے جو سنگٹھن ہیں انہوں نے سوال پاکستانی سینا اور پاکستانی پولیس اور ادھیکار کے جو سنگٹھن ہیں انہوں نے سوال پاکستانی سینا اور پاکستانی پولیس اور سرکار پر کھڑے کیے، یہی کارن ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب این او سی جو ہے انتراشٹریہ پترکاروں کو پاکستان میں حاصل کرنی ہوگی۔
7: بہت شکریہ اشرف وانی اس پوری جانکاری کے لیے۔ ایک بریک کے لیے ہم یہاں پر رک رہے ہیں، بریک کے بعد ایران لیے چلیں گے، آپ کو دکھائیں گے وہاں کیوں شروع ہو چکی ہے اندرونی کلہ۔ آپ بنے رہیے وار روم میں، دیکھتے رہیے آج تک۔
9: پریزنٹڈ بائی پتنجلی گائے کا گھی، لگائیں سواد اور صحت کا تڑکا، ہر ماں کا بھروسہ، پیار سے پروس، ان ایسوسیشن وتھ
10: بھارت کی اپنی الیکٹرک سواری سوکوڈو۔

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर गिर। करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
7: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: पापा
10: सॉरी यार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
12: चार्ज हुआ यार।
13: ला बैट किसका है?
14: टाटा AIG है तो भरोसा है।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University.
18: In association with
19: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
20: 6000 करोड़ रुपए का AUM था, उसको बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ रुपए कर दिया।
21: हाँ, ऑलमोस्ट 2,00,000 करोड़। यस, मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया। एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल फंड। एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर। उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना। सिर्फ महीने के 1,50,000 की ऐसा ही 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में, आपके 10 करोड़, क्योंकि आपने वो पैसा डाला मार्केट में, उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर।
22: I have lived through all this, what I'm seeing. That's why I came here. Good concept. Happy that it happened.
23: Fantastic experience, and we were, I was looking forward to see what I saw.
24: We have also seen a very lot of ups and downs, and that's what is being portrayed very well in this documentary.
25: Best part, it is a perspective and narrative of the nation.
26: It's brought back old memories.
27: Very well presented, very well encapsulated. It's a nice capsule of India as told by India today.

दिल्ली एनसीआर में आसमान से बरसी आफत ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद तक कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं अस्पताल की सेवाएं ठप हो गईं, तो कहीं मंदिर परिसर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के साथ साथ घंटों लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली में लगातार हुई भारी बारिश के बाद एमबी रोड पर जलभराव ने वाहनों की रफ्तार रोक दी। ओखला मोड़ से खानपुर तक लंबा जाम लगा रहा।

कई जगह सड़क और नाले का फर्क मिट गया। उधर वाल्मीकि कॉलोनी में करीब 5 फीट तक पानी भर गया। बच्चों को घर पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जुगाड़ वाली नाव का सहारा लिया। ये तस्वीरें बारिश के असर की गंभीरता बयां करती हैं। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के आसपास बाढ़ जैसे हालात बन गए। मंदिर परिसर में पानी भर गया। वहीं सिविल अस्पताल के बेसमेंट में पानी घुसने से मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो गई। फरीदाबाद में हालात और भी खतरनाक हो गए। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में जलभराव के बीच एक फॉर्च्यूनर कार पानी में फंस गई। चालक कार के अंदर ही कैद हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक स्कूल बस भी पानी में फंस गई। नोएडा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हैं। सेक्टर 37 से सेक्टर 18 मार्ग समेत कई हिस्सों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रशासन पानी निकालने में जुटा है। बारिश ने एक बार फिर दिल्ली एनएसआर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़कों पर जलभराव, अस्पतालों में पानी और जानलेवा हालात, इन सब ने साफ कर दिया कि हर बारिश के साथ सिस्टम की तैयारियों की भी परीक्षा होती है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसा। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें जाना चाहिए था रांची। रांची में सरकार और छात्रों के बीच कल तीसरे दौर की बातचीत। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो विधानसभा घेरेंगे। 10 अगस्त को पीएम मोदी से मिलेंगे शरद गुट के सभी 8 सांसद। सुप्रिया सुले ने कहा, महाराष्ट्र में सांसदों को नहीं मिल रहा है फंड, मांगा था औपचारिक समय। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा।

0: आप देख रहे हैं वॉर रूम, जिस युद्ध की जीत के तराने तेहरान करीब एक महीने पहले ही गा चुका है, उसी युद्ध को वो अब तक क्यों लड़ रहा है? सवाल अमेरिका से भी यही है कि क्यों खुद को विजेता बताकर भी वो ईरान से बातचीत के लिए मीडिएटर खोजता घूम रहा है। कतर और अमेरिका के बयानों के बीच ईरान के साथ हॉर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने की बातचीत आगे बढ़ती दिख तो रही है, लेकिन ट्रंप की धमकियों की इन सब के बीच अपनी एक जगह है। इसी दौरान यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले तेज करने और सऊदी टैंकर को निशाना बनाने का दावा करते हुए तेल आपूर्ति रोकने की धमकी दी है। इस पूरे तनावपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम के बीच खुद ईरान के भीतर भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी वहां चल रही है।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान और ओमान नए शिपिंग रूट पर समझौते के बहुत करीब बताए जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराग्ची ने पुराना रूट खारिज करते हुए कहा कि स्ट्रेट को फिर से खोलना अमेरिका द्वारा किए गए उल्लंघन के मुआवजे और शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करेगा।

0: When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
1: अमेरिका और इसराइल के ईरान पर संयुक्त हमले के पीछे सबसे बड़ा तर्क था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह करना है, उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना है, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना और इन सब के साथ ही रिजीम चेंज करना। इन चारों मकसद में से सबसे पहले चौथे मकसद का पूरा होना जरूरी था, जिसका आंकलन अमेरिका और इसराइल शायद ठीक तरीके से कर नहीं पाए। 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा तो किया है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाए। इस्फान, नतांज और फोर्दो, जो कि ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने हैं, उन पर बमबारी के बाद भी संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स का आंकलन कहता है कि ईरान के पास अभी भी लगभग 970 पाउंड 60% तक संवर्धित यूरेनियम बचा हुआ है। ये मात्रा इतनी है कि अगर ईरान चाहे तो कुछ ही हफ्तों में 9 से 10 परमाणु बम तैयार कर सकता है। यानी वॉशिंगटन की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति तेहरान की न्यूक्लियर क्षमता को पूरी तरह ध्वस्त करने में नाकाम रही। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान को बातचीत के रास्ते पर लौटने के लिए धमकियां दे रहे हैं, लेकिन बात बनती हुई लग नहीं रही है।
2: ये जो लड़ाई है अमेरिका और ईरान के बीच में, ईरान ने इसको एस्मेटिक लड़ाई लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका और जो इसराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी ज्यादा थी, मगर इसराइल ने इसको बड़ी चतुराई से एस्मेटिक लड़ाई बनाया, और जिससे उसने दो चीजें की। एक तो उसने खाड़ी के देशों पर हमला किया जहां पर मिलिट्री बेसी थी अमेरिका की, उनकी एक प्रकार से इकोनॉमी को डगमगाया, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया।
1: लेकिन इस जंग ने खाड़ी के साथ साथ अमेरिका की बादशाहत पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। क्या वेस्ट एशिया में अमेरिका का खेल अब खत्म होने लगा है? क्या खाड़ी देशों का अमेरिका की सुरक्षा गारंटी से भरोसा उठ गया है? क्या पश्चिमी नाटो के मुकाबले अब एक नए मुस्लिम नाटो की नींव रखी जा रही है? हूती विद्रोहियों और इराकी आतंकी संगठनों से बढ़ते खतरे के बीच सऊदी ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ नया गठबंधन क्यों बनाया? क्या इसराइल ने भी अमेरिकी तेल टैंकर विमानों को अपने हवाई अड्डे से हटाकर वॉशिंगटन को बड़ा संदेश दिया है? उधर हथियारों की कमी को लेकर ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब भी कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है।
3: Oil down to less than 2 in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop and we had 195, another one, 185 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please.
1: वहीं जानकारों की माने तो इन एयर स्ट्राइक्स ने ईरान की सत्ता को पहले से ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी है। ऐसा इसीलिए भी हो पाया क्योंकि ईरान अपने ऊपर किए गए हमले के बदले इस जंग को पूरे खाड़ी में फैलाने में कामयाब रहा, और युद्ध की आड़ में ईरान लोगों के रेजिस्टेंस, जो ईरान की सड़कों पर दिख रहा था, उसे खत्म करने में कामयाब हुआ। एक तरफ जहां परमाणु ठिकानों को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति वाले समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाने की जंग छिड़ी हुई है, जिस पर जंग शुरू होने से पहले ईरान का कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं।
2: ये सच्चाई है कि आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार से ज्यादा ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा। जब चाहेगा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जब चाहेगा खोल लेगा। तो ऐसा लगता है कि आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस युद्ध की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और जिसको कंट्रोल ईरान करता है, और ईरान का इसी कारण इस लड़ाई के अंदर ऐसा लगता है पलड़ा भारी है।
1: इन हमलों ने ईरान को खाड़ी का बड़ा खिलाड़ी देश बना दिया है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि होर्मुज जल मार्ग को फिर से खोलने के लिए ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है, जिससे तेल आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद जागी है। हालांकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो ईरान के किसी भी तरह के नियंत्रण या टोल टैक्स को इस क्षेत्र में स्वीकार नहीं करेगा। ईरान लगातार अपने प्रॉक्सी का उपयोग करके इस जंग को खाड़ी में फैला रहा है, जिससे अमेरिका के सहयोगी देशों पर लगातार नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ईरान समर्थित यमन के हूतियों ने रेड सी में हमले तेज कर दिए हैं। वो लगातार सऊदी अरब के तेल टैंकरों और आपूर्ति लाइनों को निशाना बना रहे हैं। यमन के मारिब और हद्रमौत प्रांतों में हुए हालिया हमलों में कई सैनिक मारे गए, जिससे 2022 से चला आ रहा नाजुक युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर है। ईरान पर भी इस जंग का असर अब दिखने लगा है। अटकलें हैं कि युद्ध के लंबे खींचने, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक मोर्चे पर बन रहे असंतुलन को लेकर ईरान के भीतर भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। खबर है कि ईरान की संसद में विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां की जा रही है।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के खिलाफ जो महाभियोग का चार्ज है वो दिखा रहा है कि वहाँ के कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच में किस प्रकार से मतभेद हो रहा है, और ये दिखा रहा है कि IRGC और कट्टरपंथियों की ताकत कितनी ज़्यादा है, और ये दिखा रहा है कि जो उनकी अमेरिका साथ बातचीत चल रही थी या कुछ उन्होंने बयान दिए थे उसका कितना विरोध है। आगे यही होगा कि ईरान की कट्टरवादी और बढ़ जाएगी, अमेरिका के साथ डील होना और मुश्किल हो जाएगा, और जो भी कोई व्यवहारिक है या उदारवादी है उनका धीरे धीरे सूपड़ा साफ हो रहा है और पूरी ताकत कट्टरवादियों के हाथ में।
1: वहीं अमेरिका की पकड़ खाड़ी देशों से कम होती दिख रही है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक समझौता किया था, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। जानकार इसको मुस्लिम नाटो की तरह से देख रहे हैं, जिसका असर US पर अच्छा नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के हथियार भंडार की कमी, खाड़ी देश पर लगातार हो ईरानी हमलों ने इस समझौते के लिए रास्ता तैयार किया है।
3: So we have so much, plus we have supplies of munitions all over the world that if we ever needed them, we take that. We're supplied all over the world, but we're in very, very good shape.
1: यानी एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शह और मात का खेल जारी है, तो दूसरी तरफ रेड सी से लेकर तेहरान के संसद भवन तक अनिश्चितता के बादल गहरा रहे हैं। जलमार्ग के खुलने से दुनिया को कुछ राहत मिलती है या हूतियों का नया दुस्साहस वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नए तेल संकट में धकेलता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। युद्ध के बीच से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, यानी सीज फायर के बीच के युद्ध से निकल कर जो खबरें आ रही हैं, उन सबको थोड़ा डिकोड करने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता सुमित चौधरी के पास। सुमित, सबसे पहले तो ये समझाइए कि ईरान के भीतर जो राजनीतिक उथल पुथल की खबरें आ रही हैं कि विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, इसकी तैयारी हो रही है, कितनी सच्चाई हम इसमें देखें?
5: श्वेता, इस समय ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। इस समय वहां पर बहुत बड़ा वैक्यूम भी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अब तक मुस्तफा खामनेई है तो सही, लेकिन वो आखिरकार किस लेवल तक इन्वॉल्व है ये भी संशय बना हुआ है। लेकिन अराग्ची को लेकर बहुत ज़्यादा अब ईरान की सोसाइटी में, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ हत्या, उनके खिलाफ नाराजगी भी है। मुझे याद है कि जब मैं जो सुप्रीम लीडर के जनाजे में गया था, जब सुपुर्दे खाक के उन्हें जा रहा था, तब मैं उन्होंने आम लोगों से बातचीत की, तो आम लोगों ने उस समय भी अराग्ची को लगातार सड़क पर प्रदर्शन किया था, उनको घेर लिया था, और उस समय वो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और ये कहा जा रहा था कि आम लोगों में भी नाराजगी है कि आखिरकार जब देश लड़ने के लिए तैयार है, जब लगातार युद्ध आगे चल रहा था, तो फिर आपने निगोशिएशन एक्शंस क्यों की, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत अराकची के सामने यह है कि इस समय जो हार्डलाइनर्स वहां पर मौजूद हैं वो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अराकची ने कई जगहों पर नेगोशिएशंस में ईरान की जो मौजूदा स्थिति को वीक किया है। उन्होंने नेगोशिएशंस करने का आगे बातचीत बढ़ाई और सीज फायर के लिए उन्होंने सहमति जताई। इसके अलावा अराकची को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनकी जो अप्रोच है बहुत ज्यादा मॉडरेट है और यूएस के साथ उनका जो आप कह सकते जुड़ाव है या उनका जो उनका रिफ्ट है वो देश के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। यहां तक कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी है उन्होंने जो स्थिति पैदा की, उन्होंने जो लगातार नेगोशिएशंस की उसमें अमेरिका को एक तरीके से उस बातचीत के दौरान अमेरिका को स्टैंड दे दिया जहां पर वो उससे नेगोशिएशंस में ईरान से इनके ईरान के साथ बातचीत कर सके। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर कहा जा रहा था कि अराकची को लेकर वहां पर गुस्सा पहले भी था, लेकिन अब लगातार वहां के कई पार्लियामेंटेरियंस वहां के कई एमपीज लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी वजह से हार्डलाइनर्स जो है वो अराकची के इंप्रीचमेंट की बात कह रहे हैं और जो माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान में जैसे ही स्थिति ठीक होंगी वो इंप्रीचमेंट आगे बढ़ सकता है।
6: अच्छा, ये तो ईरान से जुड़ी हुई बात हुई, लेकिन अब ये समझाइए कि अमेरिका को लेकर भी बहुत सारे दावे होने लगते हैं। जैसे ये कहा गया एक रिपोर्ट के जरिए कि अमेरिका की जो मिसाइल है वो लगभग अब खत्म है, उसका स्टॉक लगभग अब खत्म है, इसमें कितनी सच्चाई है?
5: श्वेता, इसमें सच्चाई भी है और इसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना। आपको बता दें कि एक मीटिंग के दौरान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य अधिकारी को यह कहा कि आखिरकार ये जानकारी लीक कैसे हो रही है। अमेरिका की कई मल्टीपल मीडिया हाउसेस इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो पेट्रियट मिसाइल्स है, उनकी कई जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या मिसाइल्स की जो खेप है वो 80% तक कम हो चुकी है और ये अमेरिका के लिए कंसर्न है। और ये कंसर्न खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तब जाहिर कर दिया जब उन्होंने इसको लेकर, इस लीक को लेकर रिपोर्ट मांगी, जवाब तलब किया है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए दिक्कतें उसकी, आप कह सकते हैं जो उनकी मिसाइल भंडार है उसकी कमी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है।
6: असल में इससे कंफ्यूजिंग युद्ध इससे पहले लड़ा नहीं गया होगा, ना तो इससे कंफ्यूजिंग शांति कभी आई होगी, क्योंकि ट्रंप जितनी बार धमकियां दे चुके हैं कि हम डील बस खत्म करने वाले हैं, अब ईरान पर हम अटैक करने वाले हैं, अरे हमारा हाथ रोक लिया इसलिए हम नहीं कर रहे, ये न तो अब ट्रंप को याद होगा अब, ना ईरान को अब याद रह गया होगा, लेकिन इस सबके बीच संभावना बन रही है कि फुल एंड फाइनल शांति हो।
5: श्वेता, कंफ्यूजन भी है और एक तरीके का इसको देखें कि अमेरिका का स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर भी है। अमेरिका और इसराइल ने 5 महीने पहले जब इस युद्ध की शुरुआत की गई थी तभी से वो कन्फ्यूजन दिखना शुरू हो गया था। अमेरिका पहले रिजिम चेंज की बात करता है, फिर यूरेनियम इनरिच यूरेनियम की बात करने लगा और फिर धीरे धीरे धीरे अब ये पूरा युद्ध जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आके सीमित हो गया। लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यथास्थिति बनी हुई है और शांति दूर दूर तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अमेरिका के लगातार जो भंडार कम हो रहा है मिसाइलों का, लगातार जो अमेरिका पर प्रेशर है मिडल ईस्ट के देशों का, खास तौर पर सऊदी अरब का, वो जरूर दर्शा रहा है कि शायद अमेरिका अपनी शर्तों से शायद पीछे हट जाएगा और ईरान के साथ ऐसी यथास्थिति कायम कर लेगा जिसमें ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पैसा वसूल सकेगा, टैक्स वसूल सकेगा और उसको अमेरिका जस्टिफाई बताते हुए उससे एक सेफ एग्जिट कर लेगा।
6: बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब पूरी तरह से आसमान पर कब्जे की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। जमीनी मोर्चे पर जंग लगभग थमने के बाद दोनों देश अब ड्रोन और नए हवाई हथियारों के दम पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की मौतें अब दोनों ही देशों के लिए केवल आंकड़ा भर रह गई है, क्योंकि अब केवल सैन्य ही नहीं रिहायशी इलाके भी निशाने पर हैं, जिससे यह संघर्ष घातक मोड़ पर पहुंच चुका है।
7: यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस की 2 तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का दावा है कि जबरदस्त हमले के बाद दोनों रूसी रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है।

0: यूक्रेन युद्ध अब जमीन की सीमाओं से निकलकर पूरी तरह से आसमानी महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। आसमान में केवल बारूद की गंध और धुएं का गुब्बार ही नहीं, सीधे तबाही बरस रही है। हालिया हमलों में रूस ने यूक्रेन पर 24 बैलिस्टिक और 4 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। लेकिन इस पूरे हमले में सबसे खौफनाक बात हमला नहीं है, बल्कि यूक्रेन की मिसाइल डिफेंस का नाकाम रहना। यूक्रेन इन हमलों में एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन का सुरक्षा कवच खत्म हो गया है? क्यों नहीं कर पाया यूक्रेन एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट? और क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध अपने अंतिम चरण में है? रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाके दहल गए। मिसाइलें इतनी तेजी से आईं कि आम नागरिकों को शेल्टर होम तक भागने का वक्त तक नहीं मिला। इन हमलों की भयावहता की गवाही क्विटनीव रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां ट्रेन के इंतजार में 8 लोगों की इन हमलों में मौत हो गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की इन हमलों को लेकर रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि इन हमलों का मकसद सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि नागरिक और व्यापारिक लॉजिस्टिक्स सेंटर थे। लेकिन आरोप लगाते हुए वो शायद भूल गए कि रूस की तेल रिफाइनरियों और रिहायशी इलाकों पर हमले के आदेश किसने दिए थे।
1: देखिए, एक तो 4 साल हो गए हैं इसको और इतने लोग हताहत हो गए हैं इसमें, आप हैरान हो गए। 18 से 20 लाख लोगों की सोल्जर्स की मौत हो गई है इसमें, कैजुअल्टीज हो गए हैं। और ये वो कंट्रीज हैं जिनकी अपनी पॉपुलेशन रशिया की 14 करोड़ है और उनकी 3.5-4.5 करोड़ है यूक्रेन की। उनके पास बंदे नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए और ये वॉर ऑफ अट्रीशन जिसको हम कहते हैं, जो आपस में आमने सामने की लड़ाई हुई है, उसमें ये सारे हताहत हुए।
0: यूक्रेनी वायुसेना ने स्वीकार किया है कि रूस की तरफ से आने वाले 98 ड्रोन उन्होंने मार गिराए, लेकिन 24 बैलिस्टिक और 4 हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक भी मिसाइल को नहीं छू सके। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की तरफ से मिलने वाली पैट्रियट मिसाइलों में भारी कमी। दरअसल यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी जंग ने पूरी दुनिया में एंटी मिसाइल और गोला बारूद के स्टॉक खत्म होने की कगार पर। इसका सबसे ज्यादा असर यूक्रेन पर दिख रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अमेरिकी रक्षा सलाहकारों की चेतावनी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले टालने पड़े। वहीं रूस पर यूक्रेन लगातार ड्रोन हमला जारी रखे हुए है। रूस के 200 मील अंदर तुला शहर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। वहीं मास्को में हुए कार बम धमाकों की खबर है। इन धमाकों में रूस के ड्रोन निर्माता कंपनी के प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। इन हमलों से यूक्रेन की रूस के अंदर गुप्त अभियान जारी रखने की क्षमता का पता चलता है। जमीन की लड़ाई अब पूरी तरह से आसमानी हो गई। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के शस्त्रागार खाली हो रहे हैं, यूक्रेन का एयर डिफेंस ढहने लगा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में यह आसमानी जंग और भी विनाशकारी रूप ले सकती है।
2: वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR. Ye rishta lamba chalega.
2: पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और राजा वेडिंग के घमासान के बीच राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को अपना पसंदीदा नेता बताया है।
3: कैप्टन अमरिंदर सिंह डेफिनेटली आई गेट अलोंग विद हिम, ही इज कूल एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन मिलिट्री हिस्ट्री, सो आई लाइक हिम क्वाइट अ लॉट। हेलो अंकल अमरिंदर।
2: राहुल के बयान के बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अमरिंदर के कांग्रेस में वापस जाने की आशंका जताई जा रही है।
4: अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना फेवरेट लीडर मानते हैं, जो सबसे लेजी ऑफिसर्स लेजी जो पॉलिटिशियन है उनमें से जाना जाता है और उन पॉलिटिशियंस में जाना जाता है जो कि किसी भी समय किसी भी जगह पे पलटी मार सकता है, अगर राहुल जी का वो आइडियल है तो फिर राहुल जी की सियासत क्या होगी।
5: अच्छे इंसान है, अच्छी चीजें भी है यार, किसको मेरा ख्याल है हर देखो जो आदमी दो बार चीफ मिनिस्टर रह गया उसमें कोई चीजें तो ऐसी है जो सीखने लायक है।
6: अच्छी बात है, हर लीडर की अपनी चॉइसेस होती हैं और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की फ्राक दिली है। उन्होंने ये बोला है कि किसी ने पूछा कि बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो बोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज माय अंकल एंड दैट ही इज अ मिलिट्री हिस्टोरियन। उनके साथ उन्होंने काफी साल काम किया, वो अलग बात है अलग पार्टी, लेकिन इसमें आप देखेंगे राहुल गांधी की फ्राक दिली है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं।
2: उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल की ओर से साफ किया गया कि ये मुलाकात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि वो पंजाब में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही।
7: तो प्रधानमंत्री साहब को कोई भी मिल सकता है, तो मैंने उम्मीद है कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब के भले लिए कोई चंगी गल करके क्लियर करना चाहना कि साडे वालों भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों 117 सीटा की तैयारी है, 117 सीटा तो असीं कल्ले लड़ा।
2: बहरहाल पंजाब में चुनाव से पहले के समीकरण का खेल जारी है, जहां हर पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़, आज तक।

0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है और उसी यात्रा के बीच साजिद रशीदी का अपमानजनक और भड़काऊ बयान आया है। ऐसा बयान जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।
1: क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ।
0: साजिद रशीदी ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना के ऐसे विवादित बयान को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। कांवड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। उन्होंने आतंकी वाले बयान को लेकर पलटवार भी किया।
2: अब बहुत हो गया है ये मौलाना, अगर कांवड़िये खड़े हो गए तो मौलाना की पीढ़ियां नहीं बचेंगी। ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये देश धर्म के आधार बटा था कि जो यहाँ राम का नाम लेंगे, सनातन संस्कृति के अनुसार रहेंगे, उनका सम्मान होगा, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर सनातन का अपमान करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान बना था।
0: नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान है। उन्होंने मौलाना पर FIR दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की है और कहा है कि मौलाना को ऐसे बयान के लिए फांसी होनी चाहिए। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मैं देख रहा था कैसे खत्म हो रहा था बंगाल, डेमोग्राफी हैज बीन चेंज, हमारी सीमा असुरक्षित। भारत सरकार, पहले राजनाथ सिंह जी, उसका बाद अमित शाह जी, बार बार लेटर दे रहा है भाई बॉर्डर के लिए जमीन तो दे दो, ये तो कोई पार्टी का मामला नहीं है, देश का मामला है, देश सबका है। नो नो नो नो, वोट बैंक, तुष्टिकरण, देश तो बर्बाद करो और पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मेरा घर का आदमी विपिन अधिकारी जी लेट, स्वतंत्रता संग्रामी, 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। हम लोग पेट्रियोटिक फैमिली से आता हूं भाई, देश बर्बाद हो जाएगा, बंगाल खत्म हो रहा है, इसको सपोर्ट करना, ममता बनर्जी को सपोर्ट करना और मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा करना, ये दो एक ही बात ही था, इसको छोड़ना चाहिए।

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में बढ़ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई के आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।

दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसा। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें जाना चाहिए था रांची। रांची में सरकार और छात्रों के बीच कल तीसरे दौर की बातचीत। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो विधानसभा घेरेंगे। 10 अगस्त को पीएम मोदी से मिलेंगे शरद गुट के सभी 8 सांसद। सुप्रिया सुले ने कहा, महाराष्ट्र में सांसदों को नहीं मिल रहा है फंड, मांगा था औपचारिक समय। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा।

0: नमस्कार, मैं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। हर साल मॉनसून आता है और उसके साथ ही आती है बाढ़ की वही भयावह तस्वीरें। कहीं पहाड़ टूटते हैं, कहीं नदियां शहरों को निगल जाती हैं, तो कहीं खंडों की बारिश पूरी व्यवस्था की पोल खोल देती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे हमारी अपनी गलतियां हैं? आखिर क्यों हर साल भारत का कोई ना कोई हिस्सा पानी में डूब जाता है और क्या इस त्रासदी का कोई स्थायी समाधान है? आज कहानी में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि आखिर हर साल क्यों डूब रहा है भारत।
1: ज्यादा दिक्कत हो रहा है और आप देख सकते हैं पूरा शिवसागर टाउन पानी से डूब गया है।
2: घर का घर बर्बाद है, अभी क्या देगा गवर्नमेंट? 2,000-5,000 देगा, उससे इनका घर का पूरा सामान आ जाएगा।
3: मूसलाधार बारिश और तेज हुई और भारी बारिश साइबर सिटी दिल्ली NCR में दर्ज की जा रही है।
4: जो मेन सड़क है, मुख्य रोड है, ये कहीं ना कहीं झील में तब्दील हुई दिखाई दे रही है।
2: हर साल है, हर साल का प्रॉब्लम है, एक साल का प्रॉब्लम नहीं है।
5: सरकार कोई भी आ जाए, अगर वो जमीन पे काम नहीं करेगी तो यही हाल रहेंगे।
6: ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना चाहिए, बेसिकली प्रॉब्लम वहीं से, सब नाले वगैरह नैरो हो गए, पानी वहीं पे स्टक हो जाता है।
0: बाढ़ सिर्फ पानी का बढ़ा हुआ जलस्तर नहीं, ये वो ताकत है जो कुछ घंटों में पूरे शहर की रफ्तार रोक देती है, गांव का नक्शा बदल देती है और लाखों लोगों को बेघर कर देती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हर बार इसकी वजह सिर्फ आसमान से बरसने वाला पानी है या फिर नदियों के बदलते स्वरूप, जंगलों की कटाई, बेतरतीब विकास भी एक बड़ी वजह है।

0: लगभग इस घाई के वजह से 20-30 हजार लोग इफेक्ट हुए।
1: कुछ भी नहीं बचा भैया लोग।
2: था पानी, मतलब इतना स्पीड बढ़ के आया, मतलब घर का आदमी को हम लोग छोड़ के दूसरे का बचाने लग गए।
3: इस 25 घरों में पानी है, सब लोगों को निकाल दिया है, शायद एक आध कोई है उसको निकाल दो।
4: हम लोग कैसे सर्वाइव करेगा, फिर से नॉर्मल जिंदगी कैसे लाएगा, वही सोच के हम लोग को ज्यादा दिक्कत है। अभी तो जो हो गया वो हो गया।
5: पिताजी का 70 साल हो गया, ये पहली बार ऐसा नहीं गया।
6: अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी निचले इलाके में है वहाँ से सुरक्षित चले जाए, और जहाँ भी काम के बिना, अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर न निकले।
7: करीब 7 लाख से ऊपर लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत और खबरें सामने आ रही है।

0: ये वो बाढ़ है जो घरों को मलबे में बदल देती है, खेतों को झील बना देती है और जिंदगी को राहत शिविरों तक सीमित कर देती है। डूबी हुई सड़कें, डूबे हुए मकान, डूबे हुए खेत, डूबे हुए बाजार, डूबे हुए सपने और उम्मीद के सहारे किसी छत पर बैठा हुआ पूरा का पूरा परिवार। ये सिर्फ पानी नहीं, ये हर साल लौट कर आने वाली वो त्रासदी है जो किसी का घर बहा ले जाती है, किसी की जिंदगी और किसी की पूरी उम्र की कमाई।
1: बीस पच्चीस घरों में पानी है, सब लोगों को निकाल दिया है, शायद एक कोई है उसको निकाल दिया।
2: क्लाइमेटिक जो डैमेज है, ये बारिश होना, ये होना, अब ये तो नेचुरली हो जाता है, लेकिन थोड़ा बारिश में ही ये ब्रिज डिसमेंटल हो गया, कोलैप्स हो गया है, तो ये नहीं होना।
3: लगातार ब्रह्मपुत्र का पानी बारिश हो रहा है, इसीलिए अभी 5-6 दिन से बढ़ रहा है। अब ब्रह्मपुत्र का पानी बढ़ने से लिए हम लोग के यहाँ पर जो भू कटआउट मतलब ज्यादा होता है, बहुत आखिरी हो गया है।
0: इस साल भी असम, गुजरात, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एक ही तस्वीर नजर आ रही है। चारों तरफ पानी और उस पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। कहीं हेलीकॉप्टर आसमान से उम्मीद बरसा रहे थे, कहीं नावे एम्बुलेंस बन गई है, कहीं स्कूल राहत शिविर बन गए, और कहीं पूरा गांव नक्शे से गायब हो गया है। क्या हर बार सिर्फ आसमान जिम्मेदार होता है या धरती पर भी कहीं कोई गलती हो रही है? सबसे ज्यादा दर्द इस बार भी असम ने झेला है। ब्रह्मपुत्र, जिसे जीवन देने वाली नदी कहा जाता है, वही ब्रह्मपुत्र लाखों लोगों के लिए तबाही बन गई है। लाखों परिवारों के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि अब जिंदगी कहां से शुरू करें।
4: बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है हर साल और बहुत नुकसान होता है लोगों को जो भाड़े से रहते हैं, उनका तो अब देखा नहीं जाता आंखों से, रूलन जैसे आ जाते, गादले है, फर्नीचर है, पूरा ढेर लगाया होता अभी 7-8 दिन पहले और अभी वापस ये की पोजीशन है, पूरा ढेर लगने वाला है, बहुत नुकसान लोगों का।
5: मान जाएगा जाएगा, पानी नहीं मिले, दूध नहीं मिले, क्या जाएगा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे
6: 4-5 दिन से पानी नहीं है और दूध के और कोई वस्तु बाहर ले तकलीफ होती है, इसमें 4-5 दिन लगता है, पानी रहता है और बच्चों को पढ़ाई में भी तकलीफ पड़ती है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे।
0: लेकिन असम हर साल ही डूबता क्यों है? क्या ब्रह्मपुत्र में बढ़ती गाद इसकी वजह है? क्या जंगलों की कटाई और नदियों के किनारों का बढ़ता अतिक्रमण बाढ़ को और भी विकराल बना रहा है? और सिर्फ असम ही क्यों, अब देश के बड़े बड़े शहर भी कुछ घंटों की बारिश में पानी पानी हो जाते हैं। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसा आधुनिक शहर तैरने लगता है।
7: आदमी का खाना पीना बारिश सड़ी करता है, उसको बारिश में नहीं होता है। पानी अभी हो गया 6 दिन से बेसी हो गया है, 10 दिनों पानी हो गया है।
8: बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है, सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है,
9: भर गया है, हम लोग को कितना तकलीफ होता है, सुविधा नहीं है, कुछ भी पाने से हम लोग जा रहे हैं, इतने कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रास्ता तो बनाना मांगता है, उधर से पूरा हम इतना भीग के आए हैं।
0: पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, दिल्ली, सूरत तक बारिश में डूब जाता है। सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगी छोटी हो गई है या हमारे शहर बहुत बड़े हो गए हैं। बाढ़ सिर्फ लोगों को नहीं डुबोती, हजारों करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था भी अपने साथ बहा ले जाती है। तो क्या हर मॉनसून में यही कहानी दोहराई जाएगी, या बाढ़ को समझने और उससे लड़ने का कोई रास्ता भी है? आज कहानी में जानिए आखिर क्यों हर साल डूब रहा है भारत, असम बार बार बाढ़ का सबसे बड़ा शिकार क्यों बनता है, बाढ़ से देश को हर साल कितना नुकसान होता है और क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता है।
10: असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार की तबाही ने पुराने कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। सवाल सिर्फ इतना कि ब्रह्मपुत्र हर साल उफान पर क्यों आती है। सवाल ये भी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस प्राकृतिक आपदा को हर साल और ज्यादा विनाशकारी बना रही है। क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है या इसके पीछे असम का भूगोल है, ब्रह्मपुत्र में बढ़ती गाद है और हमारी तैयारियों की कमी भी जिम्मेदार है।

0: 19 जुलाई 2026 शाम के करीब 5 बजे असम के शिवसागर के इस इलाके में हर कोई अपने घर में बैठा था। ये पूरा इलाका यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर है, यहाँ कभी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन उस दिन महज 2 घंटे में पानी उनकी छाती तक पहुंच गया। जान बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने बिस्तर पर कुर्सियां और टेबल रखी और पूरा परिवार रात भर उन्हीं कुर्सियों पर बैठा रहा। यहाँ हर कोई कहता है जीवन में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। ये सिर्फ कुछ परिवारों की कहानी नहीं है, ये आज के असम की कहानी है।
1: इतना ज्यादा था कि वो यहाँ से रास्ते तक नहीं निकल पाया, बाढ़ यहीं से सामने में से ही उसको बहा के लेके गया।
2: तो मोहल्ले हम लोग में ऐसे लड़का बच्चा को निकलते निकलते मैंने पूरा पानी हो गया एकदम। तो गरु गाय छगली बच्चे लोग मैंने निकलने नहीं सका, सब चला गया। खाली हम लोग आदमी लोग के बच्चे मैंने सब चला गया, घर के जितना सामान रहा सब खत्म हो गया।
0: लेकिन सवाल है, आखिर असम हर साल क्यों डूबता है? इस सवाल का जवाब असम के भूगोल में छिपा है। असम 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है, इसके बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मॉनसून में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश का पूरा पानी बहकर असम के मैदानों में उतर आता है। यही वजह है कि राज्य का लगभग 40% हिस्सा बाढ़ संभावित क्षेत्र माना जाता है। इस बार भी 18 से 19 जुलाई को ऊपरी इलाकों में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई।
3: याद करने के लिए हम लोगों को अभी 15 ईयर्स रहेगा फिर से नॉर्मल जिंदगी लाने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वही सोच के हम रो रहा है। घर का कोई सामान भी रुका नहीं, इस बार पहला बाढ़ आया है, 5 मिनट्स भी नहीं दिया कुछ घर से निकालेगा वो भी कुछ नहीं है, घर का जितना सामान सब चला गया।
4: हम लोग मतलब पहले हम लोग का यहाँ पे बाढ़ आता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सब लोग मतलब शॉक हो गए। बाद में जब पता चला कि सबके घर में पानी ऐसा घुस गया है, उसके बाद मतलब सब जान बचा के मतलब कुछ ले नहीं सके, जान बचा के यहाँ से निकल गए। पूरा पानी मतलब घर बचा ही नहीं, घर घर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अभी।

0: लेकिन सिर्फ एक वजह नहीं है असम में बर्बादी की। नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलते समय सिर्फ पानी ही नहीं लाती, बल्कि पहाड़ों की मिट्टी और पत्थर भी अपने साथ बहाकर लाती है। लेकिन जैसे ही ये असम के मैदानों में पहुंचती है, पूरी कहानी बदल जाती है। यह नदी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और उसके साथ आई मिट्टी नदी के तल में जमने लगती है। हर साल ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है और धीरे धीरे नदी का तल ऊंचा होता जाता है। इसका मतलब है कि नदी में पानी के बहने की जगह हर साल कम होती जाती है। और फिर आता है मॉनसून। अरुणाचल प्रदेश, भूटान और आसपास के पहाड़ों से आने वाली दर्जनों नदियां एक साथ ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। देखते ही देखते नदी में पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र इतना पानी संभाल नहीं पाती और अपने किनारे छोड़कर आसपास के इलाकों में फैल जाती है। यही वजह कि असम में बाढ़ सिर्फ भारी बारिश की कहानी नहीं, बल्कि उसके भूगोल, ब्रह्मपुत्र और हर साल जमा होती गाद की भी कहानी है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज्यादा गाद यानी सिल्ट ठोड़ने वाली नदियों में से एक है। हर साल ब्रह्मपुत्र का तल थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता जा रहा है और उसकी पानी समेटने की क्षमता कम होती जाती है। फिर थोड़ा ज्यादा पानी आते ही नदी अपने किनारे छोड़ देती है। आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 1912 से 1928 के बीच ब्रह्मपुत्र का फैलाव लगभग 3,870 वर्ग किलोमीटर था। 2006 तक यही फैलाव बढ़कर करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। कई जगह नदी की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया था 15 अगस्त 1950 को। असम में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया, पहाड़ दरक गए, भारी भूस्खलन हुआ, लाखों टन मिट्टी और चट्टाने ब्रह्मपुत्र में आ गिरी, नदी का रास्ता बदल गया, कई जगह नदी का तल 10 फीट तक ऊपर उठ गया। इसके बाद ब्रह्मपुत्र ने हर साल अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। जहाँ पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी वहाँ पानी पहुँचने लगा, और जहाँ पहले बाढ़ आती थी वहाँ हालात बदलने लगे। इस साल भी शिवसागर, चराईदेव और जोरहट जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि यहाँ के लोग कहते हैं कि उनके बुजुर्गों ने भी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी।
1: सबसे बड़ी है हमारा गोरु गाय जितना रहा सब भुगा गया।
2: हमारा गोरु 16 रहा, 16 भी 2 बचा है और बाद बाकी चला गया।
1: सामान दामान सब घर सर सब खत्म है, कुछ नहीं है। अभी बिहू व्रत रहता है और दिन को उधर रहता है, रात को अभी दिन को उधर जाएगा, रात को उधर जाकर सोता है। बहुत तकलीफ में है हम लोग।
3: ऐसा फ्लड हमने भी कभी देखा नहीं है, बहुत साल बाद में लोग बोल रहे हैं कि हुआ है। और बहुत ही मतलब ज्यादा महामारी हो रहा है और परेशानी हो रहा है, लोगों को बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है।
0: अब तक असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे लगभग 4,800 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी बाढ़ आते ही यही तटबंध टूट जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई की वजह से अब बारिश कई महीनों में नहीं, बल्कि कुछ दिनों में ही अत्यधिक मात्रा

0: मुंबई, चेन्नई या फिर गुरुग्राम, हर मौसम में कोई ना कोई बड़ा शहर पानी में डूब जाता है। सवाल यही कि क्या इसकी वजह सिर्फ रिकॉर्ड बारिश है या फिर बेतरतीब शहरी विकास और हमारी सरकारी तैयारियों की कमी भी इन शहरों को डुबो रही
1: है। ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है।
2: समुद्र में लहरें उठती हैं, उस तरीके की लहरें जो है सड़क पर देखने को मिल रहा है।
3: तमाम वो लोग हैं जो कि हर मानसूनी बारिश में इस तरह के हालातों का सामना करने के लिए मजबूर हैं।
4: यहाँ से गोविंदपुरी से यहाँ तक 10 मिनट का रास्ता नहीं है, 2 घंटे हो गए जाम में खड़े हुए हैं।

0: ये मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी, जिस शहर को कभी रुकना नहीं आता था, अब हर मानसून में कुछ घंटों की बारिश इसे रोक देती है। मीठी नदी की सफाई के दावे हर साल होते हैं, लेकिन बारिश आते ही सड़कें नदी बन जाती हैं, लोकल ट्रेनें रुक जाते हैं, एयरपोर्ट तक पानी पहुंच जाता है और करोड़ों का कारोबार घंटों के लिए ठप पड़ जाता है।
1: बहुत बेकार हाल है इधर, 6 दिन से लगातार बारिश हो रहा है और पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। बस भी देखो इधर पड़ी है, खड़ी है 4 दिन 3 दिन से पड़ी है। समझ
2: स्टेशन से जा रहा था, मीरा रोड में जॉब करता हूँ, तो स्टेशन से जा रहा था, पर देख सकते हैं कितना पानी भरा है। क्या करें, मैं सोच रहा हूँ चल के जाओ या कैसे जाओ।
3: और हम लोग ऐसे घर पे ही बैठे हैं 3 दिन से, हम लोग का रूम में भी पानी भर चुका है।
4: पानी है, 4-5 दिन लगातार बारिश हो रही है और पानी इतना है कोई पैदल नहीं चल पा रहा है, इतने गाड़ी वाले जा रहे हैं, सब गाड़ियाँ बंद हो रही है।
2: सर क्या बताना चाहेंगे आपको, क्या किल्लत आ रही है?
5: लोग परेशान है, यहाँ पे हर जगह पे पानी पानी हो गया है, कहीं भी लोगों को मतलब घर से निकलने के लिए भी जगह नहीं है कोई।
0: अब चलिए अहमदाबाद, स्मार्ट सिटी, रिवर फ्रंट, चौड़ी सड़कें, लेकिन बारिश आते ही पूरा सिस्टम बह जाता है। जिस शहर को आधुनिक विकास का मॉडल बताया जाता है, उसी शहर में पैदल चलने के लिए सड़कें गायब हो जाती हैं, अंडरपास तालाब बन जाते हैं और लोग गाड़ियों से नहीं पानी में उतरकर घर पहुंचते हैं। यह है सूरत, कपड़ा और हीरा उद्योग का सबसे बड़ा शहर, लेकिन यहाँ हर बारिश के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ताप्ती नदी का पानी पहले घरों में आएगा या शहर का ड्रेनेज पहले जवाब देगा। कई कॉलोनियों में घर और सड़क का फर्क मिट जाता है। कहां नाली है, कहां सड़क और कहां किसी का आंगन, समझना मुश्किल हो जाता है।
6: पानी आता है ना तभी हम लोग को ये तकलीफ होती है, हाँ, कोई नहीं देखने आता इधर।
7: सब सामान बिगड़ता है, जो अपना जो फ्रिज वगैरह जो भी होता है, जो सामान मतलब घर का फैमिली का होता है, सब बिगड़ता है।
8: 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था, आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
9: दुकान के अंदर से 2 रुपया भी नहीं निकल पे, गाड़ी भी पार्किंग में पड़ा है अंदर, पूरे आप अंदर जाके चेक करो 200 दुकान है, सब सामान तो 10 रुपया भी कोई, गाड़ी का चाबी भी कोई नहीं निकल पाई, ऐसा हालत हो गया, आधा घंटे में पानी पूरा भर गया।
0: सूरत की ऐसी स्थिति हो जाती है कि बड़े बड़े मॉल तक डूब जाते हैं। अब गुरुग्राम, देश का कॉरपोरेट हब, गगनचुंबी इमारतें, करोड़ों की सोसाइटियां, लेकिन बारिश के सामने सब बेबस। कुछ देर की बारिश और एक्सप्रेसवे पार्किंग बन जाता है। ऑफिस पहुंचने का रास्ता घंटों के इंतजार में बदल जाता है। इतना ही नहीं, ये देश के सबसे आधुनिक शहरों में से एक है,

0: हालात हैं जी, पानी में दो पैर एक बजे से चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे आज तो स्कूलों का थोड़ा बंद कर रखा है। अदरवाइज इतनी बुरी हालत है, ये लेडीज को देखो जी कैसे भीग के किस तरह से आ रहे हैं।
1: हरे रंगे जय शीतले, त्रिपुरा सरकार सबसे बढ़िया।
2: यानी अब आपको अगर स्नान करना है तो गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है,
1: कोई नहीं है, त्रिपुरा सरकार दबा के बरसात हो रही है।
3: अब दिल्ली देश की राजधानी, जहां संसद है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बारिश के बाद कई इलाकों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़क और नाला एक जैसे दिखने लगते हैं। संगम विहार से आनंद विहार तक और कनॉट प्लेस से साउथ एक्स तक हर जगह वही कहानी। पानी भरता है, ट्रैफिक थमता है और राजधानी की रफ्तार रुक जाती है।
4: देखिए सबसे बड़ी बात है, सदर बाजार में जगह जगह पानी भर चुका है, चाहे वो अपना तेलीवाड़ा हो, कुतुब रोड हो या मेन सदर बाजार हो, यहाँ पर ये समझ लो निकलना तक मुश्किल हो गया है। गलियों में इतना भर चुका है, कई दुकानों के अंदर पानी आ चुका है, उससे जो व्यापारियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
5: सीवर सिस्टम जो इतने पुराने हो चुके हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के सीवर डले हुए हैं, जब बहुत कम आबादी होती थी, अब आबादी बहुत गहन हो चुकी है, तो अब ये सारे सीवर सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है।
6: कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे?
7: बहुत दिक्कत यहाँ पे, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है
6: यहाँ पे। क्या वजह है दिक्कत की?
7: पानी जम जमा होती है यहाँ पर।
6: तो सरकार तो कहती है मैंने सारे इंतजाम कर रखे
7: हैं। क्या यहाँ तो आज मैं 200 वर्ष से ऐसे देखता हूँ,
6: ऐसे ही होता है।
3: ये है बेंगलुरु, देश की आईटी राजधानी। कभी से झीलों का शहर कहा जाता था, आज झीलें कम हो गई और पानी सड़कों पर ज्यादा दिखाई देता है। आईटी पार्कों में पानी, सोसाइटियों में पानी, बारिश रुक जाती है लेकिन शहर घंटों तक पानी में डूबा रहता है। अब हैदराबाद तेजी से बढ़ता महानगर, लेकिन यहाँ भी कुछ घंटों की तेज बारिश पूरी व्यवस्था की परीक्षा लेती है। झीलों और प्राकृतिक नालों पर बढ़ते अतिक्रमण का नतीजा अब हर मानसून में दिखाई देता है। कई इलाके टापू बन जाते हैं और लोगों को घर लौटना भी मुश्किल हो जाता है। शहर अलग अलग है लेकिन कहानी एक ही है। कहीं नदियों के रास्ते बंद कर दिए गए, कहीं झीलों पर इमारतें खड़ी कर दी गईं, कहीं नालियां छोटी पड़ गईं और कहीं शहर इतने बड़े हो गए कि बारिश के लिए जगह ही नहीं बची। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बादल कितना बरसा है, सवाल ये है कि क्या हमारे शहर बारिश के लिए तैयार है।
8: कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्सट्रीम इवेंट बढ़ गए हैं, जैसे पहाड़ों पर आप देख रहे हैं कि जो मूसलाधार बारिश के कारण लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और क्लाउड वर्स्ट जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। गुरुग्राम पूरी तरह से जाम हो जाता है जब पानी बरसता है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आपने देखा कि मुंबई में, बिहार में, असम में, सभी जगह बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो इस क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो इस तरह से देखा जा सकता है कि पहले जो बारिश हुआ करती थी, दो तीन डिकेड पहले अगर 80s और 90s की बात करें, तो 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश होती थी, रिमझिम बारिश होती थी, जिससे कि पानी जमीन में फिर से चला जाता था, रिचार्ज हो जाता था और फ्लैश फ्लड वगैरह कम आते थे। लेकिन अब वही जो क्वांटिटी है 3 से 4 दिनों में जो बारिश हुआ करती थी, वो 8 से 10 घंटों में काफी भारी बारिश के रूप में हो जाती है, जिससे कि पानी को निकासी नहीं मिल पाती और जलभराव हो जाता है।
3: जानकार कहते हैं कि शहरी बाढ़ के लिए कई कारण हैं। सिर्फ आसमान से बरसता पानी नहीं, जमीन पर बिछी लापरवाही की परत बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। पहला कारण अनियोजित शहरीकरण, झीलों पर मॉल, नालों पर बिल्डिंग, हर खाली जमीन पर कब्जा। दूसरा कारण पुराना ड्रेनेज सिस्टम, कई शहरों में अंग्रेजों के काल की नालियां आज भी इस्तेमाल में हैं। तीसरा कारण कचरा प्रबंधन का ठीक ना होना, प्लास्टिक और कूड़े से नाले बंद, बारिश का पानी निकल नहीं पाता। चौथा कारण जलवायु परिवर्तन, बारिश अब अचानक और ज्यादा हो रही। पांचवा कारण गांव से पलायन, शहरों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। छठा कारण कंक्रीट का जंगल, शहर का विकास तो हो रहा है लेकिन इसके साथ जमीन पर मिट्टी की जगह कंक्रीट और तारकोल ने ले ली है, जिससे जमीन से मिट्टी गायब हो गई है, तो पानी सूखेगा कहाँ से?
8: मुंबई से लेकर के दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, पटना है, सारे जगह पर जो बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वो इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा पैटर्न तो बदला है, लेकिन जो अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमने बिना प्लानिंग के जो मकान बनाना शुरू किए हैं, वाटर बॉडीज को एनक्रोचमेंट करना शुरू किया है, जैसे चेन्नई वगैरह में आपने देखा है जो वहाँ की जो नदी थी उसको भी एनक्रोचमेंट हो गया वहाँ का, और जो गुरुग्राम है वो भी किसी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारे जो हमने जो एक तरह से अनप्लान डेवलपमेंट किया, ये भी इसकी एक वजह है कि जो जल भराव है वो ज्यादा देखने को मिलता है।
3: भारत के हर महानगर का यही हाल है। तेज बारिश और शहर जलमग्न। जब शहरों में नालियां ढक दी जाएं, नदियां सिकुड़ जाएं और हर खाली जमीन कंक्रीट से पट जाए तो बारिश का पानी कहां जाएगा। 2021 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पालघर में जबरदस्त बाढ़ आई। 2022 में असम, बिहार और यूपी के कुछ जिलों में भयंकर बाढ़ आई। 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। चेन्नई में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई दिनों तक शहर को ब्लॉक कर दिया है। 2024 में शहर का वायनाड और गुजरात के कई शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था। 2025 में फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ था। बाढ़ को पूरी तरह रोकना शायद संभव ना हो, लेकिन वैज्ञानिक योजना, मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, समय पर चेतावनी, नदियों के प्राकृतिक रास्तों की रक्षा और बेहतर आपदा प्रबंधन से इस नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। सवाल अब सिर्फ राहत का नहीं, तैयारी का है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं बदली तो हर बारिश के साथ सिर्फ नदियां ही नहीं, विकास के दावे भी बहते रहेंगे।
9: हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर जाती है और राहत बचाव का वही पुराना सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यही कि क्या हम सिर्फ बाढ़ के बाद राहत पहुंचाने तक ही सीमित हैं या फिर उससे पहले की तैयारी कर रहे हैं। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र करीब 32.9 करोड़ हेक्टेयर है। इनमें से 4 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा इलाका बाढ़ संभावित क्षेत्र माना जाता है। बाढ़ की वजह से 2023 में करीब 27,337 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

0: आसमान से पानी बरसता है, लेकिन कई जगहों पर यह पानी सिर्फ खेतों को नहीं सींचता, बल्कि पूरे शहर, पूरे गांव और लाखों जिंदगियों को डुबो देता है। कहीं पहाड़ टूटते हैं, कहीं नदियां किनारे तोड़ देती हैं, तो कहीं कुछ ही घंटों की बारिश पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर देती है। राहत शिविर भर जाते हैं, सड़कें नदियां बन जाती हैं और लोगों की पूरी उम्र की कमाई देखते ही देखते पानी में बह जाती है। अगर पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद डराने वाली है। 2020 में बाढ़ से 1,474 लोगों की मौत हुई और देश को 11,536 करोड़ का नुकसान हुआ। 2021 में तबाही और बढ़ी, 1,371 लोगों की जान गई, लेकिन आर्थिक नुकसान बढ़कर 58,433 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 5 वर्षों में ये सबसे बड़ा नुकसान था। 2022 में 1,673 लोगों की मौत हुई और नुकसान 27,337 करोड़ रुपए रहा। 2023 में सबसे ज्यादा 4,472 लोगों की जान गई, हालांकि आर्थिक नुकसान 2,153 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। 2024 में भी राहत नहीं मिली, 1,539 लोगों की मौत, करीब 4,74,000 पशुओं की मौत और 6,447 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया गया।
1: कि जो डीप डिप्रेशन है या डिप्रेशन है, उनसे भी मानसून का काफी ज्यादा गहरा नाता होता है कि जब बंगाल की खाड़ी में कोई भी वेदर सिस्टम जैसे कि लो प्रेशर एरिया बना तो वो धीरे धीरे मजबूत होता है, डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन बनता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो लो प्रेशर एरिया था ये विदर्भ और छत्तीसगढ़ के आसपास आकर के डीप डिप्रेशन बना, तो ये मानसून को एक्टिव करता है। जब ये पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आता है, बंगाल की खाड़ी से जब अंदर की तरफ आता है, तो इसका जो असर है वो भारी बारिश के रूप में दिखाई देता है। विशेषकर आपने देखा होगा कि ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही थी, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और राजस्थान में इसका असर हुआ।
0: राष्ट्रीय तस्वीर देखने के बाद अब बात उन राज्यों की जहां बाढ़ सिर्फ एक मौसमी आपदा नहीं बल्कि हर साल लौटने वाली त्रासदी बन चुकी है। अलग अलग कारण, अलग अलग हालात, लेकिन नतीजा एक, जान माल का भारी नुकसान। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि किन राज्यों पर बाढ़ सबसे ज्यादा भारी पड़ी। असम में 2022 में 205 लोगों की जान गई और करीब 2,398 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिहार में 2023 में 502 लोगों की मौत दर्ज की गई, जो पिछले 5 वर्षों में राज्य का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। 2024 में भी 327 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में 2021 में बाढ़ से 163 लोगों की मौत हुई और नुकसान 16,079 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। वहीं केरल में 2021 में 131 लोगों की जान गई और आर्थिक नुकसान 9,256 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में 2022 की बाढ़ ने 10,526 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में 2023 में बादल फटने और भूस्खलन के बाद 1,503 लोगों की मौत या लापता होने के मामले दर्ज हुए, ये पिछले 5 वर्षों के सबसे गंभीर आंकड़ों में शामिल है।
1: जो भारी बारिश हुई है बीच बीच में और खास करके कैचमेंट एरिया में जो बारिश हुई है, अरुणाचल प्रदेश में, चाइना में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसकी सहायक नदियां हैं, वो उफान पर जब आ जाती है तो असम में बाढ़ आमतौर पर आ जाती है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मालूम है कि बारिश अभी लगातार हो रही है और अच्छी बारिश हो रही है, तो इसीलिए ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब अगर हम ये देखें कि जो मानसून है वो डेफिसिट है, जब जुलाई खत्म हुआ तो 13% के डेफिसिट पर खत्म हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। उसके बावजूद आपने देखा कि कुछ इलाके सूखे जैसे हालात झेल रहे हैं, खास करके जो दक्षिण भारत है वहाँ बारिश नहीं हो रही है, उत्तर भारत में भी बारिश बीच बीच में हो रही है और गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ इलाके और राजस्थान के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। तो उसका यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा स्क्यूड हो जाता है। जब डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मध्य भारत और जो गुजरात और राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहां पर इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है।
0: ये आंकड़े सिर्फ मौत और नुकसान नहीं बताते, ये बताते हैं कि देश का बड़ा हिस्सा हर साल एक जैसी आपदा से जूझ रहा है। बर्बादी की वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन नतीजा हर जगह एक जैसा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब सिर्फ राहत और मुआवजे से काम नहीं चलेगा, नदियों के प्राकृतिक बहाव को बचाना होगा, फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण रोकना होगा और समय रहते सटीक चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करना होगा, वरना हर मानसून के साथ यही आंकड़े बदलेंगे लेकिन तस्वीर नहीं।
2: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। अब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए टिकते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

एक बड़ी खबर इसे मैं आपको देते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वेंस के बीच में बताया जा रहा है कि फोन पर यह बातचीत हुई है। वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत हुई है और ये इस समय का बड़ा अपडेट है। दोनों के बीच में बताया जा रहा है कि फोन पर यह बातचीत हुई है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
3: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है, अब तक नहीं निकला कोई समाधान। राज्य में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने NSUI और JMM के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
4: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
3: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
5: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को विधानसभा घेराव
4: वो होगा।
5: यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ,
4: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए,
5: जी 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
3: उधर मामले पर सियासत जारी है। ABVP कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। ABVP के कार्यकर्ता CM आवाज घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
6: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
3: BJP लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
7: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलॉग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
3: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वही छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
8: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
3: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
9: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम मनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
10: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
11: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिन्हवानी कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
12: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
13: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो की रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
11: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
13: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
11: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक। और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
13: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
11: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है। मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
12: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
10: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। हम मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
13: आपने कितनी परीक्षाएं दी
10: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
13: 7 साल हो गए,
10: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
13: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
10: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है। तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे, तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जिस होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
12: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
13: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता?
10: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए। घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तो सोचे कुछ नहीं, कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ, ऐसा लगने लग गया। पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है। एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
13: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
10: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे। मैं क्या करूँ, मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे। घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं। हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा को। इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ये सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
12: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
2: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनावों पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्यों में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा।

आईड दिल्ली के दीक्षांत समारोह में बोले फिर प्रधानमंत्री मोदी, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजें। पीएम मोदी ने छात्रों को सीख दी, कहा कि कैंपस लाइफ और असल जिंदगी में बहुत अंतर है, इसलिए जिंदगी में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। आईटी दिल्ली में पीएम मोदी ने छात्रों को डिग्री दी और पहनाए मेडल। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए, इसमें पीएचडी कर रहे 587 स्टूडेंट भी। छात्रों की मनोदशा पर हल्के फुल्के अंदाज में पीएम मोदी ने कहा कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो आपके मन में चलता होगा। पीएम ने इस बयान पर छात्र हंसने भी लगे। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली में सोनीपत कैंपस में परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया। सुपर कंप्यूटर से एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और रिसर्च में मदद मिलेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बातचीत, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा। कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे का बयान, आरएसएस के इतिहास का अध्ययन कर रही है सरकार, कानून के दायरे में रहकर ही सख्त कार्रवाई होगी। आम लोगों के लिए यूपीआई ट्रांसफर पूरी तरह से बना रहेगा अब मुफ्त, लेकिन कुछ मर्चेंट्स के बाद को इसमें मामूली फीस देनी पड़ सकती है। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, आतंकी हमले में इनपुट मिले हैं, उसके बाद से बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल। पंजाब में बीएसएफ सीआई की बड़ी कार्रवाई, लगभग 30 किलो हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा। नौकरी के मुद्दे पर राहुल गांधी बोले कि 1000 में से 12 युवाओं को नौकरी मिल रही। नोटबंदी और जीएसटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, का नोटबंदी और गलत जीएसटी ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को आज खत्म किया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से बोले राहुल गांधी, दर्द आपका, डेटा आपका, लेकिन दौलत किसी और की। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का निशाना, सोशल मीडिया पर लिखा राहुल गांधी को प्रयागराज की जगह रांची जाना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी विवाद में एमएलए जयराम महतो ने बड़ी घोषणा की, कहा कि छात्रों के समर्थन में निर्जला उपवास रखेंगे। रांची में आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत का एक और आज दोपहर 12 बजे होगी मुलाकात, मंत्री संजय यादव ने जानकारी दी। रांची में परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से सोरेन सरकार की अब तक की बातचीत नाकाम, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं छात्र। छात्रों के आंदोलन के बीच में रांची में सीएम हेमंत सोरेन की 4 सदस्यीय मंत्री समूह के साथ मीटिंग, 4 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत चली। प्रदर्शनकारी छात्रों का कैंडल मार्च भी, राज्य सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार। दिल्ली में पीएम मोदी से यूपी के मुख्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात, पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने कहा कि प्रेरणा देता है। दिल्ली के दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले सीएम योगी, मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। मेरठ में सीएम योगी की अनोखी शिव भक्ति दिखी, मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। जनजे के लिए योगी सरकार की नई पहल, अब छात्रों को आईएएस आईपीएस ऑफिसर करियर टिप्स देंगे, जिला स्तर पर बनेगा पूरा स्केड्यूल। अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित, खराब मौसम और ट्रैक मरम्मतीकरण के चलते फैसला। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को अकाली दल का समर्थन मिला, सुखबीर बादल ने परिसीमन बिल को समर्थन का ऐलान। राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए गए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महिलाओं पर राहुल गांधी की सोच में बदलाव, उम्मीद है महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी का रिजिजू के बयान पर पलटवार, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, 3 साल बाद कानून लागू क्यों नहीं हुआ? रिजिजू का राहुल गांधी को जवाब, बोले संविधान में महिला आरक्षण का प्रावधान, परिसीमन के बाद लागू होता है महिला आरक्षण, 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े जरूरी। सोमवार को पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन बिल सदन में आने पर चर्चा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ बीजेपी पर किया हमला, बोले कि दोनों का आजादी में योगदान ही नहीं है, असली देशभक्त हम। पंजाब के मलेरकोटला में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा, स्टेज पर चढ़ने को लेकर कार्यकर्ता भिड़ गए। मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर सदन निशाना, बोले कि जातिवादी राजनीति कर रही है सपा, पीडीए का फॉर्मूला राजनीतिक छलावा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना, बोले जनता ये उनके परिवारवाद को जनता समझती है। सिद्धिविनायक मंदिर में चंदे की गड़बड़ी के मामले पर सीएम फडणवीस ने जांच के दिए आदेश, पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की जांच होगी। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क पर बाल पकड़कर घसघरे पति ने पत्नी को पीटा, थाने जाकर खुद करवाई एफआईआर। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के लालच में साले ने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा की हत्या कर दी, 4 गिरफ्तार। अलवर में कुएं में नवजात बच्चे को फेंकने के मामले के 3 महीनों के बाद गिरफ्तारी, आरोपी मां और बेटे को हरियाणा में अरेस्ट किया गया। अलवर में 8 फुट लंबे अजगर को महिला पर उसने किया अटैक, रेस्क्यू टीम ने 3 घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। सूरत में ऑटो चालक के साथ भीड़ ने की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सूरत में वीडियो बनाने को लेकर महिला और युवक के बीच में बहस हुई। ये होमगार्ड था, वीडियो वायरल। सूरत में जब्त शराब पर रोड रोलर चला है, लगभग 60 इसमें कई करोड़ की शराब जब्त की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 69 एटीएम कार्ड के साथ शातिर गिरफ्तार। 2000 एटीएम फ्रॉड मामलों में खंगाले जा रहे हैं तार। बीतिया में भारत नेपाल सीमा पर गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 42 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद, दो गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में पेड़ से टकराई पुलिस जीप, चालक की इसमें मौत, दारोगा समेत 3 घायल। बिहार के सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने के बाद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती। जयपुर में पुरानी हवेली के मलबे में खजाने का राज मिला और 66 किलो चांदी के साथ 5 भी गिरफ्तार। मुंबई के जुहू में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। भरूच में चलती ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग का एक युवक की इसमें मौत, दूसरा बाल बाल बच गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, स्विफ्ट डिजायर कार खड़े डंपर से जा टकराई, 2 की मौत, 3 घायल। लखनऊ के आशियाना थाना इलाके में कार में मिली लाश, मामले में खुलासा, शराब पीने के विवाद में पीट पीट कर हत्या की गई, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना इलाके में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या, अवैध संबंधों में वारदात को दिया अंजाम। गुंडा में विचाराधीन कैदी मित्र से जेल में मिलने के लिए गई नाबालिग लड़की के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने लड़की को पकड़ा। लुधियाना में 5 गोलियां मारकर नौजवान लड़के की हत्या, वारदात के पीछे पुलिस ने पुरानी रंजिश बताई। यूपी के मैनपुरी में अवैध मिल पर छापेमारी और यहां पर टेलकम पाउडर आटे में मिलाया जा रहा था। गुजरात के सापुतारा में मेघ मल्हार उत्सव की धूम, 12 राज्यों से 300 से ज्यादा कलाकारों ने समा बांधा। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले ऐप लॉन्च, घर बैठे ही बाबा गरीबनाथ के लाइव दर्शन होंगे। यूपी के एटा में कलयुग के श्रवण कुमार जैसे अनोखी कावड़ देखी, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 4 बेटों ने कंधों पर अनोखी कावड़ उठाई। सहारनपुर में भी अनोखी गौ रक्षा कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र, 3 कावड़ों को जोड़कर बनाई गई ये भव्य कावड़। वाराणसी में सरुजा गोल्ड डीएमजी बास का उत्तर प्रदेश में खुला पहला वेयरहाउस, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतविंदर सिंह सरुजा ने किया शुभारंभ, ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा।

0: अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है, अब तक नहीं निकला कोई समाधान। राज्य में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: होगा।
3: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए?
3: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, चूंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में हैं।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ, भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग टिंकर के जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़नेगा।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलूट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
1: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वही छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए, जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
1: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
7: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम बनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
8: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन से बोले कि हम जॉब ले लेंगे, जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
9: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, घर से कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे हैं तब जाके हमें बनाने को मौका।
10: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
11: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
9: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
11: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
9: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हुआ ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक। और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
11: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
9: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
10: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
8: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
11: आपने कितनी परीक्षाएं दी
8: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं।
11: 7 साल हो गए,
8: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
11: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
8: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरी 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है। तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जैसे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
10: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
11: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सविता?
8: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है, यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए। घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं, कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ, ऐसा लगने लग गया। पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करे, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगा। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, हर सबको भेज देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है और बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
11: सोच रहे आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
8: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेंगे। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे। घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं। हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा को। इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे, तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ये सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
10: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है।

0: शिक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है, उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: तो यूपी के बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर सियासत हो रही है। पप्पू यादव पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया जिसका विरोध चल रहा है।
4: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे।
5: इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है, आगे ये मारेंगे हम।
4: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
6: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
7: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपोर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: होगा,
3: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
3: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग टिंकर के जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ेगा।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करने चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए, जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
8: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम बनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
9: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे, पापा कितना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए, घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
10: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिन्हा ने कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे हैं तब जाके हमें बनाने को मौका।
11: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
12: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
10: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
12: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
10: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक, और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
12: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
10: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
11: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
9: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
12: आपने कितनी परीक्षाएं दी?
9: अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
12: 7 साल हो गए,
9: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
12: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
9: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है। एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिए कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जैसे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
11: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
12: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता।
9: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ, ऐसा लगने लग गया। पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगा। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसियां बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको भेज देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है और बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
12: सोच रहे आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
9: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगे। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं। हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे। पापा को इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ये सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
11: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
4: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
5: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपॉर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दिता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
4: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनवीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
6: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे। जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था, इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
7: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लेंगे ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
4: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे ISI समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
8: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता ए आ मंसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये ता होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहिदी आ।
9: अपनी टाइमिंग देखें, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
4: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
4: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
10: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
4: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी? आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी मां रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसका अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ की हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता यह है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتمم.
4: ایران کی سنسد کی راشتریہ سرکشا اور ویدیش نیتی سمیتی کے سدسے ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکیے اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا۔ آج تک پیو
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी, या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। राज्य में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है, और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से, वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: होगा।
3: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
3: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है। बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ेगा।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
8: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम मनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
9: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
10: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिन्हांदी जी कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
11: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
12: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो की रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
10: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
12: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गई?
10: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक, और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
12: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
10: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
11: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
9: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
12: आपने कितनी परीक्षाएं दी?
9: अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
12: 7 साल हो गए,
9: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
12: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
9: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है। एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिए कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
11: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
12: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता।
9: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ ऐसा लगने लग गया, पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करें, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे, पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, हर सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
12: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
9: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे, पापा को इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ये सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
11: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: तो यूपी के बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर सियासत हो रहे हैं। पप्पू यादव पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया जिसका विरोध चल रहा है।
4: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे,
5: फूल बरसाए जा रहे, मारे जा रहे, इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है, आगे ये मारेंगे हम।
4: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में ISI की साजिश का खुलासा किया था।
6: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
7: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपॉर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दिता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
6: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह DIG बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
8: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे, जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
9: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
6: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे ISI समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
10: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता ए आ मंसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये ता होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
11: अपनी टाइमिंग देखें, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
6: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
6: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के CM से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है।

0: मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
1: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
0: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी, आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी मां रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसके अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोबिल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ की हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनावों पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। राज्य में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वहीं छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: होगा,
3: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए?
3: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में हैं।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवाज घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग टिंकर के जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़नेगा।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलूट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वही छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
8: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम बनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
9: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे, पापा कितने दिन से बोले कि हम जॉब ले लेंगे, जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
10: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, घर से निबंधन कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे हैं तब जाके हमें बनाने को मौका।
11: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
12: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
10: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
12: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
10: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुआ। ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक, और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
12: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
10: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
11: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
9: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं की, हम मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
12: आपने कितनी परीक्षाएं दी?
9: अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
12: 7 साल हो गए,
9: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
12: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
9: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरी 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है। एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जिस होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
11: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
12: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सविता।
9: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ, ऐसा लगने लग गया। पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करे, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगा। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है और बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
12: सोच रहे आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
9: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेंगे। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं। हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा को। इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
11: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
4: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
5: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपोर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दिता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
4: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
6: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू व्हाइट बॉय थे। जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था, इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
7: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
4: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
8: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता ए आ मंसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये ता होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहिदी आ।
7: अपनी टाइमिंग देखे, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे।
4: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
4: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
9: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
4: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी? आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसका अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ती हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सबके लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता यह है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتمم
4: ایران کی سنسد کے راشٹریہ سرکشا اور ودیش نیتی سمیتی کے سدسیہ ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا۔ آج تک پیو
3: وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا, خبروں کا سلسلہ جاری ہے, آپ دیکھتے رہیے آج تک.

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी, या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। राज्य में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है, और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से, वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वहीं छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है, और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: वो होगा
3: यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
3: जी 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में हैं।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवाज घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है। बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ेगा।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
8: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम मनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
9: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन से बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
10: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिन्हांदी जी कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
11: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
12: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो की रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
10: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
12: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गई?
10: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, हुआ ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक, और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
12: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
10: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
11: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
9: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। हम मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
12: आपने कितनी परीक्षाएं दी
9: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं।
12: 7 साल हो गए,
9: सात साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
12: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
9: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे चार बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है। एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
11: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
12: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता।
9: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ ऐसा लगने लग गया, पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करें, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे, पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, हर सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है और बोलता है हम क्लीन चिट क्लीन एग्जाम लिए हैं।
12: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
9: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में टिक पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह रहा घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे पापा को, इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ये सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
11: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: तो यूपी के बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई है जिस पर सियासत हो रहे हैं। पप्पू यादव पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया जिसका विरोध चल रहा है।
4: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे,
5: फूल बरसाए जा रहे, मारे जा रहे, इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है, आगे ये मारेंगे हम।
4: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
6: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
7: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपॉर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे होके जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दित्ता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
6: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनवीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
8: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू व्हाइट बॉय थे, जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे, और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
9: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
6: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
10: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे तां ये आ मनसूबा सी बई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये तां होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। इहदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
11: अपनी टाइमिंग देखे पहले, अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
6: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
6: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है, राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया।

0: चाहनी है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
1: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
0: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी, आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था आज तक। ब्यूरो
2: अब आज कांवड़ यात्रा की, जिसका अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोबिल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ती हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता ये है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी, या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी, छात्रों का आंदोलन भी जारी। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। राज्य में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
1: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है, और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से, वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
0: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
2: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव
1: होगा,
2: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
1: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
2: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
0: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
3: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है। बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
0: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
4: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंचे, वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
5: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
6: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
7: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम मनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
8: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन से बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
9: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिन्हवानी कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
10: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
11: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो की रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
9: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी तो हो गए होंगे, 15-20 इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
11: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
9: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक। और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
11: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
9: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
10: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
8: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
11: आपने कितनी परीक्षाएं दी
8: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
11: 7 साल हो गए,
8: सात साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
11: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
8: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे चार बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है। एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जिस होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
10: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
11: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता।
8: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ ऐसा लगने लग गया, पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे, पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
11: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
8: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में ठीक पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे। मैं क्या करूँ, मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे। घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे पापा को, इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे अब नहीं कर पा रहे, तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ये सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
10: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, एक नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
4: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
5: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पूछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के जंतर मंतर दिल्ली गए सी, जो प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दिता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
4: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
6: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे। जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था, इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
7: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ने के, ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
4: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे ISI समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
8: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता ए आ मंसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के यह कह देंदे भी यह ता होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
7: अपनी टाइमिंग देते हैं, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
4: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
4: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
9: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
4: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी? आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी मां रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसके अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोबिल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ की हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता यह है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتمم.
4: ایران کی سنسد کی راشتریہ سرکشا اور ویدیش نیتی سمیتی کے سدسے ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکیے اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا۔ آج تک پیو
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी, या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है, और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहाँ बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: वो होगा
3: यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: तो छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए?
3: जी 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहाँ से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में हैं।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रही है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग टिंकर के जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करने चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है। और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंचे। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और उस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
8: भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन से बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए, घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
9: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिनेमांदनी से कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं। फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
10: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं, और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
11: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
9: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी तो हो गए होंगे, 15-20 इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
11: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
9: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुआ। ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह, फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक, और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जो हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
11: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
9: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
10: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
8: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर का स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
11: आपने कितनी परीक्षाएं दी?
8: अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
11: 7 साल हो गए,
8: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
11: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
8: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है। तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में, मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिए कि हम पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
10: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
11: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता?
8: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं, कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ, ऐसा लगने लग गया। पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
11: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ है।
8: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे, पापा को इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
10: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
4: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
5: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पूछगिछ कल आई है कि 8 जने इकट्ठे होके जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दिता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
4: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
6: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू व्हाइट बॉय थे, जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
7: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
4: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
8: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता मनसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के कह देंदे भी ये तो होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
7: अपनी टाइमिंग देखे, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे।
4: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
4: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
9: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से। ठीक है,
4: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी? आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसका अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का

0: तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ती हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता ये है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: در رابطه با همسایگان اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنند علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه، خب گفتمم.
4: ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य इब्राहिम रजाई ने इस समझौते की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को ये समझ लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ किया गया कोई कागजी समझौता उसे सुरक्षा नहीं देगा। आज तक ब्यूरो।
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी, या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
1: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ही लगातार बढ़ती जा रही है, और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहाँ बढ़ गया है।
0: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
2: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव
1: होगा,
2: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
1: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए?
2: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में हैं।
0: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
3: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ, भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का, हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
0: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
4: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलूट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है। और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंचे। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
5: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
6: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
7: घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
8: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिनेमांदनी कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं। फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
9: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं, और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
10: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षा?
8: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी तो हो गए होंगे, 15-20 इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
10: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
8: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक। और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जो हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
10: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
8: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
9: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
7: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
10: आपने कितनी परीक्षाएं दी
7: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
10: 7 साल हो गए?
7: सात साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक कर चुके।
10: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
7: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे चार बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है। एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिए कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जैसे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
9: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
10: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता।
7: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ ऐसा लगने लग गया, पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे, पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
10: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
7: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे, पापा को इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
9: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
4: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
5: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पूछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे होके जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दिता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
4: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
6: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू व्हाइट बॉय थे। जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था, इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
7: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
4: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
8: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता ए आ मंसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये ता होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहिदी आ।
7: अपनी टाइमिंग देखे पहले, अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
4: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
4: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
9: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से। ठीक है,
4: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी? आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी मां रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसका अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि ये सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ती हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता ये है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتمم
4: ایران کی سنسد کی راشٹریہ سرکشا اور ودیش نیتی سمیتی کے سدسیہ ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا۔ آج تک بھی
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात, अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक, विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज, कहा युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया, बोले दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की, रिजिजू बोले उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात, अब तक की वार्ता बेनतीजा, प्रदर्शनकारी युवा अमेरिका मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल, एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां, खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन, आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी। बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है, अब तक नहीं निकला कोई समाधान। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
1: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहाँ बढ़ गया है।
0: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वहीं छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
2: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को विधानसभा घेराव
1: होगा।
2: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
1: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
2: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, चूंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में हैं।
0: उधर मामले पर सियासत जारी है, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
3: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
0: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
4: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करने चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है। और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंचे। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
5: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
6: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
7: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन से बोले कि हम जॉब ले लेंगे, जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
8: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर संविधान से कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं। फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
9: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं, और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
10: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
8: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी तो हो गए होंगे, 15-20 इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
10: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
8: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक। और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जो हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
10: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
8: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
9: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
7: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
10: कितनी परीक्षाएं दी?
7: अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
10: 7 साल हो गए,
7: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
10: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
7: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है। तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में, मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिए कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जैसे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
9: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
10: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता?
7: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ, ऐसा लगने लग गया। पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसियां बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
10: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ है।
7: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे, पापा को इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
9: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: तो यूपी के बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर से असर हो रहे हैं। पप्पू यादव पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया जिसका विरोध चल रहा है।
4: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे।
5: इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है, आगे ये मारेंगे हम।
4: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
6: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
7: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपॉर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे होके जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दित्ता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
6: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
8: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे, जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे, और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
9: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
6: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
10: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे तां ए आ मनसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के यह कह देंदे भी यह तां होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। इहदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
9: अपनी टाइमिंग देखे, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
6: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
6: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। तीन साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
11: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
6: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी, आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था आज तक। ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसके अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोबिल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि ये सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ की हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता ये है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتمم
4: ایران کی سنسد کی راشٹریہ سرکشا اور ودیش نیتی سمیتی کے سدسیہ ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا۔ آج تک بھی
3: وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا۔

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात, अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक, विधानसभा चुनावों पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज, कहा युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया, बोले दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की, रिजिजू बोले उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात, अब तक की वार्ता बेनतीजा, प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल, एनएसजी दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां, खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन, आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी। बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है, अब तक नहीं निकला कोई समाधान। राज्य में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वहीं छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: होगा।
3: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए?
3: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में हैं।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवाज घेरने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ पकड़ो बंद करो लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग टिंकर के जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
8: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम बनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
9: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे, पापा कितने दिन से बोले कि हम जॉब ले लेंगे, जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए, घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
10: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, घर से निवाने कुछ भी नहीं करना है, तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे हैं तब जाके हमें बनाने को मौका।
11: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
12: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
10: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
12: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
10: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुआ, ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक, और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
12: आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
10: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
11: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
9: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1-2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एगो जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
12: आपने कितनी परीक्षाएं दी?
9: अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
12: 7 साल हो गए,
9: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
12: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
9: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरी 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है। एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जिस होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
11: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
12: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सविता।
9: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ, ऐसा लगने लग गया। पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करे, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगा। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
12: सोच रहे आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
9: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में ठीक पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेंगे। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे, पापा को इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
11: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
4: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
5: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपोर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दित्ता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
4: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
6: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू व्हाइट बॉय थे, जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
7: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
4: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
8: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता ए आ मंसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये ता होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
7: अपनी टाइमिंग देखे पहले, अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे।
4: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
4: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
9: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से। ठीक है,
4: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी? आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसका अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ती हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता यह है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتمم
4: ایران کی سنسد کے راشٹریہ سرکشا اور ودیش نیتی سمیتی کے سدسیہ ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا۔ آج تک پیو
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवा अमेरिका, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी, या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है, और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहाँ बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: होगा,
3: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए?
3: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहाँ से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है। और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंचे। वही छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
8: भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन से बोले कि हम जॉब ले लेंगे, जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए, घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
9: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर संविधान ने कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
10: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं, और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
11: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
9: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी तो हो गए होंगे, 15-20 इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
11: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
9: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक। और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जो हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
11: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
9: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
10: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
8: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
11: आपने कितनी परीक्षाएं दी?
8: अभी तक सर हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
11: 7 साल हो गए,
8: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
11: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
8: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है। तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में, मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिए कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
10: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
11: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता।
8: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ, ऐसा लगने लग गया। पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे। पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
11: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
8: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे। मैं क्या करूँ, मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे। घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे, पापा को इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
10: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: तो यूपी के बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर सियासत हो रहे हैं। पप्पू यादव पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया जिसका विरोध चल रहा है।
4: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे,
5: फूल बरसाए जा रहे, मारे जा रहे, इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है, आगे ये मारेंगे हम।
4: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
6: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
7: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपॉर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दित्ता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
6: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
8: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे, जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई, रात को सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
9: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
6: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
10: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे तां ए आ मनसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के यह कह देंदे भी यह तां होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। इहदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
11: अपनी टाइमिंग देखे पहले, अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
6: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
6: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
12: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
6: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी, आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसके अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी यहां मौजूद हैं।

0: कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ती हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता ये है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتمم
4: ایران کی संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य इब्राहिम रजाई ने इस समझौते की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को यह समझ लेना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ किया गया कोई कागजी समझौता उसे सुरक्षा नहीं देगा। आज तक भी
3: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।